ओम शांति। मनुष्य के अंदर लंबे काल से मैं और मेरापन गहराई तक समा गया है। उसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं और ये दोनों ही आत्मा को बंधन डालते हैं। उनमें अनेक विकारों की उत्पत्ति होती है, काम, क्रोध, मोह, अभिमान, ये सब इस मेरेपन की ही देन है। मेरी पत्नी काम को उत्तेजित करती है, मेरे बच्चे मोह को बढ़ाते हैं, मेरा अधिकार क्रोध की अग्नि को प्रज्वलित करता है। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं भी कुछ हूँ, अभिमान बढ़ता है। हमें जानना चाहिए ये सभी मनोविकार मनुष्य के अंदर बंधन पैदा करते हैं, हमें स्वतंत्र नहीं होने देते। हमें तो स्वतंत्र होकर उड़ना है। देख लें कौन सा मेरापन मुझे बांध रहा है। मेरी जिम्मेदारी, मेरा परिवार, मेरे मन के ये बोझ, मेरी चिंताएं, मेरा नाम, मेरी बदनामी, मेरी निंदा, मेरी महिमा, ये सब मेरेपन के विभिन्न विभिन्न स्वरूप हैं। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ निगेटिव हैं। दोनों ही आत्मा को बंधन डालते हैं। हम तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनने के लिए एक बात पर विशेष चिंतन करें जिसमें बहुत सुख मिलेगा और ऐसा भी महसूस नहीं होगा कि हम मेरेपन को छोड़कर कुछ कष्ट पा रहे हैं। मेरापन छोड़ना, मेरे बच्चे ये छोड़ना कितना भारी लगता है, पर नहीं, बच्चे तो वो मेरे ही रहेंगे, पर हम बाबा को समर्पित कर दें उन्हें। हम सभी एक बात का बहुत अच्छा अभ्यास करें, बाबा ही मेरा संसार है। संसार में दो चीजें हैं, व्यक्तियों से मिलने वाला सुख, प्यार और प्राप्तियां, सब हमें एक बाबा से मिलती हैं। व्यक्तियों से, वैभवों से जो कुछ हमें मिलता है उसे बहुत ज्यादा हमें बाबा से मिलता है। जो व्यक्ति और वैभवों से मिलता है उससे हजारों और करोड़ों गुना हमें बाबा से मिल जाता है। ये तो बहुत अल्पकालीन प्राप्ति है, हमें तो शायद अंदाज भी नहीं है सतयुग में हमारे पास क्या क्या होगा और हम स्वयं कैसे होंगे, इसकी कल्पना भी अभी हमारी बुद्धि नहीं कर पा रही है। अथाह धन संपदा, हीरो मोतियों जवाहरातों से भरा हुआ संसार, जहाँ उनकी कोई कीमत ही नहीं है। संपूर्ण सुख शांति का साम्राज्य, संपूर्ण संसार अपना, जितना चाहे जगह लेकर अपने महल बना लो, किसी से कोई बंधन नहीं, कोई विशेष पूछताछ नहीं। ऐसा सुंदर संसार बाबा हमें दे रहा है, तो हम लग्न बढ़ाएं, रस प्राप्त करें इस चीज से कि बाबा ही मेरा संसार है, सब कुछ मुझे उससे ही प्राप्त करना है। और ये मोह ममता तो बहुत कष्ट पहुंचाने वाली है, इसलिए जो कुछ हमारे पास है वो सब बाबा की देन है, और जो कुछ हमारा है जिसमें मेरापन रहता है उसे भी बाबा को अर्पित कर दें। ये सब तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे, तुम इनके बाप हो, मैं लौकिक हूँ, तुम अलौकिक पारलौकिक हो, मेरे से ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इन्हें संभालो, बहुत अच्छी तरह संभालेंगे बाबा। ये मेरी जिम्मेदारियां, ये मेरी चिंताएं, इन्हें भी प्रभु अर्पित कर दो। तो आज सारा दिन हम समर्पण भाव से जीवन जिएंगे, सब कुछ तेरा,
सूक्ष्म लोक में अपने को महसूस करेंगे और बाबा से आज बात करेंगे, ये सब कुछ तेरा, और फिर बाबा से दृष्टि लेंगे, दृष्टि का सुख लेंगे और फील करेंगे ब्रह्मा बाबा के तन में ज्ञान सूर्य बैठा है, चमक रहे हैं उनकी तेजस्वी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति।

उठो जागो अपना भाग्य संवारो। ये समय है जागने का, जागृति लाने का, ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का, ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है। किस्मत

0: ओए रुक रुक, कुछ सुनाई नहीं देती। वो ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। हमें अपनी दिव्य संभावनाओं का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यदि हमें अपने भीतर छिपी भावना सामर्थ्य का तनिक भी पता हो तो हम कभी भी भयग्रस्त ना होते। इस बात के ज्ञान भाव से ही समस्त प्रकार के संसार भय नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे प्रत्येक कार्य में भागीदार है। खेद है कि हम अपने विषय में जब भी अनुमान करते हैं तब अपने आप को बहुत छोटा बना लेते हैं। हम अपनी शक्ति को तुच्छ बना संकट को अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बढ़ चढ़ कर मान लेते हैं। पर जिस पल हमें अपनी शक्ति की अनुभूति होती है उसी पल हमारी सामर्थ्य बढ़ जाती है। असीम से संबंध जोड़कर तब स्वयं असीम हो जाते हैं और संकट तुच्छ बन जाता है। हमें उस विशाल शक्ति के भंडार की अनुभूति होनी चाहिए जो हमारे भीतर सुरक्षित छिपा हुआ है। वह हमारी सहायता के लिए सदा तत्पर है। वह एक युवक जो पूंजी कम होने के कारण किसी व्यापार को आरंभ करने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, इस समाचार को प्राप्त कर ले कि उसकी सहायता करने को एक बड़ी कंपनी ने निश्चय कर लिया है और वह अपने व्यापार को चलाने के लिए जितना धन चाहे उस कंपनी से प्राप्त कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार व्यापार में लगा सकता है, तो उस युवक को कितनी असीम प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का संबंध उस असीम शक्ति के भंडार उस सर्वशक्तिमान से जुड़ जाता है, उसे किसी प्रकार की शक्ति सामर्थ्य या पूंजी की आवश्यकता नहीं रहती है। उसे तब अपने अंदर सब कुछ मिल जाता है, फिर किसी प्रकार भयग्रस्त नहीं होता। उस असीम के अथाह भंडार के साथ संबंध जोड़ने की आवश्यकता है, फिर जितनी चाहे शक्ति सामर्थ्य प्राप्त कर लो, जितनी चाहे सफलता प्राप्त कर लो। हम तुच्छ तब बनते हैं जब अभाव के भय को उस सर्वशक्तिमान से बड़ा मानकर उसके आगे लगते हैं और उससे अपने स्पष्ट से संबंध तोड़ लेते हैं। यदि हम ऐसा न करें तो हमारा जीवन अधिक ऊंचा, अधिक उन्नत और अधिक विराट निश्चय रूप से बन सकता है। चिंता, निरंतर चिंता से शारीरिक स्वास्थ्य पर जितना बुरा प्रभाव पड़ता है उतना अन्य किसी बात से नहीं। उत्साह भंग होने से भी स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वस्तुतः उत्साह भंग और चिंता एक दूसरे पर आश्रित हैं। दोनों का ही प्रभाव हानिकारक है। तो इसीलिए सदा चिंता से मुक्त रहिए और उमंग उत्साह से भरपूर रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रस्किन कहता है, दिल डूबा तो नौका डूबी। मैं उत्साह भंग के सिवा ऐसी किसी भी दूसरी बात को नहीं जानता जो अकेले ही मनुष्य को इतनी अधिक हानि पहुंचा सकता है। उत्साह भंग होने से आशाएं धुंधली पड़ जाती हैं, आकांक्षाएं क्षीण होकर नष्ट होने लगती हैं, कार्य करने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। रस्किन ने सच ही तो कहा है। एक कहावत है, जब तक सांस तब तक आस। जब आशा ही नष्ट हो जाए तो जीवन में फिर रह ही क्या जाता है। सारा उत्साह ही ठंडा हो जाए तो सब कुछ सुना, सब कुछ फीका हो जाता है। क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि जब आप निरुत्साह होते हैं तब आप क्या करते हैं? आप अपने मन को ही निषेधात्मक बना देते हैं, जबकि उसे विधेयात्मक और सृजनात्मक होना चाहिए। तब मन ध्वंसात्मक बनकर आपकी कार्य शक्ति को नष्ट कर देता है, जबकि होना चाहिए था उसे निर्माणात्मक, क्योंकि केवल रचनात्मक या विधेयात्मक मन ही रचना कर सकता है। जो व्यवसायी निरंतर बुरे दिनों और घाटे की बात ही सोचता रहता है, वस्तुतः वह मंदी के दिनों को ही अपने पास बुलाता है। उत्साह भंग होने से जो घबराहट होती है उससे बहुत अनर्थ होता है। यह घबराहट फैलते फैलते कई बार जंगल की आग की भांति फैलकर बहुत हानि पहुंचाती है और उसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। जिस सेना के हौसले टूट जाते हैं, उमंग उत्साह भंग हो जाता है, वह तो मानो स्वयं ही हार गई। वह तो युद्ध क्षेत्र में जाने से पूर्व ही पिट गई। कुछ लोग तो इतने कोमल और नाजुक होते हैं कि यदि उनका उत्साह टूट जाए तो अपने को वश में नहीं रख सकते। एक ही असफलता उन्हें ले डूबती है, उसके बाद वे प्रयत्न करना ही बंद कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि वे मध्यम कोटि के व्यक्ति रह जाते हैं, जबकि उनमें योग्यता उत्तम या प्रथम कोटि का मनुष्य बनने की थी। उन्होंने ऊपर उठना, जीवन की ऊंचाइयों पर चढ़ना बंद कर दिया, अतः वे नीचे ही रह गए। उन्होंने अपनी उन्नति को रोक दिया। लोग यह भूल जाते हैं कि जीवन की उन्नति किसी एक प्रयत्न की सफलता पर आधारित नहीं, वह तो निरंतर श्रम और प्रयत्न पर निर्भर है। जीवन की उन्नति के अवसर लगातार परिश्रम, निरंतर अध्यवसाय और अचल निष्ठा से ही आते हैं। अपने मन को निरंतर उत्साहित करते रहिए, इससे आपका शरीर सदा सक्रिय रहेगा। जब शरीर निरंतर काम में लगा रहेगा तो उसी के द्वारा आपके जीवन का अभ्युदय होगा।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बार व्यक्ति परिश्रम तो कर रहा होता है, परंतु उसे उसका फल नहीं प्राप्त होता। वह इस पर आश्चर्य करता है, किंतु इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति काम अपनी ही आशाओं व आकांक्षाओं के विरुद्ध कर रहा होता है। वह जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, परिश्रम उससे उल्टा कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में उसे मन चाहा फल कैसे प्राप्त हो सकता है? वह व्यक्ति नहीं जानता कि उसे उसके प्रयत्नों का ही फल प्राप्त हो रहा है, परंतु वह जैसे फल की कामना करता है वैसा फल नहीं हो रहा। क्या वह नहीं जानता कि बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हो? यह प्रयत्न तो करता है, परंतु बीच में ही उसे निराशा आ घेरती है, संदेह उत्पन्न हो जाता है, उसके मन में भय आ बैठता है और शनेह शनेह उसका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। उस समय वह ठीक विधि से काम नहीं कर पाता, और ठीक विधि से काम न होने से ठीक फल कैसे होगा? हम में से बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि निरंतर अपने विचारों को दूषित करते रहते हैं, उन्हें विषाक्त बनाते रहते हैं, अपने मन में ध्वंसात्मक विचार लाकर अपनी शक्ति को तुच्छ समझकर मन में हीन भावनाओं को प्रश्रय देते हैं। उत्साहहीनता एक ऐसा घातक रोग है जिससे हमारा मस्तिष्क विषमय होकर हमारी योग्यता नष्ट हो जाती है। इससे कार्य करने का जोश नहीं रह जाता और काम में मन ही नहीं लगता। यदि आप रचनात्मक कार्य नहीं करते तो जान लीजिए कि आप ध्वंसात्मक कार्य कर रहे हैं। तो कहने का भाव यही है, यदि आप रचनात्मक कार्य नहीं करते तो जान लीजिए कि आप ध्वंसात्मक कार्य कर रहे हैं। तो सदा अपने मन को रचनात्मक कार्यों में बिजी रखें, हमेशा अपने मन में उमंग उत्साह बनाए रखें, तो कभी भी आप निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे और सदा चिंता मुक्त रहेंगे। यदि आपका मन रूपी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन यह घोषणा करता है, मैं संपन्नता की सफलता की इच्छा तो करता हूँ, किंतु वह मेरे भाग्य में नहीं है, मैं संपन्नता के लिए कठोर परिश्रम तो करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मुझे विश्वास नहीं होता है कि मुझे सफलता मिलेगी, मैं व्यापार से धन तो एकत्र करना चाहता हूँ, परंतु चूंकि मेरा जन्म बुरे ग्रहों में हुआ है, अतः मैं धनी नहीं बन सकूंगा, मैं जीवन भर साधारण और हीन ही बना रहूंगा। ऐसा लगता है कि जीवन की सफलताएं तो अन्य लोगों के लिए ही है। ऐसी स्थिति में निश्चय ही संपन्नता के द्वार आप अपने लिए स्वयं ही बंद कर रहे हैं, जबकि आपका कर्तव्य था कि आप संपन्नता के लिए और पूर्ण सफलता के लिए प्रयत्न करें। तो सदा अपने मन से ऐसे नकारात्मक विचारों को दूर रखें और संपन्नता और सफलता के विचारों से भरपूर रखें।

0: ओए रुक ओए रुक ओए रुका ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति तो एक बाइक पे तीन हैं और तुम लोगों को शर्म नहीं आती और बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

यदि आप जीवन में विजयी होना चाहते हैं, तो आपकी मनोवृत्ति भी विजय भावना से युक्त होनी चाहिए। आपको अपने काम धंधे के प्रति अपने मन में सफलता और विजय की भावना रखनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने आप को अपने साथियों से किसी तरह हीन न समझें। अपने आप को उनके सामने समान स्तर का ही समझें। आप अपने साथियों में जाएं, तो विजयी भाव लेकर ही जाएं, तभी आप विजयी हो सकेंगे। मान लीजिए कि नेपोलियन अपनी सेनाओं को एकत्र कर उन्हें यह समझाते, युद्ध में सफलता की आशा नहीं, विजय की आशा नहीं, शत्रु अधिक बलवान हैं, फिर भी मैं यही आशा करता हूँ कि हम अपना पूरा बल लगाएंगे। इस प्रकार कहने के साथ ही अपनी सेनाओं से वह आशा रखते कि वे खूब डटकर लड़ाई करेंगे, तो क्या फल होता? यदि वह अपने सैनिकों में पराजय की भय की भावना अथवा विजय के प्रति संदेह की आशंका जताते, तो वे शत्रु की तोप का पहला गोला चलते ही पराजित हो जाते। सेनाएं तुरंत उस भावना को ग्रहण कर लेती हैं जो उनके सेनापति के मन में होती है। यह माना कहा और समझा जाता है कि युद्ध भूमि में नेपोलियन की उपस्थिति मात्र से ही उनके सैनिक अनुभव करने लगते थे कि मानो उनकी सहायता के लिए नई कुमुक आ पहुंची है। उसने अनेक युद्ध, भयंकर आमने सामने के युद्ध केवल इसलिए जीत लिए थे कि वे पराजय अथवा उत्साहहीनता को जानते ही न थे। पराजय का वे कभी नाम न लेते थे। धन संपन्नता सर्वप्रथम आपके मन में ही उत्पन्न होती है। जितनी बार उत्पन्न होती है, उतनी बार आपका उत्साह भंग होता है। जितनी बार आप अपनी योग्यता पर संशय करते हैं, उतनी बार निराशा आपको घेरती है। उतनी ही बार आप अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, उतनी ही बार आप अपने आदर्श से दूर हटते हैं, और उतनी ही बार आप उस पदार्थ को अपने से दूर धकेल देते हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते थे। आप अपने चारों ओर निर्धनता, दीनता और तुच्छता का वातावरण पैदा कर संपन्न नहीं हो सकते। निर्धनता, गरीबी और भय के विचार संपन्नता के मार्ग में बाधक हैं। ये निषेधात्मक विचार धन संपत्ति की प्राप्ति में बाधा डालते हैं। हम सोचते ही नहीं कि हमारे संदेह, भय या उत्साहहीनता के भाव हमारी आशा आकांक्षाओं को किस प्रकार दूर कर देते हैं। इनसे हमारा खून ठंडा हो जाता है, उसकी गर्मी जाती रहती है। ये दुर्भाव हमारे दृढ़ निश्चय को रसाताल की ओर ले जाते हैं। वे हमें सीधे पराजय का मुंह दिखाते हैं। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम इन संदेह भरे, भय से ग्रस्त और उत्साहहीनता के भाव वाले विचारों को अपने मन में ही न लाएं, और सदा उमंग, उत्साह, निर्भयता के और विजय के विचारों के साथ अपने आप को अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुन 107.8 FM पर। मैं हूं आरजे श्री और हम सहज स्वास्थ्य में हर दिन बात करते हैं अपने स्वास्थ्य को सहज करने के तरीकों के बारे में। लोग अक्सर ये समझते हैं कि स्वास्थ्य आसान चीज नहीं है, इसे साधना बहुत ही मुश्किल है, मगर वास्तविकता ये है कि स्वस्थ रहना सहज है अगर आपको ये पता हो कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता क्यों है। प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना, अगर अपने ज्ञान को अगर हम सही सोर्स से यानी सही जगह से लेते हैं तो फिर अपने आप को स्वस्थ रखना भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। आजकल हम यहाँ वहां से बहुत सारी चीजें सुन लेते हैं और समझते हैं कि ये सारी चीजें हमें स्वस्थ रखने के लिए मददगार होती हैं। इसके लिए सही जानकारी सही स्रोत से लेना भी आवश्यक है। स्वास्थ्य के जगत से जुड़े हुए लोग यही चीज हमें कहते भी आए और सदियों से स्वास्थ्य पर जो चिंतन रहा है उसका सही ज्ञान हमें होना भी आवश्यक है। आज की चर्चा में भी हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में भी इनका लंबा अनुभव रहा है और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्र आरोग्य मंदिर गोरखपुर में ये प्रैक्टिस करते हैं, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: ओम शांति, नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, हम ये बात समझते आए हैं कि प्रकृति चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति रही है जो सिर्फ लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का काम नहीं करती, वह लोगों को बीमार पड़ने भी नहीं देती। ऐसे अनेक इंटरवेंशंस प्रकृति चिकित्सा में दिए गए हैं जो समय समय पर अगर व्यक्ति उसका इस्तेमाल करे तो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके चल सकता है, उसे बीमार होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपने ये बातचीत में बताया था कि प्रकृति के तत्वों को इस्तेमाल करके हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। हम पिछली बातचीत में ये चर्चा कर रहे थे कि कटी स्नानों के बारे में, कि भाई हम ठंडे और गर्म पानी के कटी स्नान जब करते हैं, हिप बाथ्स करते हैं, तो क्या होता है, इसका क्या असर होता है, ये सब चीजें समझी। आजकल स्नान की जब बात की जाती है तो एक तो व्यक्ति समझता है कि हाँ भाई हर दिन हमें स्नान कर लेना चाहिए, तो व्यक्ति स्नान करके फ्रेश हो जाता है। कुछ और चीजें आज सुनने को मिलती हैं, जैसे लोग कहते हैं कि स्टीम बाथ होना चाहिए, कि भाई कहीं कहीं पर लोग जाते हैं और बोलते हैं स्टीम बाथ लेना चाहिए। इसके अनेक उदाहरणों में लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में भी स्टीम बाथ्स हुआ करते थे। टर्किश बाथ्स की बात कही जाती है तो कहा जाता है कि टर्किश हमाम्स हुआ करते थे। यहाँ मुगल साम्राज्य में भी जब बात की जाती है तो बहुत सारे ऐसे पब्लिक बाथ्स थे जहां पर स्टीम में व्यक्ति काफी देर बैठता था और आता था, उससे भी बहुत सारे फायदे। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा कुछ बताइए।
1: जैसे आपने कहा कि प्रकृति चिकित्सा आपको लाभ देती है और आपका इलाज देती है, तो इंग्लिश में ये हमेशा कहा जाता है कि नेचुरोपैथी इज नॉट अ ट्रीटमेंट बट अ वे ऑफ लाइफ। और अगर आप प्रकृति के साथ चलेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और यदि आप बीमार पड़े तो आप बहुत जल्दी ठीक होंगे। अब आपके सवाल पे आते हैं। आपने कहा स्टीम बाथ, जिसको वाष्प स्नान भी कहा जाता है, और ये हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में इसको ले चुका है। आप लोगों ने ब्यूटी पार्लर में या महिलाओं ने सौंदर्य प्रसाधन के लिए भाप से अपने चेहरे को साफ किया। जब हमको ज्यादा सर्दी और जुखाम हो जाती है तो घर के बड़े बूढ़े या कहते भाप ले लो, तो वो पता चलता है कि भाप निकल रही है और हम उसमें सांस ले रहे हैं। पुराने जमाने में जब भाप नहान होता था तो एक गर्म टोपिया या एक गर्म बर्तन में उबलता हुआ पानी लेते थे और उसमें या थोड़ा कपूर थोड़ी लौंग डालकर उसको हम लोग उसमें सांस लेते थे, उससे चेहरा भी साफ होता था और जिनको बहुत सारे चेहरे पे कील मुहासे या गंदगी धब्बे मार्क होते थे वो भी इस तरह का भाप लेकर अपने चेहरे को साफ करते थे। प्राकृतिक चिकित्सा में भाप नहान का अर्थ है कि आपके शरीर को भाप से नहलाया जाए या आपको एक ऐसी व्यवस्था दी जाए जिसमें आपका पूरा शरीर भाप से चारों ओर से घिरा हुआ हो। अब भाप नहान दो तरीके से एक प्रकृति चिकित्सालय में दिया जाता है। सबसे पहले जहां पर बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं या होटलों में या स्पा सेंटर्स में, भाप का एक कमरा बना दिया जाता है। पूरे कमरे में आदमी बैठकर उसमें वो भाप को लेता है और फिर उसके बाद जो भी स्नान और उसको करना होता है वो करता है। प्राकृतिक चिकित्सालयों में भाप के लिए हम एक कमरा न बनाकर एक डब्बा बनाते हैं जिसको स्टीम चेम्बर कहते हैं, और उस चेम्बर में आदमी का सर या पेशेंट या मरीज का सर उस डब्बे के बाहर निकला रहता है और गर्दन से नीचे का पूरा शरीर उस डब्बे के अंदर रहता है और उसमें एक हम पाइप लगाकर किसी स्रोत के थ्रू उसमें भाप भेजते हैं। बहुत से लोगों ने अपने घर पे मेकशिफ्ट स्टीम बनाया, उसमें वो प्रेशर कुकर में पानी डाल के उसको गर्म करते हैं और उसका जो ऊपर जहां सीटी लगती है वहां पे पाइप लगाकर कोई एक चादर या कंबल ओढ़कर बैठ जाते हैं और अपने ऊपर उससे भाप लेते हैं। हम यहाँ आरोग्य मंदिर में क्यों नहीं स्टीम का कमरा बनाकर एक डब्बे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मरीज लंबे समय तक रहता है और ज्यादा भाप मिलने से आंखों को नुकसान हो सकता है। दूसरा, एक कमरे में भाप लेने से कभी कभी गर्मी सर पे चढ़ जाती है तो जिससे आदमी को भयंकर सर दर्द होता है और खासकर जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनका तो ब्लड प्रेशर और बीपी भी बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चेंबर जो है वो जनरल पब्लिक के लिए है, उसको कम देर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वरन डब्बे को ज्यादा समय तक और ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा फिजिक्स की इसमें बात करेंगे
0: जी।
1: पानी गर्म करना पड़ेगा और हम सब जानते हैं कि 100 डिग्री के ऊपर होने के बाद वही पानी भाप में बन जाता है। तो जिस भी नली या नोजल के थ्रू उस भाप को निकाला जाए उसमें बहुत सारे छेद होने चाहिए या उसको ऐसे निकलना चाहिए कि वो डायरेक्ट भाप आपके शरीर पे नहीं पड़े, क्योंकि उससे आप जल सकते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने भाप नहाने के बारे में आपको बताई।
0: जैसे आप ये बात कहते हैं कि ये जो भाप की बात है, स्टीम बात की बात कही जाती है, तो स्टीम से फायदे क्या होते हैं ये चीज समझने वाली है, क्योंकि लोग, चलो सर्दियों में तो हमने स्टीम ले लिया कि भाई छाती में कंजेशन हो गया, बहुत सारा कफ जमा है, वो स्टीम ले लिया तो वो राहत देता है और ये सारी चीजें, बट नहाने में पूरे स्टीम जहां है और स्टीम से अपने बॉडी को घेरे रखना, इससे क्या फायदा होता है, क्या ये फायदा करता है? जैसे आपने ये बात कही कि ये स्टीम बात लेने की अनेक चीजें हमने देखी हैं कि भाई कोई गर्म भाप ले रहा है जब छाती में कफ जमा हुआ है इत्यादि चीजों में, वो तो बात समझ में आती है कि भाई चलो वो तो सभी लोग करते हुए पाए जाते हैं, बट स्टीम बात मतलब इसे कैसे लिया जाए, स्टीम को कैसे तैयार किया जाए, कैसे व्यक्ति उसमें नहाए?
1: इसके लिए सबसे पहला काम कि जो भी इलाज ले रहा है उसको 2 से 3 ग्लास पानी पीना चाहिए जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर ठंडा का समय है तो ये इलाज 10 से 15 मिनट तक लिया जा सकता है। गर्मी के समय इस ये इलाज 5 से 7 मिनट के लिए लिया जाता है। इसमें अपने सर, और जैसा मैंने सारे प्राकृतिक चिकित्सा के इलाजों के बारे में बताया, हम लोग सर को ठंडा करते हैं, इसीलिए हम स्टीम रूम में भी जो बैठने जा रहा है उसको भी कहते हैं कि ये गीला तौलिया अपने सर पे रखा रहे और बार बार अपने सर को ठंडा करके रखे, नहीं तो गर्मी उसके सर पे चढ़ सकती है। तो 2 से 3 ग्लास पानी पी लीजिए, सिर्फ एक अंडर गार्मेंट पहन के आप चेम्बर के अंदर बैठिए। जिनको माइल्ड बीपी की प्रॉब्लम है उनको हम ये कहते हैं कि आप अगर 5-7 मिनट की जगह 2-3 मिनट में निकल आइए, अगर आपको चक्कर आ रहा, घबराहट आ रहा, तुरंत निकल आइए, नहीं तो छाती पर एक गीले कपड़े की ठंडे पानी की पट्टी बांध के आप इसको ले सकते हैं। और जैसे ही आप बाहर निकलिए स्टीम लेकर, आपको तुरंत ठंडे पानी से नहाना चाहिए, मतलब टैप वाटर से नहाना चाहिए, भले ठंडक हो या गर्मी हो या बरसात, क्योंकि जब हम भाप लेते हैं तो हमारे सारे के सारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत तेज हो जाता है। अब देखिए, आदमी जब गुस्सा होता है तो उसके दांत किटकिटाते हैं, वो एकदम चेहरा लाल हो जाता है, उसकी त्वचा लाल हो जाती है। वही चीज जो रिएक्शन आपको एक गुस्से में होता है, जो कि एक नेगेटिव इमोशन कहा जाता है, वो सारे इमोशंस, वो सारे जो रिएक्शन जो बॉडी में गुस्से की वजह से होते हैं, वो सारे आपके त्वचा पे होने लगते हैं भाप लेने के बाद। तो 2 से 3 ग्लास पानी पीजिए, गर्मी में 5 से 7 मिनट, ठंडक में 10 से 15 मिनट का भाप लीजिए और निकलते ही तुरंत नहाइए। जब आप स्टीम रूम में बैठे हो तो अपने सर को ठंडे पानी के उससे रखिए, अगर आप डब्बे में हैं तो एक सहायक होगा जो आपके सर पे ठंडा पानी डालेगा, और जब आप चेंबर में बैठे हैं तो दोनों हाथों से अपनी पूरी त्वचा को धीरे धीरे रगड़ना चाहिए कि जो डेड स्किन या मरी हुई त्वचा है वो निकल जाए, जितने रोम छिद्र है आपके वो खुल जाए, स्वेट ग्लैंड सारी जो बंद पड़ी है वो खुल जाए, आपके सेबेशियस ग्लैंड्स, तेल निकालने वाली ग्रंथियां हैं वो खुल जाए। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए और निकलते ही ठंडे पानी से नहाना चाहिए 2 से 5 मिनट।
0: ये बात स्पष्ट होती है कि हाँ, स्टीम बात करने के लिए भी कुछ तरीके हैं और उस तरीकों के बारे में भी हमें जानकारी रखनी है कि ऐसा नहीं कि हम स्टीम बात ले रहे हैं तो मतलब बिना तैयारी के साथ चले जाएं। पानी पीना बहुत आवश्यक है स्नान करने से पहले। जब आप बाष्प स्नान के कक्ष में जा रहे हैं जहाँ स्टीम है वहां, और सिर के ऊपर ठंडे पानी का कपड़ा रखना ये अनिवार्य है, ये बात समझ में आती है। अब एक और प्रश्न उठता है कि आखिर स्टीम बात क्यों लिया जाए, क्या इसके फायदे हैं। एक तो जैसे आप पहले बता रहे थे कि भाई सर्दी खांसी के समय पर तो हम स्टीम लेते हैं, तो जो गर्म स्टीम होता है वो नाक से हम लेते हैं तो उससे राहत मिलती है, वो बात समझ में आती है, मगर पूरे शरीर को वाष्प स्नान देना या ये जो स्टीम बात है इससे क्या फायदे हो?
1: एक तरह से आपके शरीर की और आपकी मांसपेशियों की डीप क्लीनिंग कराता है। जो आपके मांसपेशियों में गंदगी रुक गई है, फंस

0: गई है उसको बाहर निकालने का काम करता है, और आपकी पूरी त्वचा में जो दो ग्रंथियां हैं, एक जिसमें से पसीना निकलता है और दूसरा जिसमें से तेल निकलता है, इन दोनों ग्रंथियों को खोलने का काम करता है। तो जैसे ही वो इन दोनों ग्रंथियों को खोल देगा तो वो सुचारू रूप से चलने लगेंगे। और जैसे ही आप समझिए, अब फिर हम लोग फिजिक्स पे आएंगे कि जहां भाप बढ़ी या जहां तापमान बढ़ा वहां पे रक्त संचार बढ़ेगा। तो जैसे मैंने कहा क्यों बीपी के मरीज के लिए, क्योंकि उसका रक्त संचार पहले से बढ़ा है और हमने उसका भाप से रक्त संचार बढ़ा दिया, तो इसलिए उनके लिए सावधानियां बहुत है। पर एक साधारण व्यक्ति, एक हेल्दी इंडिविजुअल, एक स्वस्थ आदमी के लिए जैसे ही हम उसका जो वातावरण का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी मांसपेशियों में रक्त संचार बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। तो हर जगह जहां रक्त संचार बढ़ा वहां की मांसपेशियों में से जितनी गंदगी है, जितनी परेशानी है, वो निकलना शुरू हो जाती है। चलिए इसकी हम लोग लाभ अपने ऊपर से लेके नीचे तक समझने की कोशिश करें। हमारे चेहरे पे जितने साइनस है या जितनी भी जो हमारे चेहरे की हड्डियों में जो जगह है, हल्की गैप्स हैं जिनको साइनस बोलते हैं, हमारे नाक से उनका कनेक्शन है, वो जब स्टीम बाथ में हमारा रक्त संचार बढ़ता है तो हमारे साइनस का भी ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो उसमें जितना म्यूकस, जितनी गंदगी है वो निकलना शुरू होती है। नीचे आते ही जो हमारा फेफड़ा है उसका रक्त संचार बढ़ जाता है और हमारा हृदय ज्यादा काम करने लगता है, तो अच्छा खून पूरे शरीर में भेजने लगता है, वो खून को हमारे फेफड़ों में भेजता है जिससे खून साफ होकर पूरे के पूरे शरीर में घूमने लगता है। वही खून वो लिवर में भेजता है, किडनी में भेजता है, तो जब ज्यादा खून भेज रहा है तो वो जल्दी साफ हो रहा है, लिवर से उसके टॉक्सिन निकल रहे हैं, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड वो धीरे धीरे करना शुरू करता है। त्वचा, तो अब देखिए जहां स्वेट ग्लैंड जो हमारी पसीने की ग्रंथियां खुली तो उन्होंने टॉक्सिन निकालना शुरू किया, त्वचा पे ग्रंथियां जो तेल निकालती जिनको सेबेशियस ग्लैंड बोला वो खुली, तो त्वचा साफ होना शुरू होती, चमकना शुरू होती है, त्वचा की झुर्रियां जो पड़ गई हैं वो कम होना शुरू होती हैं, त्वचा में चमक आना शुरू हो जाता है। इसीलिए देखिए फेशियल स्टीम कितने लोग ब्यूटी पार्लर में लेते हैं। अब हमारे जितने भी जोड़ हैं जो जकड़ गए हैं, जो फंस गए हैं, उसमें एकाएक वो जोड़ ढीले होने शुरू करते हैं। गर्मी से हर चीज लंबी हो जाती है, ठंडक में हर चीज सिकुड़ जाती है, तो जहां उसको गर्मी हुई वो जोड़ धीरे से खुला, तो जैसे ही खुलेगा तो उसमें जो दो गैप के बीच में हमारा कार्टिलेज है उसको आराम मिलने लगेगा, उसका लुब्रिकेशन होने लगेगा, और जो एकदम तना हुआ था, टाइट था, वो धीरे से लूज होना शुरू होगा, और जहां वो लूज होगा तो जो जकड़न होगी वो निकल जाएगी, जोड़ अच्छे से हिलने लगेंगे, जो जोड़ कहा जाए ना ये जोड़ फंस गया है वो जोड़ खुल जाएगा। अगर हल्का आर्थराइटिस है मरीज को, इसके जोड़ धीरे धीरे से फंस रहे हैं या उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो तुरंत एक भाप ना लेने के बाद उसको ऐसा लगता है कि शरीर खुल गया, जैसे जो ताले और बेड़ियों में जकड़ा हुआ शरीर था वो तुरंत खुल गया। अब सांस हमारी अच्छी होने लगेगी तो फेफड़े हमारे खुलने लगेंगे, साइनस खुला तो नाक के छेद थोड़े से बड़े होंगे, जो नाक का म्यूकस है वो खुलेगा, तो ऐसा लगेगा कि भरपूर सांस आ रही है। सेकेंडली, अब आप सोचिए जब हर तरफ अच्छा लग रहा है तो हमारे दिमाग को भी अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि सारे टॉक्सिन निकल गए, दिमाग में भी थोड़ा ब्लड गया वो भी वापस आ रहा है, तो एक फ्रेशनेस फील होनी शुरू होती है, और ये तक कहा जा रहा है कि इससे मानसिक शांति मिलती है भाप लाने के बाद। अच्छा, इतना सब जब हो रहा है तो हाँ, और जब मरीज अपने आप को रगड़ रहा है तो उसका थोड़ा बहुत वजन भी कम होना शुरू होता है, तो इसको लोग वजन कम करने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसमें मैं एक सावधानी की बात करूंगा कि भाप टहान से सबसे पहले जो पानी आपने पिया है वही बाहर निकलता है, और जब हम वो पानी धीरे धीरे पीते हैं तो हमारा वजन वापस आ जाता है, तो इसीलिए एक बार भाप ना न लेकर हर दो चार दिन पे इसको लेना चाहिए, और अगर आप बैठ के अपने शरीर को रगड़ते रहेंगे तभी आपका वजन कम होगा। इससे आपका वजन कम होगा, आपकी त्वचा सुंदर हो जाएगी, आप सुंदर दिखने लगेंगे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएंगे।
1: वैसे भी जब हम देखते हैं डॉक्टर साहब, व्यक्ति जब नहा के निकलता है गर्म पानी से तो यही कहता है आह, मैं तो नहा के एकदम ऐसा महसूस कर रहे जैसे नया जीवन प्राप्त किया हो इंसान ने।
0: लंबी यात्रा के बाद आप लौटिए घर पे और नहा लीजिए, आपको ऐसा लगता है पूरा फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि आपने अपनी त्वचा को रगड़ दिया, सारे उसकी स्वेट ग्लैंड्स को खोल दिया और सारा का सारा रगड़ने पे जो गंदगी निकलनी थी वो निकल गई, इसलिए मानसिक शांति भी बहुत मिलती है।
1: ये बात तो स्पष्ट होती है कि वास्तविकता में स्नान तो अनेक प्रकार की चीजें हमने सुनी है, मगर बाष्प स्नान यानी स्टीम बाथ जो है, अगर स्टीम से नहाया जाता है यानी स्टीम के लिए क्या सिस्टम है ये भी आज हमने सुना कि उससे क्या फायदे होते हैं वो बात समझ में आती है। आज व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से हल्का करने के लिए, अपने मेंटल वेलबींग को वापस लाने के लिए अनेक प्रयास कर रहा है। शरीर को भी अगर हम साधते हैं तो मन को भी हल्का करने में कितना मददगार बनाता है ये चीज पता चलती है। आज वाष्प स्नान के बारे में ये चीजें समझ में आई हैं कि स्टीम बाथ के लिए बहुत ज्यादा गर्म स्टीम जो है वो आपके बॉडी के कांटेक्ट में सीधे नहीं आए, इस बात का ध्यान रखना है। साथ साथ स्टीम बाथ लेने से पहले 2-3 ग्लास पानी पीना है। गर्मियों के दिनों में 7-10 मिनट तक आप कर सकते हैं और सर्दियों के दिनों में 15 मिनट तक कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर साहब से हमने ये चीजें सुनी है। और जिनको अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो थोड़ा सावधानी बरतें, 2-3 मिनट का ही स्नान करके आप बाहर आकर तुरंत ठंडा स्नान सभी को करना है स्टीम बाथ के पश्चात, ये बात समझ में आती है। डॉक्टर साहब एक आखिरी चीज मैं पूछना चाहूंगा, स्टीम बाथ एक हेल्दी इंसान को कितने दिन में एक बार करना चाहिए, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि चलो स्टीम बाथ करने के लिए अभी कोई प्रकृति चिकित्सा केंद्र या कहीं ऐसे स्पा या सोना में तो जा नहीं रहा है, मगर अगर घर पे ही कोई व्यक्ति इसको करना चाहता है तो कितने इंटरवल में होना चाहिए?
0: स्वस्थ व्यक्ति इसको हफ्ते में एक बार जरूर ले सकता है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति इसको हफ्ते में एक बार जरूर ले सकता है। यदि आपको ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आप इसको किसी एक चिकित्सक की सलाह के बाद ही लें। जिनको ब्लड प्रेशर कम होता है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका उनका वो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ ले आता है। और हमारा शरीर भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है, हर परिस्थिति से लड़ने लायक बनाया है। हर परिस्थिति में हमारे बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन की जाती है, तो इसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है, कभी भी ले सकता है। एक चीज का बस ध्यान, आपको भोजन नहीं करना है किसी भी इलाज लेने के पहले, क्योंकि अगर आप भोजन किए रहते हैं तो आपका पूरा रक्त संचार उस भोजन को पचाने में काम करता है और डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इसी का ध्यान रखना है।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने स्टीम बात क्या होता है इस चीज पर इतने विस्तार से हमारे श्रोता मित्रों को समझाया, और मैं समझता हूँ कि इसके फायदे क्या हैं ये भी समझ में आने के बाद इसका इस्तेमाल करके हर व्यक्ति अपना लाभ क्या हो रहा है वो बता सकता है। दोस्तों आज की बातचीत में यही विराम लेंगे, और डॉक्टर साहब ने जो बातें आज कही है वो सब कुछ स्वास्थ्य को सहज बनाने के लिए क्या हम कर सकते हैं स्टीम बात का इस्तेमाल, आप करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा लेकर वापस हाजिर होंगे और डॉक्टर साहब से सवाल जवाब करेंगे। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर राहुल मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आज आप हमारे साथ जुड़ पाए।
0: धन्यवाद, ओम शांति।
1: दोस्तों यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अपने आप को स्वस्थ बनाने के इन तरीकों को आजमाते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को एक नए अंदाज से देखते आ रहे हैं हम, और हमने ये जाना कि वही रिश्ते जो कई बार बोझ लगने लगते थे, लगता था कि अरे ये रिश्ता कैसे निभेगा, अगर खुद को पहचान के फिर इस रिश्ते को देखा तो लगा कि यही रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी एक रिश्ता बाकी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और वो है रिश्ता मेरा खुद अपने आप से और परमात्मा से, जिसे मैं आज तक तलाश रहा था और आज खुद उसने अपनी पहचान दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, हमने हर रिश्ते को नए अंदाज में देख लिया, उसे अच्छी तरह से जाना और फिर देखा कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है, और हर बार की तरह एक्सपीरियंस के बाद ही हम ये बात कहने लायक बनते हैं। अभी भी एक रिश्ता बाकी है और वो मेरा खुद से। अपनी पहचान तो मैंने कर ली, परमात्मा से पहचान भी हो गई, लेकिन वो रिश्ता मैंने अपने आप से कायम किया या परमात्मा से कायम किया, वो रिश्ता कैसा होना चाहिए?
1: किसी भी रिश्ते को बनाने में इनिशियल स्टेजेस में चाहिए होता है समय। हम कहते हैं रिश्ते की फाउंडेशन है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लेकिन ये भी जो डेवलप होती है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम बिकॉज आई वर्क ऑन द रिलेशनशिप। जितना मैं आपसे मिलते जाऊँ, आपके संपर्क में आऊँ, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो वो ट्रस्ट डेवलप होता है, या वो रिस्पेक्ट जिस लेवल पर चाहिए वो डेवलप होती है। लेकिन आज के वर्तमान भाग दौड़ के समय पर हम औरों के लिए तो सबके लिए समय निकाल देते हैं, दोस्तों के लिए, परिवार, कलीग्स, एवरीबडी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारी टाइम और एनर्जी इतनी फिनिश हो जाती कि हम कहते हैं अपने लिए समय निकालना। सो इफ़ वी आस्क एनीबडी कि आप रोज सवेरे अपने लिए 15 मिनट निकालिए, जिसमें आप सिर्फ अपने आप के साथ हैं और आप उस परमात्मा के साथ हैं, एंड दैट टू अर्ली मॉर्निंग, जब आपके बाकी सारे रिश्ते सोए हुए हैं। क्योंकि जैसे आपके सारे रिश्ते बाकी जाग जाएंगे, यू विल अगेन गेट इनटू दैट एनर्जी एक्सचेंज, विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन, लेकिन उससे पहले 15 मिनट फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, क्या हम निकालने के लिए रेडी हैं? तो जनरली पीपल विल इमिजिएट, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, टाइम नेम।
0: अच्छा, और यहाँ एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगी कि हम यूजुअली ये समझते हैं कि मैं सबको वक्त दे रहा हूँ, अपने को वक्त नहीं दे रहा, तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ।
1: हाँ, दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि हम समझते हैं अपने को वक्त देना।
0: आई एम सो सेल्फलेस, आई डोंट इवन बॉदर अबाउट माई सेल्फ, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर अदर्स, बट आई थिंक समवेयर वी फॉरगेट।
1: एब्सोल्युटली। एक हम साइकाइट्रिस्ट से मिले, जो बहुत सीनियर लेवल के साइकाइट्रिस्ट हैं, जो लोगों के स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को ट्रीट करते हैं। लेकिन कहीं उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि वो खुद बहुत तनाव में है, तो उनसे बात करते हुए हमने कहा कि व्हाई डोंट यू टेक आउट 15 मिनट्स फॉर योर सेल्फ एवरी डे। सो ही सेड 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, नो सिस्टर, आई हैव नो टाइम, एंड ही वॉज वेरी proud of this, ke I do not have 15
0: I
1: minutes.
0: I give all my time to others.
1: To everybody. Kyunki mujhe dusron ko heal karna hai. And he said like, 14 ghante mere apne profession mein jaate hain. My work is my top priority. To 14 ghante mere din mein uske liye hote hain. Baki commuting, travel time, aur jo thode se 2-3 ghante bach jaate hain, wo mere parivar ke liye hote hain. To ab is sad mein apne liye samay nikalna, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप कुछ और बताइए, लेकिन मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता, बिकॉज माई टाइम इज फॉर एवरीबडी। तो हमने कहा प्रायोरिटी इन लाइफ क्या है? वर्क, फैमिली, एंड देन सेल्फ। एंड दिस हैज़ बिकम प्रायोरिटी फॉर मेजोरिटी पीपल, यू नो, सभी जो वर्किंग लोग हैं, काम, वर्क प्लेस, फिर परिवार, और फिर हम खुद। और ये दोनों कैटेगरीज, परिवार एंड वर्क प्लेस, इतनी सारी टाइम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं कि थर्ड स्टेप तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते, हम बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। सो नाउ ईच वन नीड्स टू आस्क देमसेल्व्स कि वर्क, फैमिली, सेल्फ, इज दिस द राइट ऑर्डर? एंड एवरीवन फील्स दिस इज द राइट ऑर्डर बिकॉज दे से आई गेट पेड एट वर्क, यू नो, तो मेरा कर्म मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर मेरी फैमिली, यू नो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट। वी वुड फील विद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वी कम टू दिस कंक्लूजन कि इट शुड बी टोटली द अदर वे अराउंड। क्योंकि काम पे भी हम क्यों जाते हैं? अपने परिवार के लिए, उन्हीं के लिए, वो खुशियाँ, वो सब कम्फर्ट्स जो भी हमें लाने हैं, उसके लिए हम काम पे जाते हैं। तो काम से ऊपर एक्चुअली
0: परिवार,
1: परिवार है डेफिनेटली, नहीं तो मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है। अब परिवार को भी मुझे जो देना है खुशी, सुख, शांति वो मैं तब दे पाऊंगी जब वो मेरे अंदर भरी होगी. तो फिर परिवार से भी ऊपर हो गया माई सेल्फ. नाउ व्हेन आई पुट द इक्वेशन द अदर वे राउंड, वर्क, फैमिली, सेल्फ, तो सेल्फ के लिए समय नहीं निकाला. इंटरनल रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब्ड है, कॉन्फ्लिक्ट है. उस कॉन्फ्लिक्ट की हालत में सुबह सुबह परिवार के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो भी क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, टाइम नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर हम ऑफिस पहुंच जाते हैं और वो एनर्जी लेवल हम ऑफिस में कैरी करते हैं और वो हम सभी को ट्रांसमिट करते हैं. तो बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग आउट टाइम फॉर माई सेल्फ, उसका असर परिवार पर भी पड़ा और वर्क पे भी पढ़ा. तो ये कहना कि ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है इज़ नॉट फेयर, क्योंकि हम उसके साथ भी चीटिंग कर रहे हैं. वी आर ओनली गिविंग नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वो हमारी गलती भी नहीं है, वो हमारे पास है. नाउ इफ आई चेंज द ऑर्डर एंड आई से सेल्फ, फैमिली एंड देन वर्क, यू नो सेल्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट्स टॉप ऑन द थिंग.
0: क्योंकि आई थिंक बाकी दोनों चीजें सेल्फ पे डिपेंडेंट
1: है. सेल्फ पे डिपेंडेंट है, लेकिन सेल्फ जब हील्ड होगी, अंदर से बिल्कुल भरपूर होगी, उस आत्मा के रिलेशनशिप्स कैसे होंगे परिवार में, वेरी हेल्दी. और एक हेल्दी फैमिली को छोड़कर जब आप काम पर जाएंगे तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? यू विल बी टोटली एम्पावर्ड टू गिव एवरीथिंग टू वर्क. तो यू विल बी डूइंग जस्टिस टू ऑल थ्री, रादर राइट नाउ वी आर चीटिंग ऑल थ्री by saying I don't have time. To apne liye samay nikalna, we should remember that I am the most important person in the world. Because unless I am healed, I cannot do anything.
0: Achieve anything. That's very true.
1: Main kuch bhi nahi
0: kar sakta. I have met people, ek social organization mein main thi, they said ki hum New Year resolutions ki baat kar rahe the, to almost everybody was saying ki main logon ke liye help karunga, main itne logon ko introduce karunga iske bare mein. Lekin finally I think kyunki hum khud हील्स नहीं है तो हम लोगों को क्या बता सकते हैं?
1: क्योंकि आज जो सबको चाहिए वो ये चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, ये सबको चाहिए. और ये सबको देने के लिए मेरे अंदर खुद कुट कुट के भरी होनी चाहिए और उसके लिए मुझे चाहिए अपने आप से बहुत अच्छा संबंध और इन सब का जो सागर है, जो स्रोत है, निराकार परमात्मा जिसको हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, तो उसके साथ जब संबंध जुड़ जाता है तो जो उसके पास है वो ऑटोमेटिकली सब मेरा हो जाता है. सो आई गेट फिल्ड इनसाइड एंड देन आई एम एबल टू गिव टू एवरीबडी. अब जब हम अपने साथ संबंध जोड़ना शुरू करते हैं तब अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप होना शुरू होता है,
0: खुद में विश्वास.
1: आज खुद में विश्वास नहीं है, आज हमारे खुद की रिस्पेक्ट हम नहीं करते हैं डेफिनेटली. और उसका प्रूफ यही है कि हमें औरों को रिस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है और जब कोई और हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं. अगर सेल्फ एस्टीम बॉय अंदर अगर खोखलापन है तो जैसे ही दूसरा कोई हमें छोटी सी ऐसी बात कहेगा तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे. जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूँ और उस रिस्पेक्ट से अपने आप को देखते हैं कि आई एम नॉट व्हाट आई हैव अचीव्ड इन लाइफ बट आई एम व्हाट आई एम हियर इनसाइड, तो फिर कोई और मुझे हर्ट नहीं कर सकता. आई टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट, और ट्रस्ट मतलब मैं जो सोचूंगी
0: सही सोचूंगी
1: और वो ही बोलूंगी और वो ही करूंगी. तो ऑनेस्टी विद द सेल्फ, अपने आप से धोखा करना बंद कर देंगे. जब अपने आप से धोखा करना बंद करेंगे औरों से धोखा अपने आप बंद हो जाएगा और दूसरे मेरे साथ धोखा करने वाले
0: हैं, दूसरों की उम्मीद भी बंद हो जाएगी कि हाँ
1: दूसरे मेरे साथ धोखा करने वाले हैं, ये डर से भी मुक्त हो जाएंगे. तो व्हेन आई स्टार्ट ट्रस्टिंग माई सेल्फ, मेरा औरों को विश्वास करना बहुत ईजी और मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, इस विश्वास के साथ चलना भी बहुत इजी. ये सारा दिन डर रहना कि मुझे धोखा तो ना दे दे, मुझे छोड़ के तो ना चले जाए, ये सिर्फ उसी आत्मा के अंदर होगा जो अपने आप को बहुत धोखा देती है. सोचती कुछ और है, करती कुछ और है. जिस दिन वो बंद हो गया धोखा देना, थिंग्स गोइंग टू बी वेरी इजी. लेकिन उसके लिए अपने साथ वो रोज समय निकालना पड़ता है जिसमें हम अपने आप से बैठकर कहें कि सेल्फ काउंसलिंग करते हैं. वी सॉ ड्यूरिंग दिस होल जर्नी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए टॉक टू योरसेल्फ, क्योंकि अपने आप की जो हम काउंसलिंग कर सकते हैं वो शायद कोई भी और नहीं
0: कर सकता. और एक्चुअली अपने आप से जब हम बात करने लगते हैं, काउंसिल करते हैं, तो आंसर्स भी मिलने लग जाते हैं.
1: आंसर सारे यही हैं, सारे आंसर्स यही हैं, क्योंकि सोल का, आत्मा का पूरा रोल इस सीडी के अंदर रिकॉर्डेड है. यू नो, तो अगर मेरे को कल कुछ काम है या कोई प्रॉब्लम है, मुझे अगर उसका आंसर चाहिए कि कल उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आप मुझे नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपकी वो सिचुएशन नहीं है. हाँ, आपके अनुभव से मैं कुछ ले सकती हूँ प्रेरणा, लेकिन फाइनल डिसीशन कि मुझे क्या करना होगा हैज़ टू बी माइन. तो इफ़ आई कैन बी साइलेंट, आई कैन एक्चुअली सी कि मेरा रोल कैसे इवॉल्व होने वाला है, क्योंकि सारा रोल तो यहाँ पर रिकॉर्डेड है. तो इसलिए साइलेंट हो जाए तो उससे क्या होगा, इंट्यूशन पावर. क्योंकि व्हाट आई कैन सी मतलब इंट्यूशन, मुझे ऑलरेडी फीलिंग आ जाएगी कि ऐसे करना है, सोल्यूशन आ जाएगा. क्यों? माइंड साइलेंट. लेकिन माइंड में क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे ये जब ऊपर की लहरों में सारी डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो सोल्यूशन है लेकिन दिखाई नहीं देगा. तो अंदर का जो ट्यूटर है उसकी तरफ नहीं देखे, और बाहर के सब ट्यूटर्स की तरफ देखते हैं तो एडवाइस मिलेगी बट नॉट नेसेसरी दैट इट विल ऑलवेज बी राइट फॉर मी. वो अपनी तरफ से बिल्कुल राइट बताएंगे,
0: उनके लिए सही होगा. हाँ.
1: लेकिन मैं जिस सिचुएशन में हूँ वो सिर्फ अंदर के ट्यूटर को पता है कि वो कैसे करना है. तो दैट इंट्यूशन पावर विल ऑल्सो डिवेलप. रिस्पेक्ट फॉर हु एम आई एंड ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, ये जब बन गया तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी तक हम कहते हैं मुझे सब की जिम्मेवारी उठानी है,
0: लेकिन उससे पहले आपने कहा ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली, कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ या मैं जो करने जा रही हूँ वही सही है. हम 50 बार सोच रहे होते क्या मैं करूँ या नहीं करूँ, ऐसे करना सही रहेगा या नहीं रहेगा. सो अगेन,
1: क्योंकि हमारी निर्णय शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि निर्णय शक्ति बुद्धि का काम है और ये कमज़ोर हो गई है, और मेडिटेशन से ये वापस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और इट विल बी लाइक दिस, आप एक सेकेंड में डिसीशन लेंगे और आपका डिसीशन एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि एक तो आपका कनेक्शन उस सर्वशक्तिवान से भी जुड़ा है, और जब उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की पावर आपके साथ है, आप हर कर्म करते हुए यू विल हैव दिस क्लियर टचिंग कि आई एम ऑन द राइट पाथ और इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, इमिजिएटली आई विल गेट दैट नहीं, मूव अवे. कर्म जस्ट आप करने लगेंगे और आप रुक जाएंगे, यू नो, कि नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा मेरे साथ है जो मेरे हर कर्म के ऊपर सुपरवाइज कर रहा है. And that will touch very clearly. तो परमात्मा के साथ भी जब वो relationship होगा और अपने साथ internally, तो decision लेना बहुत easy हो जाएगा. And decisions will be right. They will be accurate. क्योंकि intention बहुत right है अब, कि हर कर्म के पीछे का भाव क्या है. क्योंकि हम body consciousness से हटते जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप से संबंध जोड़ना मतलब soul consciousness. तो आत्मा अभिमानी जब हो जाएंगे तो intentions प्योरीफाई होती जाएंगी. ग्रीड, जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ये सब कुछ तो हटता जाएगा. तो जिस कर्म के पीछे की इंटेंशन ठीक होगी, कर्म का रिजल्ट
0: अपने आप
1: ठीक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक है. और जब हम ये डेवलप कर लेंगे तो अपने कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ये इजी हो जाएगा. हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं लेकिन अपनी मन की स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते. हम कहते हैं आई एम डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ यू, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ यू, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ यू. सो दैट्स नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब हम अपने साथ ये समय बिताना शुरू करते हैं तो मुझे क्लैरिटी आ जाती है कि ये इनर प्रोसेस कैसे वर्क करता है, ये सारा मेरे कंट्रोल में है. तो हर संकल्प की जिम्मेवारी
0: मैं खुद उठा सकता हूँ, और इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क हेयर, कि मैं जानते हुए अगर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि मैं अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ वो कर्म करने जा रहा हूँ. सो आई थिंक वो उसका रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए.
1: तो तीन चीज़ें जो संबंधों में चाहिए, विश्वास, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबसे अच्छी बहुत बढ़िया से जुड़ जाएगी. और जब वो अपने साथ हो जाएगी तो औरों के साथ करना बहुत ईजी हो जाएगा.
0: परमात्मा से रिश्ते की बात करते हैं, ये वो रिश्ता है जिसको हम सब बहुत ज़्यादा तलाश रहे थे. अगेन, खुद से बात करना, यानी मैं अपने आप को, क्योंकि मैं देख तो पा रहा हूँ कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस में हम इतना है कि मैं अपनी बॉडी का एहसास तो है, परमात्मा वो पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको हर बार मैं इमेजिन ज़रूर करूँ जब मैं मेडिटेट कर रहा हूँ. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ये बातचीत है उसका जवाब मैं, मुझे लगता है कि क्या मुझे मिलेगा, और वो जो तलाशना है या वो, जैसे कहा आपने कि वो कहीं वो विश्वास या वो रिश्ता एक बार हमने पहले बात की थी कितनी देर लगेगी, तो आपने कहा था कि जहाँ पहचाना वहीं रिश्ता बन गया, लेकिन हाँ उसमें जो दृढ़ता है, सुदृढ़ता है, वो उसमें समय लग सकता है। उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि किस आस्पेक्ट को लेके हम उस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग करें।
1: एक्चुअली जो समय लगता है वो आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुड़ने में नहीं लगता, वो एक क्षण लगेगा। समय जो लगता है वो लगता है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाने में, क्योंकि अभी हम जब बैठते हैं याद करने या संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम अभी तक वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो शरीर के भान में जब होंगे तो शरीर से संबंधित सारी बातें याद आएंगी, मन उन्हीं की तरफ चलता रहेगा, तो हमें लगता है बट आई एम गिविंग टाइम, आई एम सिटिंग टू डू मेडिटेशन, तो क्यों नहीं मुझे अनुभव हो रहा। तो सेकेंड स्टेज पहले नहीं अचीव हो सकती है, पहले फर्स्ट स्टेज को करना पड़ेगा। तो इसलिए सोल कॉन्शियसनेस ये फर्स्ट स्टेप है। जब तक हम इसको नहीं ठीक से प्रैक्टिस करते हैं, हमें थोड़ा सा समय लगेगा, अनुभव अभी भी होगा लेकिन हमें थोड़ा सा लगेगा कि आज तो लगा, यू नो मोस्टली पीपल फील आज तो बहुत अच्छी तरह से अनुभव हो रहा था, अब फिर अगले दिन फील करेंगे आज तो बिल्कुल अनुभव नहीं हुआ, बिकॉज दैट डिपेंड्स मोर ऑन माई कॉन्शियसनेस कि मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ या सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस अर्थात अपने आप को उस स्वरूप में अनुभव करके मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा स्वरूप में जब टिक गए, ताकि यहाँ की दुनिया की जो सारी बातें, जो सारे संकल्प थे वो फुल स्टॉप, ये नहीं कि बैठे हैं मैं आत्मा हूँ, वो आज क्या बोला उन्होंने, ऐसे क्यों बोला, नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ,
0: कि वहाँ ये हुआ, वहाँ से वो हो गया, then you come back, नहीं मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, फिर अगेन आप,
1: सो यू आर गोइंग ऑन द सीसो, मैं आत्मा हूँ लेकिन ऑफिस में क्या हुआ, मैं आत्मा हूँ लेकिन मेरे बच्चों ने ऐसे क्यों कहा, सो यू आर नॉट रियली सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियस मतलब फिर उसको आत्मा के अलावा और कोई संकल्प नहीं आएगा, आत्मा के स्वरूप के अनुभव के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो मॉर्निंग में जब हम बैठते हैं इसका अनुभव करें, इसका प्रैक्टिस करें, लेकिन उसको सिर्फ मॉर्निंग तक नहीं रिस्ट्रिक्ट करें, उसको सारा दिन हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारा दिन अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो उसी के इम्प्रेशंस बनते जाएंगे। सी दिस इज लाइक अ शूटिंग विच इज टेकिंग प्लेस द होल डे, कि सारा दिन हर एक को मिले, हर एक संकल्प क्रिएट किया, संकल्प किया कर्म में आया, कर्म का इम्पैक्ट रिकॉर्ड होता गया होता गया। अब जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो सारी सीडी जो रिकॉर्ड हुई होती है वो प्ले करती है ना। अब अगर सीडी में सारे बॉडीली रिलेशंस, बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें वो ही रिकॉर्ड किए हैं और फिर बैठ गए, सीडी प्ले हो गई, उसमें सारी वही बातें रिवाइंड हो रही हैं और हम बीच में बोल रहे हैं नहीं लेकिन मैं आत्मा हूँ, यू नो देन दैट कॉन्फ्लिक्ट विल बी देयर एंड देन आई विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट। तो इसलिए सारा दिन में एक कॉन्शियस अटेंशन रखना ये बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे फिर वो जब मॉर्निंग में हम बैठेंगे वो अनुभव बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोल कॉन्शियसनेस के थॉट्स सारा दिन में क्रिएट किए थे तो उसके इम्प्रेशंस वो सीडी में रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्योंकि जनरली जब भी हम साइलेंस में बैठते हैं ना ये सीडी रिवाइंड हो जाती है अपने आप और प्ले होने शुरू हो जाती है, ब्लैंक नहीं रहता है। तो इसलिए सारा दिन में इस सीडी पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारा दिन कर्म करते, इसलिए हम कहते हैं हर एक घंटे में एक बार, हर एक घंटे में एक मिनट जो करें दैट्स फॉर दिस कि बार

0: बार रुके, अगेन रिमाइंड योर सेल्फ कि मैं एक शक्ति हूँ. दिस इज माई क्वालिटी, पीस, प्योरिटी, नॉट एंगर, नॉट अग्रेशन. सो व्हाई एम आई यूजिंग इट, यू नो, बिकॉज हर क्षण जब हम इनको यूज कर देते हैं, गुस्से को, संशय को, झूठ, हर क्षण, तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, तो हमने कितनी लीकेज सारी कर दी. फिर कहें मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, नहीं. तो सिर्फ सोचने की बात नहीं, लेकिन कर्म की क्वालिटी क्या है सारा दिन. क्योंकि अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो मेरा सारा दिन रोल कैसा होना चाहिए?
1: शांति का.
0: तब हम कहेंगे कि रियली आप सोल कॉन्शियसनेस में सारा दिन कर्म कर रहे थे. ये नहीं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ओम शांति, और फिर गुस्सा, फिर किसी के साथ कोई खिटपिट, नहीं. सोल कॉन्शियसनेस मतलब सोल की जो क्वालिटीज हैं उसको सारा दिन की एक्टिविटी में वो दिखाई देनी चाहिए. आई शुड एक्सपीरियंस दोज क्वालिटीज, देन आई एम इन दैट कॉन्शियसनेस. क्योंकि जो कॉन्शियसनेस होगी वही तो कर्म में आएगा. डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की तरह बिहेव करूँगा, मदर हूँ मदर की तरह, आत्मा हूँ आत्मा की तरह. तो उसका कॉन्शियस अटेंशन रखेंगे तो मॉर्निंग में जब बैठेंगे, वेरी सिंपल, और फिर परमात्मा से वो संबंध, क्योंकि परमात्मा के साथ जो संबंध है दैट इज सो ब्यूटिफुल, बिकॉज दैट्स द ओनली रिलेशनशिप जहाँ हमें अनकंडीशनल लव मिलता है. वो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, एंड पूरा पूरा ट्रस्ट. ऐसा ट्रस्ट जो कभी टूटता नहीं है, जो दुनिया में बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि परमात्मा हर्ट नहीं होते, क्योंकि उन्हें हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. तो परमात्मा सिर्फ देते हैं, देते हैं, देते हैं. ही डजंट हैव एनीथिंग दैट ही नीड्स फ्रॉम अस. तो जब हमारा ऐसा कोई संबंध जुड़ता है जो हमें सिर्फ देता ही रहे, देते रहे, और यही हम ढूंढ रहे थे कि किसके साथ मैं ये संबंध जोड़ूं, माँ बाप के साथ जोड़ूं, पत्नी के साथ, पति बच्चों के साथ, कौन ऐसा जुड़े जो मेरे को देता रहे. कोई दे नहीं पाया तो फिर वो अंदर पेन आने लगा. जब वो मिल रहा है संबंध, फिर हम उसके लिए कह देते हैं टाइम नहीं है. दैट्स चीटिंग विद माई सेल्फ, यू नो. द सोर्स इज देयर रेडी टू गिव एंड आई एम सेइंग आई डोंट हैव टाइम.
1: एंड अगेन रिलेशनशिप विद माई ओन सेल्फ, इन रियलिटी हु एम आई, उसके साथ जो रिश्ता है. सिस्टर शिवानी, ये पूरा जो हमारा सफ़र रहा है रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखने का, सचमुच बहुत सुंदर रहा है. और उसमें आज जो हमने एक बार फिर उस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की है, मेडिटेशन एक्चुअली एक बहुत अहम हिस्सा है, वही फाउंडेशन है. सो हम थोड़ा सा उसमें फिर जाने की चाहें.
0: कुछ क्षणों के लिए हम वापस वही अभ्यास करेंगे कि मन संकल्प करेगा, इंटेलेक्ट बुद्धि उसका दृश्य निर्माण करेगी, विजुअलाइज करेगी, क्योंकि हम सीडी को रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो इट विल बी थॉट्स प्लस पिक्चर विजुअलाइजेशन, और जैसे ही वो विजुअलाइजेशन होगी तब वो अनुभव ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा. तीनों पर अटेंशन रख के देखें, एंड इफ सम अदर थॉट कम्स तो स्टॉप इट देन एंड देयर. You know, उसको बैठने ना दें और उसकी तरफ ही ना झुक जाएं कि हाँ अब तो मेरा लिंक टूट गया. नहीं, स्टॉप, कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स, क्योंकि हमारा मन हमारी बात मानता है. तो लेट्स गिव इट द इंस्ट्रक्शन देन. कुछ क्षणों के लिए अपने बाकी सभी संबंधों से किनारा करते हुए उस सबसे मीठे संबंध की तरफ ध्यान करें, अपने आप को देखें. सबको देखते हुए इतने व्यस्त हो चुके थे कि अपने आप को देखना ही भूल गए. चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूँ, इस शरीर को चलाने वाले, हर संकल्प की रचना करने वाले, हर भावना को महसूस करने वाले, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ. अपने आप को देखें ब्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है, ये मैं हूं. मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी नेचर है, शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से कुछ समय के लिए किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप को, दैट पॉइंट ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अपवर्ड्स, ऊपर जा रहा है इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुँची हूँ, जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। जस्ट पीस एवरीवेयर अराउंड मी, शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं, इतना प्यार देते जो मैं खुद से प्यार करने लग जाती हूँ, जो अपने आप को पहचानना शुरू कर देती हूँ, अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं, कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है, जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। उस शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए, भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है, सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे पुनः इस दुनिया की तरफ आ रही हूँ, इस कर्म क्षेत्र पर अपने कॉस्ट्यूम में धीरे धीरे पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ जाती हूँ। लेकिन इस स्मृति के साथ कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ और मैं किसकी हूँ, ओम शांति,
1: ओम शांति। सिस्टर शिवानी, ये जो अनुभव आज हमने किया और खुद से कैसा रिश्ता बने और परमात्मा या शिव बाबा से रिश्ता कैसे बनाए, ये पूरा एक ऐसी जर्नी है, कैसा अनुभव है, सचमुच अनुभव ही किया जाना चाहिए। पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। रिश्ते हम बाकी आत्माओं के साथ जब भी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी का एक्सचेंज होता है, लेकिन जब हम खुद से बना रहे हैं तो एक नया आस्पेक्ट सामने आता है, और जब हम उस परमपिता परमात्मा से बनाते हैं, उस शिव बाबा से बनाते हैं, तो हम सब कुछ उससे ले रहे हैं। एक एक्सचेंज ना होकर यहाँ ऐसा लगता है कि हमें मिल रहा है, तो क्यों ना इस रिश्ते को सबसे अधिक मजबूत करें। रिश्तों को एक नई पहचान देने का ये प्रयास। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9999 3 4 4 5 9999 3 4 4 6 9 8 7 3 6 6 5 5 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इस पूरी श्रृंखला में हमने रिश्तों को नई पहचान दी है और एक खूबसूरत मोड़ देकर आगे चलना सीखा है। आगे और भी बहुत सी बातें होंगी, फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, ओम शांति।
2: ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजयोग मेडिटेशन प्रत्येक सेवा केंद्र पर निःशुल्क सिखाया जाता है। यह कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत के बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें 0999 3 4 4 5 5 0999 3 4 4 6 6 और 0987 3 6 6 5 5। आप ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे सर, आप कैसे हो? हेलो
0: हेलो,
1: हाँ जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही।
0: जी Hello? अभी आ रही है मेरी आवाज आपको?
1: हाँ आ रही है, रेडियो में आवाज नहीं आ रही है, बंद है। रेडियो में आवाज नहीं आ रही है।
0: रेडियो में भी नहीं आ रहे आवाज?
1: अच्छा, इंटरनेट पे आवाज नहीं आ रही है, बंद होगा आधा घंटे से।
2: आधा घंटे से बंद हो गया? पहले आवाज आया था क्या?
1: हाँ पहले आते थे, लेकिन आधा घंटे से बंद हो गया है।
2: अच्छा
1: कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या सुने?
2: तो पहले फोन कर देते आप, इतना लेट क्यों किया? पहले ही फोन कर देते ना, इतना लेट क्यों किया?
1: पता नहीं क्या होता है।
2: जी जी जी जी, चलिए बात करते हैं हम लोग, है ना? ठीक है ठीक है। ओके ओके, नमस्ते, ओम शांति। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आप तक आवाज़ें नहीं पहुंच रही हैं, सुना है, कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं आपको ठीक से आवाज़ आ जाए आपके पास। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सुंदर गीत की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको। हेलो जी, नमस्कार।
3: नमस्कार सर, नमस्कार
2: जी।
3: सुरेश जी सही कह रहे हैं, आवाज में थोड़ा ऐसा लगा कि एकदम अचानक बंद हो गया, फिर कुछ करने लगा, मगर अभी मैं आया। लेकिन क्या बात है, नहीं चालू रेडियो, बाबा को याद करके किया तो हमने रेडियो चालू हुआ और सुरेश जी की आवाज है कि आवाज नहीं आ रहा रेडियो।
2: अच्छा, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है अभी?
3: आपकी आवाज आ रही है क्लियर से।
2: अच्छा अच्छा, क्लियर से आ रही है
3: जी। सुरेश जी को मोबाइल से सुनते हैं
2: ना? हाँ हाँ,
3: कुछ हो सकता है, हमारा रेडियो है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, चलो रेडियो पे आपको सुना।
3: मैं विचार कर रहा था बाबा, इतना कंप्लीट रेडियो बजता है कि क्या बना, मजा आ गया। आपको नमस्कार है, रेडियो मधुबन को और सभी चौक को से सुन रहे हैं।
2: जी जी जी जी,
3: प्रभाष और हमारे श्री भैया जी को और डॉक्टर जी को
2: जी।
3: बहुत अच्छा लगता है और अभी आपको सुन रहे हैं और सुनते और फोन करते हैं इसी बात में।
2: जी जी जी, शुक्रिया, ओम शांति।
3: पकड़ा जाए कामना कर रहे
2: हैं। जी जी, ओम शांति, नमस्कार। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए, नेटवर्क वालों का थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कोशिश करते हैं हम लोग नेटवर्क वाला भी इशू कम हो जाए। और आइए, बातें हो रही थी खास अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में, तो पुरातत्व विभाग के कुछ चुनौतियां हैं जो मैंने आपको अभी बताया। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ। और इस बीच एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
4: नमस्कार रमेश जी, ओम शांति, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
4: क्या सुनाएं, आपका रेडियो तो सुनाई नहीं दे रहा, इसीलिए फोन किया है। आवाज नहीं आ रही है ना काफी देर से रेडियो पर?
2: हाँ, वो शायद नेटवर्क का इशू हुआ है कुछ।
4: तो आप ऐसे बोलिए, तो मैं आपको बोल रहा मतलब आप ऐसे बोलिए, आप नहीं सुन पा रहे हैं रेडियो मधुबन। इंतजार करती है, इंतजार करिए और मुस्कुराते रहिए, आप ये बोलो।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
4: ओके, हैव अ नाइस डे।
2: जी जी जी, शुक्रिया। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए, आपको टेक्निकल चीज़ें जो है थोड़ी सी दिक्कतें करती हैं कभी कभी, इंटरनेट का वहाँ पर मुश्किलें हैं और साइट हमारा जो है शायद बंद है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो इंटरनेट वालों को थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं जो मोबाइल से सुनते हैं। बाकी रेडियो सेट वाले तो अच्छी तरह से सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। 9:50 और 18 सेकंड हो चुके हैं और मंगल भवन का ये सुंदर गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ स्वागत है और आशा करूंगा आपको अच्छा लग रहा है। और हमारे इंटरनेट वाले भाई बहनों के लिए थोड़ी दिक्कत हो गई, उनका फ़ोन आप चालू तो रखा है उन्होंने लेकिन रेडियो नहीं सुनाई दे रहा है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं। चलिए बात करते हैं पोखरण के बारे में। पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस, जी हाँ, हर साल 18 मई को मनाया जाता है। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 1998 में भारत ने 11 मई व 13 मई को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों में अमेरिका, पाकिस्तान सहित सभी देश अचंभित रह गए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में ये मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। इससे पहले 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1 कर दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान और उसकी शाख एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरी। तो इस तरह से पोखरण 1 जो है, सुबह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर चल रहे फिल्मी गीतों के प्रोग्राम को अचानक ही बीच में रोककर उद्घोषणा हुई, कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें। कुछ ही क्षण पश्चात उद्घोषक का स्वर गूंज उठा। आज सुबह 8:05 पर पश्चिमी भारत के एक अज्ञात स्थान पर शांतिपूर्ण कार्य के लिए भारत ने एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। इस परीक्षण से 5 दिन पहले 13 मई को परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष होमी सेटना की देखरेख में भारत के परमाणु वैज्ञानिकों ने परमाणु डिवाइस को असेंबल करना शुरू किया था और 14 मई की रात डिवाइस को अंग्रेजी अक्षर L की शक्ल में बने स्पॉट में पहुंच गए थे। और यह था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जो थर मरुस्थल में जैसलमेर में 110 किलोमीटर दूर पोखरण के निकट बुद्ध पूर्णिमा के दिन 18 मई को निर्जन क्षेत्र में किया गया था। शायद इसीलिए पोखरण 1 को बुद्ध की मुस्कान कोड नाम दिया गया था। और परीक्षण के लिए पोखरण को इसलिए चुना गया था क्योंकि यहां से मानव बस्ती बहुत दूर थी। तो ये सारी बातें थी पोखरण दिवस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, एक और मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार, ओम शांति। रमेश भाई, मैं दयाराम भाई बोल रहा हूँ।
0: दयाराम भाई, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, बाबा की कृपा है, सभी मेरे भाई बहन मित्रों की कृपा है, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। इस पर रेडियो मधुबन भी सुन रहा हूँ एप्लीकेशन के माध्यम से।
0: अच्छा, सुनाई दे रहा है इंटरनेट।
1: मेरे प्रिय भाई सुरेश भाई बता रहे थे, तो मेरे ख्याल से 1 मिनट से 1.5 मिनट तक थोड़ा विघ्न हुआ था, लेकिन फिर से रेडियो सुनना प्रारंभ हो गया है, मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद श्री हमारे जो आदरणीय श्री मेहसाणा से जो हमारे पुपत सिंह जी, सॉरी हमारे मैं नाम भूल गया, वो मेरे भाई का
0: मदन लाल जी,
1: और उसके बाद बहन का भी कॉल आया था।
0: हाँ, वंदना जी का।
1: वंदना जी का, और अभी मैं सुन रहा हूँ, क्लियर आ रहा है आवाज, मैं सुन रहा हूँ। और सुनने वाले सभी मेरे प्यारे मित्रों को, बहन बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4 FM पर।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ। और ये गीत मेरे मन तू मगन रहे, ये गीत अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। चलिए, वक्त हो गया है समाचारों का, अब सीधे समाचारों की तरफ चलते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
5: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
7: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
8: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया

0: या अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिन्दुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्यबल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचारों के बाद फिर से एक बार। बड़ा ही प्यारा संगीत आप सुन रहे थे विष्णु प्रिया का, हम जग को राह दिखाएंगे। जी हाँ, लिखा है अफसाना इस एल्बम से आप ये गीत सुन रहे थे। तो चलिए, ब्रह्मा कुमारी के कुछ एल्बम्स बने हुए हैं, उसमें से एक एल्बम ये भी था और इसका ही गीत आप प्रिया विष्णु जी की आवाज़ में सुन रहे थे। चलिए अब बात करते हैं देव गौड़ा के बारे में। जी हाँ, इनका जन्मदिन आज है और ये भारत के कम समय में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले विशेष व्यक्ति रहे कर्नाटक से। इनका जन्म आज ही के दिन 1933 को हुआ था और भारत का ये 11वां प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर दिए। इनका पूरा नाम हरदन हल्ली होड़े गौड़ा देव गौड़ा है। उस समय प्रधानमंत्री बने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को 13 दिन सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री पद का पद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वह बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं थे। ये संयुक्त मोर्चा सरकार के नेता के रूप में प्रधानमंत्री चयनित हुए और 1 जून 1996 को शपथ ग्रहण की थी, लेकिन ये भी ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहे। लगभग 10 महीने तक प्रधानमंत्री रहने के बाद इन्हें भी अपने पद से त्यागपत्र देना ही पड़ा। तो ये थी कुछ खास बातें देव गौड़ा जी के बारे में, जिनका आज जन्मदिन है और आप कर्नाटक

0: प्रथम 1953 में देवगौड़ा ने अपनी पार्टी की सदस्यता ली और 1962 तक वे इस पद पर रहे। और देवगौड़ा एक मध्यम वर्गीय परिवार की पृष्ठभूमि से राजनीति में आए थे। इस कारण वो किसानों के कठोर परिश्रम का मूल्य समझते थे और गरीब किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए राजनीतिक आवाज़ बुलंद की थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक और सुंदर गीत की तरफ। और जैसे कि आप सभी को रेडियो अब सुनाई दे रहा है तो मुझे फ़ोन करके बताइए 94-14-15-14-15 इस नंबर पर, और बताइए कि आप इंटरनेट पे भी ठीक से गाना या आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो चलिए मैं एक और सुंदर गीत की तरफ आपको ले चलता हूँ, और ये गीत दो पंछी दो टिंके। जी हाँ साथियों, ये किशोर कुमार का बहुत ही प्यारा सा गीत है और मुझे लगता है कि ये गीत के साथ कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो जाएंगे। दो पंछी दो तिनके, परीक्षित साहनी और राखी पर पिक्चराइज किया गया था। किशोर कुमार का ये सुपरविट रोमांटिक गीत है तपस्या इस एल्बम से। आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: थैंक यू रमेश जी, अब रेडियो आराम से सुना जा रहा है।
0: जी जी जी, शुक्रिया आपका।
1: आपने भी बोला ना, बता दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहा था, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: क्लियरली सुन पा रहे हैं
0: जी जी।
1: थैंक यू
0: आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। तो लीजिए आपके लिए ये खास गाना, सुनते रहो मस्त।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार जो है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बड़ा ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे।

और ये गाना लता मंगेशकर किशोर दा की आवाज़ में आप सुन रहे थे तपस्या इस एल्बम का। और ये गीत जो है निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगा होगा। और ये ख़ास गीत रविंद्र जैन म्यूजिक से था जिसे एम जे हशमित साहब ने लिखा हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको नई किरण के इस सफ़र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पोखरण के बारे में, संग्रहालयों के बारे में हमने जाना। अब हम लोग आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका आज विशेष जन्मदिन है। अब बात करते हैं थवरचंद गहलोत के बारे में। यह एक ऐसे शख्सियत हैं जिनके बारे में सुनकर आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ ही बात करेंगे एक और शख्सियत के बारे में जिनको सुनकर आपको और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमारे यश जगन्नाथ जी का भी जन्मदिन है। ये भी एक ऐसे व्यक्ति रहे जो एक विशेष पद पर अपना समय दिया है। आप देखेंगे हर नोट पर गवर्नर का साइन होता है। तो यश जगन्नाथन 18 मई 1914 में इनका जन्म हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर बने। इनका पूरा नाम सरुकाई जगन्नाथन था। इनका कार्यकाल 16 जून 1970 से 19 मई 1975 तक रहा, यानी 5 साल। केंद्र सरकार भारत के कार्यकारी निदेशक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद इन्होंने विश्व बैंक में कार्य करना शुरू किया। इन्होंने प्रेसिडेंटी कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की थी। जगन्नाथ भारतीय सिविल सेवा के सदस्य भी रहे और भारत में पहली बार 20 रुपये और 50 रुपये के भारतीय रुपयों के नोट पेश किए गए थे उस समय, और इन्होंने इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। है ना कमाल की बात। तो इन्होंने IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक पद पर पदभार ग्रहण किया और इसके लिए इस कार्यकाल में अवश्य उन्होंने अच्छा काम किया 5 साल तक। तो ये थी कुछ खास बातें एस जगन्नाथन के बारे में आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने अभी सुना, हालचाल ठीक ठाक है मेरे अपने इस एल्बम से आप सुन रहे थे। मैं खूबसूरत बात बताना चाहूँगा इस गाने का, मुकेश और किशोरदा का गाया हुआ ये गीत था जो अभी आपने सुना। और इसमें एक जो पिक्चराइजेशन किया गया था, इसमें जिनको हम डैनी डेंजोसोफा कहते हैं, एक विलन का किरदार निभाते हैं, तो उन्होंने इस गाने में एज ए एक्टर बहुत ही अच्छी तरह से एक दोस्ती का किरदार निभाया था। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप, बताइए। बढ़िया, मजा मच है। अरे वाह, सारो छे। हाँ हाँ,
1: तो तमारे पर गुजराती
0: संगत ना असर छे ना।
1: जी जी बिल्कुल, और आप तो साथ गुजराती ज्यादा जोड़ते हैं तो गुजराती में अच्छा लगता है ना।
0: जी जी जी,
1: बस इंटरनल स्तर हो गया कार्यक्रम और सुन रहा है कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा। गाने भी बढ़िया सुन रहे हैं, गाने
0: जी जी
1: बहुत अच्छा लगा सर। आज का दिन सोमवार है, सोमवार को सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं, भोले बाबा की कृपा सब को बनी रहे, ऐसी शुभकामना। और बताओ तो आज रामदेव पीर का भी दिन है, रामदेव पीर की बीज है इधर हमारे यहाँ में। अभी अभी रामदेव पीर के मंदिर जाता था और आपने को मैंने बीच में कॉल किया था कि मेरा इंटरनेट बंद है तो मैं पैदल चला रहा था, चलते चलते आपको बात कर रहा था।
0: क्या बात है, क्या बात है, आप बताइए।
1: तो एक रामदेव पीर का भजन आपकी पसंद का सुना देना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी जी, मारवाड़ी में गुजराती। मारवाड़ी में कई सारे गाने लेकिन गुजराती जरूर सुना देना सर।
0: जी जी जी,
1: शायद मिले तो हेलो सुनाना, क्योंकि गुजराती में तो एक हेलो है रामदेव जी का।
0: जी जी जी,
1: हेलो मारो साबरो रणु जाना रा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया फेमस गाना है।
1: तो फिर छात्राए जाए।
0: जी जी जी जी, बहुत बढ़िया। चलिए, आप जा ही रहे हैं तो उधर का आला वाल सुनाइए हमें, मंदिर पर जाने वाले हो तो।
1: नहीं, जाके आए मैं।
0: जाके आ गए, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
1: हाँ, नजदीकी था, एक किलोमीटर की दूरी पर ही था।
0: जी जी जी जी,
1: हाँ तो जाके आए मैं।
0: चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, शुक्रिया। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, नई किरण, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको मैंने कहा था एक खास व्यक्ति से आपकी जो है बात, मना खास व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, थावरचंद गहलोत। जी हाँ, ये भारतीय राजनेता जो कर्नाटक के राज्यपाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री रहे हैं। अनुसूचित जातियों के लिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे उल्लेखनीय चेहरा है थावरचंद गहलोत। मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर के निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और साहित्यिक हित विद्यानी के लिए लेख लिखकर उसमें योगदान दिया है इन्होंने, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा द्वारा प्रकाशित एक त्रैमासिक पत्रिका विद्यानी है। बाल समाज नामक संगठन के माध्यम से थावरचंद गहलोत शोषित वर्गों के लिए काम करते हैं। तो इसलिए भी खास मैंने कहा कि ये व्यक्ति खास क्यों है, क्योंकि ये जब शांतिवन आए थे, इनका इंटरव्यू लेने के लिए हम गए थे और इनसे मुलाकात भी हुई और इनका एक छोटा सा वीडियो भी हमने बनाया था, और इनकी एक अनुभव, जीवन का एक सुंदर अनुभव, और माउंट आबू यहाँ आने पर क्या महसूस किया आपने, ये भी हमने उनसे रिकॉर्ड किया था। तो इसीलिए मैंने कहा खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, थावरचंद गहलोत जी का। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। तो चलिए, थावरचंद गहलोत जी का जन्म आज ही के दिन 1948 को रूपेटा गांव में हुआ था, और ये गांव मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। थावरचंद गहलोत ने विक्रम विद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश से बीए की पढ़ाई पूरी की और 1 मई 1965 को अनिता गहलोत से इन्होंने विवाह किया। उनकी एक बेटी और 3 बेटे हैं। थावरचंद गहलोत ने अपने कॉलेज के दिनों से ही अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें थावरचंद के बारे में। आइए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, जैसे अभी रामदेव जी का याद किया है, रामदेवरा जी का, राम रनुजा वाले का ये खूबसूरत गुजराती गीत किंजल दवे की आवाज़ में, आपके नाम, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: चलिए, बड़ा प्यारा संगीत आपने सुना। आशा करूँगा आपको बड़ा अच्छा लगा होगा रामदेव जी का ये खूबसूरत गीत सुनकर। चलिए, इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ आज के दिन इतिहास के पन्नों में, क्या कुछ दर्ज हुआ है। और सुरेश जी जैसे बता रहे थे, आज रामदेव पीर के यहाँ वो जाकर आए हैं और राजस्थान और गुजरात के लोग रामदेवरा को बहुत मानते हैं और पूजा अर्चना करते रहते हैं। निश्चित तौर पे उनकी कहानी भी लोग सुनते हैं और सुनाते भी हैं, और इनके पे बहुत सारे खूबसूरत भजन बने हुए हैं। और हर भजन में जैसे कि एक जो अलग फीलिंग और अलग उनकी आस्था और साथ में कुछ बातें उसमें जुड़ी हुई है कहानी में, वो चीज़ें वहाँ पर दर्शाई जाती हैं। तो वहीं आगे बढ़ते हैं, 18 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार सर, नमस्कार। आज तो पूरा जमा दिया हमने। काम करता करता घूम ही रहा था। मजा आ गया। ऐसा आज कोई छोटा नहीं होगा जिस चीज को मजा नहीं आया। ऐसा रोज ही मजा आते हैं। गाना भी बड़ा अच्छा था दोनों
0: जी जी।
1: हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। तो रेडियो मधुबन की दुआ से सब ठीक ठाक चल रहा है और चलता रहेगा।
0: जी जी जी।
1: तो जिनका भी जन्मदिन है आज, इन सभी को नमस्कार
0: जी जी।
1: और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार। रमेश जी है अपने सुरेश जी ने गुजराती में आपके साथ बात करी, कैम छो
0: कैम
1: छो। गुजराती थोड़ी बोली अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा लगता है। नहीं अच्छा ना, वो कभी कभी अच्छा बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने भी गुजराती बोली अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि आप कभी कभी बोलते रहिए, मजा आ जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: बहुत कुछ है और बस आज प्रोग्राम सभी अच्छे लगे
0: जी।
1: हमारे सुप्रभाष हैं, हमारे शिव भैया जी को, और ओम शांति बाबा, हम कुछ एक परम धाम दे गए थे, मजा आ गया।
0: चलिए, बहुत बढ़िया लगा।
1: और आपको नमस्कार है। और कोई बढ़िया सा गाना और लगा देते या गा के बताऊं?
0: जी बताइए, छोटा सा पीस।
1: आपको गाना कौन सा गाऊंगा ऐसा? ढूंढना वाला मुश्किल
0: हो जाता है। सही बात है।
1: तो गाय लेते हैं
0: जी जी जी।
1: नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, देख सकता हूँ मैं, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। नहीं मैं नहीं देख

0: नमस्कार सर, ओम शांति।
1: ओम शांति, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए मित्रों, आज बहुत ही प्यारा सा गीत मदन जी ने आपको सुनाया, नहीं मैं नहीं देख सकता हूँ तुझे रोते हुए। मजबूर फिल्म का ये खूबसूरत गीत आपको याद दिलाया उन्होंने। चलिए इसी के साथ आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बातें करते हैं और फिर आपको बताना चाहूँगा एक महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। राजस्थान में पंजीकरण निजी क्षेत्र में भारत के पुराने बैंकों में से एक बैंक ऑफ राजस्थान का ICICI बैंक में विलय होना तय हो गया था आज के दिन। और पार्श्व गायक नितिन मुकेश को मध्य प्रदेश सरकार ने आज के दिन लता मंगेशकर अलंकार से सम्मानित किया था। हेलो जी, नमस्कार।
2: राम राम साहेब, हूँ दया भाई बोली रही हूँ, तुम केम छो? तमे
1: मजा में छे?
2: हमें पण एकदम मजा में छे ने, तमारो कार्यक्रम सांभळी रह्या छे अहीं।
1: अच्छा,
2: હું પણ રાજસ્થાન માંથી ગુજરાત પણ આવ્યો તો અહીંયા ને, હું પણ પેલા ગુજરાતી નતો જાણતો પણ હિન્દી જાણતો હતો, ગુજરાત માં આવ્યો એટલે પણ મને પણ ગુજરાતી ફાવી અને ગુજરાતી પણ શીખી ગયો, ને હવે તમે પણ હિન્દી જાણો છો એટલે અમારે પણ તમને થોડો ગુજરાતી શીખાડવા પડશે હવે રમેશભાઈ।
1: ઓહો, શીખાડવું પડે છે।
2: મેરી એક ફરમાઈશ હે, તો મેં તો ગાય ને દો લાઈને ગા લેતા હું, જો ગાનો કી ફરમાઈશ આપકો દેતા હું।
1: જી જી જી।
2: तो मारवाड़ी गाना है, रिंकल मोदी की आवाज में गाना है, लिख लिख अर्जी भेजू रणुजे, सास जाने ने माने दर्शन देना। ये बहुत ही भजन बढ़िया है, अच्छा है, सुंदर, सुना देना गुरु।
1: किसका है ये भजन? जी जी, चलिए बहुत बढ़िया, सभी को अच्छा लग रहा है तो खुशी की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करें तो अनिल चौहान जी का जन्मदिन आज है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, 1961 में इनका जन्म हुआ था और विशेष राजनीतिक पार्टी से संबंधित राजनेता फागन सिंह कुलसते, 1959 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय विशेष राजनीतिक जगदीप धनखड़ का भी जन्मदिन आज है, 1991 में इनका जन्म हुआ। छत्रपति शिवाजी का पौत्र तथा शंभू जी और ये सुबाई का पुत्र था शाहू, 1682 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय राजनेता थावरचंद गहलोत, 1948 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय विशेष राजनीतिक सुधीर रंजन मजुमदार, 1939 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर थे एस जगन्नाथन, 1914 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। और भारत के 12वें प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, 1933 में इनका जन्म हुआ। और राम लिंगम चेटियार एक वकील थे, 1881 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। हेलो जी, नमस्कार। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
3: आपका प्रोग्राम मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपका पूरा दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभप्रभात।
1: जी जी, शुक्रिया। आप कहाँ से बोल रहे हैं जी, क्या नाम है आपका?
3: मैं इंडिया से बोल रही हूँ।
1: जी जी जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और आपका फोन आते ही हमें भी खुशी हुई कि आप भी रेडियो मधुबन सुनते हैं और आपको अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
3: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी के लिए ये खूबसूरत हैप्पी बर्थडे रेडियो मधुबन की ओर से।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए एक छोटा सा गीत आपके लिए लिख लिख का अर्जी भेजूं, आपके लिए अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते। हमा गणिसा।

समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा, गुड मॉर्निंग सा। कर्मेंद्रियां हमारे वश में हो न कि हम उनके वश में हो। कर्मेंद्रियां हमारे वश में हो न कि हम उनके वश में हो। जरा विचार करिए कि ऐसा क्यों। अगर हिचकी आए तो क्या करेंगे। आप आशियाना सुनते रहिए, इसका उपाय जरूर देंगे। और आज आपको एक विशेष अतिथि से भी मिलाएंगे और कुछ खास भी बनाने वाली हूँ। प्रश्न तो जरूर पूछूंगी, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 100.4।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वो बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वो सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि कर्मेंद्रिया हमारे वश में होनी चाहिए, न कि हम कर्मेंद्रियों के वश में हो। कर्मेंद्रिया हमारे वश में हो, न कि हम कर्मेंद्रियों के वश में। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। स्वयं हम स्वयं मालिक होकर के कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराएंगे। कहते हैं कि मन में कोई ख्याल आए, कोई भी मन में किसी के भी प्रति बुरा ख्याल आए, लेकिन कर्म में नहीं आओ, वाचा में आए तो भी वो कर्म हो गया। मनसा में कोई ऐसा ख्याल आए तो वहाँ ही समाप्त कर दीजिए। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस दुनिया में आई हूँ, ये संकल्प और अशुद्ध संकल्प को, मतलब इस तरह के संकल्प चलाने, लेकिन अशुद्ध संकल्पों को समाप्त कर देना है। बातों को अवॉइड करना है, जो हमारे काम की बातें न हो तो उसे अवॉइड करते जाओ। अगर अवार्ड लेना है स्वयं से, तो दिन भर में कौन कौन सी बातें आती है, संकल्प वचन कर्म में जो हमारे काम की बातें नहीं है उसे अवॉइड करो। जैसे मोती चुगने वाला हंस जो काम का नहीं होता है उसे अलग कर देता है। समझ कहती है तुम्हारे सोचने का तरीका बहुत अच्छा हो, जो तुम्हारे काम की बातें नहीं उसे अवॉइड करो। जो और किसी की ड्यूटी है उसमें अपना इंटरफेयर नहीं करो। हम जिस कार्य के अर्थ निमित्त है उसमें भी अपने को भारी मत करो, भारी होने को भी अवॉइड करो। कैसा होगा, मतलब कैसे होगा, क्या होगा, इस नेचर को भी अवॉइड करो। अच्छा ही होगा जो हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा, और जो होने वाला है वो तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस दृढ़ संकल्प से विक संकल्प को अवॉइड करो। जहाँ कोई परचिंतन वाली बातें चलती है उनसे अपने को अवॉइड करो, उससे हमारी उन्नति नहीं है। फालतू चर्चा करने वालों से अवॉइड करो, उनको भी व्यर्थ चिंतन करने वालों के संग का अवॉइड करो। तो इस तरह अगर हम व्यर्थ से बचेंगे और स्वयं पर ध्यान देंगे कि मैं क्यों इस दुनिया में आई हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चलना है, किस तरह का भोजन मुझे करना है और कैसे विचार मुझे रखने हैं, कैसा व्यवहार लोगों के साथ करना है, तो हम कह सकते हैं कि कर्मेंद्रिया हमारे वश में है, न कि हम उनके वश में। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिचकी लगी आज सुबह जब मैं जगी, राम कसम ऐसी लगी, श्रोताओं ने मुझे याद किया है। हिचकी लगी। तो आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब आपको देंगे, आप सभी समझ गए होंगे कि आज मैं हिचकी पर नुस्खे देने वाली हूँ। भाई कभी कभी क्या है, हिचकी भी बड़ी परेशान कर देती है, क्योंकि कभी कभी दो चार बार आकर के बंद हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बस लगातार आती रहती है, फिर परेशान हो जाते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, बीच बीच में पानी पी लेते हैं, 7 घूंट पानी पीने से हिचकी चली जाती है, ऐसी मान्यता है। ऐसा भी करके देखते हैं, सबसे पहले तो यही उपाय करते हैं, लेकिन कभी कभी इस उपाय से भी हिचकी नहीं जाती है। तो मैं आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे दे रही हूँ कि गुनगुने पानी में नींबू का रस और एक चुटकी नमक और पुदीने के कुछ पत्ते मिलाइए, फिर इसे पीजिए, हिचकी और गैस दोनों में आराम मिलेगा। गुनगुने पानी में नींबू का रस और एक चुटकी नमक और पुदीने के कुछ पत्ते मिला दीजिए, इसे पीजिएगा, हिचकी और गैस दोनों में आराम मिलेगा। हिचकी को रोकने के लिए नमक और पुदीने का इस्तेमाल आपको करना जरूरी है, ठीक है। और अगला नुस्खा आपको मैं दे रही हूँ, अगर ये नहीं कर सकते तो आप सोंठ और बड़ी हरड़ को बराबर मात्रा में लीजिए, पीस करके चूर्ण बना लीजिए, फिर 3 ग्राम चूर्ण को पानी के साथ लीजिए, सेवन करिए, इससे भी हिचकी बंद हो जाएगी। सोंठ और बड़ी हरड़ को बराबर मात्रा में पीस करके इसका चूर्ण बना लीजिए, 3 ग्राम चूर्ण को पानी के साथ सेवन करने से हिचकियां बंद हो जाती है। और लास्ट नुस्खा सुनेंगे कि कुटकी के चूर्ण को 1-2 चुटकी की मात्रा में शहद के साथ मिला करके दिन में 3-4 बार खाइए, इससे भी हिचकी में आराम मिलता है। कुटकी के चूर्ण को कुटकी होती ना, उसको कूट पीस करके उसका चूर्ण बना लीजिए, फिर 1-2 चुटकी की मात्रा में थोड़े से शहद मिला करके 3-4 बार खाइए पूरे दिन में, इससे भी हिचकी में आराम मिलेगा। तो इस तरह आप अपने हिचकी को ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ही नुस्खे लाजवाब है, चाहो तो आप आजमा सकते हो। और अब मैं आपको प्रश्न

0: सर कुटकी क्या होती है?
1: कुटकी एक आयुर्वेद चीज होती है, जैसे कि हम सौंठ नहीं लेते, इस तरह कुटकी भी
0: हाँ
1: आती है।
0: जी हाँ, इसी के लिए पूछ रहा मैं।
1: पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा या किराने की दुकान पर मिल जाएगी। ठीक है
0: ठीक है साहब,
1: जी, आपका शुभ नाम बताएंगे।
0: मेरा नाम ज्ञान सिंह है साहब।
1: अच्छा, बहुत बहुत आभार आपका। तो आप किराने
0: ठीक
1: की
0: है साहब,
1: दुकान पर पूछेंगे तो भी मिल जाएगी। ठीक है
0: ओके सर।
1: जी, थैंक यू। चलिए यहीं पर सुनेंगे एक गीत, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर, वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार। बहुत पुराने विचार, बासी विचार, अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है, और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत,
2: शायद सच ही कहते हैं लोग, शायद सच ही कहते हैं लोग कि औरत में दिमाग नहीं होता तभी तो वह हर रिश्ता दिल से निभाती है बिना किसी मतलब के, तभी तो वह हर रिश्ता दिल से निभाती है बिना किसी स्वार्थ के। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आज हमारे एक विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं, सोनू जी, जो नेपाल के रहने वाले हैं परंतु 16 साल से आबू में ही रह रहे हैं, आबू तलेटी में। और देखिए कहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं तो ये पाप है, तो ये विकर्म है। काम करना अच्छी बात है और काम करके स्वाभिमान से जीवन जीना ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सोनू जी लोगों के घर के झाड़ू पोछे करते हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, 3 बच्चे हैं उनकी परवरिश भी कर रही है, और कैसे अपने घर परिवार को चला रही है और हमेशा अपने जीवन को खुशियों से भरा रखते हैं, तो ऐसे नारी शक्ति से आपको मिलवाते हैं। सोनू जी आपका स्वागत है आशियाना में।
3: जी धन्यवाद।
2: सोनू जी आप जैसे झाड़ू पोछा करते हैं तो ये काम आपने कब से शुरू किया और ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? कितने साल हो गए आपको झाड़ू पोछा करते हुए?
3: ऐसे हो गए मेरे 10-12 साल, जब बच्चे छोटे छोटे थे तब तो नहीं कर पा रहे थे, अभी जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए स्कूल उनको पढ़ाने का समय आया तो मजबूरी में या कुछ भी हो करना पड़ा हमको।
2: जी जी जी, मजबूरी से आपने काम को शुरू किया। 3 बच्चे हैं आपके। अच्छा, तो मतलब पहले आपकी इच्छा नहीं थी शुरुआत में झाड़ू पोछा करने की?
3: ऐसे मतलब अभी हम घर पे रहते थे, अपने हाउस वाइफ है तो अपना घर खर्च देख के, भाई आदमी कैसे अकेले सब कुछ देखभाल करेगा, फिर फैमिली भी बड़ी होती जा रही थी, फिर हम भी सोचे कि थोड़ा बहुत हम भी हेल्प करें या थोड़ा अपने घर वाला को सपोर्ट हो जाएगा और हमारे बच्चों को भी अच्छी परवरिश होगी।
2: जी जी,
3: इसीलिए।
2: तो आपके पतिदेव ने हाँ कर दी?
3: हाँ, वो बोले कि हाँ और कहीं तो नहीं जाना, बस बाबा का घर है तो जाओ, वहाँ थोड़ी सतबुद्धि मिलेगी, अच्छा ज्ञान मिलेगा।
2: अच्छा, तो आप तब से आपने शुरू किया, 12 साल हो गए झाड़ू पोछा करते हुए। तो आप कितने घर के करते होंगे लगभग?
3: बस 5-6 घर।
2: अच्छा, 5-6 घर पर आप काम करते हो। महीने का लगभग कितना कमा लेते होंगे?
3: महीने का किसी महीने 5,000, किसी महीने 6,000 बस।
2: जी जी जी, और झाड़ू पोछे के अलावा और आपको आप क्या करते हैं? बर्तन भी मांजते हैं?
3: हाँ, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, बस जो हो जाए।
2: जी जी जी, तो आपके 3 बच्चे भी हैं तो कैसे आप बच्चों को समय दे पाते हैं, कैसे आप लोगों के घर के काम कर पाते हैं, कैसे ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं?
3: बस अपने आप को मजबूत बना के सुबह जल्दी उठ के सब घर का काम करके फिर आगे जाके अपन को भी टेंशन होती है, चिंता होता है कि आगे भी करना है और भी आगे बढ़ना है, बच्चों की अच्छी ज़िंदगी देनी है, अच्छी परवरिश करनी है, इसीलिए बस वही।
4: बहुत अच्छी बात है। देखिए मतलब कुछ करना है तो फिर हमें थोड़ा सा त्याग भी, समय का त्याग भी देना पड़ेगा इसके लिए। हाँ। जल्दी उठ करके हम समय को कवर कर सकते हैं। आप कितने बजे उठ जाते हैं?
3: ऐसे कभी 5 कभी 5:30 कभी 6, जब ज़्यादा थके रहते हैं तो 6 भी बज जाता है, नहीं तो टेंशन रहती है दिमाग में तो जल्दी उठ जाते हैं।
4: जी जी जी, तो आप कितने बजे मतलब काम करने चले जाते हैं?
3: मैं काम पे 8:30-9।
4: अच्छा, सुबह 8:30-9 बजे चले जाते हैं। फिर घर पर कितने बजे आते हैं?
3: घर पर कभी 5 बजे कभी 4 बजे डेली का।
4: अच्छा, इसके बीच खाना कैसे आप यहाँ बना के जाते हैं?
3: हाँ, खाना घर पे बना के जाते हैं, नाश्ता वगैरह करके जाते फिर आके खाते।
4: सुबह 8:30-9 बजे घर से निकलते, उसके बाद 4-5 बजे आकर के खाना खाते।
3: हाँ,
4: और बच्चे लोग को तब तक कौन संभालता है?
3: बच्चे लोग अभी थोड़े बड़े हो गए, स्कूल जाते हैं, उनको आके इतने बड़े हो गए कि खुद मतलब सब कर लेते हैं खाना।
4: जी जी, अभी तो बड़े हो गए लेकिन आपको 12 साल हो गए काम करते हुए, उस समय कौन संभालता था?
3: उस समय बस ऐसे ही, अब थोड़ा थोड़ा करके मुश्किल थी तो अपने में ऐसे करके संभाल
4: मतलब बीच बीच में आप घर पर जाते थे, एक दो घर का काम करके बीच बीच में घर पर जाते थे। तो आपके साथ और भी कोई है जैसे आपके सासू माँ या आपके मम्मी कोई भी?
3: नहीं, वो लोग सब नेपाल में है, हम खाली, हमारी फैमिली है, 3 बच्चे और हम मियाँ बीवी।
4: अच्छा, आपके पति देव क्या काम करते हैं?
3: ओ, ज्ञान अमृत प्रिंटिंग प्रेस में करते हैं।
4: अच्छा अच्छा, तो आपके दोनों की कमाई से घर का गुजारा अच्छी तरह चल जाता है?
3: हाँ, चलता है, थोड़ी घर का अपना वो करके चलाते हैं।
4: जी जी जी, देखिए वो कहते हैं कि थोड़ा सा अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, समय का त्याग नहीं करेंगे तो बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे पाएंगे। तो हाँ, तीनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं?
3: हाँ, तीनों जाते हैं।
4: और नेपाल कितने समय में जाना होता है आपका?
3: कभी एक साल में जाते हैं, 1 महीने के लिए, सबसे मिल के सबका हाल खबर लेके फिर आ जाते हैं।
4: तो जैसे आप 1 महीने के लिए जाते हैं, उस समय फिर वो काम कौन करता है?
3: किसी अपने सगे संबंधी को, जान पहचान वालों को, उनको वहाँ पे रख के जाते हैं।
4: अच्छा, तो आप लोग ऐसे तालमेल बिठा के रहते हैं कि जैसे आप गए तो आपके बदले किसी ने कर लिया काम और वो गए तो आप कर लेते हो?
3: हाँ जी।
4: तो फिर वो डबल लोड नहीं पड़ जाता है, डबल काम हो जाता है कैसे फिर?
3: अभी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं।
4: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सोनू जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे लेकिन समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत, बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधु। सोनू जी जो देखे झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजारा कर रहे और अपने जीवन को किस तरह इन्होंने खुशनुमा बना करके रख रखा है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है, चाहे कोई भी काम करो वो काम श्रेष्ठ ही होता है। चोरी, झूठ, अन्याय ये करना तो ये गलत है, ये पाप है, लेकिन काम करना बहुत अच्छी बात है। सोनू जी ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की लेकिन कैसे अपने घर का आप अच्छी तरह घर को चला रहे हैं। कहते हैं कि भाई महंगाई के ज़माने में एक के कमाने से पूरा नहीं पड़ता है, दोनों का कदम से कदम बढ़ा करके चलना ही पड़ता है, चाहे घर के काम हो चाहे बारीक क्षेत्र में काम हो। तो आइए सुनेंगे पहले एक गीत, उसके बाद पुनः लौट करके आ रहे हैं। सोनू जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, मैं हूँ माया कालसी और आप सुन रही हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच तो यह है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है, औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सोनू जी हमारे साथ बने हुए हैं। कैसे सोनू जी ने झाड़ू पोछे बर्तन को अपना व्यवसाय बनाया है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना लोगों के घर का और अपने जीवन को खुशनुमा बनाना, कैसे अपने मतलब इन्होंने अपने जीवन में इसको व्यवसाय बनाया है आपने जाना है और भी हम जानेंगे। सोनू जी पुनः आपका स्वागत है आशियाना में। अच्छा सोनू जी, आप कोरोना काल में बहुत लोगों के काम छूट गए थे, तो आपने कैसे मतलब

0: जारी रखा या फिर कैसे आपने कोरोना काल में अपने आप को संभाल के रखा पूरे परिवार सहित?
1: हाँ, ऐसे तो पहले कोरोना जब नहीं था तो ठीक चल रही थी काम काज। जब कोरोना चालू हुआ तो बहुत परेशानी आ गई थी। अब काम भी बंद हो गया था। सब लोग यही डरते थे कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसीलिए सब अपने अपने घर में थे। ना ही काम पे कभी बुलाते नहीं थे। सबको डर थी, हमको भी उनको भी, पंतों पर भी। ऐसे करके थोड़े बहुत जो समझते थे हमारे इधर जो योगी नगर में थे वो लोग सब अच्छे हैं, तो वो लोग समझे कि ऐसे ऐसे हालात में भी वो घर बैठे रहेंगे तो कैसे उनका घर खर्चा चलेगा। फिर इसीलिए वो लोग भी, हम भले 1-2 महीना घर पे रहे तो पर भी वो हमको सब देख के, हमारी परिस्थिति समझ के वो लोग हमारे पगार वगार नहीं काटे। हमारे जो कोरोना काल का जो खर्चा था वो लोग मदद किए और दिए, और हम भी 1-2 महीना घर पे बैठे थे तो पर भी पगार दिया वो लोग ने।
0: अच्छा, आप पेमेंट दी, काटी किसी ने नहीं।
1: नहीं,
0: एक काम का आप कितने ले लेते हो? जैसे झाड़ू पोछे का कितने लेते हैं आप?
1: झाड़ू पोछे का 800 महीने का।
0: 800 रुपये महीने का। तो वो जो पैसे है आपके काटे नहीं, सभी ग्राहक ने दिया आपको?
1: नहीं, जो ऐसे सब जो अपने परिस्थिति समझते थे
0: जी जी जी
1: उन्होंने ही दिया, और बाकी अब अपनी अपनी
0: हाँ,
1: वो
0: बिल्कुल
1: होती।
0: बिल्कुल, जिसको दया थी, रहम था कि भाई कैसे गुजारा करोगे, तो उन्होंने पैसे भी दिए। किसी ने फिर खाना वगैरह, कपड़े वगैरह ऐसे भी दिए?
1: हाँ, दिए थे खाना।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन वो कहते हैं कि खुददारी से जीवन जीती हो, स्वाभिमानी से, कि हाथ नहीं फैलाना किसी के सामने,
1: हाँ जी,
0: ये बहुत बड़ी बात है। कि लोग बात क्या है, जल्दी से हाथ फैलाने लग जाते हैं, अहंकार में बैठ जाते हैं। अच्छी पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है तो माता पिता पर डिपेंड रह जाते हैं। बेचारे माता पिता कितने समय बच्चों को पालेंगे? जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो माता पिता भी बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं कि अब हमारा बच्चा भी कुछ करे, लेकिन नौकरी के भरोसे बच्चे दूसरा छोटा मोटा काम करना नहीं चाहते। भले घर में परिस्थिति ऐसी आ जाए कि भूखे मरने की बारी आ जाए, लेकिन नहीं भाई, हम छोटे मोटे काम तो नहीं करेंगे, करेंगे तो ऊंचाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसी सोच को आप क्या कहेंगे? तो सोनू जी ने देखो कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा है, और किस तरह आप लोगों के घर का झाड़ू पोछे करके अपने आप को खुशहाल रखते हैं। आपसे सभी खुश रहते हैं सोनू जी?
1: हाँ, मैं घर के जैसे ही सबके घर में जाती हूँ तो करती हूँ, वो लोग भी मुझे अच्छा रखते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप हंसमुखी भी हैं। और आपको ये झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा आप और क्या काम आता है आपको?
1: मुझे इसके अलावा थोड़ा बहुत कपड़े सिलना आता है।
0: क्या बात है, कपड़े सिल लेते हो? खुद के सिलते हो या बाहर लोगों के भी सिलते हो?
1: खुद का सिल लेती हूँ, बाहर लोग का भी थोड़ा बहुत सिलती हूँ, पन उतना टाइम नहीं बैठता है। उधर करके आके फिर घर का सब करना पड़ता है और फिर टाइम नहीं मिलता है। और थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आता है, अनुभव नहीं है ज़्यादा सिलने का, इसलिए।
0: अच्छा, इसलिए सिलाई को व्यवसाय नहीं बनाया।
1: हाँ
0: तो आप सिलाई थोड़ा सीख करके सिलाई के ऊपर ध्यान देते तो शायद सिलाई एक आपका व्यवसाय बन जाते।
1: हाँ जी,
0: तो आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं?
1: नहीं।
0: वो झाड़ू पोछे बर्तन से आपको समय नहीं मिला? अगर मान लीजिए कभी समय मिला तो सीखेंगे आप?
1: हाँ, सीख सकते हैं।
0: अच्छा, तो थोड़े बहुत कपड़ों में क्या सिल लेते हैं आप?
1: जैसे सूट सलवार और ब्लाउज, ये सारे लेडीज का।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इतना आप सिल लेते हैं।
1: हाँ जी,
0: आप अपने घर में बच्चों के भी आप ही सिलते हैं?
1: हाँ
0: तो एक ये आपके जो बाहर सिलाई देनी पड़ती है वो बच जाती है,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: 5-6 हज़ार तो आप मंथली कमाई लेते हैं, और
1: हाँ
0: उसके अलावा भी आप सिलाई वगैरह करके भी ये पैसे की बचत कर लेते हैं।
1: हाँ जी,
0: और आप जहाँ पर भी जैसे काम करते हैं, तो मान लीजिए आपने कहा ना कि 8:30-9 बजे आप जाते हैं, 4-5 बजे आप घर पर आ जाते हैं, लेकिन कोई अगर आपको शाम के समय बुलाता है कि आज हमारे भाई गेस्ट आने वाले हैं, ये है वो है, तो फिर शाम के समय भी जाते हैं आप काम करने?
1: हाँ इमरजेंसी होता है तो जाना पड़ता है, वो भी अपने परिवार ही जैसे है।
0: जी, जिनको जरूरत है तो फिर आप उस अनुसार चले जाते हैं।
1: हाँ जी,
0: अच्छा, तो हमारी जो बहनें सुन रही उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहती हूँ सभी बहनों को और सभी माताओं को कि कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और इसमें कोई चीज़ का शर्म नहीं है, बस अपना घर चलाना, अपना अपनी सब परवरिश करनी है सब बच्चों का अपना, तो ये सब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस अच्छे लगन से काम करते जाओ और ये सब और उल्टा सुल्टा गलत काम से अच्छा तो झाड़ू पोछा करके अपने अच्छे से कमाए खाए अच्छी जीवन बिताए।
0: क्या बात है सोनू जी, आपने लाख टके की बात कह दी कि उलट सुलट काम करने से तो अच्छा है कि झाड़ू पोछे बर्तन करके भी अपने घर को हम चला सकते हैं, कितनी बड़ी बात कह दी। आज कहते हैं कि जो पढ़ाई नहीं करते हैं अनपढ़ होते उनको हम हीन दृष्टि से देखते हैं, एक ऐसा आता है कि अरे इसके पास क्या है, इसको क्या आता है, लेकिन देखिए सोनू जी की बात से मतलब कितनी शिक्षा मिलती है कि उलट पुलट काम करने से अच्छा है मेहनत करो, मेहनत में कभी शर्माना नहीं है, कभी घबराना नहीं है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है, काम का सम्मान करें और स्वाभिमान का जीवन जिए, ये सोनू जी का जीवन का लक्ष्य है। सोनू जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो यहीं पर सुनेंगे एक गीत, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढई गाँव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनता रहा और मुस्कुराता।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। और आज का प्रश्न पूछना चाहूंगी कि देखिए, जैसे कि मैंने आप में से किसी एक को कुछ बात कही, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि आप किसी को बताना मत, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई चुप नहीं बैठेंगे, वो भी अपने अजीज को बताएंगे कि भाई ये बात है और किसी को बताना मत। इस तरह एक दूसरे को कहते कहते वो बात मतलब किस तरह उसका सार निकलता है, जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: हाँ जी, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो?
2: बहुत अच्छे जी, बस बिल्कुल बहुत अच्छे हैं
1: जी।
2: और अच्छी बातें भी हो रही है और अच्छी बातें अभी अभी जो आपने बहन जी ने बताई, बहुत अच्छा लगा जी कि मेहनत करने में कोई मैं नहीं है
1: जी जी,
2: तो जी। ऐसे ही उसके ऐसे संघर्ष करके कचरा पोता और ये करके जो उसका पूरा जीवन अच्छा किया, तो ऐसे अभी मेहनत करने में कोई ऐसे नहीं। आज कई महिलाएं ऐसा काम कर रही है और खुद का गुजारा कर रही है और बच्चों को पाल रही है।
1: जी जी बिल्कुल
2: सही बात है, बहुत अच्छा लगा। तो इसमें कोई ऐसी नहीं है कि तो ये काम नहीं कर सकते हम,
1: समय
2: के अनुसार करना चाहिए, करना पड़ता है
1: जी जी जी।
2: और कल एक कार्यक्रम आपका सुना था दीदी, हिंसा को रोके
1: जी जी,
2: वो भी बहुत अच्छा लगा कि जो महिला हो तो बस कुछ करना ही, घर का काम कीजिए और कुछ दखल मत कीजिए, पैसे की कोई ऐसा नहीं देना, खुद कुछ नहीं करना बस, तो ये क्या करना है, न्याय है। तो ये कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा दीदी, और वो बहन जी ने कितना अच्छा करके एक वकील से मिलके उसका का वो किया, तो अच्छा लगा कल
1: जी जी। इसमें इसमें सुरेश भाई विशेष विशेष क्या सीखने को मिला इसमें, आपको क्या महसूस हुआ?
2: दीदी इसमें क्या है, मैं बताऊँ तो महिलाओं की भी पैसे की जरूरत पड़ती है
1: जी,
2: तो महिलाओं का भी खुद जब रखा है घर में, क्यों नहीं, उसको हम लाए हैं तो उसका भी, ये भी हमारे घर का परिवार का हिस्सा है, तो इसके जितना हमारा हिस्सा है इतना इतना हिस्सा है उसका भी
1: जी जी।
2: तो उसको भी इसकी असर से पैसा देना चाहिए, कुछ लाना हो तो पैसा देना चाहिए, और नहीं लाना हो तो उसको खुद देना ही चाहिए कि आपको कुछ लेना हो तो
1: जी
2: पैसे
1: जी, जी।
2: आप खुद ले लेना
1: जी तो जी, बराबरी का हिस्सा है जी,
2: बराबर का हिस्सा है। और जो ऐसे न करके पति मारते और इसको पीठ से कुछ ले देते तो ये न्याय नहीं है, इसके लिए तो कुछ सजा जरूर मिलनी चाहिए
1: जी जी जी जी जी। धन्यवाद। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे
2: दीदी, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है। कई लोग ऐसे होते हैं दीदी कि मैंने आपको कहा आपको किसी मत बताना
1: जी,
2: पर खुद बोल ही जाते हैं, सबको बताते जाते हैं, तो ये तो खुद बताते हैं और हमको मना करते हैं
1: जी जी जी।
2: ऐसा तो होना नहीं चाहिए।
1: तो जैसे कि मेन बात का क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा, आपने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तो मैंने कहा सबसे पहले वो बात बनी रहती है या फिर कुछ और उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है, पूरा ही रूप बदल जाता है?
2: नहीं बनी रहती है, तो वो दूसरे को बताएगा ना, वो नहीं बताएगा दूसरे को, वो बताएगा
1: जी।
2: मैं बताऊँ तो कई हमारे गांव में एक इंसान है, एक लड़के है, तो कभी कभी हमारे पास आके तो बोलते है कि हम आपकी अच्छी बातें बताएंगे लेकिन आप किसी को मत बताना, लेकिन वो बात मुझे भी कही है और लोगों की भी ये बात की इसने
1: जी जी।
2: तो ऐसा होता है, कई लोग ऐसा है, स्वभाव ऐसा होता है उसका कि हम कहेंगे आप दूसरे को मत बताएं, लेकिन जो आपने बताया वो भी दूसरे को तो जरूर बताएगा, ऐसा तो है नहीं
1: जी जी जी।
2: अच्छी बात है दीदी, बहुत अच्छा लगा
1: जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो आइए भाई, हमारे श्रोता बंधु का फोन आया था कि मकई का सीजन चल रहा है, भुट्टे का सीजन चल रहा है, तो दीदी कुछ भुट्टे का कुछ सिखाओ ना, भुट्टा मतलब मकई पाक सीखना चाहते हैं। तो सोचा कि चलो एक को क्यों, सभी को सिखा देते हैं मकई पाक। तो आशियाना के किचन में आइएगा पेन और डायरी लेकर के, सामग्री लिख लेना अच्छी बात है, ताकि आप कभी भी किसी भी समय बना करके खा सकते हो। तो आप भुट्टे ले लीजिए 3, ठीक है, 3 भुट्टे लेने हैं। फिर आप लीजिए शक्कर 7 के अनुसार, इलायची पाउडर लेना है और मावा लीजिएगा। देखिए मात्रा मैं नहीं बता रही हूँ, मात्रा आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स की कतरन लेनी है, भुट्टे, शक्कर, इलायची पाउडर, मावा, ड्राई फ्रूट्स की कतरन। बनाने का तरीका अब मैं आपको सिखा रही हूँ कि भुट्टे को आप छिलके निकाल दीजिए और इसको भुट्टे को आप या तो छिन्नी में से कद्दूकस करिए या फिर इसके दाने निकाल करके आप मिक्सर में थोड़ा क्रश करिए, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके छिलके आप फेंक देना, छिलके थोड़े से इसमें साफ करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप कद्दूकस करेंगे तो छिलके ऊपर रहेंगे और जो इसका कण है वो ही नीचे गिरेगा। मिक्सर में पीसेंगे तो फिर वो छिलके भी साथ में रहेंगे। तो छिलके आपको निकालना है और जो कण होते हैं ना उसको अब आप घी भी लेना है, घी डाल करके सिकाई करिए। मध्यम आंच पर अच्छी सी सिकाई करनी है। सिकाई करने के बाद अब आप चाशनी बनाइए। मावा को भी एक कढ़ाई में सेक दीजिए, थोड़ा सा फ्राई कर दीजिए, भूनिए, ठीक है। अब आप चाशनी बनानी है आपको दो तार की, थोड़ी सी कड़क चाहिए इसमें, ठीक है। दो तार की चाशनी बनाने के बाद अब आप चाशनी में से देखो कच्चा दूध डाल करके मेल तो आपको निकालना ही है, फिर चाशनी बन जाती है। तो चाशनी में आप ये मक्कई जो हमने सेक करके रख रखे हैं इसके कण को ये डालिएगा आप इसमें, और मावा भी डाल दीजिए और अच्छी तरह हिलाइए। अच्छी तरह हिला करके इलायची पाउडर भी डाल दीजिए, ठीक है। फिर से हिलाना है, गैस बंद करिए और एक थाली में घी लगा करके, चिकनाई लगा करके इस खीरे को उसमें उड़ेलिए। उड़ेल करके अच्छी तरह चारों तरफ सेट कर लीजिए और जैसे ही ये थोड़े से जमने लगे तो मतलब पहले उड़ेल करके आपको ड्राई फ्रूट्स की कतरन ऊपर सजा देनी है, ठीक है, चारों तरफ बुरक देने हैं। उसके बाद जब ये आपको लगे हल्के हल्के हाथों से आप ड्राई फ्रूट्स की कतरन को दबा भी दीजिए ताकि वो चिपक जाएगी। फिर आप बस ये थोड़ी सी जमने लगे आप चाकू से जो भी साइज आप पसंद करते हो बर्फी के रूप में काट लीजिए। तो ये बन गया मक्कई पाक। फिर से दोहरा रही हूँ विधि को कि आप मक्कई के या तो दाने निकाल करके मिक्सर में क्रश करिए। बहुत बारीक पाउडर नहीं करना है, हल्का सा मोटा होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको इस तरह क्रश करना है। भले आप कद्दूकस करिए डायरेक्ट ही छीनी से मक्कई को लेकर के, तो छिलके ऊपर रह जाएंगे और अंदर वो खाली कण ही घिरेंगे। अगर मिक्सर में पीसते हैं तो फिर छिलके आपको झटक करके साफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कढ़ाई रखिए गैस पर, गैस चालू करिए, घी डालिए और घी में इस कण को अच्छी तरह आप सेकिए। मध्यम आंच पर अच्छी तरह सेकना है। सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सोनी सोनी अच्छी खुशबू आने लगे तब तक आपको सेकते रहना है। फिर सिक जाए उसके बाद थोड़ा सा मावा को भी आप सेक लीजिए और फिर आप दो तार की चाशनी बनाइए। चाशनी बन गई हो तो चाशनी में आप ये कण डाल दीजिए, मावा डाल दीजिए, इलायची पाउडर डाल दीजिए और अच्छी तरह हिलाइए। हिलाने के बाद इसको आप एक चिकनाई लगा करके थाली में उड़ेलिए। उड़ेलने के बाद अच्छी तरह सेट कर दीजिए और ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स की कतरन को डाल करके हल्के हल्के हाथों से दबा दीजिए ताकि वो चिपक जाएगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये गाढ़ा लगे कि भाई हमारे ये जम रहे हैं मक्कई पाक थोड़ा सा जम रहा है तो आप चाकू से काट दीजिए। लेकिन अच्छी तरह फिट हो जाए फिर आप चाकू से काटोगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा जमने लगे और चाकू अंदर दबने लगे ऐसे आप जो भी साइज आपको पसंद हो बर्फी की तरह काट दीजिएगा। तो ये बन गया मक्कई पाक। आज बस मक्कई पाक ही बनाएंगे। मक्कई की बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आज वृद्ध दिवस है तो उस पर भी बात करना ज़रूरी है। तो मक्कई पाक के साथ आपने और भी कुछ बनाया हो, सब्जी पूरी, भाई अभी तो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें भी आप बना सकते हो। मक्कई का झाझरा आपको कल सिखाएंगे, कल नहीं तो सोमवार को सिखाएंगे, कल तो शनिवार है, ठीक है। तो जो भी आपने सब्जी पूरी जो भी बनाया है सब एक स्वच्छ थाली में सब कुछ रखिए। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए। ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित मेहमानों सहित आनंद ले सकते हो मक्कई पाक का। और प्रश्न का जवाब आपका अभी मिला नहीं है कि मान लीजिए मैंने आपसे कान में कुछ बात कही कि भाई किसी को बताना नहीं, आपने उस बात को किस तरह समझा वो मुझे नहीं पता, आपने दूसरे व्यक्ति को बता दी, उसको भी यही कहा आपने कि भाई बताना मत, अब उन्होंने किस तरह उस बात को ली समझी, उनको भी पता नहीं, उन्होंने तीसरे को, फिर इस तरह वाया वाया बात फैल जाती है, तो उसका सार क्या रहता है फिर, ये जवाब आपको देना है। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए फिर से सुनते एक गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम था आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे है, बहुत ही सुंदर विचार आपको दिया है। तो सोनू जी की बात भी आपने सुनी है कि देखिए झाड़ू पोछा बर्तन कोई काम छोटा नहीं होता है, काम काम ही होता है, स्वाभिमान से जीना ये सबसे बड़ी बात होती है। तो स्वाभिमान से सभी को जीना है, न कि किसी पर डिपेंड रहना है। आपको रेसिपी भी अच्छी सिखाई है, मकई पाक जरूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न था कि भाई मैंने आपको कान में कुछ बात कही कि भाई किसी को बताना नहीं, आपने दूसरे को बताई कि किसी को बताना नहीं, तीसरे को बताए बता दी, तीसरे व्यक्ति को पता चला, तो देखिए वो बात तो छोटी सी थी कि ये बात है, लेकिन उसकी रूपरेखा ही बदल जाती है। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जब वापस मेरे तक आती है तब सुनने को मिलता है कि अरे मैंने तो ये बात कही नहीं, पूरी रूपरेखा बदल गई। इसलिए बातों को समा करके रखिएगा, बातों को समाना सीखिएगा। किसी के सामने कहना नहीं है कि भाई जब मैं आपको कह रही हूँ कि ये बात मैंने आपको कही है, किसी को बताना नहीं तो नहीं बताना है, क्योंकि उसको पाया ही खत्म हो जाता है, मेन बात तो खत्म हो जाती है, बात का बतंगड़ हो जाता है, सार नहीं वो विस्तार हो जाता है, इतनी सी बात इतनी फैल जाती है कि लोग न जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं, फिर किन किन तरह की बातें हो जाती उस व्यक्ति के प्रति। इसलिए ये यही संदेश देता है ये प्रश्न कि हमें बातों को फैलाना नहीं है। ठीक है, तो जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़े हैं, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई जोटाना से, रामा भाई वासना से। आप सभी ने विषय में चर्चा की है और आपने जवाब देने की भी कोशिश की है, लेकिन मेन बात यही है कि बात जो हम करते हैं वो पूरी रूपरेखा उसकी बदल जाती है और बहुत सारा विस्तार सामने आ जाता है, जबकि बात हकीकत में एक छोटी सी होती है। तो आप सभी जुड़े हैं, इसके लिए ढेर सारी तालियां। और अब मैं आपको माता पिता पर ही एक प्यारा सा भाव भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे तो कल जरूर जुड़िएगा और आज मुझे अनुमति दीजिएगा। तो राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, खुदा हाफिज। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। मात पिता सदगुरु, मात पिता गुरुदेव, मिलते ना बारंबार है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबते मंझधार है, जिसने करी सेवा वो हो जाते भव से पार है, मात पिता गुरुदेव को वंदन बारंबार है, वंदन बारंबार है। लोक और परलोक सुधर गया, लोक और परलोक सुधर गया, मत

में तो करता न काम सगाई को, माँ बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को, मत बन दास लुगाई को। खरी के ऊँ तो

उषा के वे सुन लो सताओ, लजा जो दूध मत माई को, माँ बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को, मत बन दास लुगाई को, लोक और पर लोक सुधर गया मत कर काम बुराई को, माँ बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को, मत बन दास

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। दोस्तों, जब हम हिंसा की बात करते हैं, वो हमारे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हिंसा की वजह बन जाती है और हम उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसी ही एक चीज है पितृ सत्तात्मकता, लेकिन ये पितृ सत्तात्मकता क्या है और कैसे हमारे दैनिक जीवन को, हमारे संस्कारों को प्रभावित करते हैं, आइए सुनते हुए देखते हैं इस नाटक के माध्यम से।
1: माँ, मारा तो पढ़नो है आगे, और तू मारी शादी की बात कर रही, कॉलेज को पहलो साल बीच में छुड़ावा को कह रही। माँ, कॉलेज तो कम से कम पूरो होवा दो, प्लीज मारो सपनो मत तोड़ो माँ, प्लीज।
2: देख बेटा, थारो सपनो थारा हावरा वाला पूरो करी, सारी बाता होगी है वे थन आगे पढ़वा दे, मैं थन आगे पढ़ाऊं तो दहेज खूब देनो पड़ी, और थारी दो छोटी बहन भी है वहां को भी सोचना है मारे।
3: देख बेटा, मारी माँ भी मने यही सलाह दी थी और मुँह भी थाने यही सलाह दे रही हूँ, बस कोई शिकायत मत लाइजे, ठीक है ना?

0: राजू की माँ, राजू का हारों दहेज तो खूब आयो, पर टीवी, वॉशिंग मशीन ये सब चलावा तो लाइट बिल कौन भरी, यो विचार की दो।
1: राजू का बापू थे कई चिंता करो, मैं यो सब चलावा ही नहीं देऊ तो पछे बिल भरनो ही नहीं पड़ी।
0: वाह राजू की माँ वाह, मान गयो मैं थने, थारो नाम शानी यू ही कोनी राख्यो थारा माँ बाप।
2: सुनो, मारे आगे पढ़ाई करनी है, थे केवो तो मैं आगे पढ़ू।
3: मारी माँ ने पूछे बताओ।
1: बेटा बीनणी तो घणी अच्छी है ये, पर गुंग तो घणो ओछो काढ़े, यो भी को पीर कोई नहीं है, हारो है।
3: ठीक है माँ, माँ सीता आगे पढ़वा को कह रही है।
1: पढ़न कसी मास्टर जी बन जाई, घर को काम कुन करी, थू करी गई।
4: माँ केड़ी बात करे थू, भाभी की इच्छा है पढ़वा की तो पढ़वा दे, मैं भी तो कॉलेज कर रही हूँ, पछे भाभी क्यों नहीं।
1: छोरी तू पढ़नी कोई नहीं है जो मने अतरी शिक्षा दे रही है।
5: सीता ए सीता होबर, तू घूंघट वदारा काढ़िया कर, अटे थारो हावरो है हजमी के।
2: थे केड़ी बात कर रहा, मैं सगला जाना रो अतरो ध्यान राख रू, फिर भी थाने शिकायत है मारा सु।
5: मने को नहीं, मारी माँ ने। देख सीता, अपना घर में माँ की इच्छा ले, माँ जो केवे वा पत्थरी लकीर होवे हैं, इन वास्ते अरे मारी मारो केणो माननो इस पड़ी।
4: अरे भाभी जदी देखो जदी थे ठंडो खानो ही खावो, माँ भाभी तो कई नहीं बोले, पर थू तो समझदार है, बहू भी चाहिए और बहू का साथ में भेदभाव भी।
1: बेटा केड़ी बात करे, मैं और बीनणी का साथ में भेदभाव।
4: हाँ माँ, अगर भेदभाव नहीं हो तो थू भाभी ने भी साथ में खानो खिला दी, सगला जना साथ में बैठन भोजन करा तो प्रेम बढ़े और एक दूसरा को ध्यान भी रेवे। माँ बहू और बेटी ने समान समझ, यदि घर में खुशियाँ बनी रही।
1: ठीक है ज्यादा शिक्षा मत जाग, मैं देख ले मारे आगे कई करनो है।
2: अरे रीटा तू बोल, घना दिन बाद मने याद की दी।
6: सीता मने ठा पड़ी कि मैं मौसी बनवा वाली हूँ तो मने खूब खुशी हुई। सुन हॉस्पिटल तो घी न, और सुन टीवी में कोई अच्छो प्रोग्राम देख जे ताकि बच्चा में संस्कार हव उतरे, ठीक है। वॉशिंग मशीन तो चालू की दी ना।
2: हाँ रीटा हाँ।
6: अरे सीता तू डरती डरती क्यों बोल रही, सब ठीक तो है ना।
2: रीटा मैं थारा हूँ कई छुपा, तू जो सोच रही है कोई भी चीज नहीं वेणी है, सासू माँ घना कड़क है, टीवी और वॉशिंग मशीन तो चालू भी कोनी की दी।
6: कई बात कर रही थी, आज का जमाना में टीवी नहीं देखवा दे, वॉशिंग मशीन में कपड़ा को नहीं धोबा दे, या कई बात मारा समझ में को नहीं आ रही। थने तो अंकल जी अत्रो दहेज दी दो, पछे तू काई करे अत्रा सामान को।
2: रीटा कतरो भी दहेज में सामान दी दो वे, पर हारा में वणी सामान पे बहुरो कोई अधिकार कोनी वे वे है।
6: सीता मैं तो सोच रही थी कि आज को समय बदल गयो और लोगा की सोच आधुनिक भी, पर बहु का प्रति तो आज भी वही पुरानी सोच।
2: हाँ रीटा, पर सुन मारा मम्मी पापा ने कोई बात मत कीजे, नहीं तो वे टेंशन में आ जाए। चल रखू फोन है ना।

0: माँ सीतन शक्कर आवे रही है ना, वह घबराए रही है, तो मैं बड़ी हॉस्पिटल लेन जाओगे?
1: चुप बे चोरू का गुलाम, थोड़ा चक्कर कहीं आ गया जी, ऊंचो नीचो वे गयो, यो तो चालिया करे, जा तू काम पे जा।
0: ठीक है माँ।
2: अरे राजू भाई, भिनणी क्या ने, मने खबर पड़ी कि थे पिता बनवा वाला हो।
0: भाभी ते सही हो ब्रावियो।
2: अरे मैं कई हर मानो, यो बताओ थे भिनणी को चेकअप करवायो कि नहीं, तबीयत तो ठीक है?
3: भाभी थे जानो माने, मैं कई बोल को नहीं सकू, आज भी सीता ने खूब चक्कर आ रहा है, पर माँ हॉस्पिटल जावा के वास्ते मना कर दियो, थे समझाओ माने।
2: थे कई चिंता मत करो, मैं सब देख लू, थाका घर में ही जा रही हूँ।
0: थैंक यू भाभी।
2: राम राम काकी सा, राम राम।
1: आओ भाई राधा आओ। राम राम। अरे बीनड़ी देख, अपना घरे कौन आया?
4: हाँ सासू माँ आई, पावा दो।
2: खुश रहो। अरे बीनड़ी नीचे क्यों बैठ रहा हो, थे कुर्सी पे बैठो।
1: राधा केरी बात करे, छोटा मोटा रो कायदो होवे के कोनी होवे, तू तो आशा सहयोगिनी की बगै छोटा मोटा रो कायदो ही भूल गई।
2: काकी सा आप सही कह रहा हो, पर बीनड़ी पेट से है और घर की बहू भी, ये पछे क्यों जमीन पे बैठी है? अरे बीनड़ी की जांच कराई कि नहीं?
1: देख राधा, आपरे भी टाबर व्या, एक भी दिन दवा खाने को नहीं गया, पछे बीनड़ी ने क्यों ले जानो दवा खाने?
2: काकी सा आपनो टाइम अलग हो, आपना छोरा छोरी अबे मोटा हो गया, परण गया, समय घणो बदल गयो, आजकल केड़ी केड़ी बात सुनवा में आवे, फलाना बालक के गला में नाल लपट गई, फलानी के ऑपरेशन हो गयो, ढीकड़ी के बालक गर्भ में ही खत्म हो गयो, वगैरह वगैरह।
1: तो दर्पा मत राधा।
2: दर्पावा की बात को नहीं काकी सा, आजकल एड़ो हुए रहे है। मैं आई बीनड़ी ने दवा खाने ले जावा वास्ते, पर मने लाग रही है बीनड़ी के साथ में आपे भी ले जाऊं दवा खाने, तो चलो दो ही मारा साथे।
1: चलो बीनड़ी दवा खाने चला।
5: बहुत अच्छा किया माता जी जो आप अपनी बहू को यहाँ जांच के लिए लेकर आए, गर्भावस्था में गर्भवती महिला की समय समय पे जांच बहुत जरूरी होती है, जैसे पहले 3 महीने में कम से कम एक बार जांच अवश्य कराना है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है कि नहीं, कोई कमी है या उसकी कोई ट्रीटमेंट लेनी है तो जरूरी हो जाती है। फिर अगले तिमाही में जो बीच के 3 मास होते हैं, चौथा पांचवा और छठवा, उसमें कम से कम 2 बार जरूर जांच करा लेना चाहिए, और आखिरी के तिमाही में तो हर महीने में एक बार लाके जरूर जांच करानी चाहिए महिला की, क्योंकि बच्चा उस समय बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा होता है, तो कोई उसकी तकलीफ होगी या माता को कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चे की कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाती है, इसलिए अच्छा किया जो जांच कराने लेकर आए, इसी तरह हर महीने में लेके आते जाना। साथ ही गर्भावस्था के दौरान खून की कमी हो जाती है क्योंकि बच्चे को भी खून जा रहा है माँ के शरीर से, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां मिलती है हर गर्भवती महिला को, वो लेते रहना है प्रॉपर। उसके साथ साथ खाने में भी ध्यान देना है कि हरे पत्तेदार भाजियां, फल जो आपके आसपास बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करते रहें, ताकि जच्चा और बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा मेंटेन रहे, वजन अच्छे से बढ़े, माता का भी बच्चे का भी, और हीमोग्लोबिन की भी कमी ना हो, नहीं तो खून की कमी हो जाती, क्योंकि आजकल के खान पान में पहले जैसा समय नहीं रहा कि वही सारी चीजें मिल जाएगी, आजकल खान पान में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, कितने कीटनाशक वगैरह मिलाते हैं तो पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, इसलिए पहले का समय और अभी का समय बहुत बदल गया है, इसलिए जागरूक रहना, स्वास्थ्य के विषय में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहे, अच्छा लिखाना पढ़ाना चाहे तो जरूर पढ़ाए, ताकि जितनी समझदार महिला होगी, पढ़ी लिखी महिला होगी, तो अपना स्वास्थ्य का देखभाल अच्छे से कर पाएगी। अगर आपकी बहू पढ़ना चाहती है तो उसे जरूर पढ़ाइए, क्योंकि उसको जितनी जानकारी होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, तो वो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख पाएगी, तो अपने बच्चे का भी रख पाएगी और घर बार का भी अच्छे से ख्याल रख पाएगी, तो इसलिए जरूर पढ़ाइए।
1: आज से थाने खुद को ध्यान रखनो है, डॉक्टर का अनुसार आर्यन की गोली टाइम से लेनी है, जो भी सलाह देवे वनी अनुसार थारे चालनो है, एड़ा टाइम पर तू खुद पे अकेली मत समझे, मार सब अगला थारा साथ में हाँ, ठीक है? राजू सुन, तू बीनड़ी को पूरा ध्यान रख जे।
6: देखा दोस्तों, एक सास अपनी बहू को बेटी बनाती है तो कितना बदलाव आता है, और हम ये सीखते भी है कि महिला महिला की दुश्मन नहीं, दोस्त भी बन सकती है। दोस्तों, पितृ सत्तात्मकता हमारे घर परिवार और व्यक्तिगत जीवन को बहुत ही प्रभावित करती है। पितृ सत्तात्मकता हमारी मानसिकता है और ये कैसे घरेलू हिंसा का जरिया बनता है, आइए सुनते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कंचन मलिक जी। आप यूनेस्को के द्वारा बनाए गए किताब जेंडर मैनुअल के लेखिका है। आप फैकल्टी फेलो है यूनेस्को, चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया के। आप प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। तो आइए सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट कंचन जी के द्वारा।
7: तो पेट्रियार्की या पितृसत्ता एक प्रकार की मानसिकता है, इट्स एन आइडियोलॉजी, और एक प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर है, मतलब हमारी सोसाइटी का एक प्रकार का बिलीफ सिस्टम समझ लीजिए वो है, जिसमें जो मेन है उनको एक प्रकार से विमेन से सुपीरियर माना जाता है, तो और विमेन को एक तरह से सबॉर्डिनेट माना जाता है। सो ये जो सोच है, इस सोच को हम पेट्रियार्की कहते हैं। ये सोच कहाँ से आती है, इसका जो थोड़ा कनेक्शन हम बना सकते हैं वो इस बात से बना सकते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, हम यू नो एक सोशल पैकेज सा होता है जो उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं कि अब ये लड़का है तो ये सब करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, ये पहनेगा, और लड़की हुई है तो ये इस प्रकार रहेगी, इस प्रकार से इसको बड़ा करेंगे, इसको ये सब सिखाएंगे। सो कुछ रोल्स और कुछ रूल्स बना देते हैं हम उनके लिए। तो वहां तक तो कुछ चलता है, ठीक है, यू नो कुछ चीजें इसलिए भी बनाई जाती हैं क्योंकि वो यू नो सोशली कल्चरली एक्सेप्टेबल होती हैं या ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ है कि जो हम रोल उनको देते हैं, जैसे कि घर संभालने का काम है या केयर गिवर का काम है, तो वो जो हम जैसे औरतों को देते हैं और जो आदमी हैं या मर्द हैं उनको जो हम काम देते हैं कि वो जो हैं वो घर के लिए कमा कर लाएंगे, और तो वो जो रहता है उसको हम एक बड़ा काम समझने लग जाते हैं और इसको एक सबॉर्डिनेट काम समझने लग जाते हैं। तो हम एक हायरार्की क्रिएट कर देते हैं काम की भी। सो उसके होते हुए समवेयर जो पावर है वो डिसीजन मेकिंग की या किसको क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज जो हैं वो आदमियों के हाथ में चले जाते हैं। तो उससे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पर जो मेन हैं दे हैव बिकम यू नो दे होल्ड अ हायर स्टेटस इन सोसाइटी, अ हायर सोशल पोजीशन है उनकी सोसाइटी में विमेन के कंपैरिजन में। उस चीज को हम पेट्रियार्की कहते हैं। पेट्रियार्की का इशू है, ये सोच का है कि भाई कौन किसको दबा रहा है और कौन किसको अपना लाइफ में डिसीजन और चॉइस लेने की छूट नहीं दे रहा है। तो जैसे आपने कहा, अगर सास वो नहीं करने दे रही है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आया कहाँ से है ये देखने की बात है। आया सारा पेट्रियार्कल वैल्यूज से है, पितृसत्ता की वैल्यूज से है, जहां पे एक्सपेक्टेशन ये होती है आपसे कि आप वो करें जो आपसे जो रूल बने हुए हैं, जो रोल बने हुए।
6: दोस्तों, मैं तो कंचन जी से सहमत हूँ। घर में नियम भले कोई भी बनाए लेकिन उसको लागू करने में महिलाएं कसर नहीं छोड़ती है। अगर हम पितृसत्तात्मकता में बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलते समय के साथ हम एक दूसरे को समझे और सहयोग भी करें, तभी हम कह सकते हैं सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं एक गीत आरजे उषा के द्वारा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर।

नकारात्मकता जिस घर में होती है उस घर की हालत क्या होती है, आइए गीत के माध्यम से जानेंगे।

0: 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। दोस्तों, संगीत का सफर जब शुरू होता है ना तो खत्म नहीं होता। वैसे कोई भी सफर हो तो लगता है अरे मंजिल कब आएगी इंतजार रहता है, लेकिन संगीत का सफर अपने आप में मंजिल बन जाता है, क्योंकि इतनी खुशी मिलती है, इतना कुछ मिलता है कि पूरी दुनिया भूल जाती है कई बार। अगर हम उदास होते हैं तो उदास मन को थोड़ा दिलासा मिल जाता है, खुश होते हैं तो खुशी दोगुनी चौगुनी हो जाती है। ऐसे ही गाने हर ओकेजन के लिए बने हैं, चाहे वो सिनेमा के हों, बॉलीवुड के, टॉलीवुड के या हॉलीवुड के हों, या फिर हमारा लोक संगीत हो। और लोक संगीत तो सच में दोस्तों दिल के तार छू जाता है। आपके एरिया का भी कोई ना कोई संगीत ऐसा ज़रूर होगा जो आपके दिल से निकलता होगा, है ना दोस्तों? आपकी यादें, आपकी संस्कृति सभी से जुड़ा होगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे आज की गेस्ट, जिनका नाम है सरोज देवी जी, जो कि पानीपत से आए हैं और बचपन से उन्हें गाने का शौक है, खासतौर से लोक संगीत उनके अति प्रिय है और बहुत सुंदर वो गीत की रचना भी करती हैं और बुलंद उनकी आवाज है। तो आइए उनसे आपको मुखातिब करवाते हैं, यानी मिलवाते हैं। सरोज जी, आपका रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी दीदी,
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छे।
0: अच्छे हैं?
1: बहुत अच्छे।
0: बहुत अच्छे हैं सरोज जी। वैसे तो ये गाने का ही प्रोग्राम है तो हम आपसे गीत तो सुनेंगे ही, लेकिन पहले जो हमारे श्रोता मित्र, क्योंकि आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कुछ अपने बारे में आप बताएं, थोड़ा अपना परिचय दें आप।
1: मेरा नाम सरोज है जी, मैं पानीपत से, प्रकाश नगर से, और पहले मैं गांव में रहती थी और जैसे स्कूल से ही मेरे गाने को शौक था तो वहीं से मेरी शुरुआत गाने की हुई थी।
0: अच्छा।
1: वहीं फिर जो सर थे वो कहते थे भाई माँ आगे ले जाना चाहूँ, तो घर वाले थोड़े से नहीं जाने देते थे उस टाइम, मेरे को सहमत नहीं थे वो इस चीज से भाई लड़की गाए कहीं, इसलिए मेरी ये चीज रुक गई वहीं पे। तो फिर मैंने अपनी शुरुआत जारी रखी, मैंने गाना नहीं छोड़ा।
0: गाना नहीं छोड़ा।
1: हाँ।
0: आप कितने बड़े थे तब जब आपको स्कूल में आप थे, गाना गाते थे?
1: उस टाइम तो दीदी मैं 8-9 साल।
0: 8-9 साल के थे। तो आपको बुरा तो लगा होगा कि गाने के लिए आगे परमिशन नहीं मिली?
1: दीदी बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। ये एक बार नहीं हुआ जी दीदी, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा। जो मैं आगे बढ़ना चाहती थी ना, उसी टाइम मतलब रोक दिया जाता था, या भगवान की मर्जी लाओ या किसी की भी लाओ, क्योंकि मेरे को योगा है ना, मैं योगा करती थी, उसमें भी मेरी स्वरूप मैं फर्स्ट आई हुआ स्कूल में, उस टाइम में 13 साल की थी।
0: अच्छा।
1: तो उसी 13 साल के बीच में फिर मैं योगा में फिर गई, तो मेरी 12 जिला में वहाँ हिसार में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ, तो वहाँ मेरिट आई, लेकिन वहाँ भी मेरे को फिर गोवा के लिए किया तैयार तो मेरे को रोक दिया गया,
0: लड़कियों को नहीं,
1: लड़कियों को नहीं जाना, बस इसी वजह से फिर रुकता ही चला गया।
0: लड़कों को मिलती थी परमिशन?
1: परमिशन लड़कों को मिलती थी। मेरे को सब शौक था, गाड़ी चलाना, स्कूटी चलाना, हर चीज का शौक था, लेकिन काम सारे आते हैं, खेत का भी करते थे, जैसे जमींदारा है 18-20 किले ज्यादा भी मतलब 80 किले की भी खेती करते थे, काम भी सारा आता, लेकिन और सारा प्यार मिला, प्यार में कोई कमी नहीं थी माँ बाप का, लेकिन बस यहीं पर रुक जाती थी,
0: बाहर नहीं जाने,
1: बाहर नहीं जाने दिया। हम 4 बहने हैं, इसलिए किसी को लगता था भाई ऐसे भेजेगा तो माता पिता देखो, गाँव में तो होती है रूढ़िवादी समाज होता, तो वो बोलते थे भाई लड़की को आगे भेज रहे पैसे के लिए, तो वहीं से बाप फिर चुप हो जाता था भाई बेटे नहीं जाना, उसका मन था आगे लेकिन नहीं जाना।
0: आपके माता पिता का भी मन था?
1: बहुत था दीदी, बहुत मन था मेरे बाप का, वो तो ये चाहता था कि मेरी बेटी पता नहीं क्या करे, ये सब बोलता था, लेकिन वो मजबूर था समाज के।
0: समाज। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि समाज कुछ भी सोचे हम करेंगे या?
1: दीदी जो मतलब जो बाप ने कहा ना वही स्वीकार कर लिया,
0: स्वीकार कर लिया।
1: वो सोचती थी मैं, मेरा बाप ही जैसे भगवान है, क्योंकि वो मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकता, बहुत प्यार कर।
0: उनकी तो भावना भी थी और आपको?
1: बहुत भावना थी दीदी, उसको तो मैं ऐसे बोलती थी मेरी शादी नहीं करनी, तो कहता था बेटी ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो मैं तुम्हें कहीं भेज दूं, उसको ये पता होता ना ब्रह्मा कुमारी में शादी नहीं होती तो मेरे को यहीं भेज देते,
0: मतलब पूरा सपोर्ट करते थे,
1: पूरा सपोर्ट करते थे, हर चीज का सपोर्ट करते थे, कहते थे वे तो गाड़ी चला स्कूटी चला, तो भाई इस बात में ना जैसे गांव के लड़के होते हैं सोचो भाई इसकी बहन ये कर रही हो कर रही हो, भाई थोड़ा सा छियादत का है, बहुत प्यार प्रेम है बड़े भाइयों में, लेकिन उसकी बात भी देख कर मैं दूर हट जाती थी, दिल था मेरा हर चीज करने का, मेरे को ये मतलब जज्बा भी था मैं कर सकूं हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई मैं अपनी खुशी के लिए इनको नहीं परेशान कर सकती।
0: नहीं, आपका जज्बा ही है सरोजी जो गाने को आपने छोड़ा नहीं।
1: हाँ ये चीज मैंने दीदी अकेले में, मैं जैसे रसोई में खाना बनाती हूँ तो गुनगुनाती रहती हूँ, डांस करती रहती हूँ। देखो इस पे तो मेरी कोई रोक नहीं थी, ये तो मैं घर में भी करती थी, घर में कोई रोक नहीं थी, घर में तो गा कोई रोका नहीं जाता था, बल्कि माँ सुनती है कहेगी बेटी यू मेरे को सुना ये चीज, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, बस फिर वो यहीं तक रहेगी, आगे बढ़ने नहीं पाए।
0: लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल, और अब मुझे लगता है जो सुनने वाले होंगे उनको भी हिम्मत मिलेगी, क्योंकि ये जो आपकी कहानी है ये बहुत सी महिलाओं की कहानी है ना, तो कई बार मौका नहीं मिलता, दुख होता है, लेकिन फिर भी आपने आपकी हिम्मत से प्रेरणा जरूर मिलेगी और लोगों को भी। सरोज जी मैं चाहूंगी कोई एक आपका पसंदीदा गाना आप हमें गा के सुनाए आज।
1: ठीक है दीदी
0: जी।
1: ओम शांति।

पीपल के पेड़ लगाए, बड़ पीपल के पेड़ लगाए, आम्बर जामण उसमें उगाए, आम्बर जामण उसमें उग

0: सार।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं, अहम कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। और दोस्तों, एक बहुत सुंदर सा आपने गीत सुना सरोज जी की आवाज में। सरोज जी, ये गीत आपने लिखा है, आपने बनाया है?
0: हाँ दीदी,
1: है ना? क्या क्या गीत है ये? क्या आपने सोच के से बनाया? क्या मन में आया आपके?
0: ये दीदी मैं बस बैठे बैठे गुनगुना रही थी और मेरे को भगवान ने मेरे को टच किया तो ये शब्द निकले मेरे मुख से।
1: अच्छा,
0: तो ये गुनगुनाते गुनाते ये गीत बन गया।
1: क्या बात है।
0: जैसे अंदर से संगीत तो निकलता ही, फिर शब्दों से संगीत बनता है।
1: सही बात है, शब्दों से संगीत बनता और भावना ईश्वर से।
0: ईश्वर के लिए मतलब कुछ गाना चाहती थी तो वे शब्द निकले, उसका संगीत बन गया।
1: क्या बात है। अच्छा सरोचि, जैसा आपको गाने से बहुत प्यार है,
0: जी
1: तो
0: दीदी।
1: आप क्या घर में रोज रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या सुनते हैं गाने?
0: दीदी मैं जो गाना गाती हूँ मतलब दिल से गाती हूँ, मुझे रियाज करने की रिहर्सल की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब
1: दिल
0: देखती
1: से
0: हूँ गा
1: गाते।
0: देती हूँ।
1: बचपन से भी आप ऐसे गाते थे?
0: हाँ, बचपन से ही, जैसे माँ है ना दूध बिलोती थी ना, पहले गांव में दूध बिलोते बिलोते तो भजन गाते थे
1: अच्छा।
0: लोकगीत भी गाते थे, भजन भी गाते थे। तो पहले आटा पीसती थी, तो मेरी माँ ऐसे करती थी, तो उसके पास बैठ जाती थी छोटी सी,
1: अच्छा,
0: तो ऐसे ही बस मेरे को उसी से मतलब
1: गाना आ गया।
0: शुरुआत होगी। हाँ, मन आया मेरे को, मैं गाने लग गई बस।
1: अच्छा, तो आपकी माँ कोई गीत गाते थे, कोई याद है आपको बचपन में जो आप सुनते थे? याद
0: जी
1: है?
0: जी
1: तो क्या आप हमें सुनाएंगे कोई ऐसा गीत जो आपको
0: हाँ जी
1: याद हो?
0: जी दीदी,
1: जरूर। हाँ जी,
0: मैं आपको एक लोकगीत सुनाना चाहती हूँ, सुनिए।

0: क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है एक तो पहली बार ये गीत बहुत सुंदर है, माँ को डेडिकेटेड है। माँ का कर्ज सच में चुकाया नहीं जा सकता कभी,
1: जी दीदी,
0: कभी जब
1: कभी
0: चुकाया
1: नहीं
0: नहीं
1: चुका,
0: जा
1: कोई नहीं चुका
0: सकता,
1: सकता।
0: कोई नहीं चुका सकता। और आपने गाया बहुत अच्छा, ऐसा बुलंद आवाज है आपकी एकदम, और भावना से भरी आवाज है आपकी एकदम। ये गीत क्यों चुना आपने, मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
1: दीदी मेरी माँ है ना,
0: हाँ
1: मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरी माँ ने कदे मतलब एक अंगुली लग नहीं लगाई आज तक हमारे को, जैसे धमका या कुछ। मतलब मेरी माँ इतनी शीतल है, तो उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहती।
0: हाँ
1: तो माँ से ऊपर मैंने ऐसा लगता है, मतलब भगवान क्या कहता है कि माँ की भक्ति करने से भगवान मिल जाते हैं, ठीक है ना। भगवान की भक्ति करने से माँ नहीं मिल सकती, ये चीज मेरे को अंदर बैठी है कभी से। देखो माँ की भक्ति करेंगे तो भगवान मिल जाते हैं, अगर माँ चली गई ना, जब कितनी भक्ति कर लिया किसी की, वो माँ वापिस नहीं आओगे।
0: माँ की सेवा।
1: माँ की सेवा,
0: आजकल हम देखते हैं सरोज जी, बहुत परिवारों में ऐसा होता है कि माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, तो कई बार उनके लिए ना समय निकालते हैं, बिजी हो जाते हैं जॉब में, परिवार में, दोस्तों में,
1: जी
0: अलग
1: दी
0: अलग चीज़ों में। और कई बार तो उनसे हमारा व्यवहार भी बदल जाता है,
1: जी दी
0: कई बार उनकी सेवा करना बोझ लगने लगता है, या लगता है हमने तो अपना कर्तव्य कह दिया, कर दिया। और कई बच्चे ऐसा भी कह देते हैं कि ऐसा आपने किया क्या है हमारे लिए।
1: दीदी, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि हमारे घर में ऐसा नहीं है। जो मेरा भाई है ना, उसको मेरी माँ तो ऐसे बोलती है कि मेरा बेटा एक मतलब अनमोल चीज है। जैसे माँ का अनमोल लिया ना शब्द, मेरी माँ भी उसको ऐसे बोलती है, मेरा बेटा एक अनमोल है। वो है ना, जिस टाइम भी घर पाओगा ना, या
0: बंद हो गया। हाँ
1: मतलब वो बाहर जाता है, जैसे पहले तो सरपंच था तो उसका आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो किसी टाइम आओ, कितनी ही देर क्यों नहीं जाओ, लेकिन मेरी माँ को बोले बिना वो ऊपर नहीं जा सकता। वो
0: अच्छा
1: सोएगा नहीं,
0: अच्छा
1: इतना वो सोए नहीं गा। लेखो देखो, मैंने तो अपने घर में ऐसा ही देखा, मतलब मैंने एक माँ बेटे का प्यार ऐसा कहीं नहीं देखा जो मैंने अपने घर में देखा।
0: अपने घर में देखा
1: हाँ
0: आपने।
1: बहुत अच्छा
0: माँ की सेवा करने से क्या मिलता है?
1: दीदी, माँ की सेवा करने से सब कुछ मिलता है, सब कुछ। उसके लिए शब्द नहीं है,
0: छपनी है।
1: शब्द नहीं है। वो तो एक सेवा करने वाला नो समझो, जो सेवा करेगा ना उसको, फिर माँ की सेवा करने के बाद कुछ रहता ही नहीं इच्छा
0: इच्छा ही
1: कि
0: नहीं
1: और
0: रहती
1: किसी की
0: है।
1: सेवा करें। और वो मैंने अपने घर में खुद देखा
0: महसूस किया आपने।
1: महसूस। हाँ मैंने अपने भाई से कोई शिकायत नहीं है भाई, माँ की सेवा नहीं हो रही घर में। वो एक चीज बोलेगी ना, वो दो लगा। और ऐसी ही भाभी घर में आ गई, मतलब घर सब रह गए, बहुत प्यार करती हर, मतलब आने वाले से भी, कोई घर चला जाता है मेहमान आते हैं तो वो कभी ये नहीं देखती कि भाई तेरे को ये काम करना पड़ेगा, भाई ये इतने आए हैं, नहीं। भावना से, ऐसे भावना से भाव भी बोर हो जाती है, ऐसी भाभी है।
0: कितने लक की भी बात है कि ऐसे
1: हाँ,
0: परिवार
1: ऐसा
0: है
1: परिवार
0: ना,
1: नहीं मिल, ऐसी भाभी नहीं मिलती।
0: ऐसी भाभी नहीं मिल
1: मैं
0: रही।
1: सुनती हूँ गाँव में, हमारे ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे भाई भाभी जैसा कोई है ही नहीं,
0: अच्छा।
1: मतलब पूरा गांव में। हमारी चाची ताई मेरी माँ को ये कहती है, तने एक जम्या, एक जण्या, मतलब जण्या हमारी भाषा में जण्या कहते हैं ना, एक जम्या, तो तने नो समझ ले दसा के बरोबर जान दिया ये,
0: अच्छा।
1: जो तेरी इतनी करता है।
0: एक 10 के बराबर है।
1: हाँ, 1:10 के बराबर है।
0: क्या बात है। सच में जो दुआएं माता पिता
1: हाँ
0: की बुजुर्गों की सेवा से मिलती हैं,
1: दीदी, हमारे घर
0: किसी
1: में
0: और
1: ना,
0: चीज से
1: मैं
0: नहीं मिल
1: आपको
0: सकती
1: एक छोटी
0: कभी।
1: सी बात बताऊं, हमारे घर में साइकिल भी नहीं थी
0: अच्छा।
1: कदे, तो वो तो इस वजह से नहीं थी क्योंकि हमारे कोई चलाने वाला नहीं था, पापा को टाइम ही नहीं रहता था, तो उस साइकिल भी नहीं थी ना। तो बाबा मैंने को, मेरा भाई इतना बागवान, इतनी बाग वाली वाली लक्ष्मी आई हमारे घर में, हमारा सब कुछ हो गया, सब कुछ, दो दो गाड़ी, तो पांच पांच मोटरसाइकिल, तो मतलब तीन तीन ट्रैक्टर। मैं ये
0: कोई
1: बताऊं
0: कमी
1: कि
0: नहीं।
1: किसी चीज की कमी ही नहीं रही। घर बहुत बढ़िया, हमारा बहुत टूटा फूटा सा घर था, मैं ऐसे बोलती थी हमारा घर पता नहीं कब बनेगा, आज भगवान ने उस भाई की वजह, भाभी की वजह, हमारा सब कुछ दे दिया, भगवान ने इज्जत भी दे दी। देखो गांव का एक राजा बनता है, जब भाई कोई सरपंच बनता है तो राजा ही बनता है, उसने कभी किसी की बददुआ नहीं ली,
0: मदद की ना उन्होंने
1: मदद की लोगों
0: सबकी।
1: की। वो कभी नू नहीं देखता भी तेरे घर में, देखो मेरी थोड़ी आदत थी, बल्कि मैं थोड़ी कह देती थी तू सब कुछ नुए लुटा देगा, मैं थोड़ी अभी गुस्सा हो जाती हूँ उससे, लेकिन मेरे को है ना दिल से बहुत प्यार है अपने भाई से, मतलब मैं कहूँ ना जान जिगर, जो माँ दूध पिलाना है, लेकिन मैंने भी अपने भाई से इतना ही प्रेम है।
0: इतना ही प्यार है।
1: हाँ मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ दीदी,
0: आपका बड़ा भाई है कि छोटा?
1: मेरा छोटा भाई है मेरे से।
0: कितना छोटा है?
1: मेरे से 5-6 साल छोटा उससे।
0: 5-6 साल छोटे हैं। नहीं,
1: लेकिन भाई के वो बाप का भी फर्ज निभा रहा है और माँ का भी फर्ज निभाता। ऐसा भाई संसार में देखो, मैं ये तो नहीं कहती होगा, नहीं होगा किसी का, लेकिन उस जैसा मैंने नहीं देखा।
0: देखा नहीं आप?
1: क्योंकि मैंने कम से कम हमारे गांव की कम से कम 20 लड़कियों ने ऐसा कहा है कि तेरे भाई जैसा कोई नहीं है। औरों को भी करता है, और बहन भी कोई मिल जाओ उसको ये लगता कि मेरी बहन,
0: मेरी बहन है।
1: अब जैसे मैं
0: आपको, उन्होंने दुआएं हाँ, भी बहुत कमाई
1: हाँ, तो मैं ऐसे आपको बोल दूं दीदी हमारे घर चलो, तो कई बार सोचना पड़ता है ना कि अपने घर ले जाने के लिए वो आपको भी अच्छे से बोलेंगे कि नहीं। लेकिन मेरे को कोई डर नहीं, आप अकेले भी जाओगे ना, अरे भाई ये मतलब ये भी नहीं कहना पड़ता कि भाई मैं वहां से आई हूँ, तो मेरे को ये पता है मेरे भाभी भाई बहुत प्यार देंगे। वो ये भी नहीं पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, बस आए हैं,
0: बस आए हैं उतना भाई ही।
1: वो ये कहते हैं है। कि हमारे ऊपर है ना, जो मेहमान अपने घर आता है ना वो एहसान करता है। आजकल किसी को आने जाने का टाइम नहीं है, जो हमारे घर आते हैं ना रातें भी बहुत है। ऐसा कोई दिन
0: इतना प्यार मिलेगा तो कौन नहीं आना चाहेगा।
1: ऐसा कोई दिन नहीं है। देखो हमारे घर में ना जो छुट्टियां पड़ती थी ना उस टाइम 22-24 बच्चे आते थे।
0: अच्छा,
1: तो देखो उनको खाना पीना बनाने में मजा भी आता था, लेकिन जब ज्यादा हो जाता था तो
0: सारा काम हो जाता
1: है बहुत। हम उसको ना मतलब भाभी कभी उसने ऐसे नाक नहीं चढ़ाया भी इतने बच्चे हैं। हमें सारी बहनों के 11 बच्चे सब
0: सब आ जाते होंगे साथ,
1: तो उसके बहन भाई सब उसकी मतलब इतना प्यार वहां मिलता था। मेरी माँ भी ऐसे थी, दोनों मतलब सास बहू बनाती रहती थी, खिलाती रहती थी। आप देखो 24 बच्चे रखने, तो क्या आज के टाइम में तो 2 बच्चे भी रखने में
0: बहुत काम होता है उसमें,
1: है ना। और मेरे बच्चे तो दोनों वहीं पढ़े, उन्हीं ने पाले हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ अब ये शादी हुई है ना, जब आया 3 महीने पहले।
0: अच्छा,
1: बस मेरे बच्चे दोनों ने।
0: उनको भी कितना प्यार होगा अपने मामा।
1: वो छोटा लड़का तो ऐसे बोलता था, मामा नू निकाह दे ना, आए सागरी आ जा सो जा, नुका मैंने नींद ही नहीं आती थी।
0: अच्छा,
1: उसके बगैर नींद ही नहीं आती थी।
0: हाँ।
1: दीदी उनका खाना मतलब भाभी है ना, 4-4 मैस दूध देती थी हमारे घर में। भाभी ने कभी यही नहीं कहा कि भाई क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, मतलब उसने कभी देखा ही नहीं।
0: बड़ा दिल ना।
1: हाँ, बड़े दिल वाले, फरोख दिल।
0: क्या बात है। तो उन लोगों को भी गाने का शौक है
1: दीदी?
0: किसी को
1: मतलब
0: या आप गा गा के सुनाते हैं सबको?
1: वो सुनती है मेरे गाने, मेरी माँ को बहुत शौक है दीदी।
0: आपकी माँ कौन सा गाना सुनना पसंद करती है? कोई और गीत है ऐसा जो आपकी माँ को पसंद है आपको भी पसंद है? कोई ऐसा गीत, कोई लोक गीत, कोई भजन जो हमारी

0: सर अच्छे दी ऑप्शन.
1: क्या बात क्या बात क्या बात, फिर से आपकी दमदार आवाज में बहुत ही कमाल का गीत आपने सुनाया सरोज जी, बहुत मजा आया. तो एक बार थोड़ा मैं श्रोताओं के लिए बताएंगे उस गाने का मतलब थोड़ा आप समझाएंगे.
0: हाँ दीदी जी. जैसे मैं लौकिक में कैसे भी आप भी गाते भी हैं अच्छे गाने भी बुरे भी, बुरे शब्द भी बोल देते हैं, जैसे भी लौकिक में जिस टाइम आप ज्ञान में नहीं होते तो वहां पर आप सारे ढाल की बात कर लेते हैं भाई अच्छी बुरी. लेकिन भगवान तो ये कह रहा है ना भाई तुम अपना वेस्ट ना करो समय, भाई भगवान की बातें करो भगवान के भजन करो. तो इसलिए इसमें ये कह रही है कि मैं वधि करण तक बचगी, मैंने कोई बुरा कर्म करण तक बचगी मैं.
1: अच्छा.
0: वधि है ना ये बुरा अच्छा. कर्म करण तक बचगी या ऐसी माया कोई भगवान ने रच दी जो मैं भगवान का सिमरण करने लगी.
1: क्या बात, तो ये आपकी माता जी को बहुत पसंद है.
0: हाँ दीदी.
1: अच्छा.
0: मेरी माँ सुनती है बार बार.
1: अच्छा क्या बात है, और सच में बहुत गहरी भी बात है.
0: हाँ,
1: कि वो समय कहते हैं ना जो समय की कीमत नहीं समझता फिर समय उसकी कीमत भी
0: दीदी. फिर ये जैसे अपन पता नहीं है ना इबे दुनिया में भी पता नहीं है कि भगवान धरा पर आ चुके हैं, तो उसमें यही तो कहते हैं ना वो परम धाम से जो ज्योति उतरी ना, लेकिन उसका किसी ने पता नहीं चल रहा, लौकिक में किसी ने पता नहीं चल रहा, लेकिन प्यासे बहुत हैं भगवान मिलन के, प्यासे इतने हैं कि एकदम भाग लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा इस चीज का भी ज्योति की चीज है. वे तो भगवान का रूप है ना ते हैं, लेकिन उसको असली चीज का पता नहीं है. आत्मा और परमात्मा के ज्ञान उस चीज में नहीं है,
1: नहीं है.
0: जो हम लौकिक गीत गाते हैं उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है.

0: लेकिन जब मैं लोक में गाती थी तो मुझे भी नहीं पता था क्या चीज है भाई, गाए जाते थे बस, सब गाते हैं, मैं भी गा,
1: मीनिंग नहीं समझते,
0: मीनिंग नहीं पता था, हाँ मीनिंग का नहीं पता था उसमें। अब ये शब्द का अर्थ का पता चल गया इसमें, पर ये क्या शब्द है।
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे सरू जी, जैसे आपने कहा कि भगवान का स्मरण करना, समय का सही इस्तेमाल करना, आपकी दिनचर्या क्या होती है, थोड़ा अपने बारे में बताएं।
0: दीदी जैसे मैं सुबह 3 बजे भी उठ जाती हूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ 3 बजे उठ कर 1 घंटा योग करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ और भगवान से शक्ति लेती हूँ। तो ऐसे ही भी भगवान मुझे शक्ति दो, जैसे भी फिर जो मैं सुबह सुबह उठ कर ना अपने पृथ्वी को भी, क्योंकि जो हम धरती माँ को ऊपर पैर रखते हैं उसको भी पहले चुचकारा जाता है, हे धरती माँ देखो मैं तेरे ऊपर इतना वजन डाल रही हूँ, ऐसे सब कुछ दे रही है धरती माँ, अपने खाने को भी दे रही है, चलने को भी दे रही है, पीने को भी दे रही है, प्रकृति पांचों तत्व प्रकृति के, तो उनको भी सकाश देती हूँ।
1: ओके, सकाश माना क्या?
0: सकाश माना मतलब उनसे जैसे हम अपने बातें करते हैं, जैसे मैं आपसे बातें करती हूँ, उनसे प्यार से बातें करते हैं, हे धरती माँ आपने मेरे को इतना कुछ दिया, तेरा शुक्रिया, उसका शुक्रिया करते हैं,
1: शुक्रिया
0: है ना। जैसे जल है, हे जल देवता आपने मुझे मेरी प्यास बुझाई, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, है ना। ऐसे वायु, जैसे हवा चल रही है, हवा नहीं चलेगी तो आप देखो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो जैसे हवा है, हे वायुदेव मैं तेरा शुक्रिया करती हूँ, है ना। तो ऐसे अग्निदेव जैसे खाना बनाते हैं तो उसको अग्निदेव को भी पहले नमस्कार करो, अग्निदेव को
1: शुक्रिया करो,
0: शुक्रिया शुक्रिया करो, हे अग्निदेव जैसे आप देखो मेरे को खाना पकवा रहे हो तो आपका मैं शुक्रिया करती हूँ अग्नि का। सूर्यदेव है, हे सूर्यदेव जैसे सुबह सूर्यदेव निकलते हैं तो उनको शुक्रिया करते हैं, हे सूर्यदेव देखो कहीं भी आप है ना, जो रोशनी है, जो सूर्य की रोशनी जा सकता है ना वहां पर वैसे नहीं जा सकती, तो सूर्य की रोशनी जहां जा भी भगवान को ये पता है कि भी वहां वहां उसको जरूरत है, तो उससे उसका शुक्रिया करते हैं,
1: शुक्रिया करते हैं आप,
0: है ना।
1: बहुत अच्छी बात है ये तो। शुक्रिया करना कितना जरूरी है तत्वों का,
0: क्योंकि
1: जो हमें
0: वायुमंडल है ना,
1: प्रकृति
0: उससे वायुमंडल अच्छा होता है, जब हम इन चीजों का शुक्रिया करके और फिर अपने काम में लग जाते हैं ना, तो उसमें फिर भगवान का स्मरण रहता है, अच्छा लगता है, सारा दिन अच्छा लगेगा, जिस
1: खुशी
0: दिन
1: रहती है,
0: खुशी रहती है मन में, जिस दिन आप ये नहीं करेंगे ना उस दिन ऐसा लगेगा कुछ खोया खोया सा,
1: कुछ खाली है,
0: हाँ जो खाली है आज कुछ। कई बार हो जाता दीदी, कई बार है ना जैसे कोई कुछ बात हो जाए तो उसमें भूल भी जाते हैं एक आधी बार, तो जिस दिन भूल गए ना तो फिर उस दिन सारा दिन मतलब खाली खाली
1: खाली खाली, खाली लगता
0: हाँ,
1: रहता है,
0: वो अच्छा नहीं लगेगा
1: अच्छा
0: उस
1: नहीं
0: दिन।
1: लगता। अच्छा, कभी कोई ऐसा गीत है आपके पास रुचि, जो आपको लगता है कि मन अच्छा ना भी हो लेकिन वो गा के या सुन के बहुत अच्छा लगने लगता है,
0: हाँ दीदी
1: कोई ऐसा है?
0: जैसे दीदी मतलब कभी बार है ना, कभी अपने पास ना कठिनाई आ जाती है और उसमें फिर आप उस सब चीज को बोल के अरे उसमें अपने मगन हो जाते हैं। मैं आपको वो गीत सुना
1: जरूर जरूर, मैं सुनना चाहती हूँ ऐसा गीत।

पहुंच गई है मनवाज सुनी मुरली की, ए साबण छोड़ी सोटी छोड़ी ए साड़ी छोड़ी तन की, ऐसी लागी ये ला।

0: बार दीदी जब मैं मतलब कभी परेशान हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ किसी चीज से, मतलब कोई भी घर की हलचल से, तो मैं सब कुछ बाबा पर छोड़ देती हूँ। तो फिर मैं ये गीत दिल से गाती हूँ।
1: दिल से गाते हैं तो फिर आपको कैसा लगता है गाने के बाद?
0: मेरे को गाने के बाद एहसास ही नहीं होता उस दुख का।
1: अच्छा,
0: ऐसा हो जाती हूँ मैं, फ्री होगी, फ्री माइंड।
1: क्या बात है, मतलब ईश्वर की शक्ति और संगीत की शक्ति साथ में आ गई ना जैसे। और वैसे संगीत को साधना कहा भी जाता है।
0: संगीत साधना भी है और संगीत से जो बोल निकलते हैं ना, वो भगवान के मन के तार मन से जुड़ जाते हैं, है ना। उसके तार जुड़ जाते हैं भगवान के साथ। जब तक तार नहीं जुड़ेगा ना भगवान के साथ, जब तक संगीत का कोई मतलब नहीं, उसका रोम रोम उसमें
1: समा जाए।
0: गाना भी एक सागर है, इसमें कितना ही डूबता चले जाओ, सागर गहराई में चले जाओ, उसका पार ही नहीं मिलेगा। ऐसा संगीत एक ऐसी दुनिया,
1: ऐसी दुनिया है। तो आप अपने बच्चों को कभी कहते हैं गाना गाओ तुम भी?
0: हाँ दीदी, मेरा बच्चा, बड़ा बच्चा गाता है, बड़ा लड़का बहुत अच्छा गाता है।
1: अच्छा,
0: एक बार की बात है, अभी किसी ने उसको बोला, भाई आधा घंटा मैं और तेरे को एक गाना बना के देना है, मतलब शिवरात्रि पे कावड़ लेने जा रहे थे ना, किसी ने बोला भाई गणे नहीं तो चार लाइन तो दे ही दे, कोई आधा घंटा में। तो उसने आधा घंटा बोला था ना, उसने 10 मिनट में ही पूरी चार लाइन दे दी उसको।
1: अच्छा,
0: लेकिन उसकी मुझे याद नहीं है क्या।
1: हाँ कोई बात नहीं, लेकिन देखिए कमाल है आपकी, जो संगीत से आपकी विरासत आपको मिली वो आपने भी आगे फॉरवर्ड की, उनको एंकरेज किया,
0: उसको भी दीदी, है ना। जैसे वो है ना, यहाँ पे हमारा पांडु भंडारा धाम है, वहाँ पे मेरा भाई है ना आश्रम है उसका, उसको सब जानते भी, चंद्रानंद जी महाराज की, मतलब वहाँ पर धर्मशाला है। पहले हमारा भाई बड़ा था सूर्यानंद, और वो जो दूसरा भाई है ना, वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उसके पास। तो उस भाई के पास मैंने छोड़ दिया था बड़े लड़के को,
1: अच्छा,
0: भाई शास्त्री पढ़ने के लिए। तो जो भाई है ना, ये पसंद नहीं करता फिर, मतलब पढ़ताई करने, तो ये उसको वापिस ले आता था, मैं छोड़ के आती थी वापिस ले आता था। तो उसको श्लोक सारे कंठ हो गए थे, बहुत अच्छे श्लोक बोलता था। तो उसके बाद फिर जैसे उसको है ना गाना गा रहा था वो उस भाई के ऊपर, मतलब मेरे भाई का नाम चंद्रानंद है ना, तो उस पे ये गाना बोल रहा था, मैं तो चंद्रानंद का प्यारा मुझे कौन मार दे, जैसे आप शिव बाबा का बोलते हैं। तो उसमें उसने बहुत अच्छा गाना बनाया था। तो किसी ने देख लिया, कोई मतलब सेठ था बाहर से आ रहा था, और उसको कोई होगा ये चीज, उसकी चैनल चलता हो या भाई पता नहीं, वो वैसे उन्हें गोद में उठा लिया था उसको।
1: अच्छा,
0: तो कह रहा था इसको मैं है ना भाई, इसको संगीत में लेकर जाऊंगा।
1: अच्छा,
0: तो फिर दीदी पता नहीं माँ बच्चों की कोई कैसी किस्मत हमारी, बहुत लायक है, बहुत लायक हर चीज में दीदी। खाना बनवा ले उस पर कैसा ही, भगवान की याद में खाना बनाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पर नहीं खाती ना, तो उन्हें भी सब कुछ हो गया, मतलब माँ बच्चे ने इतना समझ है उसको कि मेरी माँ है,
1: समझ है, भावना,
0: हाँ भावना की समझ है उसको। अब जैसे मैं गाती हूँ तो मेरी पोती शुरू हो गई है।
1: अच्छा, अरे वाह, कितनी बड़ी है वो
0: पोती? 5वें साल में लग गई है।
1: हाँ, बहुत छोटी सी है अभी।
0: तो वह पूरा श्लोक बोला है कि गायत्री मंत्र, इसका एक श्लोक उसने आता है, जैसे तीन होते हैं ना उसमें एक आता है,
1: कितने अच्छे संस्कार
0: कृष्णाय वासुदेवाय, बल्कि मेरे को नहीं आता ये, वो उसको आता है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे संस्कार बच्चों को।
0: जो अब ये
1: तो बच्चों का कितना अच्छा पालन पोषण होता है। वैसे तो हमारा वक्त हो चला है इजाजत लेने का सरोज जी, बहुत सारी बातें आपसे की, भावनात्मक भी, ईश्वर की भी, और साथ साथ हमने बहुत सुंदर गाने भी सुने। जाते जाते क्या कुछ लाइनें हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे? कोई भी चंद लाइनें, कोई गीत जो आपको बहुत पसंदीदा हो।

0: चुनरी।
1: जाते जाते बहुत ही सुंदर मधुर संगीत के साथ तो आप हमें छोड़ के जा ही रहे हैं सरोज जी, लेकिन हमारी श्रोताओं से भी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे?
0: जी दीदी, मैं श्रोता से यही कहना चाहूंगी, भाई जैसे संगीत है ना, उसको ये ना समझो कि ये गाना है। संगीत को गहराई से लो, क्योंकि संगीत में सब कुछ बसा हुआ। संगीत में जैसे मेरा संसार बसता ना, जो कोई संगीत के मतलब गहराई से करेगा ना, तो उसको बहुत मजा आएगा। उसकी सब टेंशन भी दूर हो जाएगी,
1: आनंद आएगा जी,
0: आनंद आएगा जीवन में, आनंद ही आनंद होगा। संगीत एक ऐसी चीज है,
1: इसलिए संगीत है तो पकड़ के रखे,
0: पकड़ के रखो उसको। अगर किसी को आता है ना, हिम्मत करो,
1: हिम्मत करो
0: गाने की, हिम्मत करो। कई बार है ना, आता बहुत कुछ है किसी को, बहुत ऐसी ऐसी माताएं हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, लेकिन वे बेचारी हिम्मत नहीं कर पाती, उनके अंदर जज्बा नहीं है। तो अपने अंदर के जज्बे को जगाओ,
1: जगाओ,
0: जगाओ। संगीत कोई माड़ी चीज नहीं है, उसको दिल खोल के गाओ,
1: दिल खोल के,
0: दिल खोल के। ये सोचो ना, तेरे पास कोई खड़ा है, कोई
1: कैसा सुन रहा होगा, क्या लग रहा होगा,
0: क्या सुन रहा, कुछ नहीं,
1: कुछ
0: बस दिल से,
1: बस दिल से गाओ,
0: जो निकले वो दिल से गाओ।
1: क्या बात, संगीत दिल है, रूह
0: हाँ,
1: है,
0: दिल है,
1: तो आप उसको दिल से ही गाएं। जहाँ दिमाग आता है
0: हाँ,
1: फिर वो दिल पीछे हो जाता है ना। बहुत सुंदर बात आपने कही, संगीत
0: इसमें दिमाग लगाओ ही ना,
1: लगाओ ही।
0: संगीत के पीछे पागल हो जाओ।
1: हाँ,
0: कहते हैं ना, पागल होना भी एक अलग अलग तरह की कला है। अब जैसे मैं संगीत के पीछे पागल हूँ, है ना, इसी चीज के लिए पीछे पागल हो जाओ। जो कोई अपने आगे बढ़ने का काम करे, संगीत को देखो, संगीत के कारण तो लता मंगेशकर हुई है ना,
1: बिल्कुल,
0: कितनी
1: बहुत लेजेंड्स हुए,
0: है ना,
1: और वो तो स्वर कोकिला भारत की,
0: हाँ कोकिला,
1: बिल्कुल
0: देखो उसका स्वर कितना अच्छा था, गायक तो थी।
1: बिल्कुल,
0: तो उन अपने बड़ों को देखो, है ना,
1: उनसे
0: अनुराधा,
1: इंस्पिरेशन ले
0: अनुराधा,
1: लिया।
0: मैं उसके गाने सुनती थी, तो मुझे उसी से मतलब इम्प्रेस हुई मैं
1: हाँ,
0: कि भाई अच्छा संगीत।
1: अच्छा संगीत,
0: हाँ
1: अच्छा संगीत सुनिए, अपने जीवन में शामिल कीजिए, और जैसा कि सरोज जी ने कहा, अगर संगीत है तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, इसलिए संगीत को मौका जरूर दीजिए और संगीत में समा
0: खाने
1: जाइए।
0: के साथ साथ संगीत भी बहुत जरूरी
1: खाने के साथ साथ संगीत भी बहुत जरूरी है। दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन अगर आप ये हिम्मत करते, एक कदम आप बढ़ाने को तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं। आप अगर संगीत के साथी हैं तो आप जरूर इस सफर पर हमारे साथ चलिए, यानी मधुबन अनप्लग्ड से जुड़िए, रेडियो मधुबन से जुड़िए, और हमें मैसेज कर दीजिए हमारे नंबर पर जो कि है 94 14 15 14 15, यानी कि 9414151415। हम भी चाहेंगे कि आपकी आवाज जरूर गुनगुनाए, जरूर गूंजे रेडियो मधुबन पर, क्योंकि ये आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। फिलहाल लेते हैं इजाजत, मुलाकात होगी अगले रविवार को रात 8 बजे। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक बाद में अपने समाज कार्यक्रम मायने रेडियो मधुबनरा सगला श्रोता और स्वागत है अपने मेहमान करण सिंह जी इंदा रोबी रेडियो मधुबन स्वागत है। तो हमें करण सिंह जी मैं आपने पूछू हूँ कि पहला जो रिवाज था अपने समाज में जिकन शादी है बच्चा का जन्म वे है तो अन्य बारे में आप जानकारी दो पहला की कन था आज की कन है अन्य बारे में
2: पहले तो हमारे का भी तुमके बच्चों या बच्चियां जो भी बीती थी ना अच्छा। तो गांव में होली त्यौहार या ढूंढ बेरा बिना आईना में अच्छा। त्यौहार मनाता मामल पक्षती ढूंढ लेना आता हूँ
1: ढूंढ रहा मतलब
2: आप... लोग कपड़े
1: मतलब
2: बच्चे बच्चा रहे खिलौना होने कपड़ों ने
1: कपड़ा
2: लाना ना आगे वो परंपरा हले है ढूंढ ढूंढ सिस्टम तो हर समाज में हमारे
1: राजपूत आजकल।
2: हाँ अब पहला टाइम में जब वो उड़ी हो गेर हो फिर व्यक्ति ने मनोरंजन
1: गेर के बारे में बताओ गेर की गण व्यक्ति
2: गेर 15-20 दिन पहले से होली के होली और पहला
1: 20 दिन पहला थी गेर वेती
2: हाँ गोमरे चौक में
1: तो गोमरा में मना अपना गोमरा मना किस गेर खेलता
2: हाँ ना सभी सभी भाई
1: सब दिन
2: डोरिया हाँ
1: ठीक है तो गेर मतलब की गन खेलता
2: ये वो बांस बांस ही वही लंबी लंबी डंडिया लेता
1: अच्छा
2: ना पैसे वो ढोल बजाता ना मैं हाइना नाचता
1: ठीक है तो गेर क्यों खेलता मतलब वो अन्न
2: मनोरंजन
1: मनोरंजन
2: जी तो
1: या अन्न अन्न पुटे कोई कारण
2: तो नहीं है वो तो होली का मनोरंजन होली माता करता हरे प्रोग्राम जो काशकार करता था एक एक लकड़ू लेन आता है होली में नोकता है होली बनाता
1: है
2: पैसे हौस का गेर नाचता है मनोरंजन।
1: तो ढूंढ में आप रिवाज में मतलब लेन देन रो
2: ना कोई लेन देन वो मामाल पक्षती भी आता
1: अच्छा
2: ने पता यूँ अपने गोम रहे जो बेता मस्ती तो हरे ना बेरा बिन बेता ने अमल तमाकू ने हरे प्रोग्राम बेता ने
1: अपने रिश्ता करो जरा मतलब कोई रिवाज का बेता
2: मोरे रिश्ता वन टाइम बेता जी सबका है कि हरे पहला तो वो बस शुरू में बच्ची दे के नापता नहीं दिखता वन बाद में हवा नारियल
1: हवा रुपयो नारियल
2: देता एक टीका दस्तूरी अब तो वो बढ़ गया है
1: आज अन्न में कतरो मोटो मतलब
2: आज तो गरीब आदमी गरीब आदमी भारी है पर अजय बुद्धिजीवी है
1: अच्छा।
2: वो यही कहते हैं बस मुझे वो कह देता भाई बोले क्या ले हो क्या दे हो तो क्या दो सा के हवा रुपये नारे
1: ठीक टीका टीका आज भी कोई टीको आप समाज में कोई लेन देन वे मुको रिश्ते भेज रहे
2: वो होते हैं सब लेकिन अब वो तो अपनी मारे भी तीन बच्चियों शादी की थी
1: बच्चे और रिश्ता किधर जो कोई टीकाकरण देवारों का रिवाज वो
2: कोई कुछ नहीं अच्छा। सिर्फ गया बच्चा आया नारियल ने 11 रुपया दीदा वन टाइम में की दी शादियों
1: आपने समाज में देश प्रतार कतरो महत्व है
2: देश पड़ता तो बहुत बढ़ते जा रही है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं अन्य उन्होंने हजम नु सही कि अब हर इस चीजों भारी पड़ी
1: अच्छा
2: करने एक आदमी रहे चार बच्चियां हैं
1: अच्छा
2: और किसी के एक है
1: तो ठीक है
2: तो क्या करूं तो भारी है लेकिन अब बुद्धिजीवी है
1: अच्छा।
2: तो काफी सुधरी आई
1: आप मतलब रिटायरमेंट नौकरी थी हुए
2: जी
1: हमें आप समाज वास्ते क्या करो चाहो
2: मुँह समाज में देखो सब मुँह मोरे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में रॉय और भीत रोड इस एरिया में हर समाज रे हारू आप भीत रोड
1: और भीत रोड प्रगनो कहवाए
2: हाँ
1: अंतिम
2: पिंडवाड़ा पिंडवाड़ा ने और झारोली ने
1: अच्छा
2: यहाँ तक
1: और इनके रोई
2: रोई जो उधर रिश्तेदारियों अपनी है
1: अच्छा
2: हटी नहीं पर ये एक चिन्ह है कि भाई भीत रोड रहा होने वे रोई रहा तो हमारे समाज में पहला भीत हूँ अमल ने डोड़ा ने वे ने
1: अमल डोड़ा मतलब ज्यादा पीता
2: मर्द मौत में गया बहुत ज्यादा पीता
1: अच्छा।
2: लेना था
1: अच्छा।
2: अब गुजर तो गुजरिया
1: अच्छा
2: अब रिटायर होने के बाद में मेरी समाज में थोड़ा भाग ली दो
1: अच्छा
2: तो एक तो मरण मौत में सब सिस्टम ये कपड़े लेन जानो ने मरीज बहन बेटियों ने बड़ो ने काका ने भाई ने वो लंबा चौड़ा कुटुंब में लेन जानो पड़ता जैसे शादी ब्याह में एक कोट का बांध के ले जाते हैं इस टाइप से वे हारे बंद की दो
1: आपने समाज में पैरवास का तो पहला पुराना जमाना में हमें का चेंज आई है
2: पहला तो सब शादियों में थी जब तो हाथी धोत रहा था चूड़ा खानदानी राजपूत
1: अच्छा
2: हर वरी
1: तो परिहार भी खानदानी में आवे
2: बिल्कुल खानदानी जागीरी
1: अच्छा जागीरी में
2: जी हाँ
1: तो आप रहे हाथी धोतरा चूड़ा पेरता पहला
2: हाँ मोरे मजरे बुद्धि तो
1: अच्छा हमें तो नहीं मिलता
2: हमें तो वो आजकल वो हरे मूटियों ने वेरो हरे वो अच्छा। शास्त्र है पर अब वे चूड़ा वगैरह तो बंद हो गए
1: हाथी धोतरा चूड़ा पहला
2: पहला
1: मलता पड़ा
2: मलता सब भी
1: अच्छा
2: कोई अच्छा सुगंध होता, शादी ब्याह होती या भाई के कहीं बच्चा रे शादियों में थी वन टाइम में खुशी में बोले भाई आती दो दो चूड़ो बेरी।
1: क्या बात, मतलब एक शान केवती
2: शांति
1: लेडीज वास्ते
2: बिल्कुल।
1: जेवर एवर में मतलब
2: जेवर पूरा वो श्रृंगार पहनते थे। अब तो क्या है कि राइस कुछ शादी ब्याह भी तो पहले नहीं, तो आजकल तो वो चैन ने वगैरह ना अपनी मॉडल है,
1: फैशन हुई है।
2: हाँ।
1: तो जेंट्स में मतलब क्या पहनता कपड़ा, मतलब
2: धोती
1: धोतियों में
2: धोती कमीज
1: जब्बा। हाँ
2: धोती कमीज आज खासकर था सर्विस वाले
1: में, तो पजामा
2: जी हाँ। आजकल तो सर्विसों में है जो हरे वो फैशन हुई, पर धोती और खुले से रुमाल
1: सिर मतलब साफ हो जरूरी है, मतलब
2: रुमाल या कुछ भी
1: वेणो जो जी। बहुत अच्छी बात है। तो अपने समाज में मतलब पहला हाथी दौतरा चूड़ा लेडीज पहनती
2: सब राजपूत कौम में,
1: राजपूत कौम में। पर आज जमाना में सब नवा फैशन रो युग है, तो अण में आजकल सब वे पूटा छोड़िए अपना तो अच्छा, भी रिवाज तो सगाई वेती राजे
2: आदमी आते थे
1: जी,
2: तो लेडीज ही मतलब कमरे में बंद ने बाहर जाना आना ने वो पर्दा न भी
1: सबसे ज्यादा पर्दा पड़ता थी
2: बहुत ज्यादा थी। अब तो बाजार भी जाना आना सब खुला, अब एजुकेशन है पहले बढ़िया रकम तो
1: सही बात है।
2: अब तो हर बच्चियों हर एक बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, तो अब तो रहन सहन ने काफी परिवर्तन बहुत चेंजिंग हर हुए।
1: श्रोताओं करण सिंह जी थी आपको समाज रीति रिवाज और परिहार वंश के बारे में जानकारी ले रही हूँ, और आपको एक छोटो सो ब्रेक लेना चाहो, आप कटे मत जाओ, ब्रेक के बाद फिर आपको अपने मेहमान करण सिंह जी थी बात करला। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: नमस्ते दोस्तों, पता है आजकल मैं रोज नाचने का अभ्यास करता हूँ। क्या कहा, क्यों? भाई मेरे चाचा जी के बेटे की शादी जो होने वाली है, खूब नाचना है मुझे उसकी शादी में। लो अपनी बातों में मैं आपको मीना से मिलवाना तो भूल ही गया, चलो अब मीना से मिलते हैं। लेकिन ये मीना, हाँ वो रही अपने घर के बाहर।
1: मीना, मीना ले तू यहाँ बैठी है। अरे क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है?
2: दादी कुछ दिनों से बेला दीदी को पता नहीं क्या हो गया है, बहुत उदास रहने लगी है। कल जब मैं उन्हें अपनी कहानी की किताबें देने गई, तो वो कहने लगी कि पता नहीं मीना मैं कब तक हूँ यहाँ।
1: तू चिंता मत कर, मैं कल बेला से खुद बात करूँगी।
0: और जब अगले दिन मीना अपनी दादी को लेके बेला के घर की तरफ गई,
2: दादी वो देखिए, वो वहाँ पेड़ के नीचे बैठी हुई है बेला दीदी।
1: अरे बेला तू रो रही है?
3: रो नहीं तो और क्या करूँ दादी, माँ और बाबा ने सुबोध के साथ मेरी शादी तय कर दी है।
1: क्या, वो सुमन के लड़के से?
3: हाँ दादी, अगले महीने की 5 तारीख को। मैं भी शादी नहीं करना चाहती दादी, अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ।
1: लेकिन पोंगाराम ऐसा कैसे कर सकता है, अभी तो तू बस 15 साल की है, और वैसे भी 18 साल से पहले लड़की की शादी करना कानूनन अपराध भी है। अच्छा एक बात बता, सुबोध की उम्र कितनी होगी?
3: मुझसे 3 साल बड़ा है वो,
2: यानी 18 साल।
4: 18 साल और अभी से शादी का ख्याल?
1: ये भी गलत है, लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए शादी के वक़्त। तू चिंता मत कर बेला, मैं पोंगाराम से बात करूँगी।
3: बाबा नहीं मानेंगे दादी, माँ ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो सुबोध के पिताजी को जबान दे चुके हैं।
2: दादी कुछ कीजिए ना।
1: वही तो सोच रही हूँ। चल मीना।
2: कहाँ दादी?
1: सुबोध के घर।
0: मीना और उसकी दादी सुबोध से मिलने गए। मीना चुपचाप जाके सुबोध को किसी बहाने से बाहर बुला के ले आई।
1: सुबोध बेटा, ये तू क्या करने जा रहा है?
5: मैं कुछ समझा नहीं दादी।
1: अरे पढ़ा लिखा है, समझदार है, इतना भी नहीं जानता कि लड़की की शादी 18 से पहले और लड़के की शादी 21 साल से पहले करना कानूनन अपराध है, जेल हो सकती है तेरे माँ बाप को।
5: मुझे सब पता है दादी, लेकिन माँ और पिताजी को कौन समझाए?
1: मेरे पास एक तरकीब है जिससे वो खुद ही समझ जाएंगे। इधर आ।
0: मीना की दादी ने सुबोध और मीना के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वो दोनों खुश हो गए। और अगले दिन जब सुबोध अपने माता पिता के साथ खाना खाने लगा,
6: अरे सुबोध ये क्या, तूने आधी रोटी क्यों ली है?
5: आदत डाल रहा हूँ माँ, शादी के बाद तो मुझे आधा ही खाना मिलेगा ना, इसलिए।
7: मतलब क्या है तेरा?
5: देखिए पिताजी, एक तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, और फिर अभी मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ। अब जब शादी के बाद बेला यहाँ आएगी तो उसे खाना तो चाहिए होगा ना, बस अपना आधा खाना दे दूंगा उसे।
7: उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
5: जरूरत पड़ेगी पिताजी, क्योंकि शादी के बाद बेला मेरी जिम्मेदारी होगी।
7: जो जी में आए वो कर।
3: खाना तो खा लीजिए।
7: नहीं खाना मुझे।
2: चाची जी नमस्ते।
8: खुश रहो मीना बेटी, कैसे आना हुआ?
2: सुबोध भैया की किताबें लेने आई थी चाची।
8: किताबें लेने?
5: हाँ माँ, कबाड़ी को बेच रहा हूँ ना अपने स्कूल की किताबें, तो मैंने मीना से कहा था कि अगर उसे कोई किताब चाहिए हो तो ले जाए।
8: क्या, इतनी मेहनत से तुझे पढ़ाया लिखाया, क्या ये सब हमने इसलिए किया था कि तू पढ़ना लिखना बीच में ही छोड़ दे?
5: शादी के बाद पढ़ाई थोड़ी करूँगा, अरे कुछ काम धंधा करके अपनी बीवी का पेट भी तो भरना पड़ेगा।
4: पेट भरना पड़ेगा, नहीं तो भूखा मरना पड़ेगा।
8: अजी सुनते हो?
7: आया।
5: आओ मीना, मैं तुम्हें अपनी किताबें दिखाता हूँ।
2: चलिए भैया।
7: हाँ कहो सुबोध की माँ, क्या हुआ?
8: सुबोध पढ़ाई लिखाई छोड़ रहा है, कह रहा है शादी के बाद कोई काम धंधा करूंगा।
7: क्या, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता।
8: मैं सच कह रही हूँ जी, कबाड़ी को बेच रहा है अपनी किताबें,
6: सुबोध के पिताजी, कहीं हम इतनी छोटी उम्र में उसकी शादी करके कोई गलती तो नहीं कर रहे?
7: तुम शायद ठीक कह रही हो सुबोध की माँ। मैं आज ही पोंगा राम जी से इस बारे में बात करता हूँ।
0: और उसी शाम पोंगाराम चाचा बेला की माँ के साथ सुबोध के घर गए।
7: पोंगाराम जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है।
9: जी कहिए भाई साहब।
7: जी वो दरअसल सुबोध की माँ और मैं सोच रहे थे कि बेला और सुबोध दोनों ही अभी छोटे हैं, तो क्या मेरा मतलब है अगर हम इन दोनों की शादी 4-5 साल बाद करें तो?
9: सच मानिए भाई साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। हमारी बेला तो आजकल बहुत उदास रहने लगी है, ना किसी से बात करती है ना ही कुछ हंसती बोलती है। उसे सबसे ज्यादा दुख तो अपने स्कूल छोड़ने का है।
6: अपने सुबोध का भी यही हाल है, वो भी यही कहता है कि शादी के बाद पढ़ाई छोड़ देगा।
7: भाई मुझे तो लगता है कि दोनों बच्चे अभी शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। बहन जी आपको तो कोई एतराज नहीं है ना?
10: नहीं नहीं भाई साहब, जैसा आप लोग और बेला के बाबा ठीक समझे। वैसे एक तरह से देखा जाए तो बात ठीक भी है। कल मीना की दादी जी मिली थी, वो बता रही थी कि 18 से पहले लड़की की शादी करना और 21 साल से पहले लड़के की शादी करना कानूनन अपराध है, और ऐसा करने पर माँ बाप को जेल भी हो सकती है।
6: ये बात तो हमें पता ही नहीं थी।
7: पोंगाराम जी एक बात समझ नहीं आई, अगर आपके दिल में भी ये बात थी तो आपने हमसे आके कहा क्यों नहीं?
9: आपको जबान जो दी थी, मना कैसे करता?
11: ओ अगर ऐसी बात है पोंगाराम जी तो आज एक जबान मैं भी देता हूँ आपको। सुबोध और बेला की शादी जरूर होगी, लेकिन 3-4 साल के बाद। तब बेला भी 18 की हो जाएगी और सुबोध भी 21 का।
0: और अगली सुबह जब बेला मिठाई का डिब्बा लेकर मीना के घर गई।
1: ये क्या बेला, अपनी शादी की मिठाई खुद ही बांट रही है?
2: शादी होने की मिठाई नहीं दादी, शादी रुकने की।
0: भाई वाह, मीना और उसकी दादी ने तो सचमुच कमाल कर दिया। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्टू की नई कविता।
2: लड़की हो 18, लड़का 21 रखना याद,
4: उससे पहले शादी तो है कानूनी अपराध।
0: भाई मजा आ गया ये कविता सुन के। ये बात सही है दोस्तों कि 18 साल की उम्र से पहले लड़की की शादी और 21 बरस की उम्र से पहले लड़के की शादी करना सचमुच कानूनी अपराध है। अब वक्त हो गया है, याद है ना? गाना सुनने का।

0: जितनी बढ़िया कहानी और कविता थी उतना ही मजेदार गाना भी था। अब क्या करे क्या करे क्या करे, क्या कहा, खेलने चले। तो ठीक है, खेलते हैं, चलो मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली तोड़। आज मैं आपसे तीन कड़ियां बताकर एक पहेली पूछूंगी। आपको ये कड़ियां जोड़ जोड़ कर पहेली का सही उत्तर बताना है। तैयार है ना सब?
2: जी बहन जी।
1: शाबाश। तो आज की पहेली है एक उपकरण के बारे में। तुम्हें मुझे उस उपकरण का नाम बताना है, ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो पहली कड़ी। इसके आविष्कार से पहले होती थी चिट्ठी से बात।
3: चिट्ठी से बात?
1: हाँ दीपू, यानी कि लोग एक दूसरे को पत्र या तार लिखकर ही अपनी बात बताया करते थे।
3: ये तो बहुत मुश्किल पहेली लग रही है बहन जी।
4: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: अभी बताती हूँ सुमी। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। अब तो जब जी चाहे

0: ये कर लो कभी कहीं भी किसी से बात।
1: मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहन जी।
2: हाँ बहन जी, तीसरी कड़ी भी बताइए ना।
0: मोनू, दीपू, अब ध्यान से सुनना, तीसरी कड़ी बताने जा रही हूँ। जब कोई इसके बटन दबाए, दूर कहीं ये घंटी बजाए।
3: मैं समझ गई बहन जी, टेलीफोन।
0: शाबाश मीना। और क्या तुम्हें पता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था?
4: मुझे पता है बहन जी, मैंने एक किताब में पढ़ा था।
0: तो बताओ कृष्णा, किसने किया था टेलीफोन का आविष्कार?
4: अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने।
0: बिल्कुल सही जवाब। तो मजा आया ना बच्चों?
5: बहुत मजा आया बहन जी।
6: तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
3: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: संदीप त्रिवेदी आज आपके सामने हूँ। लेसन वन पूरी तरह से कंप्लीट था हमारा, RBSE यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th जनरल इंग्लिश। लेसन टू ऑन वायलेंस, हिंसा। वायलेंस, हिंसा का नाम सुनते ही बापू का चेहरा, बापू का नाम जहन में आता है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। देश उनकी 150वीं वर्षगांठ भी मना रहा है, तो बड़े अच्छे समय पर हम लोग इस लेसन को पढ़ रहे हैं। आप लोग समझिएगा हिंसा अहिंसा के बीच की जो लकीर है वो समझना बहुत जरूरी है, और जो राइटर हैं वो भी हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जे कृष्ण मूर्ति, उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में ये बताया है कि हिंसा क्या है और किस किस तरह की हो सकती है और कहां कहां हिंसा होती है। हिंसा आप और हम रोज करते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन इग्नोर कर देते। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते कुछ लेसन ऐसे आ जाते हैं जिसपे बहुत कुछ कहने का मन करता है बच्चों, और ये ऑन वायलेंस भी ऐसे ही चैप्टर्स में से एक है, ऐसे ही लेसन में से एक है। लिमिट है, आपको क्लास 10th का ध्यान रखना है, अपने सभी सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना है, अपनी स्टडीज पे फोकस करना है और अपने पेरेंट्स स्कूल टीचर्स का सबका नाम रोशन करना है। तो चलो बिना समय गवाए, बिना देर किए शुरू कर देते हैं, लेट्स गो। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, पहला सेंटेंस जो है वही बिल्कुल कटु सत्य, जिसको बोलते हैं हम कड़वा सच। संसार में चारों तरफ हिंसा का व्यवहार है, हिंसा व्याप्त है, हिंसा होती है। देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ट वायलेंस। राइटर कहते हैं कि शारीरिक हिंसा तो है ही है और उसके साथ साथ आंतरिक इनवर्ट हिंसा भी व्याप्त। कैसे? फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर। शारीरिक हिंसा क्या है? किसी को मारना, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, सोच समझ करके, इच्छा से, चाह करके दूसरों को चोट पहुंचाना, डेलिबरेटली मन से, इच्छा से और विदाउट थॉट, बिना सोचे, टू से क्रूएल थिंग्स, बुरी बातें बोलना, फुल ऑफ एंटागोनिज्म, विरोध से संबंधित बातें करना, एक दूसरे को विरोध बताने वाली बातें करना, विरोध ही समझने वाली बातें करना, एक दूसरे से बैर करने वाली बातें करना, एंड हेट और नफरत फैलाने वाली बातें करना, एंड इनवर्डली और आंतरिक रूप से, इनसाइड द स्किन टू डिसलाइक पीपल, चमड़ी के आधार पर लोगों को नापसंद करना, टू हेट पीपल, नफरत करना, टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की आलोचना करना, क्रिटिसाइज। और ये तो हम करते ही हैं, आपको पता है, शादी में हो, ब्याह में हो, कॉलेज में, स्कूल में, क्लास में, फंक्शन में, कहीं भी, चौराहे पे, गली मोहल्ले, ऊंचे नुक्कड़, हर जगह हम आलोचना करने से पीछे पीछे नहीं रहते हैं। हमारी बड़ी खासियत है ये भारतीय। इनवर्टली वी आर ऑलवेज क्वेरलिंग, और आंतरिक रूप से हम हमेशा लड़ते रहते हैं, बैटलिंग, नॉट ओनली विद अदर्स, दूसरों से ही नहीं, बट विद अवर सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम दूसरों से ही नहीं लड़ते हैं, खुद से भी लड़ते रहते हैं। ये बात बहुत समझने वाली है। हर बात पे, जिस बात से भी हमें गुस्सा आ जाए, इसका मतलब हम अपने आप से लड़ रहे हैं, हम अपने आप से खुश नहीं है, वी आर नॉट हैप्पी विद आवर सेल्फ, वी वॉन्ट पीपल टू चेंज। अच्छा, एक और बड़ी खासियत होती है हम लोगों की, हम सोचते हैं लोग बदल जाए, हम लोगों को बदलना चाहते हैं, वी वॉन्ट। प्रेजेंट टेंस पढ़ा आपने पिछले लेसन में, उसी का एग्जाम्पल है, वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, We want to force them to our way of thinking. और हम लोगों से ये भी अपेक्षा रखते हैं, ये भी उम्मीद करते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही

आपके सोच से, आपकी हां से हां मिलाए, ये क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, कतई संभव नहीं है ये। हर एक का अपना सोचने का तरीका होता है, हर एक का अपना नजरिया होता है, हर एक अपनी बात अपने ढंग से कह सकता है। ईश्वर ने सबको दिमाग दिया है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, हम इंस्पायर जरूर कर सकते हैं, हम ऐसा काम करें जिससे लोग प्रभावित, लोग ऐसा करने पर मजबूर हो जाएं। वही तो हम कर रहे हैं। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, इस संसार में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, तो हम हिंसा देखते जाते हैं, चारों तरफ हम हिंसा का भाव देखते हैं, एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जहां जहां भी मानव की उपस्थिति है, जहां जहां इंसानियत है, जहां जहां इंसान है एक्चुअली, वहां वहां हम हिंसा देखते हैं। मतलब हम हैं तो हिंसा है। सोचिए बाप, हमने कैसा समाज बना लिया है। राइटर को ये लिखना पड़ रहा है कि चारों तरफ हिंसा है। क्यों है? द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर। हिंसा का जो अंतिम रूप होता है वो युद्ध होता है। द किलिंग फॉर आइडियाज, विचारों के लिए हत्या, फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, और जो तथाकथित सो कॉल्ड धार्मिक मान्यताएं हैं उनके लिए हिंसा, फॉर नेशनलिटीज राष्ट्रीयता, द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, अरे जमीन का छोटा सा टुकड़ा बचाने के लिए हत्या। आए दिन अखबारों में हम पढ़ते हैं, तो गुटों में लाठी भाटा जंग, जमीन के विवाद को लेकर के चार आपस में भिड़े। अरे क्या कर रहे हैं हम लोग? और आप लोग जो बच्चे हमारे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वो देखते होंगे अपने आसपास की छोटी छोटी बातों को लेकर के तू तू मैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि आप बड़े होकर के समझाएं, आप एक अच्छा समाज बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपना योगदान दें। बड़ा अच्छा लगता है ये लेसन पढ़ाते हुए मुझे, इसमें मैं बहुत कुछ फिलोसॉफिकल हो जाता हूं थोड़ा सा। टू डू दैट, ये सब करने के लिए मैन विल किल, इंसान मारेगा, डिस्ट्रॉय नष्ट करेगा, मेम चोट पहुंचाएगा, एंड ऑल्सो बी किल्ड और स्वयं को भी मार डालता है। देयर इज एनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत बड़ी हिंसा है, चारों तरफ हिंसा है, एनॉर्मस विशाल व्यापक। द रिच वॉन्टिंग टू कीप पीपल पुअर, अमीर क्या चाहता है? लोग गरीब रहें। एंड द पुअर वॉन्टिंग टू गेट रिच, गरीब क्या चाहता है? कि वो अमीर बन जाए। सामान्य सी बात है ना। लेकिन एंड लेखक कहता है, इन द प्रोसेस ऑफ हेटिंग द रिच, और इस प्रक्रिया में, अमीर बनने की प्रक्रिया में, गरीब अमीर से नफरत करने लगता है, अमीर गरीब से नफरत करने लगता है। और हम सभी अपने आसपास ये सब चीजें देखते हैं, मेरे पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, हम एक दूसरे को नीची नजर से देखते हैं। अरे नजर की तो क्या बात करें साथियों, लोग तो ये भी देखते हैं कि ये कोई कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, यानी इसमें कोई शारीरिक कमजोरी है, उसको भी, भले उसके पास सब सुख सुविधाएं हो, लेकिन लोग उसको भी कमजोर मान लेते हैं, उससे भी नफरत करने लगते हैं। ये समाज की कड़वी सच्चाई है जिसको हम देखते हैं। आप सब जानते हैं मैं दृष्टिबाधित हूं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कहता हूं कि जो सबके पास है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। मैं अक्सर मजाक में अपने साथियों को ये बात कहता हूँ, और कई बार लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे भगवान ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं बोलता हूँ, भगवान तो दुखी है उल्टा ये सब करके। भगवान सोचता है कि इसको जब ये सब नहीं दिया तो ये इतना कुछ कर रहा है, अगर दे देते तो फिर कितना कुछ करता है। तो भगवान तो खुद दुखी है। और मैं ये मानता हूं कि हमारे अंदर कोई भी कमजोरी हो, किसी भी तरह की, रंग की हो सकती है, शारीरिक बनावट की हो सकती है, किसी तरह की विकलांगता हो सकती है, और अमीरी गरीबी की कमजोरी हो सकती है, हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसमें हमारी कोई कमजोरी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है वो कोई कमजोरी नहीं है, वो बल्कि हमारी ताकत है। उसी के बाद ही तो हम इंस्पायर होते हैं कुछ करने के लिए। खैर, तो कहने का मतलब ये कि अमीर गरीब को गरीब देखना चाहता है, गरीब अपने आप को अमीर देखना चाहता है, इस प्रक्रिया में दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी। और आप, लेखक हमसे कहता है, हम सब
बीइंग कॉट इन सोसाइटी, समाज में जकड़े हुए, बंधे हुए, आर ऑल्सो

going to contribute this to this. हम इसमें अपना योगदान देते हैं, जाने अनजाने कंट्रीब्यूट, हम भी इस हिंसा में सहयोग कर रहे हैं, आप और हम सब। अब देखिए ना, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, लोग वीडियो बनाने पहले भागते हैं, ये नहीं कि भाई घायल पड़ा है उसको उठाएं, नो, ये तो हमारी अब सोसाइटी हो गई है, हमारे समाज का ये एक एक हो गया, वीडियो बनाए वायरल करें। अरे भाई, जिसको पहले जरूरत है उसको तो मदद पहुंचाएं। तो जाने अनजाने हम क्या कर रहे हैं, इस हिंसा में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, दूर से तमाशा देखने में मजा आता है हमको। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब देखिए हिंसा कहाँ है, पति पत्नी बच्चों के बीच में हिंसा है। आप और हम सामान्य रूप से जब बैठ करके ये इमेजिन कर सकते हैं क्या? वी कैनॉट इमेजिन दैट वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। अरे पति पत्नी बच्चों में कैसी हिंसा, लेकिन है। There is violence, हिंसा, antagonism, विरोध, hate, नफरत, cruelty, क्रूरता, ugly criticism, बुराई, भद्दी, टिप्पणियां, anger, क्रोध, all this is inherent in man. ये सब इंसान में जन्मजात है, inborn, inherent in each human being. हर एक इंसान में ये जन्मजात है, ये सारी चीजें, ये सारे के सारे लक्षण। It is inherent in you. और लास्ट में लेखक कहता है ये आप में, यानी हम सब में, लेखक हम सबको कहता है कि ये हमारे अंदर भी जन्मजात है, and education is supposed to help you to go beyond all that. अब लेखक कहते हैं कि शिक्षा education उसको ऐसा माना जा सकता है कि वो आपकी मदद करे इस मामले में, not merely to pass an examination. Education केवल और केवल किसी कक्षा को पास करने के लिए नहीं है, किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए नहीं है, केवल सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं है, एंड गेट अ जॉब, केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये एजुकेशन ही है, शिक्षा, ये शिक्षा ही है जो हमें हिंसा से दूर कर सकती है, जो हमें हिंसा से बाहर निकाल सकती है। मैं अक्सर मजाक में कहता हूं अपनी क्लास में, कभी मेरा सिलेबस पूरा नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो बातें होती हैं मुझे लगता है वो किताब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट, आपको शिक्षित होना होगा, आपको शिक्षित होना है। यू हैव टू बी सो दैट, ताकि यू बिकम अ रियली ब्यूटीफुल, ताकि आप सचमुच सुंदर, हेल्दी, स्वस्थ, सेन, पवित्र, रैशनल, तार्किक ह्यूमन बीइंग, इंसान, नॉट अ ब्रूटल मैन, एक क्रूर आदमी नहीं, विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन, एक ऐसा क्रूर आदमी जिसका दिमाग बहुत चतुर है, हु कैन आर्ग्यू, जो कि हमेशा बहस करता है, डिफेंड हिज ब्रूटैलिटी, और अपनी क्रूरता को बचाता है, अपनी क्रूरता की रक्षा करता है, उसको सच साबित करता है, अपनी क्रूरता को ही वो सही समझ लेता है। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, इस सब हिंसा से आपका सामना होता है। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड, आपने जो यहां सुना है, जो पढ़ा है, सब आप भूल जाते हैं, एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और जो समाज की धारा है उसमें बह जाते हैं। हम जब हमारे ऊपर आती है ना, तो ये सारी बातें दरी की दरी रह जाती है। हम सोचते हैं छोड़ यार, ये किताबी बातें हैं, इसने मुझे ऐसा कहा तो कहा कैसे, इसने मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी कैसे कर दी, इसने मेरे घर के बाहर गड्ढा कैसे कर दिया, इसने मेरी दीवार में छेद कैसे कर दिया। हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूएल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वायलेंट वर्ल्ड, एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, अ न्यू वर्ल्ड। यू विल बिकम, आप भी बाकियों की तरह हो जाएंगे, क्रूर, कठोर, कुस्तैल, हिंसक इस संसार की तरह, और आप अपने आप को एक नया समाज बनाने में योगदान भी नहीं देंगे, और नहीं एक नया संसार बनाने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि आप तो समाज की धारा में बह चले हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? आगे क्या कहते हैं राइटर, बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी। भले ही आप एक नया समाज, एक नया संसार मत बनाइए, बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, एक नया संसार आवश्यक है। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति आवश्यक है। The old culture is dead. जो पुरानी संस्कृति है वो मृत प्राय है, वो मर चुकी है, buried, दफन कर दी गई है,
बर्न जला दी गई है, एक्सप्लोडेड, उसमें विस्फोट कर दिया गया है, वेपोराइज्ड, उसको दफा कर दिया गया है, उसको भगा दिया गया है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर, आपको एक नया संसार, एक नई संस्कृति बनानी है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर, कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और एक ऐसी संस्कृति जो कि हिंसा पर आधारित नहीं हो, दूर दूर तक हिंसा का जिसमें कोई वास ना हो, कोई नाम ना हो। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, नई संस्कृति आप पर निर्भर करती है, बिकॉज क्योंकि द ओल्डर जनरेशन हैज बिल्ट सोसाइटी, हमारी पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने एक समाज बनाया बेस्ड ऑन वायलेंस जो कि हिंसा पर आधारित था, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस जो कि अतिवाद पर आधारित था, एंड इट इज दिस दैट हैज कॉज्ड ऑल द कंफ्यूजन, और इसी की वजह से ये सभी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, ऑल द मिजरी, सभी परेशानियां इसी वजह से उत्पन्न हुई है। द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड, हमारे पूर्वजों ने ये संसार हमारे लिए बनाया, एंड यू हैव टू चेंज इट, और आपको इसको बदलना है, यानी हम सबको इसको बदलना है। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, आप केवल बैठेंगे नहीं, आप केवल एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। मैं मेरे घर में, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, तो मैं बैठ नहीं जाऊं कि बस मैं तो अपना स्कूल पढ़ाता हूँ 8 से 1 बजे तक, 7:30 से 1 बजे तक, मुझे क्या पड़ी है एक्स्ट्रा क्लास लेने की, क्यों? बिकॉज वी हैव टू चेंज द ओल्ड कल्चर, वी हैव टू चेंज द पीपल, We have to change the way of thinking. मुझे ये सब करना क्यों पड़ रहा है? मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति मेहनत करे, हर बच्चा मेहनत करे, हर टीचर मेहनत करे, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर। तो आप केवल अपने घर पे बैठ करके, हाथ पे हाथ रख के ये नहीं कह सकते हैं कि I will follow the rest, मैं दूसरों का ही अनुसरण करूंगा, of the people, लोगों का ही अनुसरण करूंगा, and seek success and position. मैं केवल PhD हासिल कर लूं, मैं RAS IAS बन जाऊं, मैं कॉलेज प्रोफेसर बन जाऊं, मैं प्रिंसिपल बन जाऊं, मैं लेक्चरर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, नो। अगर इस समाज को, इस संस्कृति को बदलना है तो हमें स्वयं को आगे आना पड़ेगा। मैं दूसरों से उम्मीद करता हूं मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी नहीं करें, है ना, सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी नहीं करें, साइड में गाड़ी खड़े, लेकिन कल को मैं ही ये सब करने लग जाऊं तो फिर क्या क्या फिर मेरी करनी और करनी में तो अंतर है ना। पहले मुझे खुद एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, अगर मेरे पास गाड़ी है मैं उसको प्रॉपर जगह पे पार्क करूं, और हो सके तो अपने घर में ही पार्क करूं, तभी तो मैं दूसरों को दो बातें कह सकता हूं। मैं खुद ही ऐसा कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, और मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं खुद बाहर पानी फैला रहा हूं, दूसरों से उम्मीद करता हूं वो नहीं फैलाए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। मैं मेहनत नहीं करूं, मैं स्टडी नहीं करूं, और मैं उम्मीद करूं बस ऐसे ही पास हो जाऊं, नंबर आ जाए, और ये तो नॉट पॉसिबल। स्कूल में मैं अपनी क्लास प्रॉपरली नहीं लूं और ऐसे ही ज्ञान झाड़ने लग जाऊं, माफ करिएगा, बहुत सारे साथियों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमारे टीचर्स में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन हमें पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। इफ यू डू, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर। अगर आप ऐसा ही करते हैं कि अपने घर परिवार में बैठ करके अपने अपनी खुशियां, अपनी तरक्की हासिल करके अगर आप मस्त हो जाएंगे, तो इसका जो दुष्परिणाम है वो किसके साथ होगा? आपके बच्चों के साथ। आपके बच्चों को तकलीफ उठानी पड़ेगी, यानी आने वाली पीढ़ियों को। यू मे हैव अ गुड टाइम, आपका समय भले ही अच्छा हो सकता है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन आपके बच्चों को इसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा। सो इसलिए यू हैव टू टेक ऑल दैट इन टू अकाउंट, इसीलिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको ही इसके लिए खड़ा होना है। The outward cruelty of man to man in the name of God, जो बाहरी हिंसा है एक इंसान की दूसरे इंसान से, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, भगवान के नाम पर, in the name of religion, धर्म के नाम पर, in the name of self-importance, आत्मसम्मान के नाम पर, in the name of the security, सुरक्षा के नाम पर, of the family, परिवार की, ये जो हिंसा है ना, यही सबसे खतरनाक है। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर, अरे हम समाज को क्या दे रहे हैं? कुछ भी तो नहीं दे रहे हम। और ये कहते हैं ना, वो ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रुएल्टी एंड वायलेंस एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो। आपको स्वीकार करना पड़ेगा इस बाहरी हिंसा को, अत्याचार को, क्रूरता को, और आंतरिक रूप से जो हिंसा आपके अंदर है, जिसको कि आप अभी तक जानते ही नहीं है,
उसको भी आपको जानना होगा। यू आर स्टिल यंग, अब लेखक बच्चों से बात करता है, यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर, अभी आप बच्चे हैं, युवा हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे यू विल रियलाइज हाउ इनवर्डली मैन गोज टू हेल, कि आंतरिक रूप से इंसान कैसे नर्क के द्वार पर जा रहा है, खुद ही अपने रास्ते बंद कर रहा है, खुद ही अपने आप को बर्बादी की ओर ले जा रहा है, गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, वो अपने आप को मुसीबत में डाल रहा है, बिकॉज क्योंकि ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ, लगातार वो अपने आप से लड़ता रहता है, उसको कुछ सोचने का तो मिल ही नहीं रहा है, कुछ क्रिएटिव वो कर ही नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि वो तो खुद से लड़ता रहता है। विद हिज वाइफ, किस किस से, अपनी पत्नी से, विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से, विद हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों से, विद हिज गॉड्स, और यहां तक कि इंसान अपने ईश्वर से भी लड़ता है, अपने भगवान से भी लड़ता है। He is in sorrow and confusion and there is no love, no kindliness, no generosity and no charity. Very important बात, जब इंसान अपने आप से लड़ता रहता है ना, जब इंसान अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, हर जगह जब उसकी लड़ने की भावना है, और वो क्यों है, जाने अनजाने है, बस उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, जैसा वो चाहता है वैसा नहीं हुआ, इसलिए क्या करता है वो, He is in sorrow, वो दुख में रहता है, and confusion, और दुविधा में रहता है, and there is no love, उसके अंदर ना तो फिर प्रेम होता है, ना kindliness, ना दयालुता होती है, no generosity, ना दूसरों के प्रति आदर होता है, and no charity, very important, ना तो उसके अंदर समाज कल्याण की भावना होती है। अरे भाई, वो जब लड़ता रहेगा, खुद ही खुश नहीं है, तो वो दूसरों का भला क्या करेगा, समाज के लिए क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, वो चैरिटी, चैरिटी की भावना हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। चैरिटी मींस, और आप जानते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, जो समाज की सेवा है वो घर से ही शुरू होती है, कहा जाता है ना। एंड अ पर्सन मे हैव अ पीएचडी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भले ही पीएचडी की डिग्री हो आफ्टर हिज नेम, और ही मे बिकम अ बिजनेसमैन, या फिर वो बहुत सफल व्यापारी क्यों ना हो, विद हाउसेस, बहुत सारे घर हो, and cars, बहुत सारी गाड़ियां हो, but if he has no love, अगर लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है, no affection, अगर उसके अंदर लोगों के प्रति दया का भाव नहीं है, kindliness, no consideration, लोगों को जो है स्वीकार करने की उसकी क्षमता नहीं है, he is really worse than an animal, फिर वो जानवर से भी गया गुजरा है, पशु से भी बेकार है फिर वो, because क्योंकि he contributes to a world That is destructive. क्योंकि वो फिर एक ऐसे संसार में अपना योगदान दे रहा है जो कि विनाशकारी है, विभाजनकारी है। कितनी अच्छी बातें हैं, है ना? लेखक कहता है, तो while you are young, जब आप युवा हैं, you have to know all these things, आपको इन सारी चीजों को जानना है, you have to be shown all these things, और आपको इन सब बातों को दिखाना भी है जो आप समझ रहे हैं वो, you have to be exposed to all these things. और इन सब बातों को बाहर लेके आना है, इन सब बुराइयों को बाहर लाना है, सो दैट ताकि योर माइंड बिगिंस टू थिंक, ताकि आपका दिमाग सोचने लगे, अदरवाइज नहीं तो यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो संसार के दूसरे प्राणियों के जैसे, दूसरे लोगों के जैसे आप हो जाएंगे, कैसे, एंड विदाउट लव, बिना प्रेम के, विदाउट अफेक्शन, बिना सम्मान के, आदर के, विदाउट चैरिटी, और न तो समाज सेवा की भावना के, एंड जेनरोसिटी, और न ही दूसरों के प्रति आदर सम्मान, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस, और फिर जीवन बहुत भयानक होने वाला है, तब ऐसी परिस्थिति में जीवन बहुत भयानक हो जाता है, जीवन हमारा दुष्कर हो जाता है। दैट इज वाई, ऐसा क्यों, वन हैज टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस, हिंसा की ये जितनी भी समस्या है उसके बारे में हर एक को सोचना पड़ेगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, हिंसा को नहीं समझना इसका मतलब उसको इग्नोर करना, यानी उसकी अवहेलना करना, उसको नहीं समझना मतलब उसको उसको नहीं जानना, इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, और बिना बुद्धि के, बिना संस्कृति के ये संभव नहीं है। Life is something enormous. जीवन बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है. And merely to carve out a little hole for oneself and remain in that little hole. ये जो एक समाज के जीवन में, जीवन की जो हमारी एक समस्या है, एक एक छेद है, उसको हमें केवल समझना ही नहीं है, उसके अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा. Fighting off
एवरीबडी इज नॉट टू लिव, हर एक से लड़कर के हम नहीं जी सकते हैं। इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है। फ्रॉम नाउ आज से ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इन सब बातों के बारे में आपको जानना है। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी। आपको ये सोचना है कि क्या आप भी अपनी मर्जी से इसी हिंसा का हिस्सा होना चाहते हैं या फिर इसके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। बी फ्री, लेखक कहता है कि स्वतंत्र बनिए, लिव हैप्पीली, खुश होकर के खुशहाल जीवन जिए, जॉयसली, खुशी से, विदाउट एनी एंटोगनिज्म, किसी के प्रति कोई विरोध नहीं, विदाउट एनी हेट, किसी नफरत के बिना। किसी के प्रति क्यों नफरत की भावना रखें हम? देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट, और तभी तो जीवन हमारा कुछ भिन्न होगा, कुछ अलग होगा। देन लाइफ हैज अ मीनिंग, तब जीवन का एक मतलब होगा, एक अर्थ होगा, इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, और तब हमारा जीवन खुशी से और सफाई से, स्वच्छता से, साफ सुथरा जीवन हमारा रहेगा। When you woke up this morning, आज सुबह जब आप उठे, did you look out of the window, क्या आपने खिड़की से बाहर देखा? बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है लेखक, लास्ट पैराग्राफ है बच्चों। You would have seen those hills, क्या आपने बाहर दिखने वाले पहाड़ों को देखा? Become saffron as the sun rose against that lovely blue sky, उस सुंदर से, प्यारे से, उस शानदार नीले आसमान से निकलते हुए सूरज को देखा? And as the birds began to sing, और जैसे ही पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, and early morning cuckoo cooed, there was a deep silence all around, चारों तरफ कितना सन्नाटा था जब पक्षी चहचहा रहे थे, a sense of great beauty, सुंदरता का भाव, and loneliness, और अकेलेपन की भावना, एक एकाकीपन, and if one is not aware of all that, अगर कोई इंसान इन सबसे अगर जागरूक नहीं है, परिचित नहीं है, one might just as well be dead, तो फिर वो मरे के समान है। अगर बाहर की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता हम नहीं देख रहे हैं, वर्ड्सवर्थ ने इसी ब्यूटी की बात की है, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली, उन सब ने यही जो नेचर की ब्यूटी है उसी की बात की है, बट ओनली इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर्स हुए हैं, पोएट हुए हैं, बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन बहुत, लेखक कहता है बहुत कम लोग इन बातों को समझ पाते हैं और वही महान बनते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली वेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, जब आपका दिमाग और दिल खुला हुआ है तभी आप इन सबसे जागरूक रह पाएंगे, तभी आप इन सबको समझ पाएंगे। When you are not frightened, जब आप डरे हुए नहीं है, when you are no longer violent, जब आप हिंसक नहीं है, then there is joy, तब खुशी है, there is an extraordinary bliss, अतिरिक्त, अविस्मरणीय, extraordinary bliss, खुशी of which very few people know, और एक ऐसी खुशी जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, and it is part of education to bring about that state in the human mind, और ये शिक्षा का भाव है जो कि it is part of education, ये शिक्षा का एक भाग है, to bring about that state in the human mind, एक मानवीय मस्तिष्क में ये भावना शिक्षा से ही पैदा की जा सकती है, शिक्षा से ही किसी के अंदर ये सब सोच विकसित की जा सकती है, इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और हमारा भी एक स्लोगन यही है, पढ़े पढ़ाएं, कुछ सीखे और सिखलाएं, बस। तो ये छोटा सा एक लेसन था, आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, अबाउट द ऑथर जे कृष्ण मूर्ति, इज अ रेप्यूटेड राइटर एंड एन एजुकेशनिस्ट, एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, शिक्षाविद हैं, लाइक बर्टन रसेल की तरह। हिज माइंड वाज फुल ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज, उनका दिमाग भी जो है क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ था, टू चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड, जो ये पुरातन हमारा जो संसार है उसको बदलना चाहते हैं वो। देयर इज थिंग ऑफ एथिकल वैल्यूज, नैतिक मूल्य इन हिज राइटिंग्स, उनके लेखन में उनके अंश देखे जा सकते हैं। हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज रिमार्केबल, शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, उल्लेखनीय है। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर फंक्शनिंग विच आर डिवोटेड टू बिल्ड अप अ जनरेशन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड एकेडमिशियन।
ये जो जय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है, इसके अंतर्गत बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और शिक्षण संस्थान चल रहे हैं।

के अंतर्गत सर्वाधिक उत्तम उत्कृष्ट विद्यार्थी और शिक्षाविद तैयार किए जाते हैं। अबाउट द टेक्स्ट इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णमूर्ति पॉइंट्स आउट द डेंजर्स ऑफ वायलेंस, हिंसा के जो खतरे हैं उसके बारे में वो बताते हैं, विच इज अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, जो कि वैश्विक स्तर पर सोचने का एक कारण है, सोचने का एक बिंदु है। देयर इज अ नीड टू डेवलप अ न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति के निर्माण की आवश्यकता है, इंक्लूसिव ऑफ लव, जिसमें प्रेम का समावेश हो, पिटी, दया हो, पेशेंस, धैर्य हो एंड जेनरोसिटी, और सबके लिए सम्मान हो। एजुकेशन कैन बी अ गुड टूल टू कर्ब वायलेंस, हिंसा को दूर करने के लिए, हिंसा को भगाने के लिए शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है। नीचे ग्लॉसरी में वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं बच्चों, आप ही की बुक में दिए हुए हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश दिए हुए हैं, इनको कि आप याद करें, इनके हिंदी मीनिंग याद करें, है ना, तो आपको काफी मदद मिलेगी। एक पॉकेट डिक्शनरी अपने पास जरूर रखें। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, और मिलेंगे अब इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी की जो एक्टिविटीज हैं वो हम करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, टेक केयर, सी यू।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: I was young, I played for fun, made up the words, nobody heard, but now I see, all eyes on me, and suddenly I made a dream.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 90.4 FM सुन रहे हैं आप, और आज हम आ गए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों को लेके, और बहुत ननी ननी सी परियां आज हमारे साथ मौजूद हैं, और हम बात करने वाले हैं आज उनसे जिम्मेदारियों के बारे में। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उनकी, क्या क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज तक निभाते आए। वैसे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां तो हम सबकी होती है, तो आइए उन सबसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताओ और मुझे ये बताओ आपकी कौन सी जिम्मेदारी आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगती है आपकी।
3: मेरा नाम अवंतिका है, और मुझे अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी बहुत अच्छी लगती है, जो मेरे मम्मी पापा मुझसे कहते हैं, बोलते स्कूल जाने के बोलते, वो जिम्मेदारी।
2: और आप बताओ सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको क्या लगता है, ये तो बहुत मुश्किल है, तो बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर।
4: मेरा नाम अंजलि है, मुझे वो पढ़ाई की और घर की बहुत जिम्मेदारी रहती है, मम्मी पापा भाई बहन सबकी चिंता रहती है।
5: मेरा नाम निकू को चंपावत है, मेरी जिम्मेदारी पढ़ाई भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं बड़ी बन के कुछ अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ, बड़ी प्रिंसिपल मैम।
6: मेरा नाम प्रेरणा है, और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये कि हम, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और सबका मुझे ध्यान रखना पड़ता है, जो पापा कहते हैं उनकी बात माननी पड़ती है, मैम का आदर करना पड़ता है और सबके लिए।
7: मेरा नाम राधिका कोरी है, और मैं घर में सबसे छोटी हूँ, और मेरे भाभी के बच्चों को पढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी, रोज स्कूल से जाती हूँ उनको पढ़ाती हूँ, और जैसे कि रोडों पे कोई कचरा फेंकता है उनको बोलने की भी मेरी जिम्मेदारी है, जैसे कोई कचरा फेंके तो उन्हें बोल सकती हूँ कि इसे डस्टबिन में डालो, और जो हानिकारक करता है उसे मैं मना कर सकती हूँ, ऐसी सोचे, और है ना, मैं बड़ा पढ़ के कुछ बनना चाहती हूँ।
8: मेरा नाम अमीशा कालमा है, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे आसपास कचरा ना फैलाए, और हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, और हमें हमारी सब जिम्मेदारी निभाना चाहिए, हमें सिगरेट पिए वहाँ पर ना बैठना चाहिए, और उन्हें डांटना चाहिए कि ये हानिकारक चीज है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, और मैं कुछ बड़ी बन के ऐसा बनना चाहती हूँ जो गरीब हो उनकी सहायता करना चाहती हूँ, और जो बुरा करे उनकी मदद करना चाहती हूँ। मेरी ये है कि मेरे को बहुत पढ़ना है, और मेरे भाई को, छोटा भाई है मेरा, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, चाहे मैं नहीं पढ़ूँ पर मेरे भाई को पढ़ाऊँ।
9: मेरा नाम लता परिहार है, और मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाती हूँ, और मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी करूँ।
2: बहुत अच्छी बात है, वैसे तो आप लोग अभी छोटे हो, 9th क्लास में हो, पढ़ाई की जिम्मेदारी तो है ही, और जिम्मेदारी शब्द जब मैं आपको बोलती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या मतलब है जिम्मेदारी का आपके लिए?
3: जिम्मेदारी तो हमारे सर पे बहुत होती है, जैसे स्वच्छता की जिम्मेदारी होती है, पढ़ाई की जिम्मेदारी होती है आदि, पर हमें सब जिम्मेदारियों को हमें निभाना भी चाहिए, जो हम जो करते हैं, यदि जब हम अच्छा करते हैं तो वो भी हमारी जिम्मेदारी होती है, जब बुरा करते हैं वो भी हमारी जिम्मेदारी होती है। जैसे अभी कोई भी जिस सड़क को या फिर कोई गंदा करता है या फिर कोई भी चीजों को गंदा करता है, हम उसे बोलते हैं कि सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, जैसा गांधी जी ने किया था वैसा।
2: और जिम्मेदारी क्या होता है, मतलब क्या है जिम्मेदारी का, क्या होता है उससे?
10: क्या फायदा है, क्या लगता है आपको जिम्मेदारी होती क्या है?
11: जिम्मेदारी ये होती है कि कोई हमें कुछ बोल रहा है या कोई हमें हमारे से गलत व्यवहार कर रहा है तो हमें उसका डर के सामना करना चाहिए, और या कोई अपने संग गंदा व्यवहार कर रहा हो या कोई अजीब चीजें कर रहा हो तो हमें हमारे मैडमों से या मम्मी से बोलना चाहिए, या अपने को कुछ भी गलत लग रहा है कि गलत है तो हमें या हमारे दोस्त या फ्रेंड उससे बोलना चाहिए, अगर फ्रेंड और दोस्त ना समझे तो हमें अपनी मैम से बोलना चाहिए।
12: जिम्मेदारी हमारे घर का जो भी काम होता है वो हमें ही करना पड़ता है, तो वो हमारी जिम्मेदारी है।
13: हमें घर की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मेरे भाई बहन की सबकी जिम्मेदारी लेनी, उन्हें पढ़ाना है बढ़ाना है और सभी।
14: हमारे मम्मी पापा मन कुछ बोलते तो एक तरह की जिम्मेदारी होती है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो मम्मी पापा उनको बोलते तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पास हो या पढ़ाई में अच्छे मार्क लो, क्योंकि पढ़ते तो हम ही है, वो तो पढ़ते नहीं है, तो वही मम्मी पापा हमको जिम्मेदारी देते हैं ये करने की, तो हमें ये करना चाहिए, यही इस प्रकार की जिम्मेदारी होती है।
12: हमारे मम्मी पापा कहीं गांव वगैरह जाते हैं तो हमारा छोटा भाई होता है उसकी भी जिम्मेदारी देके जाते हैं, बोलते हैं इसका ध्यान रखना, उसको स्कूल समय पे पहुंचाना, उसका टिफिन बना देना, ये भी हमारी जिम्मेदारी, पर घर का ध्यान रखना।
15: हमें जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम पढ़ के दिखाए कि हम भी कुछ कर सकते हैं,
16: लड़की भी आगे बढ़ सकती, जरूरी नहीं है कि लड़का है तो लड़के को भी पढ़ाओ, लड़कियों को भी पढ़ाओ, लड़की भी आगे बढ़ सकती, लड़की भी कुछ बन के दिखा सकती है, बेटी बचाओ देश बढ़ाओ।
17: जिस तरह मम्मी लड़कों को जिम्मेदारी देती है, लड़के आपकी जिम्मेदारी है कि तुम करोगे काम करोगे बढ़ोगे, कोई कोई मम्मी ऐसी होती लड़कियों को जिम्मेदारी नहीं देती लड़कों को देती है, ये भी बहुत गलत काम है, क्योंकि लड़कियां अपनी जिम्मेदारी को हासिल कर सकती है, उस काम को कर सकती है जैसा हमारे देश में हो रहा है।
18: जैसे कि मेरे पापा कमाने जाते और हम लोग पढ़ते नहीं है तो वो भी मेरे पापा की जिम्मेदारी है, जैसे काम करते और हम पढ़ेंगे नहीं तो मेरे पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी ये सोचती कि मैं कुछ पढ़ूं और कुछ बनूं और मेरे भाई बहनों को पढ़ाऊं मेरे से छोटे जो।
19: अच्छा अब मुझे एक और चीज बताओ कि आप लोगों को स्कूल में और घर में या अपने दोस्तों के साथ कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं ऐसी जो आप निभाते हो, कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता लेकिन फिर भी करते हो?
18: हमारी भली फ्रेंड हो उसे कभी बुरी सलाह नहीं देनी चाहिए, उसे बुरे मतलब काम नहीं सिखाना चाहिए, अगर वो बुरा करती है तो हमें उसे सुधारना चाहिए, ये हमारी फ्रेंडों के प्रति जिम्मेदारी है।
19: कभी आपने ऐसी जिम्मेदारी निभाई है, कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप शेयर कर सकते हो?
18: ऐसा तो हालांकि मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरी सारी फ्रेंड है बहुत अच्छी है, और जो कोई ऐसा बुरा करता है तो हम हमारे घर वालों को बताते हैं।
19: ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम कुछ गलत काम करते हैं, हमारी फ्रेंड कुछ गलत काम करते हैं, हमारे साथ कुछ गलत काम होता है तो वो हम अपने मम्मी पापा से शेयर करें, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है।
20: और क्या जिम्मेदारी लगती है जो अभी निभाते हो आप लोग? मम्मी पापा कहते हैं,
19: मम्मी पापा कहते हैं पढ़ाई की जिम्मेदारी निभाओ, बस पढ़ो पढ़ो और अच्छे मार्क्स लेके आओ,
18: पहले हम नहीं पढ़े तो तुम पढ़ के दिखाओ।
12: हमारी जिम्मेदारी है कि स्कूल 9 बजे आना तो 9 बजे आना।
19: हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए और हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जात पात का भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, सब एक समान है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये होती है कि हम अपने से बड़ों का आदर करें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पे ही होती है, और हमसे छोटे भाई बहन भी होते हैं हम भी उसको यही सिखाते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम अपने से बड़े इसका आदर करो,
12: और अगर हम बड़ों का आदर करेंगे तो हमारे छोटे भाई भी हमसे सीखेंगे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
18: अगर हम बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो हमारे जो भाई बहन है वो भी कभी बड़ों का आदर नहीं करेंगे, वो भी हमें ऐसे ही जवाब देते रहेंगे।
20: दोस्तों के प्रति अच्छे क्या लगते हैं, इन लोगों के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है?
12: इन लोगों के प्रति मेरी ये जिम्मेदारी है कि ये कुछ भी गलत काम करे तो मैं इन्हें समझाऊं, क्लास में टीचर ना हो तो बुलाना जाना, ये भी मेरी जिम्मेदारी है।
19: यदि हमें तो अपनी जिम्मेदारी सौंपता है तो हमें उसे पूरा करना चाहिए, यदि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम ये काम पूरा करो तो हमें वो काम पूरा करना चाहिए, उस जिम्मेदारी को छोड़ना नहीं चाहिए, यही हमारी सबसे सच्ची जिम्मेदारी होती है।
12: जिम्मेदारी का मतलब होता है विश्वास रखो किसी पर,
13: और हम गलत काम करेंगे तो हमारे भाई बहन भी गलत काम करेंगे।
19: बहुत अच्छी बात है। अच्छा अपने प्रति आपको कोई जिम्मेदारी लगती है कि मेरे लिए मेरी ये जिम्मेदारी है? कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे लगता है मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी है? ये
12: मुझे ऐसा अपने लिए ऐसा लगता है कि मुझे 9th में पास होना सिर्फ बस।
19: मेरे को मेरी जिम्मेदारी ये लगता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बड़ा बन के दिखाऊं और मम्मी पापा का नाम रोशन करूं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे को ये लगती है।
1: जैसे मैंने भी अपने मम्मी पापा से ऐसा बोला है कि मैं ना 9th क्लास में पास होंगी, अच्छे मार्क्स लेके आऊंगी। जहाँ तक मेरी मम्मी ने भी मुझे ऐसा बोला था कि तेरी जिम्मेदारी है कि तू अच्छे मार्क्स लेके आएगी, अच्छा पढ़ेगी।
21: मेरी मम्मी पापा ने मुझे ऐसे बोला था, तू अच्छा पढ़, जितना पढ़ेगी इतना पढ़ाऊंगा तुझे, और अच्छी चीजों पे ध्यान देना, ऐसी बुरी चीजों पे ध्यान मत देना, और जो तू पास होगी तो जो तू मांगेगी वो मैं तुझे दिलाऊंगा।
20: और आपको क्या लगता है कि मेरे को मेरे लिए ये करना जरूरी है, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए कि मुझे निभानी ही है?
21: हाँ, मुझे टीचर बनना है और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, बस जितना पढ़ा जाएगा उतना पढ़ूंगी टीचर बनने के लिए। मुझे लगता है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ना पढ़ना है और कुछ बन के दिखाना है कि हाँ लड़की नहीं, लड़कियाँ भी कुछ कर सकती है, और डर के नहीं रहना है। जैसे आज के समाज में ऐसा होता है ना, जैसे लड़कों को हर चीज का हक दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता, ऐसे मेरे मम्मी पापा बिल्कुल नहीं है। मेरे मम्मी पापा यही कहते हैं कि पढ़ो और कुछ बनो।
20: ठीक है, ये जिम्मेदारी आपको लगती है कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, ये आपने ऐसा क्या देखा या नोटिस किया जो आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी?
21: किसके पेरेंट्स ऐसे होते हैं लड़कों और लड़कियों में बहुत भेदभाव रखते हैं, जैसे ये लड़का ही सब कुछ कर सकता है, लड़कियां पढ़ नहीं सकती। वैसे गांव में देखा था कि मतलब कोई लड़की पढ़ने की कोशिश करती है तो उसकी मम्मी ने मना कर दिया कि तू पढ़ेगी नहीं, तेरे भाई जाता है, तू घर के काम कर।
22: मेरे को टीचर बनना है, मैं पढ़ के दिखाऊँ, नहीं तो मेरे को पास ही होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं मेरे को।
21: एक बार एक छोटा लड़का था तो वो बोला कि मैं इंग्लिश मीडियम में जाऊंगा, तो उसकी बहन ने कहा कि मम्मी मैं भी इंग्लिश मीडियम में जाऊंगी, तो उसकी मम्मी ने कहा कि इसको जान दे, इधर बड़ा होकर कुछ कमा के देंगे तो परिवार भी चलेगा, और तू तो वैसे भी पढ़ाई घर की है, पढ़ाई घर में जाएंगी, तेरे को पढ़ाने से क्या मतलब।
20: अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो आप लोग। अच्छा चलो, अच्छा मुझे ये बताओ कि जो जिम्मेदारियां आप लोगों ने अभी बताई आपकी है, तो कभी उसका आपको ऐसा लगता है ये तो बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, या मुझे भारी लगता है, या मुझे कभी कभी दबाव महसूस होता है किसी जिम्मेदारी को लेके, या मन नहीं करता, कभी ऐसा कभी लगता है?
21: हाँ, मुझे घर का काम करना अच्छा नहीं लगता, और मम्मी मुझे घर का काम करवाती है इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगता है घर का काम करना, और मुझ पे ऐसा दबाव लगता है, मैं एक काम भी नहीं करूँगी ना तो मेरी मम्मी बोलेगी किया क्यों नहीं, पढ़ूंगी नहीं तो चलेगा, पर मेरी मम्मी बोलेगी कि पोछा नहीं लगाया तो पोछा क्यों नहीं लगाया, ऐसे बोलती है मेरी मम्मी, इसलिए मुझ पे ऐसा दबाव लगता है। मुझे
20: मेरे को मेरे पे जिम्मेदारी लगती है कि मेरे पे बहुत प्रेशर आता है पढ़ने का, के बस पढ़ पढ़ कभी सोचती नहीं मैं काम करवा देती मम्मी को, नहीं मैंने अच्छा नहीं लगता, मैं मम्मी ज्यादा काम करती इसलिए मैं करवाती, ज्यादा भी प्रेशर नहीं करती हूँ, और मैं मम्मी जो काम बोलती हूँ मैं कर लेती हूँ, घर से भी काम करके आती हूँ, अभी घर पे जाऊंगी तो अभी काम करती हूँ, फिर 5 बजे पढ़ने जाती हूँ, 7 बजे आती हूँ, फिर मैं थोड़ा मम्मी से हेल्प करवाती हूँ, फिर वापिस से पढ़ने बैठती हूँ। मतलब कि आपको कौन सी जिम्मेदारियाँ, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ ना, फ्रेंड्स के लिए भी, मम्मी के लिए भी, स्कूल के लिए, टीचर के लिए, अपने लिए, तो भारी लगता है कभी कोई लगता है अरे ये क्यों है मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मुझे दबाव फील होता है?
23: मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ नहीं है, बट पढ़ाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस तरह मैं पढ़ाई करती हूँ, जिस तरह मैं खेलती हूँ, जिस तरह फ्रेंड्स के साथ मजाक करती हूँ, ये भी मेरी इस तरह की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये नहीं कि हम पढ़ाई करें, हम किसी से मजाक भी करते हैं, वो भी हमारी जिम्मेदारी होती है, इस तरह का
20: भारीपन लगा किसी भी जिम्मेदारी का?
23: नो, भारीपन तो नहीं लगा।
21: जैसे हमें कोई चीज लगती है कि ये भारी है, अगर हम उसको एक बार करके देखें तो वो एकदम सरल लगती है, जैसे कोई काम देते तो हाँ वो मैं कर लेती, पर अपने ऐसा लगता है जैसे भारी है, एक बार अपने को उसको 2-3 बार करके देखो तो एकदम सरल हो जाती है।
23: जिस तरह मैथ्स अपन को पसंद नहीं आती, बिल्कुल नहीं करना है, सवाल होते नहीं है, पर तो भी अगर तुमसे ध्यान लगा के देखो तो हमको वो समझ में आता है, यदि एकदम ध्यान लगा के उसको पढ़े, ध्यान लगा के कॉपी में करे तो।
21: हमारी जिम्मेदारी तो है मैथ्स पढ़ने की, मैं फेल हो जाएंगी मैथ्स।
24: कभी कभी ना एग्जाम जैसे आने वाले थे तो प्रेशर पड़ता है घर वालों की वजह से, जैसे मैं कभी काम नहीं करती हूँ, मेरा मन होता है तो मैं करती हूँ, तो मम्मी कहती है कि ये क्यों नहीं किया, तो मैं कभी कभी मैं मम्मी के सामने बोल लेती हूँ, फिर बाद में मुझे सॉरी बोलना पड़ता है, तो मैं मेरी मम्मी मारती तो नहीं है, कभी कभी डांट देती है, तो मैम कभी कभी गुस्सा आता है।
22: मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जाम आने वाले और वो सर पे बहुत भारी लगता है, और हम जब एग्जाम देने जाते तो हमें सरल ही लगता है, बस हमें डर लगता है कि एग्जाम आने वाले हैं, बहुत डर लगता है, डर भारी लगने लगता है।
20: तो जब अभी ये जिम्मेदारी को लेके भारीपन आपको महसूस होता है तो किससे बात करते हो या क्या करते हो उसके लिए?
22: मम्मी पापा से यही बात करते हैं,
23: आज हमको ये पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, आज हमको ये करने की इच्छा नहीं होती, तो मम्मी पापा हमको यही बोलते हैं कि ये करना चाहिए, ये हमारे काम आएगा, पढ़ने हमारे काम आएगा, फालतू की बातें हमारे काम नहीं आती, इस प्रकार की जिम्मेदारी।
24: और मैं मेरी फ्रेंड के साथ करती हूँ या मैं ट्यूशन जाती हूँ वाली मिस के साथ करती हूँ कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये करा और मेरे को ये बहुत भारी लगता है कि आज मैंने ये करा, मेरे को बहुत भारी लग रहा है, फिर वो पूछती हूँ कि मेरे को ये नहीं आ रहा, तो फिर वो बताते हैं तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ ये सही है। हाँ जैसे कोई कुछ ऐसे गलत तरीके से कुछ बोल देता है या गलत तरीके से कोई देखता है तो मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि ठीक ही नहीं हो रहा है, कि ये बहुत मतलब गलत चीज है, तो इसके लिए मैं सोचती हूँ कभी कभी।
20: तो आपको लगता है आपकी जिम्मेदारी है कि ये आपको बताना चाहिए किसी?
24: हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी कि मेरे को टीचर से शेयर करना चाहिए या हमारे जो फ्रेंड है उससे शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये गलत चीज है, इसलिए हमको बताना चाहिए किसी को। हाँ हमेशा करती हूँ, या अगर मैं बोलती हूँ तो सिर्फ एक को बोलती हूँ या किसी दो जने को नहीं बोलती, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो अपने एक को बोलते तो दूसरे से फैलती, दूसरे को बोलते तो तीसरे से फैलती, ये हमको चीजें फैलानी नहीं चाहिए। जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है या बात को अंदर ही रखता है उसको बोलना चाहिए, जो बहुत बड़े है, जो बहुत समझदार है उनको बोलना चाहिए। और मैं ऐसे लोगों को ही बोलती हूँ जो समझता है, अपनी फीलिंग को समझता है कि हाँ ये गलत चीज है, तुम इस लड़की को कर रहे हो, तो हाँ ये बोलना चाहिए कि हाँ ये गलत है, तो हमें इसका डर के सामना करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें ना डर के ना छुप के बैठना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं अब स्कूल ही नहीं छोड़ दूंगी, पर ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कूल जाना चाहिए। लड़की जरूरी नहीं होते कि लड़की एकदम जी के रह के कुछ घुटन सी रहे, हमको खुल के बोलना चाहिए कि नहीं ये गलत है, तो इसका गलत का लुक और अपने गलत होता है, सोचते नहीं वो है ये, तो और गलत का फायदा उठाते, इसलिए हमें डर के दम के रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लड़की है तो इसलिए नहीं कि घबरा के रहे, लड़की को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि है ना हमें इससे आगे बढ़ेंगे, जब भी जाके लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब डर गए ना तो उसके बाद आगे जाके कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अभी अपने रहना सीख जाएगी कि अभी हमको ऐसा नहीं लगता कि डर नहीं हो, डर खोलनी चाहिए हमें, कहीं पे भी जाओ वहाँ पर सामने बोलना चाहिए, चाहे कुछ गलत हो रहा है चाहे हमारे साथ सही हो रहा है, पर उसका डर के सामना करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये हमारे हमको डरना डर से हटाता है कि हमें ये गलत हो रहा है तो गलत का फायदा उठाता है, इसलिए हमें आगे करके कुछ बढ़ना चाहिए या कुछ करना चाहिए। और जब अपने ठान लिए कि आज ये करना है तो उसको करके ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए।
0: हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी, 8-9 साल की थी और वो 5वीं में पढ़ती थी। उसकी मम्मी ने मेरे को जिम्मेदारी कहा कि तू इसको साथ में स्कूल में लेके जाएंगी और साथ में घर लेके आएंगी, तो फिर 2-3 दिन तो मैं खुशी खुशी इसको लेके आई, फिर मेरे को भी गुस्सा आता था कि मैंने ऐसे जिम्मेदारी क्यों ली कि इसको साथ में लाना जाना, तो मेरे को फिर मैं फ्रेंड से मैंने शेयर किया कि वो मस्ती बात करती थी।
24: ये जिम्मेदारी कोई अच्छी दी है, ये जिम्मेदारी है कि ये कहीं इसके संग में लेके जाना, संग में लेके आना, ये जिम्मेदारी अच्छी दी है, क्योंकि है ना कोई गलत हो या कुछ गलत कर रहा हो, इसलिए ये जिम्मेदारी देते हैं माँ बाप के हमें इसको साथ में लेके आने से। साथ में दो जने होते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, और एक दो जने होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा अलग अलग लगता है और डर सी लगती है कि हमें अकेले जा रहे अकेले आ रहे, क्यों कुछ हो नहीं जाए, क्यों हमको कुछ देखे या कुछ करे, तो ऐसा बहुत डर लगता है, इसलिए ना साथ में लेके आना। साथ में लेके आना कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती, इसलिए तो हमें करना चाहिए। और अगर उसकी मम्मी उसे अकेले भेजिए तो ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं हमारे साथ तुमको कुछ तकलीफ हो तो मुझे बोलना, नहीं कुछ पढ़ाई में कुछ हो तो मेरे को बोलना, ऐसा करना चाहिए। कभी भी डरना नहीं चाहिए कि हमें इसको नहीं लेके जाना, कभी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं साथ में लेके जाने का और साथ में लेके आने का।
0: मैं मेरी सारी फ्रेंडों से जो भी बात होती है मैं शेयर करती हूँ, कभी ट्यूशन में दीदी को बताती हूँ कि आज ये मेरे साथ हुआ था, और कभी कभी मम्मी पापा से भी बोल देती हूँ। बाकी ज्यादातर मैं मम्मी पापा से नहीं कहती सारी बातें, वैसे तो मैं फ्रेंडों को ही बताती हूँ। मैं ट्यूशन जाती हूँ तो कभी कभार वहाँ पे मुझे डर लगता है अंधेरे से जाने में, तो मेरी फ्रेंडें मुझे वहाँ तक छोड़ देती है, फिर मैं घर आ जाती हूँ।
20: जिस तरह अपन को डर लगता है उस तरह अपने मम्मी पापा को डर लगता है कि बच्चे कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, इस तरह मम्मी पापा भी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। ये हमारे मम्मी पापा की जिम्मेदारी होती है। कुछ कुछ मम्मी पापा होते हैं जो अपन को साथ या हमारे पास में ट्यूशन लगाते हैं, हमारे साथ जाते हैं, ये भी उनकी जिम्मेदारी होती है।
23: कभी कभी ऐसी ऐसी कुछ बातें होती है, इंसिडेंट बातें होती है, जिस प्रकार ऐसी ऐसी जो बातें होती है जो फ्रेंड के साथ शेयर करते बट मम्मी पापा के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो बातें हमें मम्मी पापा से बताने में बहुत डर लगती है, क्योंकि कुछ कुछ कुछ मम्मी पापा ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, मतलब इतनी सी बात कहने पर उसको इतना डांटते हैं, इतना डांटते हैं, इतना मारते हैं, उस पर भी बच्चों का बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है कि अगर नहीं मैं ये बात नहीं बताऊंगी मम्मी को कि मम्मी मेरे को मारेगी या पापा मेरे को मारेंगे, ये बात नहीं बताऊंगी, और कुछ बच्चे अंदर ही अंदर घुट घुट के रह जाते हैं कि नहीं मेरे को डर लगता है। हमारे टीचर भी बोलते कि तुम अपने मम्मी पापा को बता देना, लेकिन तो भी बहुत सी बातें होती है जब मम्मी पापा के साथ अपने बच्चे शेयर नहीं करते, डरते अपने मम्मी पापा से बताने के लिए।
24: अपने साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी मैं ट्यूशन से कभी अकेले जाती हूँ ना, तो वहाँ पे मतलब कुछ लड़के बैठे थे, तो कभी कभी है ना वो कुछ पता नहीं बोलते रहते हैं पर मैं उनकी बात नहीं सुनती, तो मुझे कभी कभी वहाँ से डर लगता है अकेले जाने में कि आज भी वो वहाँ पे बैठे होंगे तो मुझे डर लगता है। तो कभी कभी मेरी फ्रेंडों को मैंने आके बताया, ट्यूशन वाली दीदी को बताया, तो मेरी फ्रेंड मुझे वहाँ तक छोड़ देते हैं, तो मुझे अब डर नहीं लगता।
20: अच्छा चलो मुझे अब ये बताओ कि जो आप ऐसी कोई बात लगती है आपको कि ये मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी नहीं कर पाती हूँ, मुझे करना चाहिए, मतलब मेरी जिम्मेदारी तो है लेकिन मैं नहीं कर पाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये कभी ऐसे भावना आती है, कभी लगता है अरे ये तो मुझे करना चाहिए बट मैं नहीं करती या मैं नहीं करना चाहती या मैं कर नहीं पा रही। जैसे हमारे मम्मी पापा हमको ऐसा बोलते कि तू ये काम कर, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, जैसे हमारे मम्मी पापा बोलते कि ये काम कर, लेकिन हम

0: कर पाते हैं। हम वो मामला हम हमारे मम्मी पापा से बोलते भी है कि अगर मुझे ये काम नहीं करना, मुझे पसंद नहीं है काम, तो भी मम्मी पापा बोलते हैं कर, लेकिन हम भी काम नहीं करते, लेकिन तो भी मजबूर होकर करना पड़ता है काम जो भी है।
1: मम्मी कहती है कि कभी घर के काम करते हो, मुझे गुस्सा आता है कभी कभी, तो मैं करती नहीं, तो कभी कभी मम्मी को बोलते रहती हूँ मम्मी, फिर बाद में मम्मी कुछ कहती तो नहीं मुझे, पर कभी कभी फिर गिल्टी फील होता है कि ऐसे बोला तो फिर बोला क्यों।
0: अच्छा एक और चीज ये कि दूसरों की मतलब मम्मी पापा की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, आपको क्या लगता है मेरे प्रति उन लोगों की क्या जिम्मेदारियां हैं जो वो लोग करते हैं या नहीं निभाते, तो भी कभी कोई इंसिडेंट ऐसा आप बताओ कि उनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है।
2: मैम मेरा ना किसी के साथ झगड़ा हो गया ना बात बात में, दोस्त ने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने मन ही मन सोचा कि उसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, उसकी जिम्मेदारी थी कि मेरा साथ देना, मेरे साथ खेलना बैठना, और उसने मेरा साथ ही नहीं दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि तूने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, फिर उसने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैंने फिर दोस्ती तोड़ ली।
0: जैसे मैंने अपनी मम्मी को ऐसा बोला था कि मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, जैसे मैं मम्मी से दो दिन से बोल रही हूँ लेकिन मम्मी भूल जा रही है हर चीज काम में, मुझे मम्मी भूल जा रही है, फिर जैसे एक बार मेरी मम्मी को बोल रहा है मम्मी मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो लाके क्यों नहीं दे रही, मम्मी बोले मैं ध्यान से उतर रहा है, उन्होंने पूरी नहीं की, मुझे मेरे मन की फीलिंग ऐसी है कि उन्होंने पूरी नहीं की, लेकिन उनके मन की फीलिंग ऐसी है कि मैं ये भूल गई, ये मैं भूल गई।
3: मैं जो दूसरी स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पर एक टीचर थी, मतलब है ना बॉन्ड पे बातें करती रहती थी, पढ़ाती नहीं थी, कभी कभी हम बुलाते थे हाँ ऐसे समझा देती थी कि हाँ ये पर इंग्लिश का पीरियड रहता था ना, वो जब ना छुट्टी होने से पहले घंटी लगती थी उससे पहले बैग लेके चलो, इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि टीचर की भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए पढ़ाना है तो उनके टाइम पे आने का, टाइम पे जाने का, इसलिए कि छुट्टी होने से पहले बैग पकड़ के चलो।
0: तो वो सब्जेक्ट अच्छे समझ में आता था कि नहीं?
3: अच्छी तरह समझ में नहीं आता था, बन कभी कभी पढ़ाती थी ना, और कभी कभी कोई अच्छी बात बोलते थे तो वो समझ में आती थी, बन पढ़ाने की बात बोलती थी वो समझ में नहीं आती थी।
2: पढ़ाती ही नहीं थी कुछ, लेट आती थी और जल्दी चली जाती थी, कुछ भी पढ़ाती नहीं थी, जैसे एट वाले बच्चों को कुछ भी अच्छी पाठ पढ़ाते या कुछ इंग्लिश पढ़ाते, पर वो स्पेलिंग बताती थी छोटे बच्चों की, और बताती थी और चली जाती थी, पढ़ाती ही नहीं थी।
3: ऐसे तो बहुत अच्छी थी, हमको कुछ काम होता तो वो कर लेती थी, जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम आ रहे थे तो मॉडल पेपर लाना था तो हमसे पैसे नहीं लिए, खुद के पैसे डाल के ला रही, रोज मॉडल पेपर का करवाती थी, ऐसे अच्छी थी, पर ना अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती थी, मतलब आना जाना इनका मतलब टाइम सही नहीं था, और ऐसे पढ़ाने करने में तो अच्छी थी, मतलब हमको जैसे ना अभी बैंक का खाता खुलवाना था तो हमारे मतलब दूसरे को साथ नहीं देते थे, मतलब उन मैम पे चिढ़ते भी थे आधे टीचर, पर ना हम ज्यादा उनसे बात करते थे तो सब चिढ़ते थे, तो हमारी जिम्मेदारी वो पूरी करती थी, पर ऐसी बात है क्योंकि वो ना लेट आती थी, लेट जाती थी, इसलिए अच्छा नहीं लगता था, पर बहुत अच्छी समझाने करने में बहुत अच्छी, और बाकी इंग्लिश तो पढ़ाने में बस पढ़ाती थी तो छोटे बच्चों को पढ़ाते वैसा पढ़ाती थी, और स्पेलिंग और देती थी बस, ये देख के बोलती थी कि कल तुम्हारा टेस्ट है ये पढ़ लेना वो कर लेना, पर आती नहीं थी।
2: कभी कभी मैम क्लास में नहीं आते और वो सब्जेक्ट रह जाता है हमारा, एग्जाम चल रहे हैं तो कभी कभी मैम क्लास में आते नहीं है, हम बुलाते हैं तो वो कभी कभी वो भूल जाते होंगे, पर मुझे ऐसा नहीं पता जाता, तो बुलाते हैं तो कभी कभी आते नहीं है वो, तो हम क्लास में बैठे रहते हैं और पूरी लड़कियां चिल्लाती रहती है, तो वो भी उनकी जिम्मेदारी है कि वो आके हमें पढ़ाए, पर वो आते नहीं है, लड़कियां चिल्लाती रहती है यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। मेरी फ्रेंड ने जिसे मतलब है ना पहले मेरे साथ पढ़ती थी, फिर मेरी दूसरी फ्रेंड ने बनाई, तो मैं उनसे बातें करती हूँ ना तो वैसे बोलती है कि मेरे से बात कर तू और उन लोगों से बातें मत कर, ऐसा मतलब मैं उनसे बातें करती तो ऐसे चिढ़ती और कुछ कुछ मतलब गंदा गंदा बोलती थी ऐसे, फिर झगड़ा हो गया था हम दोनों का।
1: स्कूल के टीचर सब अच्छे प्रिंसिपल मैम सब, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी सब निभाते हैं, सब अच्छी प्रिंसिपल मैम है और ना वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं।
0: सबसे अच्छी हमारी प्रिंसिपल मैम है, जिससे मैं अपने दूसरे स्कूल से पढ़ के निकली वहाँ से भी अच्छी हमारी प्रिंसिपल मैम है, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैम जो हमें हर चीज बताती है, हमसे हर बार शेयर करती है, मैं 9th A में हूँ जिसे हम पढ़ते नहीं है, तो मैम हमारी क्लास में आके हमको समझाते हैं ये करना चाहिए, इससे हमारे माँ बाप का नाम रोशन होता है इस प्रकार का, और पूरे स्कूल में समझाती है तुम लोग जो ऐसे काम करो जिसमें हमारे ना मम्मी पापा का नाम रोशन हो, और बाकी जैसे कोई कोई इंसान जैसे पढ़ते नहीं तो उनको भी मैम प्यार से समझाती है, ऐसे डांट की नहीं समझाती, तो हमें प्रिंसिपल की मैम की जिम्मेदारी है कि वो हमें बोले, प्रिंसिपल मैम की हमारी आदत भी बहुत अच्छी है,
1: तो गलती होती ना तो डांटते तो भी अच्छा लगता है, उनकी डांट सुनने में भी अच्छा लगता है। चार स्कूल में पढ़ के आई सबसे स्कूल ये अच्छी लगी, हमारे सब टीचर माँ की जैसे सारे टीचर। अच्छी शिक्षा देते हैं और जो वो कहते हैं सुबह प्रार्थना में वो हम सब निभाते हैं। कोई भी लड़िया नहीं निभाती होगी, पर जो बोलते हैं ना वो हमारे भले के लिए बोलते हैं।
0: और बेटी के जैसे रखते हैं हमको, और खुद की बेटी से भी ज्यादा हमको बेटी जैसी रखती है और अच्छा पढ़ाती है।
4: मेरी जिम्मेदारी है कि समय पर मैम को फर्स्ट पीरियड पे बुलाना, सेकंड और थर्ड, और बच्चों का अच्छी तरह से पढ़ाना, सब मेरी जिम्मेदारी है।

वजूद आदमी का, बेटिया तो है लम्हा खुशी का, बेटिया तो है लम्हा खुशी का, है वजूद इनसे ही आदमी का, बेटिया तो है लम्हा खुशी का, इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो, बेटिया तो है लम्हा खुशी का, बेटिया तो है लम्हा खुशी का, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ।

0: दोस्तों, ये गीत तो आप लोगों ने सुना होगा।
1: क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है?
0: इसीलिए अपनी बच्चे की कम उम्र में शादी ना कराएं।
1: उनके स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्हें खूब पढ़ाएं। बेटी कुदरत का है उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार। जो बेटी को दे पहचान,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी जी की द्वितीय अमेरिका यात्रा 1899 के लिए तैयारियां की जा रही थी। वे अपने एक मित्र से मिलने कलकत्ता गए हुए थे और लौटते समय कुछ क्षण बाग बाजार में बलराम बाबू के घर रुक गए थे। बेलूड़ मठ तक साथ चलने के लिए उन्होंने अपने एक मित्र प्रियनाथ सिंह जी को बुलवा भेजा। उनके आने पर स्वामी जी का और उनका इस प्रकार वार्तालाप हुआ।
1: आज एक मजेदार बात हुई। मैं एक मित्र के घर गया था। उन्होंने एक चित्र बनवाया था। विषय था कुरुक्षेत्र में अर्जुन कृष्ण संवाद। श्री कृष्ण रथ में खड़े हैं, हाथ में रास है और अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने मुझे ये चित्र बताकर मेरी सम्मति मांगी। मैंने कहा ठीक ही है, किंतु जब वे नहीं माने तो उन्हें मुझे अपना यह प्रमाणिक मत बताना ही पड़ा कि उस चित्र में मुझे प्रशंसा योग्य कुछ नहीं दिखाई पड़ा। प्रथम तो श्री कृष्ण के युग का रथ आज के स्तूपाकार वाहनों के समान नहीं होता था और दूसरे श्री कृष्ण की आकृति में भावों का नितांत अभाव था।
2: क्या उस युग के रथ स्तूपाकार नहीं होते थे?
1: क्या आप नहीं जानते कि बौद्ध युग के बाद इस देश की हर बात में एक प्रकार की व्यवस्था सी आ गई। प्राचीन राजागण स्तूपाकार रथों में कभी युद्ध नहीं करते थे। राजस्थान में आज भी कुछ रथ हैं जो उन प्राचीन रथों से कुछ मिलते जुलते हैं। यूनान की पौराणिक कथाओं में वर्णित रथों के

0: ने चित्र देखे हैं? उनमें दो पहिए होते हैं और इन पर पीछे से चढ़ा जाता है। हमारे रथ ऐसे ही थे। यदि चित्र के इन गौण अंगों का ही सही अंकन नहीं हुआ तो चित्र बनाने से क्या लाभ? ऐतिहासिक चित्र तभी उच्च कोटि का होगा जब उचित अध्ययन और गन्वेषणा के पश्चात वस्तु का वैसा ही चित्रण किया जाए जैसी वो उस युग में थी। यदि चित्र में यथार्थता नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं। आजकल हमारे जो युवक चित्रकला के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वे साधारणतया ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाई में कोई सफलता नहीं मिली और जिनसे घरवाले भी निकम्मा समझकर निराश हो गए हैं। इन व्यक्तियों से आप कैसे कलाकृति की आशा कर सकते हैं? सुंदर चित्र बनाने के लिए उतनी ही प्रतिभा लगती है जितनी की एक श्रेष्ठ रूपक लिखने में।
1: तो फिर इस चित्र में श्री कृष्ण का चित्रण कैसा होना चाहिए था?
0: श्री कृष्ण का चित्रण वैसा ही होना चाहिए जैसे वे थे, गीता के मूर्त स्वरूप। उस समय वे किंग कर्तव्य विमूढ़, मोहग्रस्त और कर्मण्य दोषोपहत अर्जुन को धर्म का उपदेश कर रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण की छवि से गीता का मूल तत्व अभिव्यक्त होना चाहिए।
1: वो कैसी छवि स्वामी जी? कहते कहते स्वामी जी ने अपनी मुख मुद्रा और भाव वैसी ही बना ली जिस तरह कृष्ण की चित्र में होनी चाहिए और बोले,
0: देखो श्री कृष्ण ने घोड़ों की रास इस प्रकार पकड़ रखी है। रास इतनी तनी है कि घोड़े अपने पिछले पैरों पर उठ गए हैं और उनके अगले पैर हवा में उठे हैं और मुख खुल गए हैं। इससे श्री कृष्ण की छवि में उनकी महान कर्मशीलता प्रकट होती है। उनका मित्र अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में धनुष बाण एक ओर फेंक रथ में कायर की भांति शिथिल और शोक मग्न होकर बैठ गया है और श्री कृष्ण एक हाथ में कोड़ा लिए और दूसरे हाथ से रास खींचे अर्जुन की ओर थोड़ा सा मुड़ गए हैं। उनका शिशु सरल मुख स्वर्गीय प्रेम और सहानुभूति से दीप्त हो उठा है और वे अपने सखा को गीता का संदेश सुना रहे हैं। अब बताओ, गीता नायक के इस प्रकार के चित्र से मन में कैसे भाव जागृत होंगे?
2: ऐसे चित्र से श्री कृष्ण कर्मरत, स्थित प्रज्ञ, महान कर्मयोगी मालूम होंगे।
0: हाँ बिल्कुल ठीक है। शरीर का एक एक अंग कार्यरत है और फिर मुख पर नील गगन की गंभीर शांति और प्रसन्नता व्याप्त है। यही तो गीता का मूल तत्व है, सब परिस्थितियों में शांत और स्थिर, अनुद्विग्न रहते हुए शरीर, मन और आत्मा ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। कर्म करते हुए भी जिसका मन शांत है और जब कोई बाह्य चेष्टा नहीं हो रही तब भी जिसमें ब्रह्म चिंतन रूपी महान कर्म की धारा सतत बन रही है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योगी है, वही कर्म कुशल है।
3: इसी समय जो व्यक्ति नाव का प्रबंध करने गया था वो लौट आया और उसने सूचना दी कि नाव तैयार है। इसलिए स्वामी जी ने अपने मित्र से कहा,
0: चलो अब मठ चलें। तुम घर पर तो कहकर आए ही होगे कि मेरे साथ मठ तक जा रहे हो।
3: नौका तक जाते उनका वार्तालाप चलता ही रहा। स्वामी जी बोले,
0: फल की चिंता त्याग कर मन और आत्मा को प्रभु में लगाकर कर्म करना, अनंत कर्म करना। गीता के इस निष्काम कर्म योग का संदेश हर एक तक पहुंचाना चाहिए।
1: क्या यही कर्म योग है?
0: हाँ यही कर्म योग है, पर बिना साधना के कोई सन्यासी नहीं बन सकता। चारों योगों को मधुर समन्वय जब तक नहीं हो पाता तब तक किस प्रकार मन और आत्मा प्रभु में तल्लीन हो सकेगी?
1: साधारणतया ये धारणा हो गई है गीता में कर्म से केवल वैदिक यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों से ही तात्पर्य है और किसी अन्य प्रकार का कर्म निरर्थक है।
0: ये ठीक है, पर इस परिभाषा को विस्तृत करना होगा। तुम्हारी हर चेष्टा, एक एक सांस और मन में प्रतिक्षण उठने वाले एक एक विचार के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या तुम स्वयं नहीं?
1: हूं भी और नहीं भी हूं। मेरे पास इसका कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं है। सच तो यह है कि मनुष्य केवल निमित्त मात्र है। कर्म तो ईश्वर कराते हैं और जब उनकी इच्छा और प्रेरणा से ये शुभाशुभ कर्म होते हैं तो मैं उनके लिए कैसे उत्तरदायी हो सकता हूं?
0: ठीक है, पर यह तर्क उस पर ही लागू होगा जिसे सिद्धावस्था प्राप्त हो गई है। जब कर्म से मन और चित्त शुद्ध हो जाता है और इसका ज्ञान हो जाता है कि सारे काम ईश्वर ही करा रहे हैं, तभी ऐसा कहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नहीं तो ये कोरी बकवास ही है।
1: क्यों? यदि किसी तर्क से ये धारणा निश्चित हो गई हो कि सब काम ईश्वर ही करा रहे हैं तो?
0: जिस क्षण ये दृढ़ धारणा हो जाती है उस क्षण में किए गए कार्य के लिए ये युक्ति लागू की जा सकती है, पर ऐसी धारणा क्षण भर ही टिकती है, ज्यादा नहीं। अच्छा, जरा मनन करके तो देखो कि अपने दैनिक जीवन में ऐसे कितने काम हैं जिनके संबंध में ये कहा जा सकता है कि ये काम मैं स्वयं अहम भाव से नहीं कर रहा हूं। कब तक मनुष्य को इस बात की स्मृति रहती है कि ईश्वर ही ये सब कार्यकलाप करवा रहे हैं? किंतु इस प्रकार सतत चिंतन, मनन और अध्यवसाय से धीरे धीरे एक अवस्था आ जाती है जब अहम भाव नष्ट हो जाता है और उसके स्थान में प्रभु की स्थापना हो जाती है। तब तुम ये कह सकोगे कि अंतर्यामी प्रभु ही मुझसे ये सब करा रही हैं। किंतु मित्र, यदि हृदय में अहंकार भरा हुआ है तो पाता है, तब हृदय में ईश्वर रह ही नहीं सकते।
1: पर दुष्कर्म की प्रेरणा भी तो ईश्वर ही देते हैं।
0: नहीं, कभी नहीं। इस तरह सोचना प्रभु का अनादर है।
1: मैं समझा नहीं स्वामी जी।
0: ईश्वर दुष्कर्म में किसी को प्रेरित नहीं करते। दुष्कर्म का कारण तो मनुष्य की आत्मतुष्टि की इच्छा है। यदि कोई ऐसा कहे कि ईश्वर सब कर्म कराते हैं और स्वेच्छा पूर्वक दुष्कर्म करता जाए तो उसका नाश अवश्यम भावी है। यही तो आत्म प्रवंचना का मूल है। क्या तुम्हें कोई सत्कर्म करने पर प्रसन्नता नहीं होती और फिर तुम उस सत्कार्य का श्रेय अपने को देने लगते हो? कहते हो ये मैंने किया, मैंने। ये मानवीय स्वभाव है। मनुष्य ऐसा कहे बिना नहीं रहेगा। किंतु ये कितना अनुचित है। अच्छे काम का श्रेय तो मनुष्य स्वयं ले ले और बुरे काम का दोष ईश्वर के सिर मढ़ दे। ये एक खतरनाक तर्क है।
1: थोड़ा और विस्तार से समझाइए स्वामी जी।
0: जिन्होंने वेदांत और गीता पढ़ ली पर उसका मर्म नहीं समझा, वे ही उस तरह की बात करते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए कि हमारे भले काम तो भगवान की प्रेरणा से हुए और बुरे काम के लिए हम ही उत्तरदायी हैं। इससे परमात्मा में श्रद्धा और विश्वास जागृत होगा और पग पग पर उनकी असीम कृपा का अनुभव होने लगेगा। सच तो ये है कि अहम का निर्माण करने वाले हम ही हैं, कोई और नहीं। यही सत विवेक है, वही वेदांत है। इसलिए साधक को हमारे अच्छे काम तो परमेश्वर हमसे करवाते हैं और बुरे काम स्वयं प्रेरित हैं। चित्त शुद्धि का ये सबसे सरल मार्ग है। इसलिए वैष्णवों में ये द्वैत भाव इतना दृढ़ दिख पड़ता है। प्रारंभ में अद्वैत भाव प्राप्त कर लेना दुष्कर है।
1: ये तो बहुत कठिन काम है।
0: ढोंग और आत्म प्रवंचना बहुत खतरनाक है। अगर जानबूझकर कोई अपने को धोखा नहीं दे रहा है और किसी को यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि नीच से नीच कृत्य भी ईश्वर की इच्छा और प्रेरणा से ही होता है, तो मेरा यह विश्वास है कि उस व्यक्ति से कोई नीच काम भविष्य में नहीं होगा। शीघ्र ही उसके मन के सब विकार नष्ट हो जाएंगे। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों, पद्धति की पूजा हमारे देश में बौद्ध धर्म के अवनति काल में शुरू हुई, जबकि बौद्धों के अत्याचारों से त्रस्त होकर लोग छिप छिप कर वैदिक यज्ञानुष्ठान करने लगे। दो दो महीने

0: दिनों तक लगकर यज्ञ करने का अब उन्हें कोई अवसर ही नहीं मिल पाता था। इसलिए वे मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी रातों रात पूजा कर लेते और फिर पानी में उसे विसर्जित कर लेते, जिससे पूजा का कोई चिन्ह सवेरे शेष न रह जाए।
1: लोग क्या इतने डरे हुए थे कि छुप छुप कर पूजा करते थे?
0: हाँ, मनुष्य को एक मूर्त पार्थिव प्रतीक चाहिए, उसके बिना उसके हृदय को संतोष नहीं मिलता। इसलिए हर घर में रात की पूजा शुरू हो गई। फिर मनुष्यों की प्रवृत्तियां भी कुछ इंद्रिय सुख भोग की ओर झुकी। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि कुछ लोग घर में पीछे के दरवाजे से ही आते हैं। इसलिए जब उस युग के धर्माचार्यों ने देखा कि कुछ लोग अपनी दुष्ट वृत्तियों और दुष्ट स्वभाव के कारण धर्म विमुख हो गए हैं, धार्मिक क्रियाकलापों और यज्ञानुष्ठानों में भाग नहीं लेते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे क्रम से धर्म और सदाचार के मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने तांत्रिक पूजा प्रणाली का आविष्कार किया।
1: जब वे तांत्रिक पूजा में होने वाले नीच कर्म धर्म सम्मत और अच्छा समझकर करने लगे, तो इससे उनकी दुष्ट प्रवृत्तियां कैसे नष्ट हुईं?
0: नहीं, अब उनकी ये प्रवृत्तियां विपरीत दिशा में अग्रसर होने लगी। अब उनके आचरण का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति हो गया।
1: पर क्या वास्तव में यह संभव है?
0: क्यों नहीं, ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य से किए गए किसी भी काम का फल शुभ ही होता है। लक्ष्य अच्छा रहे फिर एक ही बात है। और बताओ, उनके सफल होने में क्या बाधा हो सकती है?
1: किंतु इस तरह की साधना करने वाले अधिकांश मांस मदिरा आदि प्रलोभन में फंस जाते हैं।
0: हाँ, और इसलिए भगवान श्री राम कृष्ण को आना पड़ा। इस प्रकार की तांत्रिक साधना के दिन अब लद गए। उन्होंने भी तांत्रिक साधनाएं की, पर उस तरह नहीं। जहां मदिरा पान का विधान होता, वहां वे केवल एक बूंद से अपने ललाट का स्पर्श करा देते। तांत्रिक साधना में फिसलने का बहुत ज्यादा डर है, इसलिए तो मैं कहता हूं इस प्रांत में तांत्रिक साधनों की अब इति होना चाहिए। हमें इन साधनाओं से आगे बढ़कर वेदों का अध्ययन करना चाहिए, चारों योगों के एक मधुर समन्वय का अभ्यास करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करना चाहिए।
1: चारों योगों के समन्वय से आपका क्या तात्पर्य है?
0: सत और असत का विवेक, विचार शून्यता और भक्ति, कर्म और ध्यान योग का अभ्यास। इसके साथ साथ स्त्रियों के प्रति आदर भाव होना चाहिए।
1: स्त्रियों के प्रति आदर किस तरह प्रकट किया जाए?
0: स्त्रियां आदिशक्ति जग माता की प्रतीक हैं। जिस दिन से हम माँ की सच्ची पूजा करने लगेंगे और हर एक व्यक्ति माँ के लिए अपना बलिदान दे देगा, उसी दिन से भारत का यथार्थ में भला होने लगेगा और वो समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होता जाएगा।
2: एक अन्य अवसर पर प्रियनाथ जी ने स्वामी जी से कहा था,
3: स्वामी जी, आपके बाल्यकाल में जब हम आपसे विवाह कर लेने को कहते तो आप क्या कहा करते थे? मैं विवाह नहीं करूंगा और तुम लोग देखोगे कि मैं क्या बनता हूं। आपने अपना कथन सत्य कर दिखाया।
0: हाँ बंधु, तुम्हें तो मालूम ही है उन दिनों मेरे पास खाने को भी नहीं था और साथ ही मुझे कठिन परिश्रम भी करना पड़ता था। ओह, कितना कठोर श्रम था वो। आज अमेरिका वालों ने प्रेम से मुझे ये अच्छा सा बिछौना दे दिया है और खाने को भी मिल जाता है, पर मेरे लिए शारीरिक सुखों का विधान ही नहीं है और बिछौने पर लेटने से तो मैं बीमार हो जाता हूँ और मेरा दम घुटने लगता है। पलंग से उतरकर फिर जब मैं जमीन पर सोता हूँ तब मुझे आराम मिलता है।
4: इस तरह के अनेकों विषयों में दोनों ने बातचीत की थी। प्रियनाथ जी के संस्मरण से हमें और भी कई विषयों में स्वामी जी के विचार मालूम पड़ते हैं। आत्मसंयम विषय पर उन्होंने कहा था,
0: हमारे वार्तालाप या संगीत आदि सामूहिक कार्यकलापों में आत्मनियंत्रण और संयम का शोचनीय अभाव पग पग पर दृष्टिगोचर होता है। हर एक व्यक्ति आत्म प्रदर्शन का ही प्रयत्न करता रहता है। रेलवे स्टेशनों और बंदरगाहों पर जो धक्का मुक्की और ठेलम ठेल होती है वो भी इसी का उदाहरण है।
2: स्वामी जी के मित्र प्रियनाथ सिंह की एक दिन बेलूर मठ में इस विषय पर बातचीत हुई। स्वामी जी ने कहा,
0: देखो अपने यहां एक कहावत है, यदि लड़के की पढ़ने में रुचि नहीं है तो उसे सभा में भेज दो। सभा का तात्पर्य यहां सामाजिक गोष्ठियों और भेंटों से नहीं है, जो कि समय समय पर लोगों के घरों में होती रहती हैं। सभा का तात्पर्य राजसभाओं और दरबारों से है। जब बंगाल स्वतंत्र था तो सुबह शाम राजाओं के दरबार भरा करते थे। वहां प्रातःकाल राज्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होती थी और उन दिनों कोई समाचार पत्र न होने से राजा राजधानी के प्रमुख व्यक्तियों से बातचीत कर जनता और राज्य संबंधी समस्त जानकारियां प्राप्त करते थे। सभी प्रमुख व्यक्तियों को इन सभाओं में उपस्थित रहना पड़ता था, क्योंकि यदि वे अनुपस्थित रहते तो राजा इस संबंध में पूछताछ करते। इस प्रकार के दरबार अपने ही देश में नहीं, सभी देशों में सभ्यता और संस्कृति के केंद्र रही हैं। आजकल पश्चिम भारत, विशेषतः राजस्थान, इस विषय में बंगाल से कहीं अधिक अच्छा है, क्योंकि वहां आज भी हमें इन प्राचीन दरबारों की झलक दिखाई पड़ती है।
1: तो महाराज, हमारे अपने राजा ना रहने से हमारी जनता के आचार विचार और सभ्यता लुप्त हो गई है।
0: इस अधःपतन का मूल हमारी स्वार्थ वृत्ति है। जहाज में चढ़ना हो तो सब यही देखते हैं कि अपनी जान सलामत रहे। संगीत या आमोद प्रमोद के कार्यक्रमों में प्रत्येक व्यक्ति आत्म प्रदर्शन करने के प्रयत्न में रहता है। ये सब हमारी स्वार्थमयी मनोदशा की ही अभिव्यक्ति है। आत्मत्याग और संयम का अभ्यास ही इसे मिटा सकेगा। ये अभिभावकों और माता पिता का दोष है कि वे अपने बच्चों को सदाचार की भी शिक्षा नहीं दे सकते। आत्मत्याग ही व्यथार्थ में सभ्यता की नींव है।
1: तो क्या माता पिता अपने बच्चों को डांटे फटकारे नहीं? इससे तो वे और बिगड़ जाएंगे।
0: माता पिता का आवश्यकता से अधिक शासन होने से हमारे बच्चों को उचित विकास का अवसर नहीं मिल पाता। कुछ माता पिता संगीत को अनुचित समझते हैं, किंतु जब उनका पुत्र कोई अच्छा सा गीत सुन लेता है और उसे सीख लेने की उसमें लगन पैदा हो जाती है तो उसे कोई अड्डा ढूंढना पड़ता है। हम धूम्रपान को अत्यंत गर्हित समझते हैं, तो लड़कों के लिए घर के नौकरों के साथ छिप छिप कर बीड़ी सिगरेट पीने के सिवाय कोई चारा नहीं रह जाता।
1: तो फिर बच्चों में सदाचार कैसे पैदा हो?
0: हर एक व्यक्ति की असंख्य वृत्तियां हैं, जिसकी तुष्टि के लिए उसे उचित अवसर और सुविधाएं चाहिए, पर हमारे देश में वो नहीं दी जाती। इसलिए यदि हमें ये स्थिति बदलनी है तो पहले माता पिता और पालकों को ही शिक्षित करना होगा। कितनी शोचनीय और दयनीय दशा है हमारी। अभी तो हमारी सभ्यता का ही हम पर्याप्त विकास नहीं कर पाए। तदुपरांत भी हमारे शिक्षित बाबू लोग चाहते हैं कि अंग्रेज शासन व्यवस्था उन्हें सौंप दें। मुझे तो हंसी भी आती है और रोना भी। पहले तो हम में वो क्षत्रिय भाव ही कहाँ है जो हर व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, संयम, सेवा और आज्ञा पालन सिखलाता है। ये भाव वीरता, आत्मतुष्टि और प्रभुत्व में नहीं, आत्मत्याग में है। हमें दूसरों के हृदय और जीवन पर अधिकार पाने के पहले आदेश मिलने पर अग्रसर हो अपने जीवन की बलि देने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले अपनी बलि देनी चाहिए।
2: श्री रामकृष्ण के किसी भक्त ने एक बार अपनी एक पुस्तक में श्री रामकृष्ण को प्रभु का अवतार न मानने वालों की बहुत कटु आलोचना की। स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर इस प्रकार आड़े हाथों लिया।
0: तुम्हें इस प्रकार दूसरों के लिए अपशब्द लिखने का क्या अधिकार था? यदि उनका तुम्हारे प्रभु में विश्वास नहीं है तो क्या हुआ? क्या हमने कोई पंथ चलाया है? क्या हम रामकृष्ण पंथी हैं जो उन सबको अपना दुश्मन समझने लगे, जो उनको नहीं पूछते। तुम्हारे इस संकुचित धार्मिक ओछेपन से तुमने श्री राम कृष्ण को ही छोटा कर दिया है। यदि तुम्हारे प्रभु स्वयं भगवान ही हैं, तो तुम्हें तो ऐसा समझना चाहिए कि कोई किसी भी नाम से उन्हें क्यों ना पुकारे, वो उनकी ही अर्चना करता है। और दूसरों को अपशब्द कहने वाले तुम होते कौन हो? क्या तुम सोचते हो कि उनकी निंदा और कटु आलोचना करने से वे तुम्हारी बात मानने लगेंगे? कैसी मूर्खता है! दूसरों का हृदय तुम तभी जीत पाओगे जब तुम उनके लिए अपना बलिदान कर दोगे, नहीं तो वे तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे?
4: थोड़ी देर बाद स्वामी जी शांत हो गए। उन्होंने धीर भाव से कहा,
0: मित्र, क्या कोई जब तक स्वयं वीर ना हो ईश्वर के प्रति विश्वास और आत्मसमर्पण कर सकता है? मनुष्य जब तक वीर और महान नहीं बनता, तब तक उसके हृदय का द्वेष और ईर्ष्या कैसे मिट सकती है? और जब तक हृदय में द्वेष और ईर्ष्या है, तब तक कोई यथार्थ में सभ्य कैसे बन सकता है? इस देश में वो कठोर पौरुष, वो वीरत्व और महानता की भावना ही कहां है? कहीं भी नहीं। मेरी आंखें उसे ढूंढती रहती हैं, और अब तक मुझे उसका एक, केवल एक ही उदाहरण दिख पाया।
1: अपने गिरीश घोष बाबू, वे तो श्री रामकृष्ण देव के ग्रही शिष्य, सुप्रसिद्ध बांग्ला नाटककार तथा अद्भुत अभिनेता हैं।
0: हाँ, वही गिरीश घोष की बात कर रहा हूं। वे इस प्रकार आत्मत्याग के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इसलिए क्या श्री रामकृष्ण ने उनका सब भार अपने पर नहीं ले लिया? प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण की कितनी अनन्य भावना है! मुझे उनके समान दूसरा कोई नहीं दिखा, और उन्हीं से मैंने आत्मसमर्पण का पाठ पढ़ा है।
2: ऐसा कहते हुए स्वामी जी ने उनके आदर में अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं आज 18 मई की बात। आज विशेष उत्तर फाल्गुनी है और एचडी देवगौड़ा, एस जगन्नाथ शाहू, थवरचंद गहलोत, सुधीर रंजन मजुमदार, फगन सिंह कुलस्ते, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही अनिल माधव दुबे, पंचनन महेश्वरी, जय गुरुदेव, रीमा लागू, कृष्णा जोइस, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में कुछ खास लोगों की बातें आपसे शेयर करूंगा और साथ ही साथ चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा शुभ विचार के साथ। और आशा करूंगा कि आप सभी को सुंदर विचार जब सुनाते हैं तो अच्छा लगता है और हम सभी को भी एक आत्ममंथन करने का मौका मिल जाता है। तो आइए शुभ विचार से कार्यक्रम बात करते हैं। सूरज निकलने का वक्त हो गया है, फूल खिलने का वक्त हो गया है, मीठी नींद से जागो मेरे दोस्त, क्योंकि सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त हो गया है। तो बड़ी खूबसूरत विचार के साथ मैं चाहूँगा कि आप इस विचारों को बार बार अपने मन में लाइए और ऐसे सुंदर विचार बार बार करते रहिए, अपने जीवन को सुंदर बनाते जाएं। तो आइए आपकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक गीत अभी कार्यक्रम की शुरुआत में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं आज के दिन विशेष की बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और आइए बात करते हैं देवगौड़ा HD के बारे में। और तकनीकी रूप से भारत का 11वां प्रधानमंत्री माना जाता है इन्हें। और इनका पूरा नाम हरदन हल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा है। और ये उस समय प्रधानमंत्री बने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को 13 दिन सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वो बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं थे। और ये संयुक्त मोर्चा सरकार के नेते के रूप में प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। 1 जून 1996 को शपथ ग्रहण की, लेकिन ये भी ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहे। लगभग 10 महीने तक प्रधानमंत्री रहने के बाद इन्हें भी अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। तो इस तरह से आइए इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। अजनी देवगौड़ा का जन्म कर्नाटक के हरदन हल्ली ग्राम के हसन तमुका नाम का एक ग्राम में 18 मई 1933 को हुआ। एक खाते पीते कृषक परिवार से संबंधित थे और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेकर राजनीति का सफ़र शुरू किया। इनके पिता का नाम श्री दौड़ेगौड़ा था और माता का नाम देवम्मा था। इनकी पत्नी का नाम चेन्नम्मा है और इनके चार पुत्र और दो पुत्रियाँ हैं। और इस तरह से एक पुत्र और एक विधायक भी है और दूसरा पुत्र सांसद भी है। तो इस तरह से 1962 तक वे सदस्य रहे। और देवगौड़ा एक मध्यम परिवार की पृष्ठभूमि से राजनीति में आए, इस कारण भी किसानों के कठोर परिश्रम का मूल्य समझते थे। और युवा देवगौड़ा ने गरीब किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए उत्थान के लिए राजनीतिक आवाज़ बुलंद की थी। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें आज के इस विशेष राजनेता देवगौड़ा के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं अभी विशेष थवरचंद गहलोत के बारे में। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री के रूप में कार्य करते हैं और मध्य प्रदेश के शाहजहाँ से निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए साहित्यिक हित विद्या यानी के लिए लेख लिखकर उसमें योगदान दिया इन्होंने, और मध्य प्रदेश की विधानसभा द्वारा प्रकाशित एक त्रैमासिक पत्रिका विदायनी है। बाला समाज संगठन के माध्यम से थवरचंद गहलोत विशेष इस वर्ग के लिए काम करते हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। राजनीति के साथ साथ समाज सेवा से जोड़कर साहित्य जगत में उन्होंने काफ़ी काम किया और 18 मई 1948 को आज ही के दिन रूपेट गांव में इनका जन्म हुआ। ये गांव मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। थवरचंद गहलोत ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश से बीए की पढ़ाई की और 1 मई 1965 को अनीता गहलोत से विवाह करके उनकी एक बेटी और 3 बेटे हैं। थवरचंद गहलोत ने अपने कॉलेज के दिनों में ही अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और उसके बाद अलग अलग गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया और जिले स्तर पर काम करते हुए फिर राजनीति के उच्च स्तर पर इन्होंने काम किया। 2004 में 14वीं लोकसभा में 4थी बार के लिए निर्वाचित किया गया और बाद में वो आधारिक भाषा समिति के सदस्य बने और साथ ही श्रम पर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। तो ये थी कुछ चंद बातें थवरचंद गहलोत के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर जी हाँ सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। और थवरचंद की जब बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश अपने आप में एक यूनिक अपना जो है वर्चस्व रखता है और जब भी सफाई या स्वच्छता की बात आती है तो मध्य प्रदेश अपना नाम जो है पहले स्थान पर रखता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ सफाई को और स्वच्छता को लेकर काफ़ी काम किया गया, तो इस राज्य से ये चीज़ें हम हमेशा सीख सकते हैं। तो कहा जाता है कि भाई हर राज्य हर व्यक्ति से कुछ न कुछ हमें सीख मिलती है, तो निश्चित तौर पे स्वच्छता और सफाई की बात अगर आती है तो यहाँ से ये सीख हम सभी को मिलता कि कितनी भी मुश्किल समय हो लेकिन आप स्वच्छता को बरकरार रख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र कार्यक्रम को, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: Hi, this is Gracie Singh, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो माधुबन 107.8 एफएम पर. आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है. थवरचंद गहलोत के बाद अब बात करते हैं एक और व्यक्ति के बारे में, यश जगन्नाथन. जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर थे. इनका पूरा नाम सरुकाई जगन्नाथ था और इनका कार्यकाल 16 जून 1970 से लेकर 19 मई 1975 तक रहा. केंद्र सरकार भारत के कार्यकारी निदेशक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने विश्व बैंक में कार्य किया था. इस वजह से इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से मद्रास में शिक्षा प्राप्त की. जगन्नाथ भारतीय रिसिविल सेवा के सदस्य भी थे और भारत में पहली बार 20 रुपये और 50 रुपये के भारतीय

रुपयों के नोट पेश किए गए थे और इन्होंने इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। तो आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक पद का पदभार ग्रहण करने के लिए कार्यालय से अवकाश ग्रहण किया था इन्होंने। तो सरुकाई जगन्नाथ को उनके इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, शाम का समय है और आपके पास ऑप्शन दो है। आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए रेडियो के साथ जुड़कर अपना मैसेज और अपने इनपुट दे सकते हैं, दूसरा आप चाय पी सकते हैं, तीसरा आप शरबत भी पी सकते हैं। तो चॉइस आपके ऊपर है। तो लीजिए, आपके मूड को और रिफ्रेश करने के लिए मैं अभी ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। आप सुन रहे हैं सफ़र कार्यक्रम, सुनते रहो मस्कराते रहो।

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का, हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। आइए बात करते हैं अब शाहू जी के बारे में, जिसे शिवाजी द्वितीय के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी का पौत्र तथा शंभू और येसुबाई का पुत्र था। शाहू शंभाजी का उत्तराधिकारी था, जिसने राजाराम और ताराबाई के पुत्र शिवाजी तीसरे को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी द्वितीय शाहू को साधु कहना शुरू किया था। इसी से उसका नाम शाहू हो गया। शाहू ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से मराठा साम्राज्य को एक नवीन शक्ति के रूप में संगठित किया था। अब बात करें मुगलों के साथ इनकी बंदी, अर्थात 1699 में रायगढ़ महाराष्ट्र के पतन के बाद शाहू उनकी मां येसुभाई और अन्य महत्वपूर्ण मराठा लोगों को कैद कर औरंगजेब के शिविर में नज़रबंद कर दिया गया। उस समय शाहू बालक था और वो बंदी बनाकर मुगल दरबार में लाया गया। उसका भी वास्तविक नाम शिवाजी था, किंतु उसे शिवाजी द्वितीय के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब की दृष्टि से शिवाजी प्रथम कपटी थे। अंततः दोनों में भेद करने के लिए उसने शाहू को साधु कहना आरंभ किया था और यही साधु शब्द अपभ्रंश रूप में शाहू हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने उसे मुक्त कर दिया और अधिक समय तक मुगल दरबार में रहने के कारण शाहू का दृष्टिकोण मराठों से ना होकर मुगलों जैसा हो गया था। उसके महाराष्ट्र लौटते ही मराठे दो दल में विभाजित हो गए और एक दल उसका स्वयं का था और दूसरा दल इसके चाचा राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय का समर्थक था। तो इस तरह से एक छात्र शासक के रूप में इन्हें याद किया जाता है। औरंगजेब के मृत्यु के बाद शाहू अपने कुछ साथियों के साथ वापस महाराष्ट्र आ गए और जहाँ पर उन्होंने परसोजी भोसले, रघुनाथ भोसले, भावी पेशवा बालाजी विश्वनाथ

0: और रानूजी सिंधिया ने उसका साथ दिया और शाहू ने सुयोग व्यक्ति बालाजी विश्वनाथ का पेशवे के पद पर आसीन हुए। तो इस तरह से शाहू ने सतारा पर घेराव डालकर वहाँ की तत्कालीन शासक का राजाराम की विधवा पत्नी ताराबाई के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और ताराबाई ने धनाजी यादव के नेतृत्व में एक सेना को शाहू का मुकाबला करने के लिए भेजा और इस तरह से खेड़ का युद्ध हुआ। परंतु कूटनीति का सहारा लेकर शाहू ने यादव को अपनी ओर मिला लिया और ताराबाई ने अपने सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ पन्हाला में शरण ली। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और जो छत्रपति शाहू के पौत्रिक प्रधानमंत्री थे जिनका सहायता से शाहू मराठों का एक छात्र शासक बन गया और पेशवा का पद मूल रूप से शिवाजी द्वारा नियुक्त में से एक था। पेशवा को मुख्य प्रधान भी कहते थे। उसका कार्य सामान्य रीति से प्रजा हित पर ध्यान रखना होता था। 1749 में शाहू की मृत्यु के बाद पेशवा ही मूल रूप से मराठा साम्राज्य के शासक हो गए और शाहू ने राजाराम और ताराबाई के पौत्र को अपने दत्तक पुत्र बनाकर उसका नाम राजा राम राजा रखा था। परंपरा के अनुसार राम राजा ने सातारा में अपना दरबार स्थापित किया किंतु वह पेशवा के हाथों की कठपुतली ही सिद्ध हुए। तो ये थी कुछ खास बातें शाहू जी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर जी आज सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए वक्त हो गया है आपसे इजाजत चाहने का। और जाते जाते एक और सुविचार, और उसके पहले सिंह कुलस्ते, इनका जन्मदिन है आज। और ये भी भारत के एक राजनीतिक है और दिग्गज आदिवासी नेता फगन सिंह कुलस्ते मंडल जिले के बाराबाटी गांव में रहने वाले हैं। और आज ही के दिन 1959 को इनका जन्म कुलस्ते में हुआ और फिर वहीं पर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए जबलपुर में गए और वहां पर एमए बीएड की डिग्री हासिल की और फिर मंडल लोकसभा सीट से छठी बार चुनाव जीते और इस तरह से वो केंद्रीय मंत्री बन गए। तो ये थी कुछ खास बातें फगन सिंह कुलस्ते के बारे में। तो चलिए जाते जाते मैं आपको एक और विचार के साथ कार्यक्रम को पूरा करेंगे। कहते हैं कि भाई, जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपका दोस्त आपको अपना परिवार समझने लगे, है ना कमाल की बात। तो चलिए इसी खूबसूरत विचार के साथ ढेर सारी खुशियां आपको और मिलते हैं अगले कड़ी में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तू एक प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, आप समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधर क्या पहुँचा दोगे है? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना क्या?

0: समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
1: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच। दोस्तों, एक महान व्यक्तित्व ने कहा था कि वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर फॉर यूथ बट वी कैन बिल्ड आवर यूथ फॉर द फ्यूचर। यानी कि हम युवाओं के लिए भविष्य नहीं बना सकते, लेकिन युवा ऐसे बना सकते हैं जो भविष्य का निर्माण करें। और ऐसा भविष्य अगर हम चाहते हैं जिसमें समानता हो, जिसमें सहजता हो, जिसमें अपॉर्चुनिटीज हो, जिसमें उन्नति हो, तो यूथ की बात सुनना, उनके मन में क्या है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत एक युवा देश है और आज इस युवा मंच पे हमारे साथ मौजूद है युवा साथी जिनका नाम है राजेश। अब उनसे बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, लेकिन परिचित होंगे वो लोग जो लगातार रेडियो से जुड़े रहते हैं। राजेश, आपका स्वागत है।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते राजेश। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी एक बार आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ। मेरा एजुकेशन बैचलर इन रूरल स्टडीज फ्रॉम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ है। बैचलर इन रूरल स्टडीज अर्थात ग्रामीण अध्ययन, गाँव के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, कैसे हम गांव को एक गांव बना सकते हैं जो वास्तविक अर्थों में एक गांव होता है। और मेरा मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से चल रहा है। और इसी के साथ साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पब्लिक लीडरशिप किया ऋषिहूड यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा से। साथ ही साथ मैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और मैं सेवा से जुड़ा हूँ, जैसे एनवायरमेंट के लिए प्लांट लगाना और वाटर कंजर्वेशन हुआ, प्लास्टिक मुक्त भारत जैसे कई छोटे छोटे काम मैं अपने स्तर पे और कई मेरे दोस्तों के साथ मिलकर मैं ये काम करता हूँ। धन्यवाद
0: राजेश। सबसे पहले तो हमने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन हम जब युवाओं की बात करते हैं तो एक पिक्चर लोगों के मन में आती है कि वो गांव से दूर जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हम जो बच्चे हैं या आने वाली जनरेशन है, ये गांव में रहेंगे नहीं रहेंगे, या अपॉर्चुनिटीज के लिए भी उनके पास रीजन भी है। लेकिन आपने जो पढ़ाई चुनी वो आप गाँव की बातें कर रहे हो और डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। आपने एक स्टेटमेंट कहा कि गाँव को गाँव बनाना
1: जी,
0: तो मैं जानना चाहूंगी कि ये टॉपिक मतलब या ये विषय पढ़ाई के लिए आपने क्यों चूज किया?
1: एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिफरेंट था, नया सब्जेक्ट था। यूजीसी ने इसने 2016 में यूजीसी इस प्रोग्राम को लेके आई और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, इकोनॉमिक्स वही अकाउंट्स वही बिजनेस स्टडी पढ़ना, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था वो सब चीजें पढ़ने में। मतलब था एक इंटरेस्ट कुछ चीजें पढ़ने में जानने के लिए, बट वो इंटरेस्ट सोच रहा था कुछ नया किया जाए। तो एज ए मैं यूनिवर्सिटी विजिट किया वहाँ का, पहले तो उस यूनिवर्सिटी में इतना एक चुंबकत्व था तो मुझे खींच लिया, तो वहाँ से मैंने उसे मुझे यूनिवर्सिटी अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए, मुझे पोटेंशियल लगा वहाँ पे। तो एक नया प्रोग्राम आया, किसी ने मेरे को सजेस्ट किया, चार्टेड अकाउंटेंट थे तो बोले कि नया प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है। मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं इसमें, उसका एक पैम्पलेट देखा, उसमें देखा एग्रीकल्चर ऊपर में था और इकोनॉमिक्स था, मेरे दोनों ही सब्जेक्ट इंटरेस्टेड थे। हाँ, जबकि एग्रीकल्चर मेरा बैकग्राउंड नहीं था बट इंटरेस्टेड था मैं उसके बारे में जानना के लिए और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो जबकि वो दो सब्जेक्ट ही देखे थे, बाकी तो गांव के बारे में तो बहुत सारी चीजें थी उसमें, जैसे
0: अच्छा।
1: हाँ, हॉर्टिकल्चर्स के बारे में था उसके बारे में, और प्लांट्स हर्बल मेडिसिन प्लांट्स के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, एग्रीकल्चर में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, क्रॉप मैनेजमेंट हो गया, तो एक गांव से जुड़ी हुई सारी स्टडी, होल स्टडी होती है उस प्रोग्राम में जुड़ी हुई थी। तो मैंने तो एक साल ये चीजों को समझने में ही मतलब यूज किया कि कैसे हम चीजों को समझे पढ़ाई के लिए। जब एक साल के बाद तो ऐसा हुआ कि इतना अटैचमेंट हो गया प्रोग्राम से, इतना इंटरेस्ट आ गया, तो शायद मुझे लगता कि और प्रोग्राम करके मुझे नहीं आता।
0: Okay.
1: तो इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट सोचा और डिफरेंट जुड़ा, तो मेरी कनेक्टिविटी बहुत हो गई। आज तक मतलब मुझे सबसे 3 सालों प्रीसियस लगते अपनी लाइफ के, क्योंकि लगता है कि जीवन में उस टाइम में मैंने प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली बहुत कुछ सीखा और इतना मजा आया इंटरेस्टेडली, और उसको मैं इतना कनेक्टेड और टच फील करता हूँ।
0: ओके राजेश, ये 3 साल का कोर्स है
1: जी,
0: ना ग्रेजुएशन है
1: जी,
0: तो क्या है कुछ सब्जेक्ट्स उसमें, क्या पढ़ाई होती है, थोड़ा सा आप और बताएंगे?
1: जी, ये नया प्रोग्राम है बट इसमें अभी हमारे 6th बैच या 7th बैच चल रहा होगा, तो कुल मिला के इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं और 4 सब्जेक्ट एवरी सेमेस्टर होते हैं, और उसके साथ में जी जेनिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है जो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट जाके सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे आई एम स्टूडेंट ऑफ द रूरल स्टडीज, ग्रामीण अध्ययन का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट जाके हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ एक सब्जेक्ट 4 सेमेस्टर तक। तो ऐसे ही मैंने जैसे 2 सेमेस्टर मैंने योग पढ़ा, 1 साल मैंने टूरिज्म के बारे में जाना, इंडिया का टूरिज्म कैसा, उसका बेसिक थी, तो ये तो जेनिक इलेक्टिव। इसके साथ हम स्किल एनहेंसमेंट कोर्स पढ़ते, जाते हैं। आप अपनी स्किल कैसे बढ़ा सकते हो, जैसे स्किल एनहांसमेंट मैंने एक थेरेपी सीखी, एक्यूप्रेशर यज्ञ थेरेपी। हम कैसे एक्यूप्रेशर दे सकते हैं लोगों को, अपना कैसे एक्यूप्रेशर से ठीक सकते हो, बेसिक हम चीजें सीख सकते हो जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वहाँ पे स्किल एनहांसमेंट में दूसरे भी कोर्स है, जैसे हैंडमेड पेपर बनाना और स्क्रीन प्रिंटिंग हुआ, फ्रूट प्रोसेसिंग हुआ, काउ बेस्ड प्रोडक्ट्स हुआ, और जो सेकंड सेमेस्टर होते हैं जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो रिलेटेड टू रूरल स्टडीज, जिसमें मेनली एग्रीकल्चर होता है, मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जिसमें आ जाता है मैनेजमेंट के पार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आप पढ़ते हो, एनजीओ मैनेजमेंट आता है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानते हो, कम्युनिटी के बारे में आप स्टडी करते हो, डेवलपमेंट क्या से जो सारी चीजें जुड़ी है उसके बारे में पढ़ते हो टोटली।
0: बहुत इंटरेस्टिंग है।
1: हाँ, जितना थ्योरेटिकली पढ़ते हो उतना प्रैक्टिकली आप करते हो।
0: प्रैक्टिकली कैसे?
1: जैसे सपोज कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो पूरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकली लगता है। प्रैक्टिकली ऐसा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन विजिट करवाया जाता है।
0: ओके,
1: ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के विजिट के साथ साथ आप ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से मिलते हो, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को, स्ट्रक्चर पार्ट को समझते हो, वहाँ के जो काम कर रहा है उसके बारे में सारी चीजें जान लेते हो, क्योंकि एचआर का जो काम होता है उसको सारे चीजों को आप होल लेवल अपने समझ। दूसरा एक और सबसे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जो हर जहाँ चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें है कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम चीजें पढ़ते हैं, तो उसमें हमें एक स्किल सीखनी पड़ती है। जैसे मैंने वर्मी कंपोस्टिंग सीखा पूरी तरीके से, कैसे उसको बनाते हैं छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। जैसे ये कि मैंने वर्मी कंपोस्टिंग में करता तो नहीं हूँ, ठीक है, जितना मेरा ये है कि कोई मुझे हेल्प लेता है तो मैं उसके यहाँ जाता हूँ, विजिट करता हूँ, उसको हेल्प देता हूँ कि मैं ये कहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा और करिए, कैसे मार्केटिंग कर सकते इसकी, कैसे आप इसको बना सकते अच्छे से या सही नहीं बन रहा है, तो मुझे कोई चीज की भी लगता है कि मुझे नहीं जानकारी है तो मैं वापस अपने एक्सपर्ट टीम या फिर मेरे टीचर लोगों से पूछता हूँ। तो ऐसे करके सारी चीजें मैं जानकारी लेता हूँ और ऐड करता जाता हूँ एज ए स्टूडेंट। मुझे आज ही लगता है मैं हमेशा स्टूडेंट हूँ उस सब्जेक्ट का, तो लर्निंग मेरी ग्रोथ होती रहती है हमेशा और उसको प्रैक्टिकली बांटता रहता हूँ खुद के थ्रू।
0: अच्छा राजेश, जैसा आपने बताया कोर्स में बहुत कुछ है जो आपने सीखा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहते हैं
1: जी,
0: तो आप थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में या प्रोसीजर क्या होता है, कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ, कुछ उसके बारे में बताएंगे। यूनिवर्सिटी के नाम के बारे में भी एक बार फिर से बता दीजिए, कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं।
1: जी, मेरे यूनिवर्सिटी का नाम देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, जो शांति कुंज हरिद्वार में है, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है, और सब्जेक्ट का नाम है बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज, और डिपार्टमेंट का नाम है स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो स्कूल के अंदर वो प्रोग्राम आता है बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज, और ये 3 साल का प्रोग्राम है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू 4 साल का प्रोग्राम हो गया है, जिसमें आपका मास्टर भी इंक्लूडेड रहता है, तो इसमें और पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है रिसर्च के लिए भी, मास्टर्स के लिए भी, तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई डेफिनेटली। मोस्टली फोकस ये किया जाता है कि हम जॉब प्रोवाइडर बने, कि एक गांव में जाके हम एंटरप्रेन्योरशिप करें और ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करें जॉब गेनिंग की वजह, तो यही उद्देश्य रहता है इस प्रोग्राम का मेनली। फिर भी कोई भी आप अपना जॉब भी लेना चाहते हैं एनजीओ में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आपको पूरा फुली सपोर्ट किया जाता है।
0: ओके
1: जी।
0: अच्छा, एडमिशन कैसे होता है?
1: हाँ, जी, मैं वो भूल गया था, मैं बताना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ। एडमिशन के लिए ये है कि ऑनलाइन फॉर्म निकाला जाता है, जिसमें आपको पहले सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, ऑफलाइन भी भर सकते हैं, वहाँ जाके आप एक बार विजिट करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे। तो फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपका 50 मार्क्स का नॉर्मल जीके होता है और उसके PYQ आपको मिल जाएंगे, और 20 मार्क्स का आपका होता है रीजनिंग और मैथ्स, और 20 मार्क्स का यूनिवर्सिटी के बारे में होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो इसलिए होता है कि क्योंकि आप मैन तो है ना, यूनिवर्सिटी आपको बना रही है तो उसकी कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, तो आप कोर वैल्यूज से एडजस्टमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप कितना समझते हो, तो जितना ज्यादा समझता है वहाँ के और भी एडजस्ट कर सकता है, तो एक संभावना रखी जाती है मोटा मोटी।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए वो 20 मार्क्स का एड किया जाता है कि बच्चा उससे पहले कितना परिचित है, और इतना भी वो नॉर्मल होता है, इतना कोई वो होता नहीं, आप जाके एक बार विजिट कर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी 20 मार्क्स का, तो क्योंकि वो एक पूरा अलग सिनेरियो यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि वो अपने आप में एक, मैं यूनिवर्सिटी बाद में कहता हूँ, पहले तो आई एम टेलिंग द मदर, मैं उसको हमेशा माँ कहता हूँ पहले।
0: अच्छा।
1: क्योंकि शायद मदर एक फील करती है ना, शायद वो मैं ऐसा फील करता हूँ कि मुझे बार बार जाने का मन करता है, और एक माँ से जो सीखने को मिलता है वो यहीं सीखने को मिलता है, तो ये उसका आपका फिर एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपका एग्जाम यदि आप क्लियर कर लेते हैं, सीटें बहुत कम होती हैं, 10 से 15, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। फिर आपको इंटरव्यू में ही ये जाना जाता है कि आप इसके लिए कितना इच्छुक है पढ़ने के लिए, और आपकी बेसिक देखा जाता है, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ, कितने आप कैपेबल हो, वो सारी चीज़ें, और मेन बात है आप इंटरेस्टेड कितना हो। तो सारे इंटरव्यू में सारी बातें, एक इंटरव्यू जो फॉर्मली रूप से होता है उसमें व्यक्तिगत रूप से सब समझने की कोशिश की जाती है।
0: आपको याद है आपसे क्या सवाल पूछे गए थे?
1: हाँ, मेरे को तो एक तो मेरा जो बेसिक मैं जहाँ से पढ़ा था उसके बारे में पूछा, कि उससे बारे में इसलिए पूछा कि चीज़ है, तो हमें इंटरव्यू दे रहा था, एग्ज़ाम मार्च में थे, तो इंटरव्यू में कम से कम दे रहा था 3.5 महीने बाद, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ सारी भूल गया हूँ। फिर भी मैंने बताई, याद था मेरा, मेरे परसेंटेज अच्छे थे, तो रिफ्लेक्ट करता है डेफिनेटली। और साथ ही साथ ये पूछा गया था कि आप इस कोर्स के लिए कितने क्यों इंटरेस्टेड है। बस मैंने ये कि ये प्रश्न ये होता है, आप ये करना क्यों चाहते हैं?
0: आपने क्या बोला था?
1: मैंने कहा बस मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं नया सीखना चाहता हूँ और मैं इस बैकग्राउंड से जुड़ा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ना, हर मैं जब हर यूथ से बात करता हूँ कि गाँव के बारे में, तो बोलते हैं कि रियलिटी इज द गाँव, गाँव ही असली जिंदगी है, वो बोलते हैं हमेशा, बट वो गाँव में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? कि ऐसी है कि सपोज मैं आज गांव में रहना चाहता हूँ, तो मेरा थोड़ा लाइफ स्टाइल अलग हो गया, जैसे कि मुझे 24 hours लाइट चाहिए, ठीक है, दिन में तो आप बिना लाइट के भी काम चला सकते हो, रोशनी उसमें पढ़ सकते हो, रात्रि में भी आप कुछ देर के लिए तो आपको रोशनी चाहिए 9-10 बजे तक, तो गांव में कभी कभी उसका भी प्रॉब्लम्स रहता है, आज के भारत में भी अभी भी मतलब चीजें सुधर रही है तो बेटर हो रहा है, और बेसिक जो थिंग्स है वो गांव में थोड़ा और अच्छे इम्प्रूवमेंट हो सके तो फिर बेटर हो सकता है। जैसे गांव हमारे इतने अच्छे थे, कभी कोई बीमार पड़ता ही नहीं था तो हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी, और हमारे गांव में गुरुकुल सिस्टम था पहले से, तो बेसिक चीजें बच्चा वहीं सीख लेता, वहीं पढ़ लेता, तो वहीं अध्ययन कर लेता। आज उसकी मतलब एक कहते हैं ना कि भाई टीचर है उसके लिए, स्कूल्स बना है, लाइब्रेरी बनी है, बट वो कितनी ओपन होती, कितना खुलता है, टीचर्स कितना आता है, अब जो कितने भी हम अकाउंटेबिलिटी रख ले ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम में भी, टीचर कितना आता है, फिर भी हमारे लिए एक नया ही है कि वो टीचर आके भी बैठ जाता है, वो कितना सिखाने की कोशिश करा, फिर भी गांव में कुछ बच्चे इतने कनेक्टेड इसलिए भी रहते हैं कि कुछ टीचर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, वो आते डेफिनेटली सरकारी स्कूल्स में बहुत अच्छे टीचर आते और बहुत अच्छा पढ़ाते और इसलिए वो बहुत अच्छा भी करते हैं। तो गांव मतलब रियलिटी है कि आपको ओरिजिनलिटी मिलती खाने पीने से संबंधित भी, हवा एकदम ऑक्सीजन लेवल डिफरेंट। आप यदि गांव शहर में 8 बजे उठते हो, गांव में आप 6 बजे उठ जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि वहां का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, आपका नींद अच्छी हो जाएगी आपकी, तो कह सकते हैं ओरिजिनलिटी इज द विलेज, तो स्वर्ग तो है ही वही।
0: ओके, तो आपको जब आपने पढ़ा, जब आपने 3 साल ये कोर्स किया, जैसे क्या आपके मन में कोई ऐसी पिक्चर थी या कोई ऐसी बात थी जो चेंज हुई, या आपको लगा कि एक नया परसेप्शन मिला आपको, नई सोच आपके अंदर जगी?
1: मतलब एक लाइफ में होता है ना, एक यूथ के अंदर कुछ करना है, मतलब कुछ तो करना है भाई, ऐसे ही खा पी के मर जाएंगे तो कुछ हम क्या करके गए, ठीक है, तो लगता है कि यार क्या किया जाए, व्यक्ति हुई सो एक्सप्लोर करता है, तो फिर एक पिक्चर ये डेवलप हुई कि भाई मुझे एक ज्यादा तो गांव है और सब कितने विकसित है, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम मैं कभी नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, गांव के लोग जब तक नहीं जाते तो हम वो सिनेरियो कैसे बदलें, उनसे कैसे बात करें, उनको कैसे समझें, ठीक है, फिर एक संकल्प ये लिया, हम संकल्प ले सकते हैं उसके ऊपर भरपूर प्रयास कर सकते हैं, तो एक संकल्प मैंने ये लिया कि मैं जीवन में कुछ भी करूं, मैं चाहे सिविल सर्विसेज भी जॉब लूं या फिर मैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप करूं या बिजनेस करूं, मैं लाइफ में कहीं पे भी हूं, बट मेरा एक लक्ष्य बन गया है कि मैं जे अपने जीवन के अंतिम तक एक गांव विकसित करना है, ठीक है, और वो गांव मिलके ही हो सकता है, तो उसके लिए मैं जितने प्रयास कर सकूं वो करना, एक मेरी ये चीज चेंज हुई। पहले आज भी मतलब मैं थोड़ा सा फिर भी वो रहता हूँ कि कैसे होगा, मैंने कई लोगों से बात भी की, कई लोगों ने मुझे हेल्प भी प्रोवाइड की, क्योंकि अच्छे काम के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए अच्छे लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आपको पूरी फुल्ली सपोर्ट करते हैं, आपके डिजाइन लेवल पे, आपको समझने के लेवल पे हम कैसे स्टार्टिंग पॉइंट से कर सकते हैं। तो एक तो ये मतलब छोटा संकल्प मैं समझता हूँ, सब कहते हैं कि छोटा नहीं बहुत बड़ा संकल्प है तुम्हारा, मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे एक गांव अच्छा विकसित करना है। फिर मैंने ये बात किसी के सामने रखी तो उन्होंने बोला कि एक गांव ही क्यों करना, सब क्यों नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो सार्थकता नहीं है, फिर भी मैं एक पॉजिटिवनेस रखता हूँ अपने साथ में, हाँ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा गाँव डेवलप करें उस जो रेप्लिकेटेड मॉडल, तो ये मुझे नई चीज सीखने में मिली। मैंने जिससे भी बात की तो मैंने कहा ऐसा भी प्रयास किया जा सकता है और ऐसा ही करना चाहिए। तो अभी तो मन में यही है कि प्लान
0: मॉडल विलेज बना सकते हैं,
1: एक मॉडल विलेज बनाना है और जितने भी मॉडल विलेज है उनको समझना, इससे जुड़े हुए लोग जितने भी है उनसे बात करने में मुझे बहुत मजा आता है, जो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है और जो फील्ड से जुड़ा हुआ है, जो गाँव से जुड़ा हुआ है, उनसे मुझे

0: करके उनसे कांटेक्ट बना के और उनसे जब चीजें नई नई सीख के मुझे बहुत मजा आता है। कुल मिला के मेरे को एक जो सिनेरियो चेंज हुआ ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो लर्निंग का बहुत हुआ। इससे पहले हम एक ना होती है ना, जैसे मुझे कुछ सीए बनना है तो मैं सीए के लिए ही पढ़ाई करूंगा, ठीक है, वो कितना इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो ऐसा ही है कि शायद मैं इस काम कर रहा हूँ ना, मुझे इंटरेस्ट बहुत आता, मजा बहुत आता है, तो मेरे लिए डेफिनेटली काम बहुत अच्छा हो जाता है।
1: ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो पढ़ाई की, जो आप करना चाहते हो उसमें आपको मजा आता है,
0: जी
1: बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा राजेश, जैसे आपने कोर्स के बारे में बताया, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, एडमिशन के प्रोसीजर की बात की, ये सब क्या मतलब कब निकलते हैं फॉर्म्स और ऑनलाइन भर सकते हैं क्या या जाना पड़ता है वहाँ पे?
0: जो ऑनलाइन आप आराम से भर सकते हैं, और यूजीसी का मोस्टली यूजीसी से यूनिवर्सिटी कनेक्टेड है, इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, और आपका बहुत कम फीस, एज द कहते हैं मेंटेनेंस फीस। और ये है कि शायद मुझे उन्होंने टच इसीलिए दिया कि वो बहुत ही मेंटेनेंस में आपको बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये है ना कि आज मैं यूनिवर्सिटी के लिए हमेशा के लिए तैयार रहता हूँ कुछ भी करने के लिए। यूनिवर्सिटी जैसे लोगों को अच्छे कनेक्टिविटी करना, लोग यूनिवर्सिटी के लिए, डिपार्टमेंट के लिए करना, गांव के लिए करना, तो शायद वो आपके पास, यदि आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हो, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वहां करोड़ों रुपए फीस है, तो आप वहां टच नहीं लेके जाते हो। तो यहाँ कम फीस में आप बहुत अच्छा सीख के जाते हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग।
1: तो वहाँ हॉस्टल भी है?
0: जी, रेजिडेंशियल ही कैंपस है, आपको अनिवार्य रूप से हॉस्टल में ही रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ का लाइफ जीना होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है, आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, आप कल्चरली बहुत वहाँ रिच हो सकते हो, आप अपने नॉलेज के स्तर पे भी, पढ़ाई के स्तर भी, बहुत अच्छा लाइब्रेरीज भी है वहाँ पे, तो मतलब बेसिक एक यूनिवर्सिटी में होता है इंटरनेशनल लेवल पर सारा है।
1: क्या बात?
0: मतलब रिसर्च के लिए भी बहुत संभावना है, जब आप कितने डेडिकेटली और इंटरेस्टेड हैं
1: आपके ऊपर डिपेंड करता है,
0: वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना लेना चाहते हो, वहाँ देने वाले बहुत हैं।
1: बहुत है, क्या बात है, तो मतलब बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी लग रही है।
0: आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, और जुलाई में एक बार एडमिशंस ओपन हो जाते हैं, जुलाई के आसपास, मतलब इस बार तो जुलाई में इंटरव्यू भी हो गए थे, शायद एक बार आप देख सकते हो, अपडेट रहना पड़ता है
1: वेबसाइट पे,
0: वेबसाइट 1 मई के आसपास शायद बच्चों के रिजल्ट आ जाते हैं और उस समय एडमिशंस स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपका एग्जाम डेट भी तय हो जाता है। और आपके भारत में करीबन 5-6 सेंटर्स भी हैं, जैसे लखनऊ हो गया, हरिद्वार खुद हो गया मेन, और महाराष्ट्र में भी शायद कहीं पे है, जैसे दुर्ग वगैरह है, छत्तीसगढ़ में, तो भोपाल है एमपी में, तो ऐसे ही मतलब उनके सेंटर्स बने हुए हैं, तो आप उस सेंटर्स पे जाके एग्जाम दे सकते हो, और फिर इंटरव्यू के लिए आपको यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ता है।
1: अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो हाँ, इंटरव्यू आपका वहीं होता है,
0: वहीं होता है, फिर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका एडमिशन ले सकते हैं आप।
1: ओके। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज होंगे और भी यहाँ पे,
0: जी,
1: तो अच्छी बात है दोस्तों, जैसा कि आपने सुना अभी राजेश को, आप भी वेबसाइट विजिट करें, मैं तो कहूंगी देव संस्कृति की बात कर रहे हैं हम यहाँ, साथ साथ और भी यूनिवर्सिटीज जो है उनकी वेबसाइट समय पर विजिट करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है राजेश कि जो बच्चे हैं वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन समय निकल जाता है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर का एक समय है, निश्चित समय है।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर आप 12वीं में है तो आप उसी साल पहले से देख लें कि अगले साल एडमिशन कब होगा, आप लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करें, नहीं तो कई बार आप जो करना चाहते हैं हो सकता है वो कोर्स निकल जाए या उसकी डेट निकल जाए या आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में पता ही ना लग पाए।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और क्योंकि हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो यूजीसी का नाम लिया, आप वहाँ पे यूजीसी की वेबसाइट पे अगर जाएंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, आप वहाँ पे भी देखेंगे तो प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है,
0: जी,
1: तो क्लिक करके आप वहाँ से भी वेबसाइट में जा सकते हैं। जानकारी जरूर रखें, इंटरनेट युवाओं के पास है तो उसका इस्तेमाल, सही इस्तेमाल अपनी शिक्षा के लिए जरूर करें।
0: YouTube पे भी आपको उसके एडमिशन प्रोसेस के लिए भी आपको और विस्तृत में आपको जानकारी मिल सकती है, आप इंटरव्यू कैसे दें, एग्जाम कैसे लिखें, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन वीडियोस मिल जाते हैं बहुत ही आसान में, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी हाथ में है, बहुत ही आसान हो गया सारी चीजें। मेरे लिए ये था कि मैंने फॉर्म भी किसी दूसरे शहर में जाके भरा था।
1: अच्छा।
0: हाँ, ऐसा था, और मतलब कोई साइबर कैफे वाला विश्वास भी नहीं होता कि भर पाएगा, तो फिर मैंने लगा को विश्वास पाते साइबर कैफे, उससे जाके भरना पड़ा मुझे।
1: अच्छा। ओके।
0: और एग्जाम देने के लिए भी उस समय राजस्थान में जोधपुर सेंटर हुआ करता था, तो वहीं हो गया था, और ना, मतलब एग्जाम के बाद थोड़ा सा मन में था कि यूनिवर्सिटी मुझे बुला रही है, जबकि हाँ तो ऐसा लग रहा था। तो फिर जरूरी वो इंटरव्यू का कॉल भी आया और इंटरव्यू भी दिया, ऐसा लगा सब कुछ अचानक सा हो रहा है,
1: होता
0: हम कोई कोई करवा रहा है ऐसा फील होता है।
1: क्या बात,
0: हाँ आप यदि इंटरेस्टेड हो
1: मदद मिलती है आपको,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: फील भी होता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा राजेश, आपने जैसे बात की कि आपने ग्रेजुएशन किया, एक थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में वहाँ के कैसा है कुछ बताएं यूनिवर्सिटी का।
0: सबसे बड़ी और अच्छी चीज तो डीएसयू का एनवायरनमेंट है। जब मैंने आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय से मैं जब मिला तो उनका कहना था कि उपराष्ट्रपति जी एक दिन के लिए आते हैं, वो दो दिन रुक के जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी आते हैं, वो भी दो दिन, एक दिन के लिए प्लान करके आते हैं, दो दिन रुक के जाते हैं। द वाइब्रेशन इज द वेरी वंडरफुल ऑफ द यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छा, मतलब मैं उसको फील ही करता हूँ, बता कभी सकता ही नहीं हूँ, आप जाके हो फील करते। जैसे रिसेंटली मेरा भाई है ना, मैंने उनको बोला हरिद्वार जाने को, मैंने कहा ऋषिकेश तो तुम जाना, यूनिवर्सिटी जरूर जाना। वो गया, एंटर किया, वीडियो कॉल किया मुझे, थोड़ा और 10 कदम चला, बोले कि भाई तेरी यूनिवर्सिटी क्या है, गजब है। तो बस वो मैंने कहा तुम जाके फील ही कर सकते हो, बहुत अच्छा वातावरण वहाँ पे, आप कितना अच्छा वातावरण और बना सकते हो, ये और भी महत्वपूर्ण है। और बच्चे बनाते भी हैं, यूनिवर्सिटी जैसे मार्केट का किंग कौन होता है, कस्टमर होता है ना, तो इसी प्रकार यूनिवर्सिटी का किंग तो बच्चे लोग ही होते हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी के हो ही होते हैं। जब मैं भी इंजीनियरिंग के छात्रों से मिलता हूँ, मैं कहा आपका यूनिवर्सिटी मतलब ऐसा है वैसा है, बट बनाने वाले भी तो आप ही लोग हो, आप प्रयास करो, डेफिनेटली अच्छा बनेगा। आप एक पौधा तो लगाओ, 10 लोग और मोटिवेटेड होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, बट आप प्रयास तो करो। तो ऐसा एक बच्चे बहुत भरपूर प्रयास करते, फैकल्टी बहुत हेल्प करती है वहाँ पे, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा वातावरण है। जैसे एक्यूप्रेशर पार्क, आपको नेचुरल जूस मिलता है वहाँ पीने के लिए बहुत ही सस्ते में, मतलब कह सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे, बहुत अच्छा कैंटीन है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, एकदम प्योरिटी वाला खाना। तो आज भी डीएसयू का मुझे बहुत याद आता है पर्सनली,
1: क्योंकि
0: आप कई हॉस्टल्स में रहते हो ना, तो फिर आपको समझ आता है कि डीएसयू का कैसा खाना, हॉस्टल का कैसा खाना। तो मुझे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, एकदम सिंपल खाना और बेहतरीन। जब कभी आप, मैं 5 साल में 3 साल तो वहाँ रहा, कभी बीमार नहीं पड़ा, उससे भी 2 साल पहले भी कभी बीमार नहीं पड़ा, तो 5 साल में कभी बीमार पड़ा ही नहीं वहाँ पे।
1: क्या बात है,
0: कभी मेरे को बुखार तक नहीं आया वहाँ पे। थोड़ा ठंड ज्यादा पड़ता है तो जरूर आपको जुकाम हो सकता है, फिर भी ये जैसे आप ये ना कि जैसे मैं हूँ स्टूडेंट रूरल स्टडीज का, साथ में पढ़ रहा हूँ जेनेटिक कलेक्टिव जी, योगा भी सीख रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ में आप जल नीति भी सीख रहे हो, षटकर्म सीख रहे हो, सूत्र नीति सीख रहे हो, ये साथ में जो चीजें सीखते हो ना, आप खुद को पता नहीं चलते कि हमारी स्किल में और क्या गेन हो रहा है।
1: बाद में रियलाइज होता है कि हमने जो सीख लिया है इस वक्त, बहुत लोग हैं पता है जो सीखना चाहते हैं
0: जी,
1: जिनको लगता है, क्योंकि हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और स्वस्थ रहने के लिए जैसा आपने कहा, बहुत सारी विधाएं हैं, योगा है खास तौर से, और अगर आपके स्टूडेंट लाइफ में वो शामिल हो जाए तो शायद आप जीवन भर नहीं भूलेंगे।
0: जी जी बिल्कुल। मैंने रियलाइज किया कुछ दिन पहले कि एक मतलब सफल व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है ना, तो उसका लाइफ स्टाइल होता है, बहुत लाइफ स्टाइल होता है, कैसे कितने बजे सोता है, कैसे सोता है, कैसे वो रहता है। तो शायद मुझे लगता है बहुत ही रिफ्लेक्ट करता है, मैं ये चीज फील किया, और कई चीजें हम फील करके ही सीख पाते हैं। फिर मुझे लगता है कि यदि हम 5 बजे उठते हैं तो हमारा बॉडी हेल्दी रहती है, सुबह एनवायरमेंट बिल्कुल अलग रहता है, एनर्जी और रहती है, कोई लोग 2 बार दिन में नहाते हैं तो उसे और एनर्जाइज होते हैं। तो ये हमारी छोटी छोटी आदतें और लाइफ स्टाइल का जो हिस्सा होती है, हमको बहुत ही आगे तक ले जाती है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने राजेश, जो ये आपने बात कही है, कई लोग ऐसे हैं जब हम बात करते हैं जो सक्सेसफुल, जिन्हें हम सक्सेसफुल मानते हैं, जिनके बिजनेस है बड़े बड़े, या जो कोई कार्य है एनजीओज भले चला रहे हैं लेकिन एक अच्छे स्तर पर चला रहे हैं, या जो शुरुआत भी कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि उनका लाइफस्टाइल अगर उनसे पूछा जाए तो एक जो सामान्य लाइफस्टाइल है जिसमें ये सब चीजें शामिल नहीं, उससे भेद तो पाएंगे, अंतर तो पाएंगे।
0: जी।
1: अच्छा राजेश, और कोई ऐसी बात है जो आपने ऑब्जर्व की और आपको लगता है कि युवाओं के अंदर या युवाओं को मालूम होनी चाहिए, जो आपके साथी हैं आपको लगता है उनको मदद मिलेगी ये बात?
0: अच्छा ऑब्जर्वेशन तो
1: कोई भी ऐसी लाइफ के प्रति आपकी बात,
0: ऑब्जर्वेशन तो मेरी बहुत है, मैन ये है कि युवा हमेशा अपने आंख कान और ये सब

0: करना चाहिए। यदि हम आपने ये करना प्रारंभ कर लिया तो आपका नॉलेज भी गेन हो जाएगा, आप अवेयर और ज्यादा हो सकते हैं। ये यूथ में थोड़ा सा कई यूथ करते भी हैं और वही युवा कहलाते हैं। और हम एज ए उम्र की बात करें तो उम्र में एक मैं कुछ दिन पहले ही मैं अपना एक स्टोरी छोटा सा सुनाना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। मैं 11th 12th में जिस हॉस्टल में रहता था उन वार्डन सर से मिलने गया। मैं कहा सर रूम तो है नहीं आपके पास खाली, मैं आना चाहता था। तो बोले फिर भी मैंने उनसे मिलने गया मुझे, वो मतलब हमेशा ये कहते हैं फोन नहीं करते बच्चे लोग। तो मैं ठीक है सर मैं मिल के ही आता हूँ। मिलने गया तो मैंने कहा सर आप 25 साल बच्चों के साथ रहे, आपका एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव क्या है? तो बोलेंगे बेटा मैं फैमिली को समय तो कम दे पाता हूँ, अपने बच्चों को समय कम दे पाता हूँ, बट एक चीज अनुभव ये करता हूँ कि बच्चों के साथ रह के बूढ़ा महसूस नहीं करता हूँ। हमेशा वो बूढ़ापन आता ही नहीं इस जीवन में भी, पता नहीं वही एनर्जाइज फील करता हूँ बच्चों के साथ, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। तो मुझे लगा बहुत अच्छी बात है ये। तो मैंने कहा सर जो भी अब कुछ नया होगा आपको समय निकाल के आना है, हम बुलाएंगे वहां पे भी। तो बोले ठीक है बच्चा। तो मुझे अच्छा लगा उनसे मिल के। तो एक युवा के मन में ना हमेशा जो मैंने कहा प्रश्न पूछने का भाव होना चाहिए, साथ ही साथ जानने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा, लिखने की इच्छा, सीखने की इच्छा और आनंद जिसको हम कहते हैं उसको एक लॉन्ग टर्म आनंद लेने के लिए कला के माध्यम से जुड़ना चाहिए उसको हमेशा। तो यूथ को मैं यही समझता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने को बेहतर बनाए और दुनिया को कैसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकता है वो करे।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी राजेश की, जो हमारे प्रश्न पूछने की जो क्यूरियोसिटी है, हम बच्चों को देखते हैं बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं
0: जी,
1: और लेकिन उतना ही वो सीखते हैं डेवलप होते हैं
0: जी।
1: जैसे जैसे हम बड़े जाते हैं ना, कई बार हमें एक दो बार अगर बोल दिया जाता है कि अरे कितना बोलते हो या चलो चुप हो जाओ, अरे कोई इसका जवाब नहीं है, कभी ऐसा भी होता है। और कभी ऐसा होता है कि धीरे धीरे हमें लगता है अब हम बड़े हो गए तो हमें सब पता होना चाहिए
0: जी,
1: लेकिन इतना कुछ है लाइफ में सीखने के लिए कि हमें सब पता नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए पूछते रहे, पूछने में शर्म नहीं करें।
0: बिल्कुल, और ये है कि जो जितना बच्चा पूछ रहा है उसकी जिज्ञासा को भी हम कैसे शांत करने के लिए हम रास्ते खोजते रहते हैं, बट ये उसका मन तो देखो कितना वो प्रश्न पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, कितना जिज्ञासा है। जैसे मैं छोटा होता था ना तो मैं पूछता था, कोई आता था घर पे कोई रिलेटेड, मतलब कोई ऐसे गांव में होता था कोई नया अनजान व्यक्ति भी आ जाता था कभी गांव में पानी पीने के लिए, और कोई शहर का अंधा है तो छाछ वाछ के लिए भी आ जाते। तो मैं पूछता आप क्या करते हैं, तो ये फिर पूछता था आपकी सैलरी कितनी।
1: अच्छा।
0: प्रश्न पूछने का तरीका।
1: हाँ।
0: तो बोले मम्मी को कि बच्चा बड़ा वो है कि बड़ा क्यूरियोसिटी वाला और सैलरी का आज तक हम कोई नहीं पूछता था ऐसे प्रश्न, मतलब मुझे बोला कि सैलरी नहीं पूछना चाहिए किसी से। मैं कि ठीक है, बट एक प्रश्न पूछने का वो जिज्ञासा होनी चाहिए हमको, क्योंकि हम दुनिया और ज्यादा से अच्छे समझते। दूसरा मेरा ये रहा कि मैं पढ़ना है ना, जब 3rd क्लास में था जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था, वो इस ऐसी स्टोरी है कि न्यूज़पेपर लाना ट्रेन में आता था गांव में शहर से, और शहर से मतलब न्यूज़पेपर ले आता था घर पे, पहले तो पढ़ना नहीं आता था, वो पिक्चर से देख लेते खुश हो जाते थे हम उससे समझते। फिर ये कि पढ़ना जब आया तब तक तो घर में है ना, पहले वो पूरा अखबार ना पढ़ ले समझ ले तब तक किसी दूसरे के पास जाएगा।
1: अच्छा।
0: और ऐसा होता था।
1: हाँ, तो कितने बड़े थे आप जब पूरा पढ़ते थे आप बैठ के?
0: मतलब मैं पूरा अखबार अच्छे से खंगालता था, मतलब उससे बहुत सारी चीजें मुझे याद भी रहती थी। अच्छा। दुनिया में क्या क्या हो रहा है।
1: स्कूल में ही थे आप तब?
0: हाँ, जब स्कूल में पढ़ता था पूरा अखबार 7th क्लास में, पूरा अखबार 6th 7th क्लास।
1: अच्छा।
0: सुबह सुबह जल्दी स्कूल अखबार आ जाता था, मैं सुबह जल्दी उठ जाता स्कूल के लिए, तो मेरे पास आधा घंटा रहता था, जरूर मैं 20 मिनट स्कूल यहीं पढ़ लेता था, कभी कभी स्कूल में जाकर अखबार मिल जाता था, 10 मिनट जल्दी चला जाता था वहाँ पढ़ लेता था, फिर वापस आके खाना खाने के बाद फिर अखबार और पकड़ो और पढ़ो अखबार।
1: आपको अच्छा लगता था मतलब?
0: हाँ, वो हिंदी अखबार मैंने मतलब हमेशा वही पढ़ा, तो मुझे हिंदी आज भी अच्छा लगता है। आज तो मैं मतलब और भी हिंदी न्यूज़पेपर
1: जानकारी मिलती है,
0: हिंदी मैगजीन्स, चाहे वो क्या बोलते बच्चों की जो चंपक भी होती है इंग्लिश हिंदी में, तो वो भी पढ़ता हूँ कि इसमें नया क्या है, हम कैसे लिख सकते हैं चंपक, क्या हम लिख सकते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: इस मतलब इस भाव से आप पढ़ते थे उसको?
0: इस भाव से अब पढ़ना प्रारंभ किया है मैंने, मतलब वो मतलब चंपक लिख रहा है तो किस के लिए लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, तो ये सब प्रश्न करके हम उस चीजों को समझे, मजा आता है बहुत। जैसे मैं चंपक रेलवे स्टेशन खरीद के पढ़ रहा था, पास में कुछ बैठे थे लोग, तो

0: मैंने दो मैगजीन खरीदा, उन्होंने भी मुझसे मांग लिया, मैं पढ़िए। तो मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी और मजा आता है, क्योंकि एक मैं चाहता हूँ ना भारत को और अच्छा भारत कैसे बना सकते, तो एक हमको कल्चर डेवलप करना पड़ेगा पढ़ने का लिखने का। जैसे मुझे मेरा एक दोस्त है, उसका भी टारगेट है, मेरा भी टारगेट है कि हम कम से कम भारत में हर 10 किलोमीटर तो नहीं, एक गांव में अच्छा लाइब्रेरी डेवलप करे, जो कम्युनिटी लाइब्रेरी हो, गांव के लोग ही उसको रख रखाव करे और गांव के लोग ही उसमें अच्छी अच्छी बुक्स ला के रखे, ठीक है, और उसमें पढ़ने का एक कल्चर डेवलप करे। क्योंकि गांव में ना लोगों का समय भी होता है, वो समय किसी और चीजों में व्यतीत करते। जैसे एक अंकल थे, वो मैं एक बार पढ़ के फिर वो पढ़ते थे, वो बोलते मैं नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ, ठीक है, पढ़े लिखे थे। और तो फिर ऐसा है कि गांव में कई कम्युनिटी हॉल भी बने होते हैं सरकार की तरफ से, हम वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं इजीली बुक्स और एक कल्चर डेवलप कर सकते हैं। आजकल तो राजस्थान में हर जहाँ देखे थे लाइब्रेरी का अलग ही नया ही स्वरूप दिख रहा है, बच्चे वहाँ जाके फीस दे के पढ़ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कम्युनिटी पे जो होल बने हुए वहाँ पे हम गांव के मिल के लोग वहाँ पे लाइब्रेरी डेवलप कर सकते हैं,
1: गांव के युवा भी मिलकर ये काम कर सकते हैं। और पढ़ाई से ज्यादा शिक्षा से ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ से होगा, मतलब हमें नई नई चीजें पता चलेंगी और आइडियाज भी आएंगे उससे। और जो बच्चे कई बार है कि अक्षर ज्ञान है, ज्यादा पढ़ते नहीं, तो अगर स्कूल में नहीं भी जा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो एज ज्यादा हो गई है, तो किताबों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं। फायदे तो बहुत सारे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली राजेश, एक छोटी सी लाइब्रेरी गांव के लोग मिलकर भी इसको कर सकते हैं।
0: जैसे ये है ना कि प्लास्टिक को खत्म करना है, तो मैं जब सोचता था कि मोहल्ले में किया जाए, मगर इतना आसान भी नहीं है, लोगों को बात बताना समझाना मतलब इतना इजी है नहीं ये जो अपन सोच रहे हैं। और जब वो पढ़ते हैं ना तो खुद से करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि इसको मैं खुद करूं, जैसे मेरा प्लास्टिक का कचरा मैं कहीं भी जाता हूँ अपने बैग वाला जो साइड में होता है ना पानी की बॉटल लगते हैं वहाँ डाल देता हूँ, या फिर कुछ भी छोटा जगह होता है उसमें पॉलीथीन अलग कर देता हूँ और घर में आके उसको सेग्रीगेशन कर लेता हूँ, पॉलीथीन अलग, कागज अलग, ठीक है, कांच और लोहा समथिंग अलग अलग। हम मैंने घर पे लेवल पे भी है ना अपना पूरा कचरा है ना व्यवस्थित कर सकते, ऑर्गेनिक मैटर्स को एक अलग बाल्टी में डाल दिया, पौधों के लिए वो ऑर्गेनिक मैटर तैयार कर लिया, घर में प्लांट्स लगा दिए तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें यूज कर लिया, बाकी सारी चीजें सारी मार्केट में सेल हो जाती है, पॉलीथीन सेल हो जाता है आपका, मतलब ये कि आप समझ रहे हो कोई भी चीज पैकेजिंग में ले आ रहे हो तो आपका पैसा मार्केट उस आपसे ही ले रहा है, तो आप उसको फेंक रहे हो तो मतलब अपना लॉस कर रहे हो सीधा सीधा। कागज है कि वो बिक सकता है, छोटे अमाउंट्स को बड़े अमाउंट में इकट्ठा करके, अब नहीं भी बेचना चाहते हो तो आप जो जहाँ पे सेल कर सकते हो उसको ऐसे ही देख के आओ, क्यों वो बेच सकते हैं, कम से कम रिसाइकल में आएगा। तो ऐसे ही सबसे अच्छी सेवा कि अपने स्तर पे हम एनवायरमेंट को बेटर बना सकते हैं। एक बात मेरे सर ने कहा था कि हम अपने कर्म भूमि को ही कर्म क्षेत्र बना सकते हैं, तो यही है हमारी कर्म भूमि, हम जहाँ जी रहे उसको ही अच्छा बनाओ, बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है
1: क्या?
0: बाकी ये आपसे देख के हम और लोग भी करेंगे, आप उनको बताइए ऐसा ऐसा हम करते हैं, आपको डस्टबिन नहीं है तो हम डस्टबिन ला के दे देते हैं, बट आप अलग तो करिए, ठीक है, आप नहीं फेंक सकते हो कचरा, नहीं गाड़ी में डाल सकते, हमको ही दे दीजिए, अरे हम ही कर देंगे, आप हमारे पड़ोसी तो कम से कम कचरा हमारे सामने तो नहीं फेंकेगा। तो ये छोटे छोटे भाव हमको पैदा करना पड़ेंगे और हमको खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे कि पहले फर्स्ट तो मेरे लिए मोहल्ले को तो क्या मेरे परिवार वालों को समझाना मेरे लिए क्रिटिकल हो गया था।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि आदत पड़ी हुई उनकी, इतना आसान नहीं है। जैसे मैं बस में गया तो उसको बोला कि मैंने पॉलीथिन बाहर मत फेंकी, मुझे ही दे दीजिए, मैं ही रख देता हूँ, तो वो शायद मुझे हमसे लर्निंग ले जा सकता है, जो हम देख के जो सीखता है ना वो। तो अब ये कि कम से कम मैं घर वालों को तो समझा चुका हूँ, अब ये कि सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जब भी समय मिले मेरी टीम के मेंबर्स है और वो कार्यक्रम भी करते रहते पॉलीथिन से, हम बच्चों में जैसे पिछली बार हमने गणेश महोत्सव मनाया था।
1: अच्छा।
0: मिट्टी का गणेश जी, और एक ही थीम था कि पॉलीथिन को हमें कोई भी चीज पॉलीथिन लाए नहीं थे, बाजार से प्रसाद भी लाते थे पॉलीथिन में नहीं, फूल भी लाते थे पॉलीथिन में नहीं, हम कुछ भी चीज ला रहे थे हम वहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग, ठीक है, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पे। कभी कभी हमको नहीं मिलता कुछ के लिए, तो उसके लिए हम प्लास्टिक लाते हैं अपने घर पे ही रख देते हैं, उसको रीयूज करते हैं बार बार। जैसे मम्मी कम से कम सब्जी आती है तो हम करीबन और दूसरे सामान आते हैं मार्केट से, प्लास्टिक हो जाती है हमारी इकट्ठी करीबन 1 kg, तो वापस उन्हीं को दे देती है प्लास्टिक सब्जी वाले भैया को, सब्जी वाले वापस उसी में सब्जी देखते हैं सबको। तो दूसरा है कि हम प्लास्टिक फाड़ने का तरीका भी हमारा, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें है ना, तो शायद हमको सोचना चाहिए, वो सोच हमारी पढ़ाई से ही विकसित हो सकती है, हमारे देख के हमारे बिहेवियर में हम एम्पैथाइज करते तभी वो चीज़ें सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल राजेश, बहुत जो बातें आपने कही वो मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल है, और अच्छी बात यह है कि आप इस उम्र में ही बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, और शिक्षा का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है।
0: जी, एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, क्यों इसलिए ऐड करना चाहता हूँ कि वो चीज मैंने रेडियो से सीखी। जैसे हमारे रोहित भाई जी है, तो रोहित भाई जी क्या कर रहे थे, एक दिन कहीं बैठे थे हम सब लोग और मीटिंग चल रहा था, तो मीटिंग इनफॉर्मल मीटिंग में हम सब बातें कर रहे थे, तो क्या करे इतने सारे पेज लेके आए, जहाँ पे पेज पे नहीं लिखा था उसको पेज को कटिंग कर रहे थे और अपने वो जहाँ पे नोट करने की कुछ चीजें थे उसमें ऐड कर रहे थे। आज क्या था, हम 50 रुपये का स्टिकी नोट्स मार्केट से खरीद के ले आते हैं, तो शायद वो हम अपने घर में बोर्ड लगा दिया उस पे ही, और वो नोट्स पेज छोटे छोटे हमारे पेज इकट्ठा, थोड़ा टाइम लगता है, हमारे पास समय कभी फ्री रहता तो हम उसको अलग कर सकते हैं। मेरा दोस्त कहता था गांधी जी है ना छोटे छोटे पेज का उपयोग करते थे, मैंने कहा हमने तो गांधी जी को देखा नहीं है छोटे छोटे पेज उपयोग, बट तुमने बोला है तो सही बात है और करना भी चाहिए मुझे। तो वो छोटी छोटी आज मैंने कोई भी है ना, जैसे बिल देता है ना उसका पर्ची फर्श में रख दो ठीक है, या फिर कहीं फेंको मत, तो मैं अपना नोट्स बना सकता हूँ, उसपे वर्ड्स मीनिंग्स लिख सकता हूँ इंग्लिश का, तो आप यूज कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों।
1: बिल्कुल, और बिल्कुल आपने ये बात इतनी सही बोली राजेश कि आपके पास जो भी चीजें आती है, कई बार ना हम पुराना तो डस्टबिन में फेंक देते हैं और फिर नया हमारे पास है नहीं सोचने के लिए मार्केट में जाते हैं।
0: जी,
1: तो अगर एक पेज पे लिखा हुआ है कुछ तो उसके पीछे का इस्तेमाल हो सकता है, कई बार हमने एक ही समय का उस फेंक दिया।
0: जी,
1: और क्लिप आते हैं, छोटे छोटे क्लिप होते हैं, या कई बार वो क्लिप होते हैं जैसे कपड़े सुखाए जाते हैं उसको, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो उसमें पेपर को फंसा के एक जगह रखा जा सकता है, है ना, तो उसमें बहुत काम आ जाते हैं। आप पर्यावरण की बात की और शिक्षा की बात की, और जो आप वो बात कर रहे थे प्लास्टिक वाली कि कैसे काटते हैं, वो भी एक बार आप थोड़ा सा बता दो क्लियर करके।
0: जी मम, ऐसे एक बार भूख लगा था तो चिप्स खा रहे थे।
1: हाँ।
0: मेरी हर चीज स्टोरी से जुड़ी हुई है, तो मैं वहीं से सीखता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
1: हाँ, बिल्कुल
0: सर, बेहतर कनेक्ट कर पाए हम।
1: जी,
0: तो चिप्स खा रहे थे तो किसी ने चिप्स का पैकेट फाड़ा, तो चिप्स का पैकेट दो टुकड़ों में बट गया, एक छोटा सा टुकड़ा किया हमने फेंक दिया और दूसरा रखा, चाहे हम नहीं भी फेंका हो, सपोज कहीं भी छोटा टुकड़ा फेंक के कहीं उड़ जाता है, तो ऐसे उन्होंने बोला कि ऐसे लाखों टन्स में वो छोटे छोटे टुकड़े होते ना बढ़ जाते हैं, तो आप एक बड़ा जो पॉलिथीन को ऐसे फाड़े कि वो सेपरेट ना हो, वो एक में ही पॉलीथीन रहे, ठीक है। तो मतलब जैसे कुछ फाड़ने का तरीका होता है, आप उसको बीच में से ऐसे फाड़ो कि वो हम अच्छे से खा भी सकते हैं उसको, और पॉलीथीन रह सकता है, ठीक है। मोस्टली ऐसी चीजें तो लोग अवॉइड करते हैं, जितना ज्यादा एनवायरमेंट के प्रति सजग होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना 1-2 रुपए का चिप्स हम 10 रुपए हम खरीद के खा रहे हैं, तो गरीबी तो ले ही रहे हैं, ठीक है, हमको जरूरत है तो हम खा भी रहे, तो फिर उसको हम बचाएं कैसे पॉलीथीन को, तो उसको फाड़ने का एक तरीका होता है, आप कहीं पे भी यूट्यूब पे भी अच्छा वीडियो मिल जाएगा पॉलीथीन को कैसे फाड़ा जाए
1: ताकि वो टुकड़ा अलग ना हो
0: और उकड़ा ना, तो लाखों टन में टुकड़ा हो जाते हैं। तो मैंने बोला ये क्या कहाँ से बात कर रहे हो तुम, क्योंकि हम युवा है तो पूछते ना प्रश्न क्या बात कर रहे हैं लाखों टन, तो बोले कि हाँ ये बात हमने हमारी इन्वायरमेंट वाली मैम से सुना, तो फिर मुझे लगा कि हाँ भाई बात तो सही है, चाहे ना भी हो लाखों टन में भी करना तो नहीं चाहिए ना, तो फिर मुझे वहां लगा, वहीं से सीखा मैंने, तो फिर और इससे पहले भी सीखा कि हम पॉलिथीन को ऐसे फाड़े कि यूज आ सके, जैसे हार्ड पॉलिथीन होती है जैसे चॉकलेट का, उसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स आती है, तो उसको ऐसे फाड़े कि उसको हम कहीं यूज कर सके, जैसे कि
1: रीयूज वाला कॉन्सेप्ट है।
0: दूध का थैली होता है ना, पहले ले लेते थे वापस 1 किलो थैली इकट्ठा हो जाती थी, पता नहीं आजकल वो लेते नहीं, पता नहीं मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट ये कि मैंने कहीं देखा तो मार्केट में हम पौधा प्लांट लगाते हैं ना, उसके लिए हम पॉलिथीन खरीद के लाते हैं, उसके लिए अलग से पॉलिथीन आता है, उसमें मिट्टी डाला सैम्पलिंग लगाई, तो अब क्या करते दूध की थैली को ही फाड़ दिया ऊपर से, उन्होंने सैम्पलिंग उसी में लगा दी। तो ये जैसे कि मैंने एक घर में ही मतलब एक दिन युद्ध कर लिया।
1: अच्छा।
0: हाँ, वार हो गया मेरा कि घर में एक फंक्शन था, 350-350 लोगों का खाना था, तो मैंने कहा कुछ भी हो गिलास कहीं से भी लाओ, टेंट वालों से लाओ, चाहे घर में 3 घरों से मांग के लाओ, बट प्लास्टिक कहीं दिख गया ना तो तुम देख लेना।
1: अच्छा।
0: हाँ, तुम्हारा कार्यक्रम मैं ही स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आप प्यार से ना कितन काम करते हो इजीली नहीं समझ पाते, और मुझे था कि मुझे करना है डेडिकेशन से, और मैं नहीं करने दूंगा प्लास्टिक यूज नहीं कर दूंगा, तो सारा मैनेजमेंट मेरे पास था, तो मैंने सारी प्लास्टिक जितनी भी यूज करने वाले आए हुए थे उसको मैंने पहले निकाल के ऐसी जगह रख दिया जो कहीं से ला नहीं सके, बस उसको तो कहीं उसको जरूरत पड़ी वो नहीं ला सकता उस वक्त में, ऐसी जगह मैंने उसको अरेंजमेंट किया। पहले मैंने अरेंजमेंट पहले से कर रखी थी ग्लासेस स्टील की, क्योंकि हम 100 ग्लासेस 150 ग्लासेस स्टील की होती है हमारे पास, प्लास्टिक ग्लास तो कितने भी कर सकते ना उस वक्त। तो फिर मैंने कहा क्या किया जाए कि 300 लोगों का खाना है, बर्तन धोने वाला था, मैं सारी उसको ऐसे मतलब एक साथ तो 150 लोग नहीं आएंगे ना, साफ करके अच्छे से साफ करके उनको पहुंचाता गया, तो कहीं भी सप्लाई में कमी नहीं आई। और मेरा संकल्प पूरा हुआ कि मैंने प्लास्टिक यूज नहीं होने दी। ठीक है, वो बहुत सालों तक नहीं सड़ता है, जैसे एक ब्रश है तो 500 साल तक नहीं सड़ता है, तो अब मैं ब्रश भी करता हूँ, ब्रश जब हम करते हैं तो साफ होता है हमारा, मतलब ब्रश में जो फंसा हुआ है ब्रश से ही साफ हो सकता है। तो ये कि आप एक दिन ब्रश करो, एक दिन मैं फिंगर से अपना एक दंत मंजन वो करता हूँ, तो मतलब ये है कि उसका साइकिल बढ़ गया ब्रश का।
1: और अभी बैम्बू वाले भी आते हैं।
0: हाँ, बैम्बू है, नीम है, तो लोग मतलब जो हमारा पुराना लाइफ स्टाइल था ना, बड़ा सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल था, तो हम तो ऐसे हम लाइफ को बना सकते हैं हमारे जीवन में कि छोटे छोटे यूज करके, और प्लास्टिक जितना हो सके उतना हम कम यूज करें।
1: बिल्कुल,
0: और हो सके तो हम ज्यादा से ज्यादा यदि यूज में आ भी रहा है तो रीयूज करें उसको, और कोशिश कर रिसाइकल। तो ये है कि जैसे आजकल ब्रिक्स बन रही है, प्लास्टिक ब्रिक्स आपने सुना होगा, बॉटल में सारी बहुत सारी पॉलिथीन डाल के, वो कई लोग उस ब्रिक्स से वॉल भी बना रहे, जैसे प्लांटेशन का वॉल बनाना, एक प्लांट्स का नीम कट रही उसके ऊपर बना लिया तो उस पर बैठ सकते
1: हैं, भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते।
0: हाँ, क्रिएटिव हो सकता है। तो ऐसा है कि वो कहीं शायद हमारे एनवायरमेंट को खा रहा है तो नहीं खा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक को बनने के लिए आप लगे भी प्लास्टिक फैक्ट्री में जाइए ना, तो आपको समझ आता है कि वो प्लास्टिक के दाने में कितना फ्यूल लगता है, मतलब कैसे वो बनता है, बहुत सारे रिसाइकल होता है। ऐसे जैसे कि पहले पत्तों में चीजें पैक होती थी, वो सस्टेनेबल है, उसको एनर्जी, मतलब यदि हम फिजिक्स के लेवल पे जाएं तो उसका एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होती है और जनरेट नहीं होती है, तो पत्ते अपने आप, प्रकृति अपने आप सही कर देती है सब कुछ।
1: प्रकृति की अपनी साइकिल है ऑलरेडी।
0: हाँ, वो प्रकृति सबसे बड़ी माँ है और वो अपने आप को कैसे जान बचाना चाहती है सब कुछ वो अच्छे से जानती है करना। फिर भी हमारा एक जीवन है, हम उस जीवन में रहते हैं, हमको बेहतर बनाना है तो ये संकल्प हमको लेना पड़ेगा। और मैंने प्लास्टिक की जो बात की, इसके बाद मैंने जो करके दिखा है तो घर वालों का हो सकता है। अगली बार हमने जो हमारे तांबे का लोटा प्रचलन में था, और तांबे के लोटे में आज भी पानी पिया जाता है, तो उसका आप साफ सुथरा रखिए, 50-100 लोटे अरेंज कर लीजिए आप, तो उसमें आप पानी पिला सकते हैं बेहतर।
1: क्या बात
0: है, ठीक है। हाइजीन ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप उसको साफ करके भी कर सकते हैं, कई लोगों को ये मानना कि हाइजीन हो जाता है, बट तांबे में आप यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, मतलब
0: जैसे ये कि ना साफ भी कर रहे हैं तो उसके अंदर जो मैंने सुना है कि उसके जो केमिकल्स के पार्टिकल्स होते हैं ना सर्फ वगैरह के, तो वो आपके अंदर जाते बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह जा रहे हो तो उसको ज्यादा पानी पी रहे हो तो खत्म हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, मीन्स कि मैं कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ उसको, क्या बोलते हैं, चेक्ट, जैसे डायरिया जैसे होता है, डायरिया का जो चीज होता है, तो आप ज्यादा पानी पियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जबकि वो पार्टिकल्स गए उसको, उसको कैसे खत्म करोगे जो केमिकल पार्टिकल्स के, जो वॉशिंग केमिकल पार्टिकल्स है, नहीं हो सकता है,
1: नुकसान बहुत करता है,
0: ठीक है। तो फिर यही है कि पहले हम साफ भी मिट्टी से करते थे, तो आज हमारी बॉडी भी बोलते हैं पंच तत्वों से मिला है, तो ये सब चीजें कनेक्टेड है। हमको इस चीजों में भी मैं और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एग्जैक्ट कैसे साइंटिफिकली प्रूव करके लोगों को समझाया जा सके।
1: जी राजेश, आपने जो बातें कही डेफिनेटली पर्यावरण वाली, वो ऐसी नहीं है जो हम केवल देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा होना चाहिए जीवन शैली ऐसी तो करें, हम में से हर कोई कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: छोटी छोटी बातें जीवन में शामिल की जा सकती है। और आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये सब बातें कहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। और बातों ही बातों में हमने शिक्षा के बारे में बात की तो पर्यावरण के बारे में भी, लेकिन युवाओं के जीवन में जो भी वो ठान ले वो कर सकते हैं, ये तो डेफिनेटली प्रूफ होता है। और आपको भी आपके भविष्य के लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन का, और जब भी मैं आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, और दूसरी बात ये कि बहुत सालों बाद आया हूँ तो ऐसा लग रहा है बहुत कुछ रह गया है, तो शायद आज वो छोटे प्रारंभ के माध्यम से पूरा हो पा रहा है। और रेडियो ने हमेशा मुझे कनेक्टिविटी दी है, प्यार दिया है, और दूसरी बात, आप सभी श्रोताओं को जो मेरी कहानियाँ सुनेंगे, मेरी बातें सुनेंगे, तो मेरी बातें नहीं, आप हम सबकी बातें हैं, तो मैं गलत कह रहा हूँ कुछ भी तो मुझे अच्छा लगेगा, बट मैंने जो भी बातें की वो मेरी लर्निंग्स है, तो हम इस लर्निंग के माध्यम से हम कैसे बेहतर बन सकते हो कर सकते हैं। धन्यवाद,
1: थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका भी और राजेश का भी। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कार्यक्रम युवा मंच में, तब तक रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए,
0: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बन

अगले गीत से पहले आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आ गई हूँ और आज का विशेष दिन भी आपके साथ शेयर करने आई हूँ। आज है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, साथ ही साथ पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस भी आज ही का दिन है। तो चलिए इन सभी को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस विशेष दिन को मैं और आप जरूर उत्साह के साथ पूरा करते हैं। हम इसके बीच लेकर आएंगे आपके लिए कविता भी, कहानी भी, आपसे पूछा जाएगा आज सवाल भी, जिसका जवाब आप देंगे 9414151415 पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अमेजिंग जानकारी के साथ आज की खूबसूरत शाम शुरू करते हैं, क्योंकि मैं हूं आपकी दोस्त मोना और आप सुन रहे उड़ान। पोखरण परमाणु विस्फोटक दिवस है 18 मई, जो विश्व भर में या भारत में ही, विश्व के कोने कोने में जो भारतीय हैं उनके दिलो दिमाग में ये जरूर विशेष दिन होता होगा। और साथ ही साथ मेरे दिल में भी यही बात है। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में किया था। इस उपलक्ष में हर एक वर्ष पोखरण परमाणु विस्फोटक दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद 1998 में भारत ने 11 मई को व 13 मई को राजस्थान के पोखरण में ही परमाणु प्रशिक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। अचानक किए गए इस परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान सहित सभी देश अचंभित रह गए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की निगरानी में यह मिशन कुछ इस तरह अंजाम दिया गया कि पूरी दुनिया को इसकी भनक भी नहीं लगी। और इसके पहले 1974 में जब अपना पहला परीक्षण किया गया था परमाणु, दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाया जरूर गया था, लेकिन वो तब भी उतना सक्सेसफुल नहीं था। 18 मई 1974 में सुबह आकाशवाणी दिल्ली केंद्र पर चल रहे फिल्मी गीतों के प्रोग्राम को अचानक ही बीच में रोककर उद्घोषणा की गई, कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें। कुछ ही क्षण पश्चात उद्घोषक का स्वर गूंज उठा, आज सुबह 8:05 पर पश्चिम भारत के एक अज्ञात स्थान पर शांतिपूर्ण कार्य के लिए भारत ने एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। इस परीक्षण से 5 दिन पहले 13 मई को परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष होमी सेठना की देखरेख में भारत के परमाणु वैज्ञानिकों ने परमाणु डिवाइस को असेंबल करना शुरू किया। 14 मई की रात को इंग्लिश अक्षर में एल के शक्ल में शाफ्ट को पहुंचाया गया और ये था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जो थार मरुस्थल के जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर पोखरण के निकट बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही किया गया। 18 मई को निर्जन क्षेत्र में किया गया, शायद इसलिए पोखरण को बुद्ध की मुस्कान, स्माइल ऑफ बुद्धा भी कहा जाता है। और हालांकि वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन 24 साल बाद भारत ने सचमुच बड़ा कार्य कर दिखाया। 11 मई और 13 मई हम सबके दिलो दिमाग पर पूरा इसका, कहते हैं ना, क्लियर एक विजन हो जाना चाहिए कि 1998 में 11 मई और 13 मई को 5 परमाणु परीक्षण किए, और इससे पहले 10 मई की रात को पूरी योजना का अंतिम रूप दे दिया गया था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था और इसके प्रमुख थे DRDO के प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। सचमुच इस परमाणु परीक्षण के बाद जापान, अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों ने भारत पर प्रतिबंध भी लगा दिया। तब एकमात्र इजराइल एक ऐसा देश था जो इस परीक्षण का समर्थन किया। और फिर 11 मई को इसीलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस भी मनाया जाता है और आज पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस मनाया जाता है। भारत ने हमेशा पूरी दुनिया में ये बात क्लियर रखी कि हम युद्ध करने के लिए कभी भी अपना ये अस्त्र शस्त्र नहीं बनाए हैं, हम अपनी रक्षा के लिए ही रख रखे हैं। हाँ, पर आप हमें छेड़ोगे तब देखा जाएगा। खैर, हमें इस तरीके की कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं। हम चाहते हैं सभी अच्छे रहें, सुरक्षित रहें, प्यार से रहें, और जो भी वॉर जैसी चीज है इसका सामना किसी को कभी ना करना पड़े। लेकिन भारत ने परमाणु परीक्षण जरूर किया था। चलिए इसके साथ साथ आज का सवाल जरूर सुन लेते हैं। सवाल है, एक ऐसी कहावत जिसको कहते हैं कि ये पेड़ पर नहीं उगते, वो कौन सी चीज है? ए पत्ते, बी फूल, या फिर सी पैसे?
ये चीज पेड़ पर नहीं उगते, ये हिंदी कहावत है। और वो कौन सी चीज है इन तीनों में से जो सचमुच पेड़ पे नहीं उगते? ए पत्ते, बी फूल, सी पैसे। झटपट जवाब दीजिए भाई, हमारा नंबर बहुत आसान है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। 9414151415। और ये गीत एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: Wow. It's almost as big as an orange.
1: जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
4: रेडियो मधुबन सभी कुछ सेलिब्रेट करता है, साथ ही साथ आपको सजग भी रखता है। कहीं आपसे कोई ऐसी घटना न घट जाए जो दुर्घटना में परिवर्तित हो जाए। चलिए सजग रहिए और सुरक्षित रहिए। रेत के सागर में गूंजी एक अनूठी हुंकार, धरा कांप उठी, थरथराया सारा संसार। यह शक्ति है भारत की, यह शांति का उद्घोषक है। पोखरण के रन में जगा राष्ट्र का नया जोश है। पोखरण राजस्थान में 1998 में जो सफल परीक्षण, परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, एक ऐतिहासिक घटना के गौरव, राष्ट्रवाद और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साहस को दर्शाती है ये कविता। जरूर पोखरण दिवस बेसिकली 18 मई के 1974 में हुए उस कारनामे की वजह से ही है, लेकिन फिर भी ये जो राष्ट्र का नया जोश था वो दबने वाला बिल्कुल नहीं था। अटल इरादों ने लिखी एक नई स्वर्णिम कहानी, कलाम के विजन ने भरी विज्ञान में चुबानी। रडार और सैटेलाइट भी समझ न पाए चाल, वीरों की इस भूमि ने कर दिया कमाल। बुद्ध की मुस्कान फिर नए भारत का मान बनी, दुनिया झुकी शीश अब भारत की पहचान बनी। कोई डराना धमका पाया अपनी इस उड़ान को, चूम लिया अंबर ने आकर भारत के अभिमान को। शांति के पुजारी हम पर झुकना हमें ना भाए, पोखरण की दहाड़ से दुश्मन भी थरथराए। गर्व से कहो बुलंद है हम विश्व गुरु की ओर बढ़े, शक्ति के इस धाम पर भारत के कदम अड़िग खड़े, अड़िग खड़े, अड़िग खड़े। आज का ये खूबसूरत दिन है और दिन है सोमवार का। पुनः आज का सवाल दोहरा देते हैं। सवाल हमने रखा था, वो कौन सी चीज है जो पेड़ों में नहीं उगती, ये हिंदी की एक कहावत है। आपके सामने ऑप्शन है ए पत्ते, बी फूल या सी पैसे। झटपट सही जवाब दे 9414151415 पर दे 94 14 15 14 15 पढ़ते। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: गंगा।
1: वेल दोस्तों, बेहतरीन इस गीत के बाद मैं मोना वापस आ गई हूँ और एक और गीत आप तक पहुंचाने से पहले आज का सवाल दोहरा देती हूँ। सवाल है, इनमें से वो कौन सी चीज है जो पेड़ों पर नहीं उगते? सवाल के ऑप्शन देने से पहले, आज है राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 18 मई का दिवस है, दिन है, हमारे पूर्वजों की अनमोल यादों को सजो कर रखते हैं हम, और ये दिवस विश्व भर में संग्रहालय अर्थात म्यूजियम की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूकता लेकर आने में, उनके अंदर पैदा करने में प्रतिवर्ष विशेष मनाया जाता है। मुझे कहीं पर भी जाकर म्यूजियम देखना अच्छा लगता है, वो वहाँ की संस्कृति से जोड़ने में हमें मदद करता है, क्योंकि आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से अर्थात शहरीकरण की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम तक करीब नहीं पहुंच पाती। अब जैसे आबू रोड की ही बात कर ले, आप में से बहुतों ने कभी भी आबू रोड के इतिहास को जानने के लिए कोई ऐसी जगह पर नहीं गए होंगे, या आप जैसे हमको, हम बहुत पहले से इस जगह पर नहीं रहे तो हमें इसके इतिहास के विषय पर बहुत जानकारियां नहीं है, लेकिन यहाँ पर मौजूद चंद्रावती में म्यूजियम एक है जहाँ पर इधर के आबू रोड की प्राचीन चीज़ें, जो यहाँ पर मिली हुई चीज़ें हैं, उसे संग्रहालय में रखा गया है। तो प्लीज़ ऐसे नज़दीक के संग्रहालय में ज़रूर विजिट करें। ये संग्रहालय करीबन फ्री रहते, बहुत कम पैसे लगते हैं, लेकिन आप संग्रहालय में जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति को गहराई से पहचानेंगे। ये यादों की तरह है जिसे संजो कर रखा गया है, हमारे पूर्वजों की याद को सुंदर ढंग से रखने में मदद करता है ये संग्रहालय। और संग्रहालय की जो शुरुआत थी, इसके महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाना शुरू किया। जागरूकता इस बात की है कि हम सभी संग्रहालय में चीज़ों को सुरक्षित रखें, क्योंकि बाहर पड़ी रहती तो कई बार हम इसको समझते नहीं हैं, उसे वेस्ट समझ लेते हैं। इसी को याद करते हुए, इसी को संरक्षित, हमारी धरोहर को रखने में ये मदद करता है। तो चलिए इसके साथ साथ एक और बेहतर गीत जो भारत की भूमि से जुड़ा हुआ है आप तक लेकर आ रहे हैं मैं मोना, उड़ान में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: विजयी भव, विजयी भव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बेहतरीन कहानी आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं उड़ान रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: समय पहले लगभग 1970 के दशक की बात है। उस समय एक रुपया भी बहुत कीमती होता था। भारत के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था रामदयाल। रामदयाल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके खेती, व्यापार और बड़ा घर बनाया था। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था और उसे एक चिंता सताने लगी।
2: मुनीम जी, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, उम्र भी हो चुकी है। मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी संपत्ति का बंटवारा करके सारा काम भार बच्चों के हाथ में दे देना चाहिए।
3: बिल्कुल सही सोच रहे हो रामदयाल जी, बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं, काम और व्यापार वो अब नहीं तो भला कब संभालेंगे। मैं तो कहता हूँ सब काम बच्चों पर छोड़ दीजिए और आप तीर्थ घूमिए और आराम कीजिए।
2: हाँ, मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा हूँ भाई। आज नहीं तो कल संपत्ति का बंटवारा तो करना ही है। लेकिन संपत्ति का बंटवारा तो ठीक है, परंतु व्यापार में तीनों बेटों में से किसी ऐसे को सौंपना चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो और जो मेरे व्यापार व्यवसाय को मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़ा पाए।
3: लेकिन सेठ जी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि उन तीनों में से सबसे ज्यादा समझदार कौन है?
2: उसके लिए भी मैंने एक उपाय सोच रखा है। तुम बस तीनों बेटों को मेरे पास यहाँ बुला लाओ।
4: ठीक है सेठ जी, मैं उन्हें अभी बुला लाता हूँ।
1: इतना कहकर मुनीम रामदयाल जी के तीनों बेटों रघु, मोहन और सोहन को बुलाने के लिए चल देते हैं। तीनों भाई जब घर पहुँचते हैं तो रामदयाल जी घर के पीछे बने एक मकान के पास खड़े होते हैं।
2: कहिए पिताजी, क्या बात है? आपने यूं अचानक हमें क्यों बुलाया है?
5: हाँ बेटे, बात कुछ ऐसी ही है। मैंने मुनीम जी से बात करके ये फैसला किया है कि अब सारी संपत्ति का बंटवारा करने का

0: मैं घर और खेत तुम तीनों भाइयों में बराबर बांटना चाहता हूँ, इसलिए तुम तीनों को यहाँ बुलाया है।
1: लेकिन पिताजी, अभी बंटवारे की क्या जरूरत है? सब कुछ सही तो चल रहा है।
0: नहीं बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है। मैं अब अपना बाकी का जीवन बिना किसी चिंता के आराम से जीना चाहता हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो तुम्हारे लिए भी यही सही उम्र है कि तुम घर परिवार और व्यवसाय की जिम्मेदारियां संभालो।
2: ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे।
0: बच्चों, घर और खेत की जमीन तो मैं तुम तीनों में बराबर बांटना चाहता हूँ, पर व्यापार में तुम तीनों में से उसी को सौंपना चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा समझदार और होशियार होगा। बाकी दोनों भाई उसके साथ काम में उसका हाथ बटाना। अब तुम तीनों में से सबसे ज्यादा होशियार कौन है, ये पता करने के लिए मैंने एक उपाय सोचा है।
1: बोलिए पिताजी, हमें क्या करना होगा?
0: तुम तीनों मेरे साथ आओ।
3: राम दयाल जी तीनों बेटों को अपने साथ आने को कहते हैं। वो तीनों भाइयों को पीछे बने अंधेरे कमरे में ले आते हैं और कहते हैं,
4: बेटा, इस कमरे को देख रहे हो? ये पूरी तरह से खाली है। मैं तुम्हारी समझ और होशियारी की परीक्षा लेना चाहता हूँ।
0: परीक्षा? कैसी परीक्षा पिताजी?
4: मैं तुम तीनों भाइयों को 10-10 रुपए दूंगा। उन 10 रुपए से तुम्हें कोई ऐसी चीज लानी है जिससे ये पूरा घर भर जाए।
2: क्या सिर्फ 10 रुपए? लेकिन पिताजी, ये कैसे संभव है भला? इतने से पैसों में ऐसी कौन सी चीज आएगी जिससे ये इतना बड़ा कमरा पूरा भर जाए?
4: यही तो तुम्हारी परीक्षा है बेटा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कम स्रोतों और साधनों में तुम कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाओगे। यही तुम्हारी होशियारी और समझदारी की परीक्षा होगी।
1: ठीक है पिताजी, जैसा आप उचित समझें।
3: तीनों भाई पिता की आज्ञा मानकर उनसे 10 रुपए लेकर बाहर बाजार की ओर चल देते हैं। बड़ा बेटा रघु पास के बाजार में पहुंचकर दुकानों पर कोई ऐसी चीज ढूंढने लग जाता है जो उस घर को पूरा भर सके।
4: अब क्या करूं? इतने से पैसों में ऐसी चीज कहां से लाऊं जो इतने बड़े घर को पूरा भर सके? पिताजी ने भी ये कैसी अजीब शर्त रखी है।
3: ये सोचकर रघु थोड़ी दूर आगे चला ही होता है कि उसे रुई की एक दुकान नजर आ जाती है। वो खुश होकर सीधा दुकानदार के पास आ जाता है।
5: अरे भैया, रुई कैसे दे रहे हो?
6: 1 रुपए की 2 किलो दे रहा हूँ भाई साहब।
5: ठीक ठीक लगाइए भैया, गांव में नए नए दिख रहे हो, पहली बार दुकान लगाइए क्या?
6: ऐसी बात नहीं है भाई साहब, चलिए आपके लिए 2.5 किलो लगा देता हूँ। बोलिए कितनी लेनी है?
5: हाँ, ये करी ना आप समझदारी वाली बात, मुझे पूरे 10 रुपए की रुई चाहिए, बताओ कितनी आ जाएगी?
6: क्या 10 रुपए की रुई? साहब ये तो बहुत ज्यादा है, इतनी सारी रुई का आप करोगे क्या?
5: क्या करूँगा मतलब, तुम्हें उससे क्या? तुम तो ये बताओ 10 रुपए की कितनी रुई आ जाएगी?
6: ठीक है भैया, सही है, मुझे इससे क्या, आपके 10 रुपए की रुई 25 किलो हुई है, लेकिन बोलिए कहाँ रखवाऊं?
5: इतनी सारी रुई कहाँ रखवाओगे? मैं तो कुछ साधन भी नहीं लाया अपने साथ। क्या तुम मेरे घर ये रुई भिजवा सकते हो? मेरा घर यहीं पास में ही है।
6: ठीक है भाई साहब, रुई आपके घर भिजवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। मेरा लड़का कहीं रुई रखने गया है, आप अपने घर का पता बता दीजिए, वो जैसे ही आएगा मैं उसे आपके घर रुई लेकर भेज दूंगा।
3: रघु दुकानदार को रुई के पैसे देकर घर आ जाता है। रघु जब घर वापस आता है तो उसके पिताजी और मंजला भाई उसी घर के बाहर खड़े हुए कुछ बातें कर रहे थे।
5: अरे पिताजी, आप अभी तक यहीं हैं? और छोटे भाई, तुम इतनी जल्दी बाजार से आ भी गए? जरा मुझे भी तो दिखाओ, इतनी जल्दी ऐसी क्या चीज मिल गई तुम्हें जो पिताजी की शर्त को पूरी कर सके?
4: अरे बेटा रघु, तुम भी इतनी जल्दी वापस आ गए,
5: चलो अच्छा है, मैं भी ये देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ कि आखिर तुम तीनों भाई ऐसा क्या लाओगे।
3: बे तीनों ये बात कर ही रहे थे कि इतनी देर में रुई वाला भी गाड़ी में बहुत सारी रुई लेकर वहाँ आ जाता है।
4: अरे रघु बेटा, ये क्या, तुम तो बहुत सारी रुई ले आए हो।
0: हाँ पिताजी, मुझे पूरे बाजार में केवल रुई ही ऐसी चीज लगी जो कम रुपयों में बहुत सारी आ जाती है, इसीलिए मैं यही ले आया। इससे ये कमरा पूरा भर जाएगा और मैं आपकी शर्त भी जीत जाऊंगा।
4: बहुत अच्छा दिमाग लगाया बेटा, रुई का ढेर कम वजन होने के साथ साथ ये बहुत सारी जगह भी घेरता है, लेकिन तुम शर्त जीते या नहीं इसका पता तो तभी लगेगा ना, जब तुम ये रुई कमरे के अंदर ले जाकर इससे घर को भर के दिखाओगे।
5: ठीक है पिताजी, आप और भाई अंदर चलिए, मैं सारी रुई अंदर रखवाता हूँ।
3: तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर वे देखते हैं कि सोहन ने कमरे में हरी घास लाकर रखी हुई थी। रघु भी सारी रुई कमरे में लाकर रख देता है।
4: अरे सोहन बेटा, तुम तो हरी घास ले आए हो, और ये भी इस कमरे को पूरा भरने के लिए बहुत कम है। तुम मेरी शर्त भूल गए थे क्या? मैंने कहा था कोई ऐसी चीज लेकर आना जो इस पूरे घर को भर सके।
1: नहीं पिताजी, मुझे आपकी शर्त अच्छे से याद थी, पर साथ में ये भी अच्छी तरह से जानता था कि इतने कम रुपयों में ऐसी कोई चीज आ ही नहीं सकती जो इस कमरे को पूरा भर सके। इसलिए यहाँ से जाते वक्त रास्ते में मैंने हरी हरी घास उगी हुई देखी थी। बारिश का मौसम होने की वजह से ये यूं ही सब तरफ उगी हुई है, तो मैंने मजदूरों को वो पैसे देकर उनसे ये घास कटवाकर यहाँ रखवा दी। मुझे लगा कि ये घास कमरे को पूरा भर तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी मेरे दोनों भाइयों को 10 रुपए में जो सामान मिलेगा उससे तो हर हाल में ज्यादा ही होगी।
4: लेकिन बेटा सोहन, फिर भी तुम ये बात तो मानते हो ना कि तुम शर्त में रघु से पीछे रह गए। उसकी लाई हुई रुई कमरे में तुम्हारी लाई हुई घास से ज्यादा जगह घेर रही है।
0: देखा पिताजी, अब तो आप मानते हो ना कि तीनों भाइयों में ही सबसे ज्यादा होशियार हूँ। चाहे शर्त के अनुसार मैं पूरा कमरा नहीं भर पाया, परंतु फिर भी मेरी रुई ही सबसे ज्यादा होगी, इसलिए व्यापार के हिस्से में प्राथमिकता मुझे ही मिलनी चाहिए।
4: अरे रुको बेटा, इतनी जल्दी किस बात की है, अभी मोहन का आना बाकी है, उसे तो आ जाने दो।
1: जी पिताजी, मैंने शर्त के अनुसार वैसी चीज ढूंढने में मेहनत नहीं की और आपकी शर्त को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए मैं हार गया।
4: एक बात हमेशा याद रखना बेटा, आत्मविश्वास हमेशा अच्छा होता है, किंतु जरूरत से ज्यादा अति आत्मविश्वासी होना अच्छी बात नहीं है। क्या पता मोहन तुमसे ज्यादा अच्छा कुछ ले आए। लेकिन ये मोहन कहाँ रह गया है? शाम होने को आई, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था।
3: रामदयाल बड़े बेटे रघु को समझा रहे थे, लेकिन वो तो मन ही मन खुश हो रहा था, वो तो अपने आप को जीता हुआ मान चुका था। तभी वहाँ मोहन आ जाता है।
5: अरे मोहन बेटा, तुम कहाँ रह गए थे, इतनी देर कैसे हो गई?
7: माफ करना पिताजी, आने में देर हो गई। आज जब मैं बाजार में आपकी शर्त के अनुसार पूरे कमरे को भर देने वाली चीज ढूंढने जा रहा था, तब रास्ते में मुझे एक भूखा व्यक्ति और एक बारिश में भीगने की वजह से ठंड से ठिठुरती हुई बूढ़ी अम्मा दिखी। उन्हें यूं परेशान देखकर मुझे आपकी सीख याद आ गई और मैंने आपके दिए हुए रुपयों में से 4 रुपए का भूखे को खाना खिला दिया और 5 रुपए से उन बूढ़ी अम्मा को नया कंबल खरीद कर दे दिया। इसी वजह से आने में देर हो गई।
4: बहुत अच्छा किया बेटा, हमें हमेशा जरूरतमंद की मदद करना चाहिए, लेकिन उस वजह से तुम्हारे सारे पैसे तो खर्च हो गए, जिसकी वजह से तुम मेरी शर्त तो हार गए।
7: नहीं पिताजी, जब तक आपकी दी हुई शिक्षा मेरे पास है तब तक हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत सोचने के बाद मैं बचे हुए 1 रुपए में से 50 पैसे की मोमबत्ती और 50 पैसे की माचिस ले आया हूँ।
4: क्या मोमबत्ती और माचिस? लेकिन उससे क्या होगा? मैं कुछ समझा नहीं बेटा।
7: रुकिए पिताजी, मैं आप तीनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ।
3: मोहन ने जैसे ही मोमबत्ती को जलाया, पूरा कमरा उसकी रोशनी से भर गया।
7: देखिए पिताजी, मैंने आपकी शर्त के अनुसार पूरे घर को प्रकाश की रोशनी से भर दिया।
4: शाबाश बेटा, मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत खुश हूँ। तुम अपनी योग्यता साबित करने के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद करना नहीं भूले। तुम ही मेरे व्यापार को संभालने के लिए योग्य हो। मुझे तुम पर गर्व है बेटा।
3: रामदयाल मोहन की होशियारी से बहुत ही ज्यादा खुश हुए और दोनों भाई रघु और सोहन भी अपने छोटे भाई के शर्त जीतने की बधाई दे रहे थे। और इसी तरह
8: तीनों भाई एक साथ। हाँ, भाइयों के बीच में ये प्यार जरूरी भी है। समाज कई बार आज ऐसे दृश्य को दिखाता है कि भाई भाई के दुश्मन बन गए, पर परमात्मा हमें यही सिखाते हैं कि आपसी प्यार, आपसी सद्भावना आवश्यक है। हम इस कलयुग में रहते हुए भी एक दूसरे से प्यार बांट सकते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान रख सकते हैं और दूसरों के प्रति शुभ भावना कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, पुनः सवाल लेकर आते हैं और सवाल यही था, इनमें से कौन सी चीज पेड़ों पर नहीं उगती? आपके सामने ऑप्शन है पत्ते या फूल या फिर सी पैसे। सही जवाब जरूर देना 94-14-15-14-15 पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अब क्या?
1: क्लॉस्ट्रोफोबिया. व्हाइट हाउस की कैंटीन में स्टोर पहुंच गया, प्लीज चेक.
2: अच्छा, कौन सा? वो हाइड्रोजन बम वाला?
3: सर, कोर्ट में बात कीजिए.
2: अशरथ, सिक्योर लाइन है, प्लीज डोंट इरिटेट मी, नहीं तो अभी वो ट्रिगर दबा दूंगा. हाँ, फाइनल चेक्स एवरीवन. शाफ्ट सील करने का वक्त आ गया है. कम ऑन, गेट रेडी.

0: होता है?
1: अरे टिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर का माय तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं, पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
5: वेलकम बैक दोस्तों, पुनः सवाल दोहराते हुए गीत आप तक पहुंचाती हूं। वो कौन सी चीज है जो कहावत, एक हिंदी कहावत है, इनमें से वो कौन सी चीज है जो पेड़ों में नहीं उगती है? ए पत्ते, बी फूल या सी पैसे? झटपट जवाब दे दीजिए 9414-1415 पर दीजिए, क्योंकि आप जुड़े हैं लाइव प्रोग्राम उड़ान के साथ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: कल दोस्तों अभिजीत जी की मीठी आवाज आप तक पहुंच चुकी थी और मैं लौट के आ गई हूँ मोना आज के सवाल का जवाब देने में। तो चलिए, आज का सवाल हमने पूछा था वो कहावत जिसमें कहते हैं कि पेड़ पर ये चीज उगते नहीं है। हमने ऑप्शन दिया था आपको, पत्ते, फूल और पैसे। और हमारे दोस्तों ने शायद सोचा होगा, कॉल तो नहीं किया, लेकिन उम्मीद करते हैं आपका कॉल आने का। मैं और रूहानी अक्सर बातचीत करते हैं कि हमारे श्रोता लाइव सुनते फिर क्यों कॉल नहीं करते। जी दोस्तों, आज नहीं कॉल किया लेकिन कल कॉल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कल भी हम कार्यक्रम लेकर आएंगे ठीक शाम 6 बजे। पर सही जवाब है, पेड़ में तो पत्ते ज़रूर उगते हैं और फूल, अरे वो भी उगते हैं। कहावत है, पेड़ में जो चीज़ नहीं उगते वो पैसे हैं, धन है। जी हाँ, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जाते जाते किसी श्रोतागण ने कॉल कर दिया, बात कर लेते हैं, कौन है सुन लेते हैं। नमस्कार, हमारे कौन से श्रोतागण है जो कॉल कर रहे हैं? हेलो,
1: ओम शांति दीदी।
0: जी नमस्कार, ओम शांति, बताइए सर कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ज्ञानेंद्र यादव बोल रहा हूँ, अलीगढ़ यूपी से।
0: जी अलीगढ़ से बात कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, और सवाल का जवाब दे दीजिए फटाफट।
1: जी सवाल का जवाब है सी, पैसा।
0: पैसा, चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत, कल जरूर मिलते हैं ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहना चाहूंगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: से दो, हम हैं वही, हम थे जहां।
1: अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस 1 मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, हम सभी वर्गों से मिलते हैं, क्योंकि ये सरकार का दिया हुआ रेडियो है। थेमर रेडियो, थेमर लिए, थेमर वास्ते और थेमर द्वारा। आपका रेडियो है आपके द्वारा और आपके लिए प्रस्तुतकरण होता है फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। कम्युनिटी रेडियो होने के नाते कम्युनिटी में जो गतिविधि हो रही है सब तक पहुंचे, ये मंशा को लेकर चाहे सिरोही जिला में आबरोड ब्लॉक, चाहे पिंडवाड़ा ब्लॉक, चाहे रेवदर ब्लॉक, चाहे शिवगंज हो, चाहे सिरोही, सभी वर्गों से मिलते, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े, सभी से मिलते हैं। तो आज हमें खुशी है इस कार्यक्रम को लेकर आबू रोड से दूरस्थ जगह पिंडवाड़ा ब्लॉक में पहुंचे और पानिया ग्राम पंचायत के एक छोटा सा प्राथमिक विद्यालय है। तो हमें खुशी लगता है जब भी आए, अचानक आए, कोई सूचना नहीं था, लेकिन बच्चों का अनुशासन, बच्चों का स्वच्छता, बच्चों का ड्रेस कोड देखकर मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, पूरा स्कूल का पास रहने मिल गया चांस। तो बच्चों को आज रूबरू कराएंगे और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मैम भी उपस्थित है। मैडम, आपको स्वागत करते हैं। इस स्कूल का बारे में और बच्चों का और खासकर बालिका उपस्थिति, बालिका नामांकन और बालक का नामांकन का बारे में बताइए। आपका परिचय पहले अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम लक्ष्मी परिहार है, मैं खादीपली पानिया से हूँ।
0: और खासकर बच्चों का नामांकन?
1: हाँ, बच्चों का नामांकन है 52।
0: बावन और बावन बालिका और बालक को लेकर, बालिका शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे?
1: नहीं, बच्चों का तो बहुत रुचि रहता है, बाकी बहुत कम बच्चे भेजते हैं स्कूल में। ये अपने कोई ना कोई काम के लिए घर पे रोक देते हैं, बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं।
0: तो कारण क्या है? मैंने ये पहाड़ी अशिक्षित,
1: हाँ, माँ बाप समझते नहीं है ना कि बच्चों को पढ़ाना, बच्चे क्या करेगी पढ़ के, बोले। इसलिए बच्चों को बहुत कम मतलब भेजते हैंगे वो अपने घर में, ये काम है ये काम है, इसके लिए रोक लेते हैं। फिर बच्चों को आगे, फिर वो बच्चे इतने रुचि लेते नहीं पढ़ने में।
0: जी जी,
1: है ना, ये बात है। और लड़कों को तो खैर भेजते भी है, लड़कियां रेगुलर नहीं आती है, आती है चार पांच लड़कियां आती है रेगुलर, बाकी ये बच्चा कोई छोटा बच्चा है घर में,
0: ओके,
1: है ना, इसलिए फिर उनको रख लेते हैंगे घर पे।
0: ये कारण है क्योंकि घर में जैसे अशिक्षा कारण क्या चलते, अशिक्षा के कारण के चलते, बहुत कम पढ़ा लिखा के कारण से, अवेयरनेस कम का चलते, तो बड़े बच्ची, जो बड़ी बच्ची घर के, छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों को लालन पालन करने में रुक जाते हैं, क्योंकि माँ बाप तो काम में चला जाए, नरेगा में हो चाहे खेती बाड़ी में चला जाते, तो बच्चों को पालन करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को तो उनको रहना पड़ता है, जिसका चलते उनका पढ़ाई में बाधित होता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, चाहे पहाड़ी इलाका हो, चाहे जो भाकर क्षेत्र हो, जो आदिवासी एरिया, क्योंकि ये तो ट्राइबल एरिया है, टीएसपी एरिया है, तो बच्चों का नामांकन इसलिए कम होता है, और खासकर बालिका शिक्षा सभी जगह में अधिक नामांकन अधिक होता है, लेकिन इस स्कूल में हम देखे तो बालिकाएं कम। इसका कारण मैम अभी बता रहे जो उनका पारिवारिक जो आवश्यकता उसको पूर्ण करने के लिए बड़े छोकरिया, बड़े जो बालिकाएं तो रुक जाते हैं, क्योंकि माँ को हेल्प हो जाता, आई को, क्योंकि माँ चला जाती इनको दे देते, जिसका चलते वो निश्चिंत हो जाते, लेकिन उनका पढ़ाई में बाधित होता है। शिक्षा बिना हमारा जीवन अधूरा है। बालिका शिक्षित होगी तो दो कुल के 21 कुल को उद्धार करेगी। इसलिए जहाँ बालिका बा महिलाओं का सम्मान होगा, शिक्षा में आगे बढ़ेंगे तो पीछे पीछे बालक तो आ जाएंगे। तो मैम आपको धन्यवाद देते इस तरह कार्यक्रम में आपने जोड़े और खासकर सही बात बताया, क्योंकि यहाँ का जो अनुपस्थिति बा नामांकन में कम उसका कारण आपने बताया, और अशिक्षित भाई अवेयरनेस कम है, पढ़ा लिखा उनका माँ बाप इतना पढ़ा माने शिक्षा को ध्यान नहीं देते, जैसे आपने बोले पढ़ लिख कर क्या करेगी, है कि नहीं?
1: हाँ।
0: तो लेकिन वो समय जमाना चला गया, जितना आज का समय अलग है। तो आप एक महिला है, मैम है, तो आपका घर में कभी इस तरह आपको जेंडर को लेकर, लड़की और लड़का, बात छोकरा छोकरी को लेकर पढ़ाई में कभी बाधा सृष्टि हुई आपका परिवार?
1: कभी नहीं हुई।
0: देखो बच्चे आपको देख रहे, सुन रहे,
1: तो कभी नहीं हुई है।
0: हाँ, कभी नहीं हुई।
1: मैं भी आदिवासी परिवार से ही हूँ सर।
0: जी जी जी।
1: बाकी मेरे तो घर में सभी बच्चे मतलब भाई बहन को सबको पढ़ाया, अच्छे एजुकेशन दे दिया मेरे भाई पापा ने, सभी नौकरी वाले हैंगे, सभी सर्विस वाले हैंगे, बाकी अब गांव वालों को समझाते हैं पर समझते नहीं है सर।
0: तो आप यहाँ आपका यहाँ लोकल घर?
1: हाँ लोकल है।
0: कहाँ, कौन सा गांव?
1: ये खादरी फली पानिया,
0: इसी गांव में।
1: हाँ, ससुराल,
0: ससुराल घर में। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत भाग्य का बात है। किंतु कहाँ जाना नहीं पड़ रहा, ससुराल घर में ही आपका पोस्टिंग हुआ। और कहाँ तक पढ़ाई की मैम आपने?
1: मैंने कॉलेज करी है।
0: वो कॉलेज किए, और किस तरह आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए इच्छा हुई, जो एक टीचर बनकर सोची थी?
1: नहीं, सोचा तो नहीं था, पर कि अब क्या करे, अब हो गए, पापा ने भेज दिया, अब हो गए इसमें सिलेक्शन सर।
0: गुड। इसमें खुशी है ना आप?
1: हाँ, बहुत खुश है सर।
0: आपके बच्चों को पढ़ाना ये एक भाग्य का बात, क्योंकि कच्चा मिट्टी होकर आते हैं और आप उनको मूर्ति बना देते, उनका करियर बना देते हैं, और बच्चे तो जैसे आप बोलेंगे उस तरह सीख जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद एक प्रार्थना सत्र होगा, क्योंकि स्कूल में आए, विद्यालय में, तो एक प्रार्थना न हो ये हो ही नहीं सकता। तो राजकीय विद्यालय और आध्यात्मिक विद्यालय, विश्वविद्यालय ओम शांति तरफ से, और हमारा राजकीय विद्यालय, दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का हुनर को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन आज एक मंच दे रहे, जिस चलते आज सर और मैम और बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद।

0: समस्त कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति आप सब सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, खासकर ये सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वार और सामुदायिक आवाज, उनका आवाज ही उनका पहचान होगा। इसमें तो वीडियो नहीं आ रहा कि फोटो नहीं आ रहा, लेकिन उनका आवाज जब सुनेंगे, हमारा श्रोता सुनेंगे, अरे ये हमारा मैम का आवाज है, उनका परिवार वाले जब सुनेंगे, क्या बात, ऐसे पूरा शाबाश देंगे। और बच्चों का नामांकन भी वृद्धि होगा स्कूल में पढ़ाई का साथ साथ। इस तरह आकाशवाणी में बच्चे जब आते हैं तो बच्चे खुशी से अपना दिल का बात रख रहे हैं। तो चलिए हमारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति प्रार्थना का रूप में एक हो जाएंगे, सभी बच्चे साथ देंगे और हमारा साथ देने के लिए हमारा प्रार्थना सत्र में खड़े हो जाओ। चलिए बच्चे सभी नाम बताएंगे, नाम बताओ। थमर होना आरती,
1: शर्मिला,
0: शर्मिला ओके,
1: दीपू,
0: बुराराम, उज्जवाराम, अर्जुन, सबको स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और सभी प्रार्थना सत्र में एक प्रार्थना होगी, तो शुरू करें।

इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से अपना दिल का बात प्रार्थना का रूप में आस्था विश्वास भक्ति भावना को उजागर करते हैं। बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे महात्मा होते हैं, बच्चे भविष्य होते हैं और माँ बाप का जो आशा अपेक्षा माँ बाप का उसको पूर्ण करने के लिए जी जान लगाते हैं और माँ बाप भी अपना सर्वस्व त्याग के बच्चों को पढ़ाते हैं। माँ बाप नहीं खाकर बच्चों को खिलाते हैं, माँ बाप बच्चों के लिए सर्वस्व और बच्चे जब बड़े हो जाएंगे माँ बाप के लिए बच्चे ही सर्वस्व होंगे क्योंकि बुढ़ापा में जब ढोकरा ढोकरी माँ बाप हो जाएंगे ये बच्चे ही भविष्य में माँ बाप का सेवा रिटर्न में बहुत कुछ देंगे। जैसे हमारा मैम आज उनका माँ बाप का अवदान सुना रहे थे, माँ बाप जो दिए उसका बड़ों का सुनकर आज सबको सुना रहे हैं। बचपन में विद्यार्थी जीवन में सबका सुने बात को और बड़े होकर सबको अभी सुना रहे हैं, तो विद्यार्थी जीवन में सुनना बड़ों का बहुत भलाई होता है। जो सुनेंगे भविष्य में सभी सुनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह कार्यक्रम में सभी बच्चों को एक मंच मिला। कभी सोचा नहीं होंगे जो हमारा आवाज आकाशवाणी में जाएगा बिना पैसा बिना खर्च से अचानक मिल गया। तो मैम को धन्यवाद देते हैं और हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा जो स्कूल के संस्था प्रधान तो उनको भी स्वागत करेंगे। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते तो हुए बहुत खुशी का साथ आज हम आपका पास बहुत दूरस्थ जगह से आपको कवरेज दे रहे हैं, क्योंकि पहला बार आए फिर भी पहला बार में भी बच्चे अचानक में भाग ले रहे और इसका श्रेय तो माता पिता और स्कूल के स्टाफ को जाते हैं। तो सर को स्वागत करते जो कि संस्था का संस्था प्रधान है, सर आपको स्वागत करते हैं। बच्चों का पढ़ाई का साथ साथ और क्या क्या एक्टिविटीज होता है और सरकार का जो योजना है आता है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें कोई चैलेंज आता है कि नहीं, और आपका करियर बच्चों को एक उमंग उत्साह देगा, आप किस तरह इस कामयाब तक पहुंचे और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, आप अपना परिचय दीजिए।
1: नमस्ते, मेरा नाम है बिमल मीना और मैं प्रॉपर करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ।
0: बहुत दूरस्थ जगह से करौल डिस्ट्रिक्ट है जो कि बहुत दूरस्थ जगह है हमारा, जैसे सिरोही जिला में। आपको कैसे सिलेक्शन हुआ और पहला पोस्टिंग यही बोलना और कहीं था?
1: मेरे सर्वप्रथम पोस्टिंग बाड़मेर जिले में हुई थी, वहाँ से रिसपल के द्वारा फिर मुझे द्वारा यहाँ सिरोही में मिला था
0: जी।
1: अब मुझे यहाँ 5 साल से ऊपर हो गए इसी स्कूल में।
0: सर बच्चे आपको सुन रहे और रेडियो में फिल्म का माध्यम से आपको सुन रहे, आपका जैसे करियर मैंने एक टीचर बनने के लिए कोई चाहेगा, आप अपना बचपन में क्या पुरुषार्थ व क्या पढ़ाई करते थे, 5th क्लास 10th क्लास और 12th क्लास में किस तरह पढ़ाई में रुचि था और आपको सपोर्टिंग कौन किया है?
1: शुरू से तो मैं इतना ज्यादा कमजोर भी था ना ज्यादा होशियार था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो जैसे जैसे मुझे माँ बाप की और टीचरों की जैसी शिक्षा मिली मैं वैसे उसी अनुसार कार्य करता गया
0: जी जी,
1: मेहनत की और इस मुकाम पर पहुंचा।
0: इसका श्रेय किसको देना चाहते? धन्यवाद किसका?
1: टीचरों को और माँ बाप को।
0: अरे वाह, टीचर और माँ बाप दोनों गुरु है, पहला गुरु माँ बाप और इसका बाद 5 साल के बाद 6 साल के बाद जो आंगनबाड़ी में जाते हैं स्कूल में जाते हैं तो सब स्टाफ को टीचर को धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसे होना चाहिए क्योंकि कभी भूलना नहीं चाहिए, उनका बदलौत आज यहाँ तक पहुंचे। तो आज टीचर को दे रहे लेकिन आज खुद टीचर बन गए तो टीचर का बहुत सबसे अच्छा पोस्ट मुझे लगता है शिक्षक, क्योंकि जैसे कि कृषक और शिक्षक और सैनिक ये तीनों का अवदान देश के लिए बहुत बहुत बहुत जितना भी कहे कम ही होगा, क्योंकि देश रक्षा और बच्चों को रक्षा उनका सुरक्षा सब में बच्चों का दिमाग बच्चों का जो होशियार बना देते हैं तो बच्चे पढ़ाई लिखा कर आगे देश को संभालते हैं। कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई पुलिस कोई कुछ भी बन सकता है, मैडम भी बन सकते हैं। तो सर आज उनका टीचर को याद कर रहे हैं और माता पिता को याद कर रहे हैं। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति

0: कौन प्रस्तुत करेंगे सर? मैम और कौन प्रस्तुत करेंगे? बच्चियाँ गाएंगे? आजा खड़े हो जा, खड़े हो जा तुम। चलिए गायत्री मंत्र सुनेंगे, बच्चे खुशी से। हेलो, क्या नाम है फिर से बताओ?
1: हंती कुमारी।
0: गुड।
1: शर्मिला कुमारी।
0: कौन सा क्लास, तीसरी ना चौथी?
1: दूसरी।
0: ओ दूसरी, बहुत बड़े लग रहे हैं।
1: दीपू कुमार।
0: दीपू कौन सा क्लास?
1: दूसरी।
0: दूसरी, दूसरी क्लास, लेकिन बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, लेट में भेजते हैं। और आप कौन सा क्लास, दूसरी? बाप रे, मैं तो सोचा फिफ्थ क्लास होंगे, लेकिन क्या हाँ वो लोग गए। चलिए एक प्रार्थना सत्र हो जाए।

पहाड़ी का अंचल में रहते, पहाड़ का गोद में बसा हुआ गांव, ये पानी का पास छोटा सा गांव है, फली है, फिर भी बच्चों का उमंग उत्साह देखने को मिल रहा है। भले उनका भावना को देखिए, भाव को देखिए, शब्द को नहीं देखिए, लेकिन उसका भाव और भावना दिल को छूता है और दिल का तर तो माँ सरस्वती माँ दुर्गा तक पहुंचता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात, एक आदिवासी गीत न हो और आदिवासी एरिया में आए हैं तो आदिवासी एक गीत होगा, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

उसको सौगाते उतनी मिलेगी।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है। तो आज राजकीय विद्यालय और ईश्वरीय विद्यालय दोनों का मिलित सहयोग से बच्चों का हुनर, बच्चों का टैलेंट, बच्चों का प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज पानिया जो कि नया ग्राम पंचायत बना है, अभी पहले शायद भालूरिया में था लेकिन सरकार का मंशा पानिया गांव ग्राम पंचायत को बना, और पानिया ग्राम पंचायत में एक छोटा सा फली प्राथमिक विद्यालय है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, और बच्चों का आवाज आपको सुनने को मिल रहा है। इसका श्रेय तो सरकार को जाता है और सरपंच को जाता है, शिक्षा जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनको भी जाते हैं, क्योंकि शिक्षा बिना जीवन अधूरा है। तब छोटे छोटे बच्चे पहाड़ी का गोद से बचा हुआ गाँव है और आते हैं शांत होकर पढ़ाई करते, तो एक आदिवासी गीत, देसी गीत हमारा इस कार्यक्रम को चार चांद लगाएगा। तो सभी को स्वागत करते हैं, अर्जुन एंड टीम सुनाएंगे एक गीत।

0: और कौन सा गीत और आगे बढ़ा, और कोई गीत, और कोई गीत आता है?
1: चलिए बच्चे आते तो अपना गीत, बड़े बड़े बच्चे का पसीना निकल जाता है, लेकिन दूसरी क्लास का बच्चे हैं, लेकिन फिर भी अपना जो संस्कृति है, जो लोकगीत है, जो फक सांग है, उसको बजाय रखने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे करना चाहिए, बड़ों को देखकर सीख जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे फिर भी जितना पास उनका पास था, ना ज्यादा ना कम, उतना दे रहे। एक ओपन राउंड जैसे सभी को आज खुला मंच है, इस मंच का माध्यम से अपना बात को रख रहे हैं। चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं, और एक प्रस्तुति आदिवासी गीत
2: मेलो।

0: मेरा नाम पैसा।
1: छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन एक दूसरे को देख के खुशी से अपने बोला रहे आगे क्या बोल रहे एक दूसरे को। लेकिन ऐसे बच्चे सच्चे होते, कोई उनका अंदर में छल ना कपट ना हिंसा कोई नहीं, आराम से बोल पा रहे। कोई बात नहीं, अगला बार जब आएंगे बढ़िया से प्रस्तुति करना। और मैम, एक आदिवासी गीत में जो भावना है, जो भाव है देखने को मिलता है, जहाँ भी हम भाकर क्षेत्र में जाते हैं, पहाड़ी इलाके में, सभी ऐसे बढ़ चढ़ कर बड़ों को देखकर सीख जाते हैं। तो इस गीत में जो मिठास है, सभी सुनने को तैयार होते हैं और उनको कोई सिखाता नहीं, सीख जाते हैं ऐसे सुनते सुनते। तो मैम क्या कहेंगे इस तरह जो आदिवासी गीत में, क्या कहना चाहेंगे आदिवासी गीत में, क्या मिठास है?
2: इनकी लय बहुत अच्छी है, इनके ढोल भी बहुत अच्छे होते हैं और इनके डांस करते हैं ना, तो उनका मतलब इनके क्या पता, इनके डिमरी डांस होता है, वो इनकी डांस ही बहुत अच्छी, उनकी उनके मतलब एक जैसे, मतलब वो एक्टिविटी करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। हाँ, उनके मतलब सॉन्ग भी बहुत अच्छे होते हैं उनके, वो क्या कहते हैं, वो बजने का आता ना,
1: मंजीरा,
2: हाँ मंजीरा नहीं होता है इनके, रमजोला।
1: अच्छा,
2: हाँ, इनके रमजोला की भी
1: वाद्य यंत्र,
2: हाँ
1: उसका साथ,
2: हाँ, बहुत अच्छे, उनके डांस बहुत अच्छा होता है और अपने ताल पे नाचते हैं, अपने लय पे नाचते
1: हैं। ये विशेषता है आदिवासी गीत में, और सही में शुद्धता, और उनका अंदर में मैंने लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे छोकरा हो चाहे छोकरी हो, चाहे आई हो चाहे बाप, सब मिलकर नाचते हैं। भाई लोग एक साइड और बहन एक ही साइड में सुंदर रूप में गीत प्रस्तुत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी का आवाज सुनकर हमारा श्रोता मित्र जान गए होंगे, हमारा बच्चे पहला बार आते हैं, कोई सूचना नहीं था, कोई प्रिपरेशन नहीं किए, फिर भी अचानक में पूरा चौका छक्का लगाए, जितने उनका पास था, ना ज्यादा ना कम, ऐसे होना चाहिए। एक मंच आज जो जरूरत था इस बच्चों को, इस स्कूल के, तो बच्चों को भी तो खुशी लगा होगा, बच्चे सभी को खुशी लगा? हाँ जी बोलो,
3: हाँ
1: बोलो जोर से, हाँ जी,
3: हाँ जी,
1: पीछे बोला नहीं सभी, हाँ जी,
3: हाँ जी,
1: अरे वाह, ताली बजाओ। बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। अचानक में सर के पास आए थे और स्कूल के बच्चों का साथ बच्चे बनकर हमने सभी प्रोग्राम सफल किए। ये रेडियो मधुबन कार्यक्रम में सभी का आवाज आज जन जन तक पहुंचा है। स्कूल का नाम शायद पिंडवाड़ा ब्लॉक में खादरी फली है, पंचायत समिति काउंटर में आता है, शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है, सही बात है, इनका सर्टिफिकेट अब देख रहे हैं। और खादरी फली का आवाज छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल के, तो सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अचानक में आए और आपका स्कूल में, और मैंने देखा इतना सुंदर मैंने संसाधन है, बच्चों के लिए लाइट भी है, पंखा भी है और साफ सुथरा है, इसका असर कैसे जाता है संस्था प्रधान कहाँ कहाँ जुगाड़ करके, भामाशाह से हो चाहे माता पिता से चाहे सरकार से, लड़के बच्चों का आते, क्योंकि ये दूसरा जिला से आए तो इस जिला को भी डेवलपमेंट करते हैं। तो सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारा श्रोता मित्र को जो आपको सुन रहे इस समय?
4: देखो सर, ये बात है, यहाँ वैसे लाइट की सुविधा नहीं है, ये लगा रखी है लाइट पंखे, लेकिन लाइट नहीं है उपलब्ध। या पहले सौर ऊर्जा लगाई थी तो वो भी यहाँ के सौर उठा के लगे ऊपर छत से, तो अभी पंखे वैसे लगे, बच्चे गर्मी हो चाहे कैसा भी मौसम हो ये अंदर ही बैठे रहते हैं।
1: तो क्या कहना चाहेंगे, मान लीजिए
4: तो परेशानी तो बहुत है, लेकिन फिर भी बच्चे संघर्ष करके कैसे करके अपना तैयारी करते पढ़ते हैं, और थोड़ी कमी है कि ये रेगुलर नहीं आते, इस वजह से थोड़ा इनका शिक्षा का स्तर कमजोर है थोड़ा।
1: तो इसके लिए उनका जो पेरेंट्स मीटिंग होता है, माता पिता को बुलाकर उनको उनका जो ग्राउंड जो विजिटिंग में जाते हैं तो उनको थोड़ा समझाइए, अवेयरनेस थोड़ा कमी है, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे।
4: हाँ, पहले के बजाय ये सुधार हुआ है। मैं शुरू में जब आया था तो नामांकन बहुत ही कम था, धीरे धीरे नामांकन 52 पर पहुंचा दे।
1: जी जी, बहुत अच्छा,
4: हमने बहुत प्रयास किया मैडम ने, और हमने लोगों को समझाया, माता पिता को समझाया, लेकिन फिर भी इनके कुछ घरेलू पारिवारिक परिस्थितियां होती है, समस्या होती है, घरेलू काम होते हैं जिनकी वजह से ये रेगुलर नहीं आ पाते हैं।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और जितना प्रयास कार्य कम श्रेय है, जितना धन्यवाद ये कम है, लेकिन एक पहाड़ी इलाका अवेयरनेस कमी है, और उनका जो पारिवारिक परिस्थिति है, जैसे आर्थिक परिस्थिति हो चाहे मानसिक परिस्थिति हो चाहे जो पारिवारिक उनका समाज का जो रीति रिवाज संस्कृति उसको लेकर की, और अशिक्षित का कारण मेन माता पिता जब अशिक्षित होंगे तो बच्चों को शिक्षित कराने में थोड़ा सा झिझक होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैम आपको एक गीत गाना होगा, गाएंगे? मैम बच्चों के बोले हम गीत नहीं गा पाते, कोई बात नहीं, तो बच्चों से ही कराएंगे।

0: आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM। आज सुन रहे खादरी फली जो कि तानिया ग्राम पंचायत में आता है, पिंडोड़ा ब्लॉक के नूतन ग्राम पंचायत के नूतन ये स्कूल है। बच्चे बहुत अच्छे से आ रहे और जा रहे, तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।
1: लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की केन हो। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट केवल। दोस्तों, आज है तारीख 18 मई और महीना चल रहा है पांचवा। दोस्तों, और दोपहर की वो तपती तीखी धूप ढल चुकी है, सूरज देवता ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है और अब शाम की वो हवा के झोंके हमारे चेहरे को छूने लगे हैं। वैसे इस मई की गर्मी को भी अपना एक अलग ही मिजाज है। दिन में चाहे जितनी भी शिद्दत की तपिश हो, लेकिन ढलती हुई शाम सुकून का एक झोंका साथ लेकर आती ही है। और जब शाम इतनी हसीन हो तो दिल की बातें करना तो बनता है। कहता है ना कि मौसम चाहे कितना भी गर्म हो, अगर दिल में खुशी के नगमे गुनगुना रहे हो तो जिंदगी का हर पल सुहाना लगता है। इसी सुहाने एहसास के साथ शुरू करते हैं आज का सफर आपके अपने शो खुशी के नगमे दिल की बातों में। आज हमारे पास आपके लिए सुनहरे दौर के कुछ ऐसे सदाबहार नगमे हैं जो इस ढलती शाम को आपके दिलों को ठंडक और रूह को सुकून पहुंचाएगा। तो कहीं मत जाइए, अपनी चाय का कप लीजिए, खिड़की के पास बैठिए और खो जाइए सुरों की मखमली दुनिया में। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, क्योंकि यहां होती है सिर्फ खुशी के नगमे और दिल की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले नगमे के साथ।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदानी टेक ईगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वो पुरानी फिल्मों के नगमे, वो सादगी भरे बोल, जैसे पुराने संदूक से निकला कोई खजाना अनमोल। जी हाँ, आज रेडियो मधुबन पर हम बात कर रहे हैं साल 1955 की एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, बाप रे बाप। जी हाँ, इस फिल्म का एक गीत है जो आज भी उतना ही ताज़ा और जवां लगता है जितना आज से 70 साल पहले था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिया पिया पिया मोरा जिया पुकार जियो, जो अभी अभी हमने सुना। जी हाँ, क्या आप जानते हैं इस गाने के पीछे की एक दिलचस्प बात? इस गाने को जब आप सुनते हो तो इसमें जो तांगे की लय सुनाई देती है वो ओपी नैयर साहब की सिग्नेचर स्टाइल थी, यानी कि उनके कई गानों में ये स्टाइल आपको सुनाई देगी। लेकिन इस गाने की खूबसूरती सिर्फ संगीत में नहीं बल्कि किशोर कुमार और चांद उस्मानी की उन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में थी। जी हाँ, इसमें जो किरदार थे, यानी इस गाने में जो हीरो हीरोइन है किशोर कुमार साहब और चांद उस्मानी जी, उनकी केमिस्ट्री भी थी। एक छोटी सी कहानी है इस फिल्म के बारे में बताता हूँ। फिल्म में किशोर कुमार साहब अपनी उस चुलबुली और नटखट शैली में नजर आए थे जिसके लिए वो जाने जाते थे। कहा जाता है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान माहौल इतना खुशनुमा था कि ओपी नैयर साहब चाहते थे कि गायक सिर्फ गाए नहीं बल्कि शब्दों के साथ खेले। वही वजह है कि जब आशा जी की किशोरदा की आवाज़ मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे दो दिल वाकई एक दूसरे से मीठी नोकझोंक कर रहे। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले कॉलर से जो हमें कॉल कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हैं?
1: बस अच्छे हैं, बातें कर रहे हैं आपसे।
0: क्या बात है,
1: अच्छे हैं और आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। हाँ। ऊपर है आज पहला दिन है आपका।
0: बिल्कुल यस, आज इस हफ्ते का पहला दिन है।
1: कल दूसरा, परसों तीसरा भी हो जाएगा
0: और हम दिन ऐसे गिनते हैं फिर अगले वीक आने की बात करते हैं
1: जी, हम भी ऐसे सब इतना तीन दिन पूरा हो जाएगा आपसे बात हो जाए
0: जी।
1: और अच्छी तरह से आपको हम कुछ नए गाने, पुराने गाने अच्छे याद भी करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और बहुत अच्छा गाना भी आपसे सुना दिया
0: जी।
1: और चलो मेरी फरमाइश भी आपको दे दूं
0: जी। बिल्कुल,
1: मुझे पता नहीं है, अभी मैं भूल गया, शायद मैं आपको बहुत बताता हूँ।
0: हाँ।
1: है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
0: वाह,
1: तो गाना ऐसा,
0: क्या बात है। तू प्यार का नगमा, गाने के बोल कुछ इसी तरह से ना, तू प्यार का नगमा, ऐसा कुछ है।
1: हाँ, ऐसा कुछ है। हाँ,
0: क्या बात है, वाह बहुत ही बढ़िया। और गर्मी कैसी है उस सर जेठाना की तरफ
1: जी?
0: गर्मी के क्या हाल है सुरेश भाई?
1: गर्मी तो बहुत चलती है सर।
0: अभी कुछ शाम होने के बाद कुछ हल्की हवाओं का,
1: आज थोड़ी कम लगती थी, कल ज्यादा थी, आज थोड़ी ठीक है
0: जी।
1: तो गर्मी तो कब तो रहता है, जो 40 के आसपास रहता है।
0: चलिए कोई बात नहीं, गर्मी तो ये 2 महीने तो अभी हमें झेलना ही है।
1: शायद बारिश जल्दी आ जाएगी मेरे हिसाब से,
0: कोशिश मतलब उम्मीद तो यही है कि बस बारिश इस बार थोड़ी अच्छी हो, ज्यादा हो, और
1: ज्यादा होगी इस साल मेरे हिसाब से, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ी है तो ठंडी भी ज्यादा, बारिश भी ज्यादा होगी और अच्छा ठंड भी हो जाएगा बारिश आने के बाद।
0: हाँ, उम्मीद तो है ये।
1: हमारे हमारे बुरीराज जी को भी नमस्ते, शायद आने की तैयारी है, जब मैं छोड़ू फोन तो वो तुरंत पकड़ लेगा।
0: सभी बस लाइन में ही है, सभी वेट करके बैठे कब सुरेश भाई का फोन आया हम बात करें।
1: हमारे सभी मित्रों को आपको और हमारे अंतरिक्ष भाई तो नहीं है लेकिन फिर भी यात्रा हम करते रहते हैं हम
0: जी। अंतरिक्ष भाई को भी हमने बोला था, अब पता नहीं आज भी सुन रहे कि नहीं सुन रहे शोर, लेकिन अंतरिक्ष जी जहाँ भी हो, जहाँ भी सुन रहे हो हमें,
1: बात कर दो
0: बिल्कुल से, एक बार हमें कॉल कीजिए, हमारे सारे लिसनर्स के साथ बात करें।
1: बिल्कुल,
0: चलिए थैंक यू सो मच सुरेश जी आपका कॉल करने के लिए, और आपने जो फरमाइश दी हम जरूर से कोशिश करेंगे आपको सुनाएंगे। तो ये थे हमारे सुरेश जी। जी हाँ, तो हम छोटी सी कहानी के बात कर रहे थे कि कैसे किशोर कुमार जी और आशा भोसले जी ने इस आवाज में जान दी। तो मई महीने की शाम में जब गर्मी में थोड़ा थका देती है, गर्मी जब हमें थोड़ा थका देती है, तो ऐसे में जान निसार अख्तर साहब के लिखे ये बोल, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, किसी ठंडी फुआ से कम नहीं लगते। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी दाल नहीं गली है या गर्मी से बेहाल है, अगर आपकी दाल नहीं गली है या गर्मी से बेहाल है, तो इस अगले मजेदार गाने को सुनकर अपना मूड फ्रेश कर लीजिए। पेश है अगला गाना, ऐसी शादी से हम तो कुवारे भले। चलिए सुनते हैं अगला गाना रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
2: आपस में पड़ी और हम कुवारे रह गए, सब बराती चल दिए दूल्हा बेचारे रह गए। ढिंग फटाफट

मारे भले। धींगा मुश्ती हुई, खूब झगड़े हुए, आधे लूले हुए आधे लंगड़े हुए। ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े, सारे अरमान शादी के ठंडे पड़े। ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े, ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े, घूसे डंडा दे, घूसे डंडा दे, घूसे डंडा दे। बाप दौलत।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: अभी हम किशोर कुमार का एक रोमांटिक रकमे की बात कर रहे थे, लेकिन अब माहौल थोड़ा गर्मा गर्म होने वाला है भाई। चलिए बात करते हैं पहले अपने कॉलर से। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार मदन लाल जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया से बढ़िया, शायद बहुत अच्छे ही होते हैं।
0: जी बिल्कुल, बताइए कैसी है तबीयत आपकी? हाँ, तबीयत कैसी है आपकी और क्या चल रहा है?
1: आज का दिन बड़ा अच्छा गया है और रोज अच्छा ही जाता है।
0: क्या बात है,
1: खुशियाँ हो या गम, बस हंसू हर गम, खुशियाँ या गम, किसी से डरना नहीं, डर डर कर भी जीना नहीं, हर गम। क्या बात है, ये लूट मार का गाना है।
0: हाँ।
1: और आप चल रहा है, लाइट में हूँ के ऑफलाइन में हूँ? ऑनलाइन
0: नहीं, आप ऑनलाइन है इस वक्त। आप सब, आपको सभी सुन रहे हैं, हमारे सुरेश जी भी सुन रहे हैं, बुरीलाल जी भी सुन रहे हैं, हमारे जो भी लिस्टर्स हैं वो सारे सुन रहे हैं इस वक्त।
1: अच्छा अच्छा, तो फिर आज आपको नमस्कार है और खुशी के नगमे और दिल की बात और हमारे सब दोस्त सुन रहे हैं बड़ी खुशी से, उनकी खुशी और भी बढ़ती रहे और हमारे सभी बहनों को और सभी भाइयों को नमस्कार है और बस गाना गाएंगे आज
0: जी।
1: देखो एक ख्वाब तो ये दिल दिले हुए जो

0: धड़कनों में तेरे बीच है मिले हुए, यहाँ से ऊँचे कर्म से जब गिले हुए, देखा एक खाम तो सिले हुए, दूर तक निगाह में ये फुल खिले हुए, मेरे तुझे तेरे का हज पालू तुझे नेहाओं
1: में,
0: जबरदस्त रोशनी है राहों में, अगर रोशनी के साथ हुए, प्यार के हजार दीप है जले हुए,
1: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
0: शाम तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में ये तुम खिले हुए,
2: ये सिलसिला का गाना है, किशोर साहब की आवाज है,
1: बिल्कुल
2: बड़ा अच्छा गाना है। और नमस्कार सर।
1: नमस्कार आपको भी मदन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और इतना प्यारा हमें ये गाना सुनाने के लिए, थैंक यू सो मच।
2: देखिए ये हमारा ये प्यारा गीत आपकी प्यारी आवाज से सुनते हैं, हमारे सभी दोस्त एक दूसरे से मतलब याद करते रहते हैं और खुश में रहते हैं, तो बस इनकी खुशी से और गाना अच्छा बन जाता है।
1: कोशिश करेंगे आपको ये गाना सुनाए, हम
2: जरूर सुनाए और कल भी सुना सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है गाना और खाना और नाना तो हमारे लिए ही। और आज की गर्मियों को सलाम करते हैं, आज सब
1: अभी तो वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, बिल्कुल
2: बहुत ज्यादा गर्मी है। और नमस्कार सर, आपकी आवाज सुन के अच्छा लगा। और
1: नमस्कार आप सभी को, ओम शांति। तो ये थे हमारे मदन लाल जी, जिन्होंने बहुत ही प्यारा नगमा हमें अभी सुनाया है। जी हाँ, तो अभी हम जब बात कर रहे थे कि मैं की गर्मी है और गर्मा गर्म होने वाला है, लेकिन ये तो शादी के मंडप में हो रही गर्मी बढ़ गई, क्योंकि जो अभी हमने अगला जो गाना सुना था, तो अभी जो पंक्ति आपने सुनी थी, फूट आपस में पड़ी और हम कुंवारे रह गए, ये इसी फिल्म का वो गाना है बाप रे बाप, जो अभी हमने गाना मतलब इसके पहले जो हमने गाना सुना था। आज भी लोगों को अपनी हंसी नहीं रोक पाता, अभी आपने जो बोल सुने हैं, क्या इस गाने का मज़ा है ना, इस गाने में जो मज़ा है, कल्पना कीजिए, बारात तैयार है, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने का बेताब है और अचानक बारातियों में ही ऐसी कोई बातें हो जाए, जब किशोर दा ने इस गाने में एक ऐसे दूल्हे का दर्द बयां किया जिसकी शादी ऐसे वक्त पर बारातियों के झगड़े की वजह से खटाई में पड़ जाती है। एक मजेदार बात है, इस गाने के बोल लिखे थे जान निसार अख्तर साहब ने। अब सोचिए एक गंभीर शायर जब दाल गलने और जूता चलने जैसे मुहावरे को गाने में पिरोता है तो कैसे कमाल होता है। किशोर कुमार जी की आवाज में वो बेचारेपन वाली कॉमेडी है, वो इस गाने को आइकॉनिक बनाती है। जी हाँ, तो अभी हमने ये गाना सुना, चलिए बढ़ते हैं अगले सॉन्ग की तरफ, क्योंकि इसके बाद का जो हंसी मजाक के बाद अब वक्त है अपनी रूह को थोड़ा सुकून देने का। जी हाँ, आज जो बात हम कर रहे थे ढलती शाम में, आपके लिए एक ऐसी इबादत लेकर आया हूँ जिसे दुनिया की सबसे महान कव्वालियों में गिना जाता है। चलिए सबसे पहले सुनते हैं ये अगली कव्वाली, फिर बात करते हैं इस गाने के बारे में। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज़ हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों। साहिर लुधियानवी साहब की कलम से निकला एक एक लफ्ज जब मन्ना डे, मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले जी और सुधा मल्होत्रा की आवाज में मिलता है तो दिल जैसे ठहर सा जाता है। चलिए बात करते हैं पहले अपने इन स्कॉलर से जिनका हमें कॉल है। हेलो
1: जी, नमस्कार भाव जी।
0: नमस्कार भूरीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: आपने कवाली को

0: आज वाह,
1: अरे गाने के बोल सुना दो,
0: बिल्कुल सुना दीजिए।
1: यदि आदेश हो तो
0: बिल्कुल,
1: आपको आदेश के अनुसार
0: आप
1: धूप की रानी और धूप की रानी और धूप की रानी धूप में ना निकलो, धूप की रानी धूप धूप में ना निकलो, कहीं इनका गोरा रंग काला न पड़ जाए। अरे धूप धूप धूप में ना निकलो, रूप रूप कहीं काला न पड़ जाए।
0: बिल्कुल, धूप की रानी तुम रूप। हाँ हाँ, क्या बात है, वाह।
1: क्या चला है, क्या चला है, गाना क्या सुन के लाया हो, दिल खुश हो जाए और सब साथियों का मेरा ऐसा प्यार बना रहे हमेशा के लिए। अपने साथी कहीं मेरा खोया खोया हुआ तो नहीं है, जो सोया हुआ तो नहीं है और जगा हुआ भी है।
0: क्या बात है, धूप में निकला ना करो, और ऐसी गर्मी में आपने ये गाना निकाल दिया है, तो अब तो जरूर से मुझे कोशिश करूंगा कि ये गाना आज आपके लिए जरूर से बिल्कुल बिल्कुल कोशिश
1: करूंगा। वो मधुबन वाणी से,
0: हाँ,
1: क्या कह रहा है, क्या कह रहा है,
0: क्या बात है,
1: आपके सामने हमेशा झुककर रहा है।
0: चलो आज आपका ये गाना हम आपके लिए बैक टू बैक सुनाएंगे, ये हमारा वादा है आपके साथ, और आपके जो घर में जो भी सुन रहे हैं उन सबको बड़ा मजा आने वाला है।
1: सबको मैं दे रहा हूँ, सब काम छोड़ करके, खाना वाना छोड़ करके, फिर गाना सुनो पहले।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप उनको बोल दीजिए, अभी आप उनको बोल दीजिए कि सबसे पहले अभी हमारा ये गाना बजने वाला है और आप हमारे ये गाने सुनिए।
1: हाँ भाई, आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, सुन लो गाने को, और गाने के मजे ले लो, खाने के मजे बाद में ले लो, खाने में मिर्ची लगती है, गाने में स्वाद आता है, क्या कहना है, कानों में सुनना है और मुख्य खाना है, खाना खाना।
0: चलिए, थैंक यू सो मच बुरीलाल जी कॉल करने के लिए, सुनते रहिए रेडियो मधुबन। जी हाँ, तो जब हम बात कर रहे थे इतने सारे गायक एक साथ जब कोई कव्वाली गाते हैं, जब आवाज़ मिलाते हैं, तो दिल जैसे ठहर सा जाता है। इस कलाकारी को सलाम करने के लिए कुछ पंक्तियाँ पेश है। ना मंजिल की हसरत ना रास्तों का गुमान है, ना मंजिल की हसरत ना रास्तों का गुमान है, इश्क की इबादत और इश्क की ही अब ईमान है। वो चरागे महफिल जो बुझकर भी रोशन रहे, इस कवाली में छिपी बस उसी तरह की, उसी रूह की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, गाने की एक खास बात क्या आप जानते हैं, ये कवाली करीब 12 मिनट लंबी है, हमने चलाई सिर्फ 4 से 5 मिनट, लेकिन 12 मिनट लंबी है। इसे बिना किसी कट के रिकॉर्ड करना उस दौर में एक चमत्कार जैसा था। जैसे साहिल साहब ने इश्क के जो अलग अलग मायने बताए हैं, चाहे वो मीरा का जहर पीना हो या मजनून की दीवानगी, वो इंसान को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। जब मन्ना डे साहब गाते हैं, जो देव दवा के नाम पे जहर दे उसी चराग की तलाश है, जब देव साहब ने ये बोल लिखे थे या बोल गाए थे, जो दवा के नाम पर जहर दे उसी चराग की तलाश है, तो लगता है जैसे दर्द में भी एक अलग ही मिठास खुल गई है। तो चलिए, अब वक्त है अगले नगमे की तरफ बढ़ने का, और ये जो अगले नगमे पेश कर रहा हूँ वो बैक टू बैक दोनों फरमाइशों के गाने, एक है हमारे सुरेश जी की तरफ से और एक अभी अभी जो हमारे बुरीलाल जी ने सुनाए। तो बुरीलाल जी और सुरेश जी, पेश है ये आपकी फरमाइश के नगमे, सुनते हैं बैक टू बैक।

वेलकम बैक दोस्तों। बहुत ही प्यारे गाने अभी हमने बैक टू बैक सुने। हमारी सभी फरमाइश थी, सुरेश भाई की फरमाइश थी, हमारे भूरीलाल जी की फरमाइश थी, और अभी जो पहला गाना हमने सुना, धूप में निकला ना करो धूप की रानी, बहुत ही प्यारे नगमों के साथ हमने इस फिल्म को, आपको बता दूँ ये फिल्म जो थी गिरफ्तार मूवी का ये गाना था, इसे लिखा था इंदर वर्जी ने और इसके गायक थे किशोर कुमार जी, आशा भोसले साहब। एक मस्ती भरा गाना और उसके बाद एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला नगमा, एक प्यार का नगमा है। जी हाँ, मूवी थी शोर, 1972 में आई थी, सिंगर थे मुकेश जी और लता मंगेशकर जी, इसे लिखा था संतोष आनंद ने और म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। इस गाने के एक एक बोल आप सुने तो इतने प्यारे हैं। तू धार है नदिया का, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, तूफान को आना है आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल के छू कर चले जाना। जी हाँ, बहुत सारी सीखें ये हमें दे कर के जाते हैं अपनी जीवन के लिए, कि कैसे हम अपने जीवन में कैसे भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उन सभी उतार चढ़ाव में कैसे हम अपने आप में हिम्मत रखें, क्योंकि जो दुख है वो तो जाना है, खुशियों को फिर से आना है। ऐसे प्यारे प्यारे नगमे जब हम सुनते हैं तो मन कहीं ऐसे बहक से लगता है कि जाने हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी के साथ, क्योंकि ऐसे प्यारे नगमे को जब हम सुनते हैं तो लगता है कि कई ऐसे वादे और कर दे, जिन वादों को हम बहुत सारे वादे करने चाहिए। चलिए सुनते हैं ये अगला प्यारा सा नगमा मेरे साथ, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते मुस्कुराते रहिए।
1: दिल भी तेरा हम भी तेरे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस फिल्म का। इस फिल्म में हमारे पसंदीदा अभिनेता धर्मेंद्र जी ने अपने फिल्म सफ़र की शुरुआत की थी। आज जहाँ हम धर्मेंद्र जी को उनके दमदार एक्शन और इमोशन के लिए जानते हैं, वहीं इस फिल्म में उनकी सादगी और मासूमियत देखने लायक थी। इस गाने की गहराई पे छोटा सा शेर मुझे याद आ रहा है। वादे अक्सर टूट जाया करते हैं इस ज़माने में, मगर कुछ वादे अमर हो जाते हैं महफिल को सजाने में। जी हाँ, जहाँ भी रहे बस मोहब्बत का हाथ थामे रखे, यही जादू है इस नगमे के हर एक फसाने में। मैं की तपती दोपहर के बाद जब शाम की ठंडक हमें अपनी अपनों की याद दिलाती है, तब मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये बोल, ये वादा करे जहाँ भी रहे, कभी प्यार का दामन ना छोड़े, सीधे दिल का दस्तक देते हैं। और एक और बात है, इस फिल्म के संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उनकी धुनों में जो सादगी और ठहराव होता है, वो इस गानों को सफलता साफ झलकता है। धर्मेंद्र जी और कुमकुम पर फिल्माया यह गीत आज भी हर प्रेमी जोड़े की पहली पसंद है। तो दोस्तों, आज 18 मई की शाम को हमने हंसी मजाक से लेकर के रूहानी कव्वाली और फिर इन मीठी वादों और दास्तानों तक का सफ़र तय किया। उम्मीद है मैं कि इस गर्मी में रेडियो मधुबन के इन नगमों ने आपके दिल को सुकून पहुंचाया हो। अब मैं यानी आपका दोस्त केवल आपसे विदा लेता हूं। कर फिल्म मिलेंगे इसी वक्त इसी स्टेशन पर। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुभरात्रि, शबा खैर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुन 107.8 FM पर। मैं हूं आरजे श्री और हम सहज स्वास्थ्य में हर दिन बात करते हैं अपने स्वास्थ्य को सहज करने के तरीकों के बारे में। लोग अक्सर ये समझते हैं कि स्वास्थ्य आसान चीज नहीं है, इसे साधना बहुत ही मुश्किल है, मगर वास्तविकता ये है कि स्वस्थ रहना सहज है अगर आपको ये पता हो कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता क्यों है। प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना, अगर अपने ज्ञान को अगर हम सही सोर्स से यानी सही जगह से लेते हैं तो फिर अपने आप को स्वस्थ रखना भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। आजकल हम यहाँ वहां से बहुत सारी चीजें सुन लेते हैं और समझते हैं कि ये सारी चीजें हमें स्वस्थ रखने के लिए मददगार होती हैं। इसके लिए सही जानकारी सही स्रोत से लेना भी आवश्यक है। स्वास्थ्य के जगत से जुड़े हुए लोग यही चीज हमें कहते भी आए हैं और सदियों से स्वास्थ्य पर जो चिंतन रहा है उसका सही ज्ञान हमें होना भी आवश्यक है। आज की चर्चा में भी हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में भी इनका लंबा अनुभव रहा है और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्र आरोग्य मंदिर गोरखपुर में ये प्रैक्टिस करते हैं, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: ओम शांति, नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, हम ये बात समझते आए हैं कि प्रकृति चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति रही है जो सिर्फ लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का काम नहीं करती, वह लोगों को बीमार पड़ने भी नहीं देती। ऐसे अनेक इंटरवेंशन प्रकृति चिकित्सा में दिए गए हैं जो समय समय पर अगर व्यक्ति उसका इस्तेमाल करे तो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके चल सकता है, उसे बीमार होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपने ये बातचीत में बताया था कि प्रकृति के तत्वों को इस्तेमाल करके हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। हम पिछली बातचीत में ये चर्चा कर रहे थे कि कटी स्नानों के बारे में, कि भाई हम ठंडे और गर्म पानी के कटी स्नान जब करते हैं, हिप बाथ्स करते हैं, तो क्या होता है, इसका क्या असर होता है, ये सब चीजें समझी। आजकल स्नान की जब बात की जाती है तो एक तो व्यक्ति समझता है कि हाँ भाई हर दिन हमें स्नान कर लेना चाहिए, तो व्यक्ति स्नान करके फ्रेश हो जाता है। कुछ और चीजें आज सुनने को मिलती हैं, जैसे लोग कहते हैं कि स्टीम बाथ होना चाहिए, कि भाई कहीं कहीं पर लोग जाते हैं और बोलते हैं स्टीम बाथ लेना चाहिए। इसके अनेक उदाहरणों में लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में भी स्टीम बाथ्स हुआ करते थे। टर्किश बाथ्स की बात कही जाती है तो कहा जाता है कि टर्किश हमाम्स हुआ करते थे। यहाँ मुगल साम्राज्य में भी जब बात की जाती है तो बहुत सारे ऐसे पब्लिक बाथ्स थे जहां पर स्टीम में व्यक्ति काफी देर बैठता था और आता था, उससे भी बहुत सारे फायदे। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा कुछ बताइए।
1: जैसे आपने कहा कि प्रकृति चिकित्सा आपको लाभ देती है और आपका इलाज देती है, तो इंग्लिश में ये हमेशा कहा जाता है कि नेचुरोपैथी इज नॉट अ ट्रीटमेंट बट अ वे ऑफ लाइफ। और अगर आप प्रकृति के साथ चलेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और यदि आप बीमार पड़े तो आप बहुत जल्दी ठीक होंगे। अब आपके सवाल पे आते हैं। आपने कहा स्टीम बाथ, जिसको वाष्प स्नान भी कहा जाता है, और ये हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में इसको ले चुका है। आप लोगों ने ब्यूटी पार्लर में या महिलाओं ने सौंदर्य प्रसाधन के लिए भाप से अपने चेहरे को साफ किया। जब हमको ज्यादा सर्दी और जुखाम हो जाती है तो घर के बड़े बूढ़े या कहते भाप ले लो, तो वो पता चलता है कि भाप निकल रही है और हम उसमें सांस ले रहे हैं। पुराने जमाने में जब भाप नहान होता था तो एक गर्म टोपिया या एक गर्म बर्तन में उबलता हुआ पानी लेते थे और उसमें या थोड़ा कपूर थोड़ी लौंग डालकर उसको हम लोग उसमें सांस लेते तो उससे चेहरा भी साफ होता था, और जिनको बहुत सारे चेहरे पे कील मुहासे या गंदगी धब्बे मार्क होते थे वो भी इस तरह का भाप लेकर अपने चेहरे को साफ करते थे। प्राकृतिक चिकित्सा में भाप नहान का अर्थ है कि आपके शरीर को भाप से नहलाया जाए या आपको एक ऐसी व्यवस्था दी जाए जिसमें आपका पूरा शरीर भाप से चारों ओर से घिरा हुआ हो। अब भाप नहान दो तरीके से एक प्रकृति चिकित्सालय में दिया जाता है। सबसे पहले जहां पर बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं या होटलों में या स्पा सेंटर्स में, भाप का एक कमरा बना दिया जाता है। पूरे कमरे में आदमी बैठकर उसमें वो भाप को लेता है और फिर उसके बाद जो भी स्नान और उसको करना होता है वो करता है। प्राकृतिक चिकित्सालयों में भाप के लिए हम एक कमरा न बनाकर एक डब्बा बनाते हैं जिसको स्टीम चेम्बर कहते हैं, और उस चेम्बर में आदमी का सर या पेशेंट या मरीज का सर उस डब्बे के बाहर निकला रहता है और गर्दन से नीचे का पूरा शरीर उस डब्बे के अंदर रहता है और उसमें एक हम पाइप लगाकर किसी स्रोत के थ्रू उसमें भाप भेजते हैं। बहुत से लोगों ने अपने घर पे मेकशिफ्ट स्टीम बनाया, उसमें वो प्रेशर कुकर में पानी डाल के उसको गर्म करते हैं और उसका जो ऊपर जहां सीटी लगती है वहां पे पाइप लगाकर कोई एक चद्दर या कंबल ओढ़कर बैठ जाते हैं और अपने ऊपर उससे भाप लेते हैं। हम यहाँ आरोग्य मंदिर में क्यों नहीं स्टीम का कमरा बनाकर एक डब्बे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मरीज लंबे समय तक रहता है और ज्यादा भाप मिलने से आंखों को नुकसान हो सकता है। दूसरा, एक कमरे में भाप लेने से कभी कभी गर्मी सर पे चढ़ जाती है तो जिससे आदमी को भयंकर सर दर्द होता है और खासकर जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनका तो ब्लड प्रेशर और बीपी भी बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चेम्बर जो है वो जनरल पब्लिक के लिए है, उसको कम देर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वरन डब्बे को ज्यादा समय तक और ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा फिजिक्स की इसमें बात करेंगे
0: जी।
1: पानी गर्म करना पड़ेगा और हम सब जानते हैं कि 100 डिग्री के ऊपर होने के बाद वही पानी भाप में बन जाता है, तो जिस भी नली या नोजल के थ्रू उस भाप को निकाला जाए उसमें बहुत सारे छेद होने चाहिए या उसको ऐसे निकलना चाहिए कि वो डायरेक्ट भाप आपके शरीर पे नहीं पड़े, क्योंकि उससे आप जल सकते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने भाप नहाने के बारे में आपको बताई।
0: जैसे आप ये बात कहते हैं कि ये जो भाप की बात है, स्टीम बात की बात कही जाती है, तो स्टीम से फायदे क्या होते हैं ये चीज समझने वाली है, क्योंकि लोग, चलो सर्दियों में तो हमने स्टीम ले लिया कि भाई छाती में कंजेशन हो गया, बहुत सारा कफ जमा है, वो स्टीम ले लिया तो वो राहत देता है और ये सारी चीजें, बट नहाने में पूरे स्टीम जहां है और स्टीम से अपने बॉडी को घेरे रखना, इससे क्या फायदा होता है, क्या ये फायदा करता है? जैसे आपने ये बात कही कि ये स्टीम बात लेने की अनेक चीजें हमने देखी हैं कि भाई कोई गर्म भाप ले रहा है जब छाती में कफ जमा हुआ है इत्यादि चीजों में, वो तो बात समझ में आती है कि भाई चलो वो तो सभी लोग करते हुए पाए जाते हैं, बट स्टीम बात मतलब इसे कैसे लिया जाए, स्टीम को कैसे तैयार किया जाए, कैसे व्यक्ति उसमें नहाए?
1: इसके लिए सबसे पहला काम कि जो भी इलाज ले रहा है उसको 2 से 3 ग्लास पानी पीना चाहिए जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर ठंडा का समय है तो ये इलाज 10 से 15 मिनट तक लिया जा सकता है, गर्मी के समय इस ये इलाज 5 से 7 मिनट के लिए लिया जाता है। इसमें अपने सर, और जैसा मैंने सारे प्राकृतिक चिकित्सा के इलाजों के बारे में बताया, हम लोग सर को ठंडा करते हैं, इसीलिए हम स्टीम रूम में भी जो बैठने जा रहा है उसको भी कहते हैं कि ये गीला तौलिया अपने सर पे रखा रहे और बार बार अपने सर को ठंडा करके रखे, नहीं तो गर्मी उसके सर पे चढ़ सकती है। तो 2 से 3 ग्लास पानी पी लीजिए, सिर्फ एक अंडर गार्मेंट पहन के आप चेम्बर के अंदर बैठिए। जिनको माइल्ड बीपी की प्रॉब्लम है उनको हम ये कहते हैं कि आप अगर 5-7 मिनट की जगह 2-3 मिनट में निकल आइए, अगर आपको चक्कर आ रहा, घबराहट आ रहा, तुरंत निकल आइए, नहीं तो छाती पर एक गीले कपड़े की ठंडे पानी की पट्टी बांध के आप इसको ले सकते हैं और जैसे ही आप बाहर निकलिए स्टीम लेकर आपको तुरंत ठंडे पानी से नहाना चाहिए, मतलब टैप वाटर से नहाना चाहिए, भले ठंडक हो या गर्मी हो या बरसात, क्योंकि जब हम भाप लेते हैं तो हमारे सारे के सारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत तेज हो जाता है। अब देखिए, आदमी जब गुस्सा होता है तो उसके दांत किटकिटाते हैं, वो एकदम चेहरा लाल हो जाता है, उसकी त्वचा लाल हो जाती है, वही चीज जो रिएक्शन आपको एक गुस्से में होता है जो कि एक नेगेटिव इमोशन कहा जाता है, वो सारे इमोशंस, वो सारे जो रिएक्शन जो बॉडी में गुस्से की वजह से होते हैं वो सारे आपके त्वचा पे होने लगते हैं भाप लेने के बाद। तो 2 से 3 ग्लास पानी पीजिए, गर्मी में 5 से 7 मिनट, ठंडक में 10 से 15 मिनट का भाप लीजिए और निकलते ही तुरंत नहाइए। जब आप स्टीम रूम में बैठे हो तो अपने सर को ठंडे पानी के उससे रखिए, अगर आप डब्बे में हैं तो एक सहायक होगा जो आपके सर पे ठंडा पानी डालेगा, और जब आप चेम्बर में बैठे हैं तो दोनों हाथों से अपनी पूरी त्वचा को धीरे धीरे रगड़ना चाहिए कि जो डेड स्किन या मरी हुई त्वचा है वो निकल जाए, जितने रोम छिद्र हैं आपके वो खुल जाए, स्वेट ग्लैंड सारी जो बंद पड़ी हैं वो खुल जाए, आपके सेबेशियस ग्लैंड तेल निकालने वाली ग्रंथियां हैं वो खुल जाए, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए, और निकलते ही ठंडे पानी से नहाना चाहिए 2 से 5 मिनट।
0: ये बात स्पष्ट होती है कि हाँ स्टीम बाथ करने के लिए भी कुछ तरीके हैं और उस तरीकों के बारे में भी हमें जानकारी रखनी है कि ऐसा नहीं कि हम स्टीम बाथ ले रहे हैं तो मतलब बिना तैयारी के साथ चले जाएं। पानी पीना बहुत आवश्यक है स्नान करने से पहले, जब आप बाष्प स्नान के कक्ष में जा रहे हैं जहाँ स्टीम है वहां, और सिर के ऊपर ठंडे पानी का कपड़ा रखना ये अनिवार्य है, ये बात समझ में आती है। अब एक और प्रश्न उठता है कि आखिर स्टीम बाथ क्यों लिया जाए, क्या इसके फायदे हैं। एक तो जैसे आप पहले बता रहे थे कि भाई सर्दी खांसी के समय पर तो हम स्टीम लेते हैं, तो जो गर्म स्टीम होता है वो नाक से हम लेते हैं तो उससे राहत मिलती है, वो बात समझ में आती है, मगर पूरे शरीर को वाष्प स्नान देना या ये जो स्टीम बात है इससे क्या फायदे हो?
1: एक तरह से आपके शरीर की और आपकी मांसपेशियों की डीप क्लीनिंग कराता है। जो आपके मांसपेशियों में गंदगी रुक गई है, फंस गई है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। और आपकी पूरी त्वचा में जो दो ग्रंथियां हैं, एक जिसमें से पसीना निकलता है और दूसरा जिसमें से तेल निकलता है, इन दोनों ग्रंथियों को खोलने का काम करता है। तो जैसे ही वो इन दोनों ग्रंथियों को खोल देगा तो वो सुचारू रूप से चलने लगेंगे। और जैसे ही आप समझिए, और फिर हम लोग फिजिक्स पे आएंगे कि जहां भाप बढ़ी या जहां तापमान बढ़ा वहां पे रक्त संचार बढ़ेगा। तो जैसे मैंने कहा क्यों बीपी के मरीज के लिए, क्योंकि उसका रक्त संचार पहले से बढ़ा है और हमने उसका भाप से रक्त संचार बढ़ा दिया, तो इसलिए उनके लिए सावधानियां बहुत है। पर एक साधारण व्यक्ति, एक हेल्दी इंडिविजुअल, एक स्वस्थ आदमी के लिए जैसे ही हम उसका जो वातावरण का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी मांसपेशियों में रक्त संचार बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। तो हर जगह जहां रक्त संचार बढ़ा वहां की मांसपेशियों में से जितनी गंदगी है, जितनी परेशानी है, वो निकलना शुरू हो जाती है। चलिए इसकी हम लोग लाभ अपने ऊपर से लेके नीचे तक समझने की कोशिश करें। हमारे चेहरे पे जितने साइनस हैं या जितनी भी जो हमारे चेहरे की हड्डियों में जो जगह है, जगह हल्के गैप्स हैं जिनको साइनस बोलते हैं, हमारे नाक से उनका कनेक्शन है, वो जब स्टीम बाथ में हमारा रक्त संचार बढ़ता है तो हमारे साइनस का भी ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो उसमें जितना म्यूकस, जितनी गंदगी है वो निकलना शुरू होती है। नीचे आते ही जो हमारा फेफड़ा है उसका रक्त संचार बढ़ जाता है और हमारा हृदय ज्यादा काम करने लगता है, तो अच्छा खून पूरे शरीर में भेजने लगता है, वो खून को हमारे फेफड़ों में भेजता है जिससे खून साफ होकर पूरे के पूरे शरीर में घूमने लगता है। वही खून वो लिवर में भेजता है, किडनी में भेजता है, तो जब ज्यादा खून भेज रहा है तो वो जल्दी साफ हो रहा है, लिवर से उसके टॉक्सिन निकल रहे हैं, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड वो धीरे धीरे करना शुरू करता है। त्वचा, तो अब देखिए जहां स्वेट ग्लैंड जो हमारी पसीने की ग्रंथियां खुली तो उन्होंने टॉक्सिन निकालना शुरू किया, त्वचा पे ग्रंथियां जो तेल निकालती हैं जिनको सेबेशियस ग्लैंड बोला वो खुली तो त्वचा साफ होना शुरू होती है, चमकना शुरू होती है, त्वचा की झुर्रियां जो पड़ गई हैं वो कम होना शुरू होती हैं, त्वचा में चमक आना शुरू हो जाता है। इसीलिए देखिए फेशियल स्टीम कितने लोग ब्यूटी पार्लर में लेते हैं। अब हमारे जितने भी जोड़ हैं जो जकड़ गए हैं, जो फंस गए हैं, उसमें एकाएक वो जोड़ ढीले होने शुरू करते हैं। गर्मी से हर चीज लंबी हो जाती है, ठंडक में हर चीज सिकुड़ जाती है, तो जहां उसको गर्मी हुई वो जोड़ धीरे से खुला, तो जैसे ही खुलेगा तो उसमें जो दो गैप के बीच में हमारा कार्टिलेज है उसको आराम मिलने लगेगा, उसका लुब्रिकेशन होने लगेगा, और जो जो एकदम तना हुआ था, टाइट था, वो धीरे से लूज होना शुरू होगा, और जहां वो लूज होगा तो जो जकड़न होगी वो निकल जाएगी, जोड़ अच्छे से हिलने लगेंगे, जो जोड़ कहा जाए ना ये जोड़ फंस गया है वो जोड़ खुल जाएगा। अगर हल्का आर्थराइटिस है मरीज को, इसके जोड़ धीरे धीरे से फंस रहे हैं या उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो तुरंत एक भाप नहा लेने के बाद उसको ऐसा लगता है कि शरीर खुल गया, जैसे जो ताले और बेड़ियों में जकड़ा हुआ शरीर था वो तुरंत खुल गया। अब सांस हमारी अच्छी होने लगेगी तो फेफड़े हमारे खुलने लगेंगे, साइनस खुला तो नाक के छेद थोड़े से बड़े होंगे, जो नाक का म्यूकस है वो खुलेगा, तो ऐसा लगेगा कि भरपूर सांस आ रही है। सेकेंडली, अब आप सोचिए जब हर तरफ अच्छा लग रहा है तो हमारे दिमाग को भी अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि सारे टॉक्सिन निकल गए, दिमाग में भी थोड़ा ब्लड गया वो भी वापस आ रहा है, तो एक फ्रेशनेस फील होनी शुरू होती है, और ये तक कहा जा रहा है कि इससे मानसिक शांति मिलती है भाप ध्यान देने के बाद। अच्छा, इतना सब जब हो रहा है तो हाँ, और जब मरीज अपने आप को रगड़ रहा है तो उसका थोड़ा बहुत वजन भी कम होना शुरू होता है, तो इसको लोग वजन कम करने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसमें मैं एक सावधानी की बात करूंगा कि भाप टहान से सबसे पहले जो पानी आपने पिया है वही बाहर निकलता है, और जब हम वो पानी धीरे धीरे पीते हैं तो हमारा वजन वापस आ जाता है। तो इसीलिए एक बार भाप टहान न लेकर हर 2-4 दिन पे इसको लेना चाहिए, और अगर आप बैठ के अपने शरीर को रगड़ते रहेंगे तभी आपका वजन कम होगा। इससे आपका वजन कम होगा, आपकी त्वचा सुंदर हो जाएगी, आप सुंदर दिखने लगेंगे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएंगे।
0: वैसे भी जब हम देखते हैं डॉक्टर साहब, व्यक्ति जब नहा के निकलता है गर्म पानी से तो यही कहता है आह, मैं तो नहा के एकदम ऐसा महसूस कर रहे जैसे नया जीवन प्राप्त किया हो इंसान।
1: लंबी यात्रा के बाद आप लौटिए घर पे और नहा लीजिए, आपको ऐसा लगता है पूरे फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि आपने अपनी त्वचा को रगड़ दिया, सारे उसकी स्वेट ग्लैंड्स को खोल दिया, और सारा का सारा रगड़ने पे जो गंदगी निकलनी थी वो निकल गई, इसलिए मानसिक शांति भी बहुत मिलती है।
0: ये बात तो स्पष्ट होती है कि वास्तविकता में स्नान तो अनेक प्रकार की चीजें हमने सुनी है, मगर बाष्प स्नान यानी स्टीम बाथ जो है, अगर स्टीम से नहाया जाता है यानी स्टीम के लिए क्या सिस्टम है ये भी आज हमने सुना कि उससे क्या फायदे होते हैं वो बात समझ में आती है। आज व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से हल्का करने के लिए, अपने मेंटल वेलबींग को वापस लाने के लिए अनेक प्रयास कर रहा है। शरीर को भी अगर हम साधते हैं तो मन को भी हल्का करने में कितना मददगार बनाता है ये चीज पता चलती है। आज वाष्प स्नान के बारे में ये चीजें समझ में आई हैं कि स्टीम बाथ के लिए बहुत ज्यादा गर्म स्टीम जो है वो आपके बॉडी के कांटेक्ट में सीधे नहीं आए, इस बात का ध्यान रखना है। साथ साथ स्टीम बाथ लेने से पहले 2-3 गिलास पानी पीना है। गर्मियों के दिनों में 7-10 मिनट तक आप कर सकते हैं और सर्दियों के दिनों में 15 मिनट तक कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर साहब से हमने चीजें सुनी है। और जिनको अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो थोड़ा सावधानी बरतें, 2-3 मिनट का ही स्नान करके आप बाहर आकर तुरंत ठंडा स्नान सभी को करना है स्टीम बाथ के पश्चात, ये बात समझ में आती है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज मैं पूछना चाहूंगा, स्टीम बाथ एक हेल्दी इंसान को कितने दिन में एक बार करना चाहिए? क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि चलो स्टीम बाथ करने के लिए अभी कोई प्रकृति चिकित्सा केंद्र या कहीं ऐसे स्पा या सोना में तो जा नहीं रहा है, मगर अगर घर पे ही कोई व्यक्ति इसको करना चाहता है तो कितने इंटरवल में होना चाहिए?
1: स्वस्थ व्यक्ति इसको हफ्ते में एक बार जरूर ले सकता है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति इसको हफ्ते में एक बार जरूर ले सकता है। यदि आपको ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आप इसको किसी एक चिकित्सक की सलाह के बाद ही लें। जिनको ब्लड प्रेशर कम होता है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका उनका वो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ ले आता है। और हमारा शरीर भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है, हर परिस्थिति से लड़ने लायक बनाया है, हर परिस्थिति में हमारे बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन की जाती है, तो इसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है, कभी भी ले सकता है। एक चीज का बस ध्यान, आपको भोजन नहीं करना है किसी भी इलाज लेने के पहले, क्योंकि अगर आप भोजन किए रहते हैं तो आपका पूरा रक्त संचार उस भोजन को पचाने में काम करता है और डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इसी का ध्यान रखना है।
0: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने स्टीम बात क्या होता है इस चीज पर इतने विस्तार से हमारे श्रोता मित्रों को समझाया, और मैं समझता हूँ कि इसके फायदे क्या हैं ये भी समझ में आने के बाद इसका इस्तेमाल करके हर व्यक्ति अपना लाभ क्या हो रहा है वो बता सकता है। दोस्तों, आज की बातचीत में यही विराम लेंगे, और डॉक्टर साहब ने जो बातें आज कही है वो सब कुछ स्वास्थ्य को सहज बनाने के लिए क्या हम कर सकते हैं स्टीम बात का इस्तेमाल, आप करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा लेकर वापस हाजिर होंगे और डॉक्टर साहब से सवाल जवाब करेंगे। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर राहुल मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आज आप हमारे साथ जुड़ पाए।
1: धन्यवाद। ओम शांति।
0: दोस्तों, यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अपने आप को स्वस्थ बनाने के इन तरीकों को आजमाते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आए हम।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो बच्चों, सपनों की सैर कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। और मनी दीदी और परी भी आ गए हैं नया टॉपिक लेकर के।
3: हाँ बच्चों, अभी तक तो हमने कितनी सारी जानकारियाँ हासिल की और ये भी जाना कि पशु पक्षी भी हमारे परिवार है। और आज का पता है क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है सूरज ऊर्जा का स्रोत।
2: तो बच्चों देखा, ये हमारा आज का उज्जवल विषय है, सूरज ऊर्जा का स्रोत।
3: और बच्चों क्या आपने नोटिस किया है कि जब सूरज निकलता है तो कैसा महसूस होता है?
2: मनी दीदी, आजकल तो सूरज निकलता है तो बहुत गर्मी महसूस होती है।
3: हाँ गर्मी तो महसूस होती है, लेकिन वो भी दोपहर को। लेकिन जब सुबह सुबह निकलता है तो कैसा लगता है?
2: गोल्डन गोल्डन, आग का गोला।
3: हाँ और सब कुछ चमकने लगता है ना।
2: और ठंड में तो धूप में बैठने में बहुत मजेदार होता है।
3: हाँ बच्चों, ठंड में तो धूप का ही सहारा होता है और गर्मी में तो लगता है कि सूर्य तो आग बरसा रहा है।
2: बिल्कुल मनी दीदी। तो बच्चों सूरज हमें रोशनी भी देता है, गर्मी भी देता है।
3: लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य हमें ऊर्जा भी देता है?
2: हाँ बिल्कुल बच्चों, इसीलिए उसको सोलार एनर्जी कहते हैं ना। और बच्चों धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है।
3: और धूप से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। याद है ना, आपने पढ़ा भी होगा विज्ञान में। तो देखा धूप भी कितने महत्व की है।
2: बिल्कुल बच्चों, तो इसीलिए सूरज को भी धन्यवाद देना रोज।
3: हाँ बच्चों, तो चलो अभी तो समय हो रहा है परी की कहानी सुनने का।
2: तो चलो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर
2: सपनों की सैर को।

बच्चों चलो चलो बैठो रेडियो के पास। परी शुरू कर रही है आज की कहानी, चालाक लोमड़ी की कहानी। एक दिन एक कौवे ने एक बच्चे के हाथ से रोटी छीन ली। उसके बाद वो उड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर जा बैठा और रोटी खाने लगा। बच्चों एक लोमड़ी ने उसे देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो पेड़ के नीचे जा पहुंची, उसने कौवे की ओर देखा और कहा, कौवे राजा नमस्ते। कौवे ने कोई जवाब नहीं दिया। लोमड़ी ने उसे फिर कहा, कौवे राजा आप तो बहुत सुंदर एवं चमकदार लग रहे हो, यदि आपकी वाणी भी मधुर है तो आप पक्षियों के राजा बन जाएंगे, जरा मुझे अपनी आवाज तो सुनाइए। बच्चों मूर्ख कौवे ने सोचा, मैं सचमुच पक्षियों का राजा हूँ, ये सिद्ध कर देना चाहिए। उसने ज्यों ही गाने के लिए अपनी चोंच खोली तो बच्चों क्या हुआ सोचो, रोटी चोंच से छूटकर नीचे गिर गई और बच्चों लोमड़ी रोटी उठाकर फौरन वहां से भाग गई। देखा बच्चों कैसे लोमड़ी ने कौवे को मूर्ख बनाया। लेकिन ये तो बताओ कि कहानी हमें क्या सिखाती है? झूठी तारीफ करने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, है ना बच्चों? ऐसे किसी की बातों में नहीं आ जाना, वरना कोई आपको बेवकूफ बना सकता है। इसीलिए हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। तो चलो अब क्या करेंगे, मनी दीदी की कहानी सुनेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

तो चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर तेनाली रामा की किताब। तो बच्चों, हम जो कहानी पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है व्यक्ति, परिवेश और परिधान, जिसमें तेनाली राम को ये प्रूफ करना है कि व्यक्ति का महत्व कपड़ों पर भी होता है तथा विशेष अवसरों पर विशेष परिधान का भी महत्व होता है। तो ये तेनाली राम को उचित अवसर पर सिद्ध करके बताना है। तो इस तरीके से सभा में जब वह चर्चा थी तो वह संपन्न हुई और बाकी जो सभासद थे उनके मन में तो तेनाली के प्रति ईर्ष्या का भाव था ही। फिर आगे क्या हुआ बच्चों, चलो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इस घटना के कुछ दिन बाद विजयनगर में एक समारोह का आयोजन हो रहा था। महाराज कृष्णदेव राय के पिता के जन्म दिवस पर प्रति वर्ष आयोजित होने वाला यह समारोह इस बार विशेष उल्लास के साथ मनाया जा रहा था, क्योंकि यह वर्ष महाराज कृष्णदेव राय के पिता की शतवार्षिकी जन्मोत्सव का वर्ष था, यानी कि 100 वर्षों का जन्मोत्सव था। तो महाराज स्वयं समारोह की तैयारियों पर दृष्टि रख रहे थे। राजभवन को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया था। आमोद प्रमोद के लिए विविध कार्यक्रम चल रहे थे। विजयनगर के विभिन्न परिवारों को महाराज ने भोजन का आमंत्रण दिया था। कुछ पड़ोसी राजाओं को भी राजनैतिक संबंध दृढ़ करने के उद्देश्य से महाराज ने निमंत्रण भेजा था। तेनाली रामा सहित सभी सभासदों को महाराज कृष्णदेव राय ने स्वलिखित आमंत्रण पत्र भेजकर जन्मोत्सव समारोह के बाद अपने साथ रात्रि का भोजन करने का न्योता दिया था। सभासदों को राजभवन के द्वार पर पुष्पमाला पहनाकर ससम्मान भोजन कक्ष तक पहुंचाने की विशेष व्यवस्था की गई थी। रंग बिरंगी परिधानों में सजी धजी सेविकाएं इधर उधर मंडरा रही थी। शाम ढल चुकी थी। शरद पूर्णिमा की चांदनी का उजास फैला हुआ था। राजभवन की बगिया में लगी रजनीगंधा की भीनी भीनी सुगंध से वातावरण महक रहा था। तभी राजभवन के द्वार पर एक विचित्र सा शोर उभरने लगा। प्रहरी एक भिखमंगे को राजभवन के द्वार से धक्का देकर दूर भगाने में लगे थे और वह भिखमंगा व्यक्ति चीख चीख कर बोल रहा था, मुझे मत भगाओ, मुझे राजभवन के भोजन कक्ष तक पहुंचा दो। मैं भिखमंगा नहीं हूँ, मैं महाराज का आमंत्रित अतिथि हूँ। मुझे निराश मत करो, मैं पंडित हूँ, काव्य शास्त्र का ज्ञाता हूँ, मेरे साथ उचित व्यवहार करो। तो बच्चों, इस तरीके से उस पंडित को द्वारपाल अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। अब आगे क्या होगा वो तो बच्चों अगली कड़ी में मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। तब तक सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: हेलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, क्योंकि अब आ गए हैं हम अंतिम मोड़ पर, जहां पर हम जानेंगे पिछली कड़ी में परी ने जो पूछा था सवाल, उसका जवाब। तो चलो चलो, क्या पूछा था परी ने पिछली कड़ी में?
1: बहुत ही आसान सी पहेली थी बच्चों, पढ़ाई में साथी, लिखाई में काम, स्याही से भरता है अपना नाम।
0: हाँ बच्चों, और इसका सही जवाब तो आप सभी ने सही सही भेजा है। पता है सही जवाब है इसका पेन।
1: हाँ बच्चों, पेन तो आपको बहुत पसंद है ना, कुछ न कुछ स्क्रिबल करने में बड़ा मजा आता है।
0: हाँ बच्चों, और अभी उसी पेन का अभी फिर से हम उपयोग करने वाले हैं परमात्मा को पत्र लिखने में।
1: बिल्कुल बच्चों, तो परमात्मा को पत्र लिख करके थैंक यू और सॉरी कह करके बिल्कुल सो जाना उनकी गोदी में। तो बच्चों चलो आज की पहेली फिर से नोट कर लो। दिन में दिखे रात को छिपे, धरती को रोशन करे, सबको सुख दे।
0: हाँ बच्चों, अभी ये भी तो बहुत इजी पहेली पूछी है परी ने। दिन में दिखता है, रात को छुप जाता है और धरती को रोशन करता है। तो बताओ क्या है? 94-14-15-14-15 पर वॉइस नोट या मैसेज कर दो। और पत्र तो हमने लिखना शुरू कर ही दिया होगा, है ना बच्चों?
1: हाँ मनी दीदी, तो चलो हम करते हैं गुड नाइट। लेकिन उसके पहले चांद की चांदनी में खो जाओ, सपनों की दुनिया में सो जाओ।
0: हम भी करेंगे इंतजार सुबह तक, बस चैन से अपनी नींद में खो जाओ।
1: गुड नाइट,
0: स्लीप टाइट,
1: गुड बाय।
0: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107।

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा, गुड मॉर्निंग सा। कर्म इंद्रिया हमारे वश में हो न कि हम उनके वश में हो। कर्म इंद्रिया हमारे वश में हो न कि हम उनके वश में हो। जरा विचार करिए कि ऐसा क्यों। अगर हिचकी आए तो क्या करेंगे? आप आशियाना सुनते रहिए, इसका उपाय जरूर देंगे। और आज आपको एक विशेष अतिथि से भी मिलाएंगे और कुछ खास भी बनाने वाली हूँ। प्रश्न तो जरूर पूछूंगी, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि कर्मेंद्रिया हमारे वश में होनी चाहिए, न कि हम कर्मेंद्रियों के वश में हो। कर्मेंद्रिया हमारे वश में हो, न कि हम कर्मेंद्रियों के वश में। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। स्वयं, हम स्वयं मालिक होकर के कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराएंगे। कहते हैं कि मन में कोई ख्याल आए, कोई भी मन में किसी के भी प्रति बुरा ख्याल आए, लेकिन कर्म में नहीं आओ, वाचा में आए तो भी वो कर्म हो गया। मनसा में कोई ऐसा ख्याल आए तो वहाँ ही समाप्त कर दीजिए। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस दुनिया में आई हूँ, ये संकल्प और अशुद्ध संकल्प को, मतलब इस तरह के संकल्प चलाने, लेकिन अशुद्ध संकल्पों को समाप्त कर देना है। बातों को अवॉइड करना है, जो हमारे काम की बातें न हो तो उसे अवॉइड करते जाओ। अगर अवार्ड लेना है स्वयं से, तो दिन भर में कौन कौन सी बातें आती है, संकल्प वचन कर्म में जो हमारे काम की बातें नहीं है उसे अवॉइड करो। जैसे मोती चुगने वाला हंस जो काम का नहीं होता है उसे अलग कर देता है। समझ कहती है तुम्हारे सोचने का तरीका बहुत अच्छा हो, जो तुम्हारे काम की बातें नहीं उसे अवॉइड करो। जो और किसी की ड्यूटी है उसमें अपना इंटरफेयर नहीं करो। हम जिस कार्य के अर्थ निमित्त है उसमें भी अपने को भारी मत करो, भारी होने को भी अवॉइड करो। कैसा होगा, मतलब कैसे होगा, क्या होगा, इस नेचर को भी अवॉइड करो। अच्छा ही होगा जो हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा, और जो होने वाला है वो तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस दृढ़ संकल्प से विक संकल्प को अवॉइड करो। जहाँ कोई परचिंतन वाली बातें चलती है उनसे अपने को अवॉइड करो, उससे हमारी उन्नति नहीं है। फालतू चर्चा करने वालों से अवॉइड करो, उनको भी व्यर्थ चिंतन करने वालों के संग का अवॉइड करो। तो इस तरह अगर हम व्यर्थ से बचेंगे और स्वयं पर ध्यान देंगे कि मैं क्यों इस दुनिया में आई हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चलना है, किस तरह का भोजन मुझे करना है और कैसे विचार मुझे रखने हैं, कैसा व्यवहार लोगों के साथ करना है, तो हम कह सकते हैं कि कर्मेंद्रिया हमारे वश में है, न कि हम उनके वश में। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

ओम शांति, मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

हिचकी लगी हिचकी। तो आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब आपको देंगे आप सभी समझ गए होंगे कि आज मैं हिचकी पर नुस्खे देने वाली हूँ। भाई कभी कभी क्या है

0: इसकी भी बड़ी परेशान कर देती है, क्योंकि कभी कभी दो चार बार आकर के बंद हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बस लगातार आती रहती है, फिर परेशान हो जाते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, बीच बीच में पानी पी लेते हैं, 7 घूंट पानी पीने से हिचकी चली जाती है, ऐसी मान्यता है। ऐसा भी करके देखते हैं, सबसे पहले तो यही उपाय करते हैं, लेकिन कभी कभी इस उपाय से भी हिचकी नहीं जाती है। तो मैं आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे दे रही हूँ कि गुनगुने पानी में नींबू का रस और 1 चुटकी नमक और पुदीने के कुछ पत्ते मिलाइए, फिर इसे पीजिए, हिचकी और गैस दोनों में आराम मिलेगा। गुनगुने पानी में नींबू का रस और 1 चुटकी नमक और पुदीने के कुछ पत्ते मिला दीजिए, इसे पीजिएगा, हिचकी और गैस दोनों में आराम मिलेगा। हिचकी को रोकने के लिए नमक और पुदीने का इस्तेमाल आपको करना जरूरी है, ठीक है। और अगला नुस्खा आपको मैं दे रही हूँ, अगर ये नहीं कर सकते तो आप सोट और बड़ी हरड़ को बराबर मात्रा में लीजिए, पीस करके चूर्ण बना लीजिए, फिर 3 ग्राम चूर्ण को पानी के साथ लीजिए, सेवन करिए, इससे भी हिचकी बंद हो जाएगी। सौंठ और बड़ी हरड़ को बराबर मात्रा में पीस करके इसका चूर्ण बना लीजिए, 3 ग्राम चूर्ण को पानी के साथ सेवन करने से हिचकियां बंद हो जाती है। और लास्ट नुस्खा सुनेंगे कि कुटकी के चूर्ण को 1-2 चुटकी की मात्रा में शहद के साथ मिला करके दिन में 3-4 बार खाइए, इससे भी हिचकी में आराम मिलता है। कुटकी के चूर्ण को कुटकी होती ना, उसको कूट पीस करके उसका चूर्ण बना लीजिए, फिर 1-2 चुटकी की मात्रा में थोड़े से शहद मिला करके 3-4 बार खाइए पूरे दिन में, इससे भी हिचकी में आराम मिलेगा। तो इस तरह आप अपने हिचकी को ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ही नुस्खे लाजवाब है, चाहो तो आप आजमा सकते हो। और अब मैं आपको प्रश्न पूछ रही हूँ कि देखिए, मैंने आपको कुछ बात कही, ठीक है, मैं ऐसे ही कहूँगी ना आपको कुछ बात करने से पहले, किसी को बताना नहीं हो, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, फिर आप भी अपने दोस्त से कहेंगे कि देखो ये बात मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ, लेकिन किसी को बताना मत, फिर वो तीसरे को कहेगा तो उसको भी ऐसे ही कहेंगे कि किसी को बताना नहीं, तो वो इसका आप अर्थ बताइए कि बात फैलते फैलते इसका क्या हाल होगा, ठीक है, जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। हेलो
1: हेलो हेलो सर, कुटकी क्या होती है?
0: कुटकी एक आयुर्वेद चीज होती है, जैसे कि हम सौंठ नहीं लेते हैं, इस तरह कुटकी भी आती है। पंसारी
1: का ये पूछ रहा मैं,
0: पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा या किराने की दुकान पर मिल जाएगी, ठीक है?
1: ठीक है साहब
0: जी, आपका शुभ नाम बताएंगे?
1: मेरा नाम ज्ञान सिंह है साहब।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत आभार आपका। तो आप किराने की दुकान पर पूछेंगे तो भी मिल जाएगी, ठीक है?
1: ओके सर
0: जी जी, थैंक यू। चलिए यहीं पर सुनेंगे एक गीत, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: हर रिश्ता दिल से निभाती है बिना किसी मतलब के। तभी तो वह हर रिश्ता दिल से निभाती है बिना किसी स्वार्थ के। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आज हमारे एक विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं, सोनू जी, जो नेपाल के रहने वाले हैं परंतु 16 साल से आबू में ही रह रहे हैं, आबू तलेटी में। और देखिए, कहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये पाप है, तो ये विकर्म है। काम करना अच्छी बात है और काम करके स्वाभिमान से जीवन जीना ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सोनू जी लोगों के घर के झाड़ू पोछे करते हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, 3 बच्चे हैं, उनकी परवरिश भी कर रही है, और कैसे अपने घर परिवार को चला रही है और हमेशा अपने जीवन को खुशियों से भरा रखते हैं। तो ऐसे नारी शक्ति से आपको मिलवाते हैं। सोनू जी, आपका स्वागत है आशियाना में।
1: जी धन्यवाद।
0: सोनू जी, आप जैसे झाड़ू पोछा करते हैं, तो ये काम आपने कब से शुरू किया और ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? कितने साल हो गए आपको झाड़ू पोछा करते हुए?
1: ऐसे हो गए मेरे 10-12 साल। जब बच्चे छोटे छोटे थे तब तो नहीं कर पा रहे थे, अभी जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, स्कूल उनको पढ़ाने का समय आया तो मजबूरी में या कुछ भी हो करना पड़ा हमको।
0: जी जी जी, मजबूरी से आपने काम को शुरू किया। 3 बच्चे हैं आपके। अच्छा, तो मतलब पहले आपकी इच्छा नहीं थी शुरुआत में झाड़ू पोछा करने की?
1: ऐसे मतलब अभी हम घर पे रहते थे, अपने हाउस वाइफ है, तो अपना घर खर्च देख के भाई आदमी कैसे अकेले सब कुछ देखभाल करेगा, फिर फैमिली भी बड़ी होती जा रही थी, फिर हम भी सोचे कि थोड़ा बहुत हम भी हेल्प करें या थोड़ा अपने घर वाला को सपोर्ट हो जाएगा और हमारे बच्चों को भी अच्छी परवरिश होगी।
0: जी जी,
1: इसीलिए।
0: तो आपके पतिदेव ने हाँ कर दी?
1: हाँ, वो बोले कि हाँ, और कहीं तो नहीं जाना, बस बाबा का घर है तो जाओ, वहाँ थोड़ी सद्बुद्धि मिलेगी, अच्छा ज्ञान मिलेगा।
0: अच्छा, तो आप तब से आपने शुरू किया, 12 साल हो गए झाड़ू पोछा करते हुए। तो आप कितने घर के करते होंगे लगभग?
1: बस 5-6 घर।
0: अच्छा, 5-6 घर पर आप काम करते हो। महीने का लगभग कितना कमा लेते होंगे?
1: महीने का किसी महीने 5,000, किसी महीने 6,000 बस।
0: जी जी जी, और झाड़ू पोछे के अलावा और आपको आप क्या करते हैं? बर्तन भी मांजते हैं?
1: हाँ, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, बस जो हो जाए।
0: जी जी जी, तो आपके 3 बच्चे भी हैं, तो कैसे आप बच्चों को समय दे पाते हैं, कैसे आप लोगों के घर के काम कर पाते हैं, कैसे ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं?
1: बस अपने आप को मजबूत बना के सुबह जल्दी उठ के सब घर का काम करके फिर आगे जाके अपन को भी टेंशन होती है, चिंता होता है कि आगे भी करना है और भी आगे बढ़ना है, बच्चों की अच्छी जिंदगी देनी है, अच्छी परवरिश करनी है, इसीलिए बस वही।
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए, मतलब कुछ करना है तो फिर हमें थोड़ा सा त्याग भी, समय का त्याग भी देना पड़ेगा इसके लिए। हाँ। जल्दी उठ करके हम समय को कवर कर सकते हैं। आप कितने बजे उठ जाते हैं?
1: ऐसे कभी 5, कभी 5:30, कभी 6, जब ज़्यादा थके रहते हैं तो 6 भी बज जाता है, नहीं तो टेंशन रहती है दिमाग में तो जल्दी उठ जाते हैं।
0: जी जी जी, तो आप कितने बजे मतलब काम करने चले जाते हैं?
1: मैं काम पे 8:30-9।
0: अच्छा, सुबह 8:30-9 बजे चले जाते हैं। फिर घर पर कितने बजे आते हैं?
1: घर पर कभी 5 बजे, कभी 4 बजे, डेली का।
0: अच्छा, इसके बीच खाना कैसे आप यहाँ बना के जाते हैं?
1: हाँ, खाना घर पे बना के जाते हैं, नाश्ता वगैरह करके जाते, फिर आके खाते।
0: सुबह 8:30-9 बजे घर से निकलते, उसके बाद 4-5 बजे आकर के खाना खाते।
1: हाँ,
0: और बच्चे लोग को तब तक कौन संभालता है?
1: बच्चे लोग अभी थोड़े बड़े हो गए, स्कूल जाते हैं, उनको आके इतने बड़े हो गए कि खुद मतलब सब कर लेते हैं खाना।
0: जी जी, अभी तो बड़े हो गए लेकिन आपको 12 साल हो गए काम करते हुए, उस समय कौन संभालता था?
1: उस समय बस ऐसे ही, अब थोड़ा थोड़ा करके मुश्किल थी तो अपने में ऐसे करके संभाल,
0: मतलब बीच बीच में आप घर पर जाते थे, एक दो घर का काम करके बीच बीच में घर पर जाते थे। तो आपके साथ और भी कोई है जैसे आपके

0: सासुमा या आपके मम्मी कोई भी?
1: नहीं, वो लोग सब नेपाल में हैं, हम खाली, हमारी फैमिली है, तीन बच्चे और हम मियाँ बीवी।
0: अच्छा, आपके पति देव क्या काम करते हैं?
1: ओ, ज्ञान अमृत प्रिंटिंग प्रेस में करते हैं।
0: अच्छा, तो आपके दोनों की कमाई से घर का गुजारा अच्छी तरह चल जाता है?
1: हाँ, चलता है थोड़ी, घर का अपना वो करके चलाते हैं।
0: जी, देखिए वो कहते हैं कि थोड़ा सा अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, समय का त्याग नहीं करेंगे, तो बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे पाएंगे। तो
1: हाँ,
0: तीनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं?
1: हाँ, तीनों जाते हैं।
0: और नेपाल कितने समय में जाना होता है आपका?
1: कभी एक साल में जाते हैं, एक महीने के लिए, सबसे मिल के सबका हाल खबर लेके फिर आ जाते हैं।
0: तो जैसे आप एक महीने के लिए जाते हैं, उस समय फिर वो काम कौन करता है?
1: किसी अपने सगे संबंधी को, जान पहचान वालों को, उनको वहाँ पे रख के जाते हैं।
0: अच्छा, तो आप लोग ऐसे तालमेल बिठा के रहते हैं कि जैसे आप गए तो आपके बदले किसी ने कर लिया काम, और वो गए तो आप कर लेते हो?
1: हाँ जी।
0: तो फिर वो डबल लोड नहीं पड़ जाता है, डबल काम हो जाता है कैसे फिर?
1: अभी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सोनू जी। आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधु। सोनू जी जो देखे झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, और अपने जीवन को किस तरह इन्होंने खुशनुमा बना करके रख रखा है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है। चाहे कोई भी काम करो, वो काम श्रेष्ठ ही होता है। चोरी, झूठ, अन्याय ये करना तो ये गलत है, ये पाप है, लेकिन काम करना बहुत अच्छी बात है। सोनू जी ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, लेकिन कैसे अपने घर का आप अच्छी तरह घर को चला रहे हैं। कहते हैं कि भाई महंगाई के ज़माने में एक के कमाने से पूरा नहीं पड़ता है, दोनों का कदम से कदम बढ़ा करके चलना ही पड़ता है, चाहे घर के काम हो चाहे बारीक क्षेत्र में काम हो। तो आइए सुनेंगे पहले एक गीत, उसके बाद पुनः लौट करके आ रहे हैं। सोनू जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। चलो
3: कोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच तो यह है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है, औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सोनू जी हमारे साथ बने हुए हैं। कैसे सोनू जी ने झाड़ू पोछे बर्तन को अपना व्यवसाय बनाया है कि झाड़ू लगाना पोछा लगाना बर्तन मांजना लोगों के घर का और अपने जीवन को खुशनुमा बनाना, कैसे अपने मतलब इन्होंने अपने जीवन में इसको व्यवसाय बनाया है आपने जाना है और भी हम जानेंगे। सोनू जी पुनः आपका स्वागत है आशियाना में। अच्छा सोनू जी आप कोरोना काल में बहुत लोगों के काम छूट गए थे, तो आपने कैसे मतलब जारी रखा या फिर कैसे आपने कोरोना काल में अपने आप को संभाल के रखा पूरे परिवार से?
5: हाँ ऐसे तो पहले कोरोना जब नहीं था तो ठीक चल रही थी काम काज, जब कोरोना चालू हुआ तो बहुत परेशानी आ गई थी। अब काम पे काम भी बंद हो गया था, सब लोग यही डरते थे कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसीलिए सब अपने अपने घर में थे, ना ही काम की काम पे कभी मतलब बुलाते नहीं थे, सबको डर थी हमको भी उनको भी, पंतों पर भी ऐसे करके थोड़े बहुत जो समझते थे हमारे इधर जो योगी नगर में थे वो लोग सब अच्छे हैं तो वो लोग समझे कि ऐसे ऐसे हालात में भी वो घर बैठे रहेंगे तो कैसे उनका घर खर्चा चलेगा, फिर इसीलिए वो लोग भी हम भले एक दो महीना घर पे रहे तो पर भी वो हमको सब देख के हमारी परिस्थिति समझ के वो लोग मतलब हमारे पगार वगार नहीं काटे, हमारे जो कोरोना काल का जो खर्चा था वो लोग मदद किए और दिए, और हम भी एक दो महीना घर पे बैठे थे तो पर भी मतलब पगार दिए वो लोग ने।
4: अच्छा आप पेमेंट दी, काटी किसी ने नहीं?
5: नहीं।
4: एक काम का आप कितने ले लेते हो, जैसे झाड़ू पोछे का कितने लेते हैं आप?
5: झाड़ू पोछे का 800 महीने का।
4: 800 रुपए महीने का, तो वो जो पैसे है आपके काटे नहीं, सभी ग्राहक ने दिया आपको?
5: नहीं जो ऐसे सब जो अपने परिस्थिति समझते थे
4: जी जी जी
5: उन्होंने ही दिया और बाकी अब अपनी अपनी।
4: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसको दया थी रहम था कि भाई कैसे गुजारा करोगे तो उन्होंने पैसे भी दिए, किसी ने फिर खाना वगैरह कपड़े वगैरह ऐसे भी दिए?
5: हाँ दिए थे खाना।
4: अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन वो कहते हैं कि खुददारी से जीवन जीती हो स्वाभिमानी से कि हाथ नहीं फैलाना किसी के सामने।
5: हाँ जी
4: ये बहुत बड़ी बात है कि लोग बात क्या है जल्दी से हाथ फैलाने लग जाते हैं, अहंकार में बैठ जाते, अच्छी पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है तो माता पिता पर डिपेंड रह जाते हैं, बेचारे माता पिता कितने समय बच्चों को पालेंगे, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो माता पिता भी बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं कि अब हमारा बच्चा भी कुछ करे, लेकिन नौकरी के भरोसे बच्चे दूसरा छोटा मोटा काम करना नहीं चाहते। भले घर में परिस्थिति ऐसी आ जाए कि भूखे मरने की बारी आ जाए, लेकिन नहीं भाई, हम छोटे मोटे काम तो नहीं करेंगे, करेंगे तो ऊंचाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसी सोच को आप क्या कहेंगे? तो सोनू जी ने देखो कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा है, और किस तरह आप लोगों के घर का झाड़ू पोछे करके अपने आप को खुशहाल रखते हैं। आपसे सभी खुश रहते हैं सोनू जी?
5: हाँ, मैं घर के जैसे ही सबके घर में जाती हूँ तो करती हूँ, वो लोग भी मुझे अच्छा रखते हैं।
4: बहुत बढ़िया, आप हंसमुखी भी है। और आपको ये झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा आप और क्या काम आता है आपको?
5: मुझे इसके अलावा थोड़ा बहुत कपड़े सिलना आता है।
4: क्या बात है, कपड़े सिल लेते हो? खुद के सिलते हो या बाहर लोगों के भी सिलते हो?
5: खुद का सिल लेती हूँ, बाहर लोग का भी थोड़ा बहुत सिलती हूँ, पर उतना टाइम नहीं बैठता है। उधर करके आके फिर घर का सब करना पड़ता है और फिर टाइम नहीं मिलता है, और थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आता है, अनुभव नहीं है ज्यादा सिलने का, इसलिए।
4: अच्छा, इसलिए सिलाई को व्यवसाय नहीं बनाया।
5: हाँ,
4: तो आप सिलाई थोड़ा सीख करके सिलाई के ऊपर ध्यान देते तो शायद सिलाई एक आपका व्यवसाय बन जाते।
5: हाँ जी,
4: तो आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं?
5: नहीं।
4: वो झाड़ू पोछे बर्तन से आपको समय नहीं मिला?
5: हाँ।
4: अगर मान लीजिए कभी समय मिला तो सीखेंगे आप?
5: हाँ, सीख सकते हैं।
4: अच्छा, तो थोड़े बहुत कपड़ों में क्या सिल लेते हैं आप?
5: जैसे सूट सलवार और ब्लाउज, ये सारे लेडीज का।
4: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इतना आप सिल लेते हैं।
5: हाँ जी।
4: हाँ, आप अपने घर में बच्चों के भी आप ही सिलते हैं?
5: हाँ।
4: तो एक ये आपके जो बाहर सिलाई देनी पड़ती है वो बच जाती है।
5: हाँ,
4: तो 5-6 हजार तो आप मंथली कमाई लेते हैं।
5: हाँ।
4: उसके अलावा भी आप सिलाई वगैरह करके भी ये पैसे की बचत कर लेते हैं।
5: हाँ जी।
4: और आप जहाँ पर भी जैसे काम करते हैं, तो मान लीजिए आपने कहा ना कि 8:30-9 बजे आप जाते हैं, 4-5 बजे आप घर पर आ जाते हैं, लेकिन कोई अगर आपको शाम के समय बुलाता है कि आज हमारे भाई गेस्ट आने वाले हैं, ये है वो है, तो फिर शाम के समय भी जाते हैं आप काम करने?
5: हाँ, इमरजेंसी होता है तो जाना पड़ता है, वो भी अपने परिवार ही जैसे है।
4: जी जी जी, जिनको जरूरत है तो फिर आप उस अनुसार चले जाते हैं।
5: हाँ जी।
4: अच्छा, तो हमारी जो बहनें सुन रही, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
5: मैं यही कहना चाहती हूँ सभी बहनों को और सभी माताओं को कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और इसमें कोई चीज़ का शर्म नहीं है, बस अपना घर चलाना, अपना अपनी सब परवरिश करनी है, सब बच्चों का अपना, तो ये सब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस अच्छे लगन से काम करते जाओ, और ये सब और उल्टा सुल्टा गलत काम से अच्छा तो झाड़ू पोछा करके अपने अच्छे से कमाए खाए, अच्छी जीवन बिताए।
4: क्या बात है सोनू जी, आपने 100% की बात कह दी कि उलट सुलट काम करने से तो अच्छा है कि झाड़ू पोछे बर्तन करके भी अपने घर को हम चला सकते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी। आज कहते हैं कि जो पढ़ाई नहीं करते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको हम हीन दृष्टि से देखते हैं, एक ऐसा आता है कि अरे इसके पास क्या है, इसको क्या आता है, लेकिन देखिए सोनू जी की बात से मतलब कितनी शिक्षा मिलती है कि उलट पुलट काम करने से अच्छा है मेहनत करो, मेहनत में कभी शर्माना नहीं है, कभी घबराना नहीं है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है, काम का सम्मान करे और स्वाभिमान का जीवन जिए, ये सोनू जी का जीवन का लक्ष्य है। सोनू जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
5: धन्यवाद।
4: तो यहीं पर सुनेंगे एक गीत, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। और आज का प्रश्न पूछना चाहूंगी कि देखिए, जैसे कि मैंने आप में से किसी एक को कुछ बात कही, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि आप किसी को बताना मत, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई चुप नहीं बैठेंगे, वो भी अपने अजीज को बताएंगे कि भाई ये बात है और किसी को बताना मत। इस तरह एक दूसरे को कहते कहते वो बात मतलब किस तरह उसका सार निकलता है, जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो?
2: बहुत अच्छे है जी, बस बिल्कुल बहुत अच्छे है
1: जी,
2: और अच्छी बातें भी हो रही है, और अच्छी बातें अभी अभी जो आपने बहन जी ने बताई बहुत अच्छा लगा जी, कि मेहनत करने में कोई मेह नहीं है
1: जी जी,
2: ऐसे उसके ऐसे संघर्ष करके कचरा पोता और करके जो उसका पूरा जीवन अच्छा किया, तो ऐसे बेटे मेहनत करने में कोई ऐसे नहीं। आज कई महिलाएं ऐसा काम कर रही हैं और खुद का गुजारा कर रही है, बच्चों को पाल रही है।
1: जी जी बिल्कुल,
2: तो सही बात है, बहुत अच्छा लगा। तो इसमें कोई ऐसी नहीं है कि ये काम नहीं कर सकते हम, समय के अनुसार करना चाहिए, करना पड़ता है
1: जी जी जी।
2: और कल एक कार्यक्रम आपका सुना था दीदी, हिंसा को रोके, वो भी बहुत अच्छा लगा कि जो महिला हो तो बस कुछ करना है, घर का काम कीजिए और कुछ दखल मत कीजिए, पैसे की कोई ऐसा नहीं देना, खुद कुछ नहीं करना बस, तो ये क्या है, न्याय है, न्याय है। तो एक कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा दीदी, और वो बहन जी ने कितना अच्छा करके एक वकील से मिलके उसका का वो किया, तो अच्छा लगा कल
1: जी जी। इसमें इसमें सुरेश भाई विशेष विशेष क्या सीखने को मिला इसमें, आपको क्या महसूस हुआ?
2: दीदी इसमें क्या है, मैं बताऊँ तो महिलाओं की भी पैसे की जरूरत पड़ती है
1: जी,
2: तो महिलाओं का भी खुद जब रखा है घर में, क्यों नहीं उसको हम लाए हैं, तो उसका भी ये भी हमारे घर का परिवार का हिस्सा है, तो इसके जितना हमारा हिस्सा है इतना इतना हिस्सा है उसका भी
1: जी जी,
2: तो उसको भी इसकी असर से पैसा देना चाहिए, कुछ लाना हो तो पैसा देना चाहिए, और नहीं लाना हो तो उसको खुद देना ही चाहिए, आपको कुछ लेना हो तो
1: पैसे
2: में भी आप खुद ले लेना
1: जी जी, बराबरी का हिस्सा है जी,
2: बराबर का हिस्सा है। और जो ऐसे न करके पति मारते और इसको पीट से कुछ ले देते तो ये न्याय नहीं है, इसके लिए तो कुछ सजा जरूर मिलनी चाहिए
1: जी तो, जी जी जी जी धन्यवाद। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे
2: जी, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है, कई लोग ऐसे होते हैं दीदी कि मैंने आपको कहा आपको कुछ मत बताना
1: जी,
2: पर खुद बोल ही जाते हैं, सबको बताते जाते हैं, तो ये तो खुद बताते हैं और हमको मना करते हैं
1: जी जी जी,
2: ऐसा तो होना नहीं चाहिए।
1: तो जैसे कि मेन बात का क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा, आपने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तो मैंने कहा सबसे पहले वो बात बनी रहती है या फिर कुछ और उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है, पूरा ही रूप बदल जाता है?
2: नहीं बनी रहती है, तो वो दूसरे को बताएगा ना, वो नहीं बताएगा दूसरे को, वो बताएगा
1: जी।
2: मैं बताऊँ तो कहीं हमारे गांव में एक इंसान है, एक लड़के है, तो कभी कभी हमारे पास आके तो बोलता है कि हम आपकी अच्छी बातें बताएंगे लेकिन आप किसी को मत बताना, लेकिन वो बात मुझे भी कही है और लोगों की भी ये बात की इसमें
1: जी जी।
2: तो ऐसा होता है, कई लोग ऐसा है, स्वभाव ऐसा होता है उसका कि हम कहेंगे आप दूसरे को मत बताए, लेकिन जो आपने बताया वो भी दूसरे को तो जरूर बताएगा, ऐसा तो है नहीं
1: जी जी जी,
2: अच्छी बात है दीदी, लगा
1: जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो आइए भाई, हमारे श्रोता बंधु का फोन आया था कि मकई का सीजन चल रहा है, भुट्टे का सीजन चल रहा है, तो दीदी कुछ भुट्टे का कुछ सिखाओ ना, भुट्टा मतलब मकई पाक सीखना चाहते हैं, तो सोचा कि चलो एक को क्यों, सभी को सिखा देते हैं मकई पाक। तो आशियाना के किचन में आइएगा पेन और डायरी लेकर के, सामग्री लिख लेना अच्छी बात है, ताकि आप कभी भी किसी भी समय बना करके खा सकते हो। तो आप भुट्टे ले लीजिए तीन, ठीक है, तीन भुट्टे लेने हैं, फिर आप लीजिए शक्कर स्वाद के अनुसार, इलायची पाउडर लेना है और मावा लीजिएगा, देखिए मात्रा मैं नहीं बता रही हूँ, मात्रा आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स की कतरन लेनी है, भुट्टे, शक्कर, इलायची पाउडर, मावा, ड्राई फ्रूट्स की कतरन। बनाने का तरीका अब मैं आपको सिखा रही हूँ कि भुट्टे को आप छिलके निकाल दीजिए और इसको भुट्टे को आप या तो छिन्नी में से कद्दूकस करिए या फिर इसके दाने निकाल करके आप मिक्सर में थोड़ा क्रश करिए, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके छिलके आप फेंक देना, छिलके थोड़े से इसमें साफ करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप कद्दूकस करेंगे तो छिलके ऊपर रहेंगे और जो इसका कन है वो ही नीचे गिरेगा। मिक्सर में पीसेंगे तो फिर वो छिलके भी साथ में रहेंगे, तो छिलके आपको निकालना है और जो कन होते हैं ना उसको अब आप घी भी लेना है, घी डाल करके सिकाई करिए, मध्यम आंच पर अच्छी सी सिकाई करनी है। सिकाई करने के बाद अब आप चाशनी बनाइए। मावा को भी एक कढ़ाई में सेक दीजिए, थोड़ा सा फ्राई कर दीजिए, भूनिए, ठीक है। अब आप चाशनी बनानी है आपको दो तार की, थोड़ी सी कड़क चाहिए इसमें, ठीक है। दो तार की चाशनी बनाने के बाद अब आप चाशनी में से देखो कच्चा दूध डाल करके मेल तो आपको निकालना ही है, फिर चाशनी बन जाती है। तो चाशनी में आप ये मकई जो हमने सेक करके रख रखे हैं इसके कन को ये डालिएगा आप इसमें, और मावा भी डाल दीजिए और अच्छी तरह हिलाइए, अच्छी तरह हिला करके इलायची पाउडर भी डाल दीजिए, ठीक है। फिर से हिलाना है, गैस बंद करिए और एक थाली में घी लगा करके, चिकनाई लगा करके इस खीरे को उसमें उड़ेलिए, उड़ेल करके अच्छी तरह चारों तरफ सेट कर लीजिए। और जैसे ही ये थोड़े से जमने लगे तो मतलब पहले उड़ेल करके आपको ड्राई फ्रूट्स की कतरन ऊपर सजा देनी है, ठीक है, चारों तरफ बुरक देने हैं। उसके बाद जब ये आपको लगे हल्के हल्के हाथों से आप ड्राई फ्रूट्स की कतरन को दबा भी दीजिए ताकि वो चिपक जाएगी। फिर आप बस ये थोड़ी सी जमने लगे आप चाकू से जो भी साइज आप पसंद करते हो बर्फी के रूप में काट लीजिए। तो ये बन गया मकई पाक। फिर से दोहरा रही हूँ विधि को कि आप मकई के या तो दाने निकाल करके मिक्सर में क्रश करिए, बहुत बारीक पाउडर नहीं करना है, हल्का सा मोटा होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको इस तरह क्रश करना है, भले आप कद्दूकस करिए डायरेक्ट ही छीनी से मकई को लेकर के, तो छिलके ऊपर रह जाएंगे और अंदर वो खाली कान ही गिरेंगे। अगर मिक्सर में पीसते हैं तो फिर छिलके आपको झाटक करके साफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कढ़ाई रखिए गैस पर, गैस चालू करिए, घी डालिए और घी में इस कन को अच्छी तरह आप सेकिए, मध्यम आंच पर अच्छी तरह सेकना है। सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सोनी सोनी अच्छी खुशबू आने लगे तब तक आपको सेकते रहना है। फिर सिक जाए उसके बाद थोड़ा सा मावा को भी आप सेक लीजिए और फिर आप दो तार की चाशनी बनाइए। चाशनी बन गई हो तो चाशनी में आप ये कन डाल दीजिए, मावा डाल दीजिए, इलायची पाउडर डाल दीजिए और अच्छी तरह हिलाइए। हिलाने के बाद इसको आप एक चिकनाई लगा करके थाली में उड़ेलिए, उड़ेलने के बाद अच्छी तरह सेट कर दीजिए और ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स की कतरन को डाल करके हल्के हल्के हाथों से दबा दीजिए ताकि वो चिपक जाएगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये गाढ़ा लगे कि भाई हमारे ये जम रहे हैं मकई पाक थोड़ा सा जम रहा है तो आप चाकू से काट दीजिए, लेकिन अच्छी तरह फिट हो जाए फिर आप चाकू से काटोगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा जमने लगे और चाकू अंदर दबने लगे ऐसे आप जो भी साइज आपको पसंद हो बर्फी की तरह काट दीजिएगा। तो ये बन गया मकई पाक। आज बस मकई पाक ही बनाएंगे, मकई की बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आज वृद्ध दिवस है तो उस पर भी बात करना ज़रूरी है। तो मकई पाक के साथ आपने और भी कुछ बनाया हो, सब्जी पूरी, भाई अभी तो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें भी आप बना सकते हो। मकई का झाझरा आपको कल सिखाएंगे, कल नहीं तो सोमवार को सिखाएंगे, कल तो शनिवार है, ठीक है। तो जो भी आपने सब्जी पूरी जो भी बनाया है सब एक स्वच्छ थाली में सब कुछ रखिए, तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित मेहमानों सहित आनंद ले सकते हो मकई पाक का। और प्रश्न का जवाब आपका अभी मिला नहीं है कि मान लीजिए मैंने आपसे कान में कुछ बात कही कि भाई किसी को बताना नहीं, आपने उस बात को किस तरह समझा वो मुझे नहीं पता, आपने दूसरे व्यक्ति को बता दी, उसको भी यही कहा आपने कि भाई बताना मत, अब उन्होंने किस तरह उस बात को ली समझी, उनको भी पता नहीं, उन्होंने तीसरे को, फिर इस तरह वाया वाया बात फैल जाती है, तो उसका सार क्या रहता है फिर, ये जवाब आपको देना है। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए फिर से सुनते एक गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधु।

0: Hello, I'm Alexander, diplomat from Russia, and you are listening FM Radio Madubar. Keep listening and keep smiling. You can also tune radiomadyuban.in on internet, even Russia, even everywhere.
1: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम था आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, बहुत ही सुंदर विचार आपको दिया है। तो सोनू जी की बात भी आपने सुनी है कि देखिए, झाड़ू पोछा बर्तन कोई काम छोटा नहीं होता है, काम काम ही होता है। स्वाभिमान से जीना ये सबसे बड़ी बात होती है, तो स्वाभिमान से सभी को जीना है, न कि किसी पर डिपेंड रहना है। आपको रेसिपी भी अच्छी सिखाई है, मकई पाक ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न था कि भाई, मैंने आपको कान में कुछ बात कही कि भाई किसी को बताना नहीं, आपने दूसरे को बताई कि किसी को बताना नहीं, तीसरे को बताए बता दी, तीसरे व्यक्ति को पता चला, तो देखिए वो बात तो छोटी सी थी कि ये बात है, लेकिन उसकी रूपरेखा ही बदल जाती है। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जब वापस मेरे तक आती है, तब सुनने को मिलता है कि अरे मैंने तो ये बात कही नहीं, पूरी रूपरेखा बदल गई। इसलिए बातों को समा करके रखिएगा, बातों को समाना सीखिएगा। किसी के सामने कहना नहीं है कि भाई जब मैं आपको कह रही हूं कि ये बात मैंने आपको कही है, किसी को बताना नहीं तो नहीं बताना है, क्योंकि उसको पाया ही खत्म हो जाता है। मेन बात तो खत्म हो जाती है, बात का बतंगड़ हो जाता है, सार नहीं वो विस्तार हो जाता है। इतनी सी बात इतनी फैल जाती है कि लोग न जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं, फिर किन किन तरह की बातें हो जाती उस व्यक्ति के प्रति। इसलिए ये यही संदेश देता है ये प्रश्न कि हमें बातों को फैलाना नहीं है। ठीक है, तो जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़े हैं, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई जोटाना से, रामा भाई वासना से। आप सभी ने विषय में चर्चा की है और आपने जवाब देने की भी कोशिश की है, लेकिन मेन बात यही है कि बात जो हम करते हैं वो पूरी रूपरेखा उसकी बदल जाती है और बहुत सारा विस्तार सामने आ जाता है, जबकि बात हकीकत में एक छोटी सी होती है। तो आप सभी जुड़े हैं, इसके लिए ढेर सारी तालियां। और अब मैं आपको माता पिता पर ही एक प्यारा सा भाव भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे तो कल जरूर जुड़िएगा और आज मुझे अनुमति दीजिएगा। तो राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, खुदा हाफिज। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। माता पिता सदगुरु, माता पिता गुरुदेव, मिलते ना बारंबार है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबते मंझधार हैं, जिसने करी सेवा वो हो जाते भव से पार है। मात पिता गुरुदेव को वंदन बारंबार है, वंदन बारंबार है। लोक और पर लोक सुधर गया, लोक और पर लोक सुधर गया,

रे, लूण मरच सू रोटिया खादी, लूण मरच सू रोटिया खादी, पायो दूध मलाई को, माँ बाप की सेवा कर ले, मत बन दास लुगाई को, मत बन दास लुगाई को। मोटो हुओ जद आस बंधी रे, सारा ही दुख मिट जा।

दिल्ली में तो करता न काम सगाई को, माँ बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को, मत बन दास लुगाई को। खरी क्यों तो

0: उषा के वे सुन लो सताओ, लजा जो दूध मत माई को, माँ बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को, मत बन दास लुगाई को, लोक और पर लोक सुधर गया मत कर काम बुराई को, माँ बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को, मत बन दास लुगाई को।
1: समय रिसागे उदय सिंगी मोटियार होवण दागे, वारी रजपूती मरोड़ और सांगारी शक्ति उदयरे बाजुओं में देखण दागे, उठीने मेवाड़ री प्रजा सामंत और जागीरदार बनवीर रे आतंक सु घणी धापियोड़ी ही दुखी हुई। छेवट मेवाड़ और मारवाड़ रा कई मानिता सरदार भेड़ा होयर गुप्त मंत्रणा करता हा। उन समय उन्होंने ठा पड़ी कि मेवाड़ी सूरज उदय सिंह जिंदा है। पन्ना रे बलिदान री बाता घर घर होवण लागी। जद मेवाड़ रा सरदार ने पतो लागो कि उदय सिंह आशा शाहरे घरे है, तद सरदार चूंडावत, सरदार महीदास, केलवारा सामंत जग सिंह, बागोर सरदार सांगा, सोनगढ़ रा अखय सिंह और सांचोर रा सरदार पृथ्वीराज भेड़ा होयर कुंभल मेर गया। सगड़ा मिलुर उदय सिंह रो राज तिलक करियो। इन अवसर माथे सोनगढ़ रा शासक अखय सिंह आपरी बेटी रो ब्याह उदय सिंह जी साथे करियो।

0: गौरवशाली गुजरी उदय सिंह रखवाड़ माँ ममतारी मूर्ति तू शक्ति प्रणपाल तू शक्ति प्रणपाल बलिदानी मायड़ थारो जीवन गीता सार पन्ना धाय पड़के है सूरज रे उणियार सूरज रे उणियार।
1: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
2: रेडियो मधुबन।
3: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट स्टेशन रेडियो 90.4 एफएम।
4: तो ये है आज का मेरा ख्याल। जी हाँ, मेरा ख्याल उन सब के लिए जो दौड़े जा रहे हैं जिंदगी में बेवजह। लेकिन जिंदगी की दौड़ में दौड़कर करना क्या है, अगर यही है जीना दोस्तों, तो फिर मरना क्या है। मैं हूँ अतुल पुंडीर, इस कार्यक्रम का सूत्रधार। कभी सोचा है आपने, हमारी दिनचर्या में ऑफिस घर, घर ऑफिस, इसके अलावा भी कुछ है। हर पल हर लम्हा एक नया तजुर्बा, कभी खुशी कभी गम, लेकिन यही तो वो छोटे छोटे अनगिनत तजुर्बे हैं जो बनाते हैं हम सबकी जिंदगी। हम सब इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में अगर कुछ लम्हे निकालकर कुछ ऐसा करें जिससे कि किसी के जीवन को छू सके तो क्या बुरा है। जैसे किसी अंधे का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करा देना, किसी अनपढ़ बच्चे को शिक्षा की राह दिखा देना, या कोई दान देना, शायद कोई पुण्य कमाने के लिए। लेकिन एक दान और भी है जिसका कोई तोल नहीं, और मेरे ख्याल से वो है महादान, जीवन दान। जी हाँ, रक्त दान। रक्त जिसका किसी भी तरह से उत्पादन नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ मानव शरीर में ही बनता है, पैदा होता है। ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक इंसान ही दूसरे इंसान को दे सकता है। रक्तदान से एक इंसान किसी को नया जीवन दे सकता है। पहले अगर सोचा नहीं तो दोस्तों अब सोचिए, हमारा आज का ये एक दान कल बना सकता है किसी की जिंदगी। कैसे? अगर फिर भी नहीं समझे दोस्तों, तो आइए अपनी जिंदगी से कुछ पल चुरा के चलिए मेरे साथ झांकने चार दोस्तों की जिंदगी में। ये बात है चार दोस्तों की जो अपने अपने घरों से दूर देहरादून जा बसे थे ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने सपनों के घरौंदों को हकीकत में ढाल सके। जहाँ इनकी रोजमर्रा की जिंदगी बीतती थी अपने अपने कामों में, वहीं ये सारे अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ लम्हे चुरा देते थे एक दूसरे को, एक दूसरे का साथ निभा, सबकी परेशानियां और दुख बांटकर उसे खुशी में बदलते थे। तो आइए मिलाता हूँ मैं आपको सबसे और बताता हूँ कुछ खास बातें उनके बारे में।
5: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तु ही लोक उजागर, रामदूत अदलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत।
4: ये है श्रीमान अभय। जितनी तो इन्होंने क्लासें पास नहीं करी उससे ज्यादा ग्रंथों को याद कर चुके हैं। माशे रहने वाले एक छोटे से गांव अगौड़ा के हैं, पर लगता है जैसे अरमान तो आसमान छूने का है। और हाँ, प्यार से उन्हें मुनि देव भी कहते हैं।
6: हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, डिंग डंग डिंग डंग।
4: इस कहानी की दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट पात्र, नाम अंजलि, पता मसूरी, और काम कुछ खास नहीं, बस सबकी जरूरतमंद चीजों का ख्याल रखना, और प्यार से इन्हें सब परी कहते हैं। लेकिन एक खास बात, ये मैडम प्रवचन बहुत देती हैं अपने ज्ञान के पिटारे से।
7: पढ़ना लिखना सब ठीक है, पर बस कोई मुझसे बाकी काम न कराए।
4: मयूरी सबसे सुस्त मगर सबकी जान है, और इस कहानी की तीसरी पात्र, भाई सबकी जान इसलिए क्योंकि यही तो है वो जो सबका होमवर्क, प्रोजेक्ट और सारा काम वक्त पे, वो भी बेस्ट तरीके से करती है। पहाड़ों की ठंडी हवाओं के साथ साथ वहां के तेज मसाले भी कूट कूट कर बसे हैं इसकी रगों में, यानी जितनी शांत उतनी ही खतरनाक भी। प्यार से इन्हें इन्हें सब मयूरी ही बुलाते हैं। तो ये है इस कहानी के तीन पात्र। अब आई बारी चौथे की, यानी बादल सिंह राणा। सबसे शरारती मगर सबका यार, हमेशा बिजी रहता है। बिजी कैरम खेलने में या कभी अपनी ख्याली दुनिया से लफ्ज बुन कविता लिखने में। इन सब यानी चारों दोस्तों में एक चीज कॉमन है, और वो है इनकी सोच अपने सपने पूरे करने की। तो चलें देखें क्या हो रहा है इनकी जिंदगी में। क्यों ना शुरू करें बादल से और देखें कि बादल अपने ख्यालों की पतंग कहाँ उड़ा के ले जा रहा है। घर की छत पर बैठकर अपने ख्यालों में खोया, अपने जज्बातों को अल्फाजों में पिरो रहा है।
5: हर सवेरे नया ख्वाब सजाता आदमी, शाम ढलने से डरता क्यों है?
3: बादल ले तो यहाँ छत पर बैठा धूप के मजे ले रहा है, और वहाँ मैंने पूरा का पूरा घर छान मारा, इधर उधर कर लिया। हेलो, मैं तुझसे बात कर रही हूँ बाबा।
5: सुनना परी, अरे ये सुन।
3: क्या तेरी कोई नई कविता?
5: जी हाँ। अच्छा सुन, हर सवेरे नया ख्वाब सजाता आदमी, शाम ढलने से डरता क्यों है? खुशियों और प्यार का पैगाम फैलाने जो निकले थे साथ, आज मंजिल तक पहुँच दिखते यूँ अकेले क्यों है? हर मोड़ पर साथ चले जो हंसते गाते, आज जिंदगी से अकेले लड़ रहे क्यों हैं? आखिर क्यों?
3: क्यों, क्या बात है कवियों के सरताज, कविता तो तुम अच्छी लिखते हो, पर अगर इन सारी पहेलियों के, इन सारे क्यों के जवाब चाहते हो तो यहाँ बैठ के ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। बाहर निकलकर असल जिंदगी का सामना करो। ख्यालों में डूबे हो हुजूर, पता भी है दुनिया में क्या हो रहा है? बगल वाले घर में कौन रहता है? कितने ही लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं।
5: अच्छा लेकिन तुम, अरे पर मेरी बात तो सुन, ये तो सिर्फ मेरी सोच है जो मैंने कविता के रूप में लिखी थी, तू ना बस तुझे मौका चाहिए प्रवचन देने का।
3: ऐसी बात नहीं है रे बाबा। अच्छा एक बात बता, अपनी सोच को तुमने कविता के रूप में अभिव्यक्त कर दिया, लेकिन अगर सब लोग सिर्फ सोचते ही रहेंगे और उस पर कोई कदम उठाकर अमल नहीं करेंगे तो क्या फायदा?
5: स्मार्ट थॉट। हाँ चल, लेकिन मैंने अपना पहला कदम तो उठा लिया, कुछ सोचकर अपनी विचारधारा को इन मोती स्वरूप अक्षरों में उतार कर।
3: तुम भी ना, पढ़ना लिखना एक तरफ बादल, लेकिन अगर जानकारी होते हुए भी हम अपने लिए या दूसरों के लिए कुछ ना कर सके तो क्या फायदा? अपनी जिंदगी को मायना दो, किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लाके।
5: हाँ ओके ओके ठीक है, लेकिन कैसे फिलोसोफर?
3: फिर सवाल, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाओ, एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति, या रक्तदान कर किसी और, शायद किसी अपने की जिंदगी बचाने के प्रति, या
5: ओके ओके बस फिर शुरू होगी तेरी फिलॉसफी, तेरे प्रवचन ना। अच्छा चल बता, आज कहाँ से आ रही है?
3: मैं वो बगल वाली कमला भाभी है ना, वो गर्भ से हैं, तो उनके साथ अस्पताल गई थी डॉक्टर से जांच करवाने और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जानकारी लेने। पता है ऐसे वक्त में कई बार खून की कमी आ जाती है शरीर में, तो जरूरत पड़ने पर कई बार रक्त भी चढ़ाना पड़ता है। हाँ पर ये जरूर सीखा आज मैंने कि रक्तदान कितना जरूरी है। सोचती हूँ
7: तुम यहाँ गप्पे शप्पे मार रहे हो, घड़ी नहीं देखी क्या? कॉलेज जाने का वक्त हो गया है, चलो बाबा देर हो रही है।
5: ये लो आ गई हमारी नूरी मयूरी, आ जा भाई तू भी शामिल हो जा। फिर खुल गया ज्ञान का पिटारा और मैं फंस गया बेचारा।
7: अरे फंसे हुए बेचारे, कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, एंड प्लीज कॉलेज जाने से पहले थोड़ी थोड़ी चाय पी सकते हैं? लेकिन चाय बनाएगा कौन?
3: ये है हमारी सुस्त मस्त आलसी मयूरी।
5: एक गरम चाय की प्याली हो और तुम में से कौन मुझे पिलाने वाली हो? यार देवियों इतना तो उपकार कर लो मुझ पर, कवि की प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए एक कप चाय तो पिला दो।
3: ओके ओके समझ

0: दोनों के शुरू होते ही आज तो मैंने भी तेरी तरह भगवान से कहा, हे भगवान, लगता है आज की रात की सुबह ही नहीं।
1: तुम्हें सिर्फ टॉपिक लग रहा है, तुम लोग भी ना हर चीज मजाक में उड़ा देते हो।
2: सच, कभी तो जिंदगी की गंभीरता को भी समझा करो।
1: हमारा एक छोटा सा कदम या प्रयास अगर किसी को खुशी दे सकता है, किसी बहन भाई माँ के आंसू पोंछ सकता है, तो हर्जी क्या है।
3: परी तेरे प्रवचन।
2: पर मैं तो सिर्फ, छोड़ ना परी, चल ये सोचते हैं कॉलेज एनुअल फंक्शन पर हम रक्तदान पर प्ले कैसे करेंगे।
1: हे क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि उसमें कॉलेज के ही बच्चे एक नया दौर लाते हैं, पहला कदम उठाते हैं इस नए काम के लिए।
0: हेलो परी, बादलों पे घूमती आसमान में उड़ती, अब तुमने अपने इस मिशन रक्तदान में सारे कॉलेज को ही शामिल कर लिया।
4: भाई मुझे तो चिंता के मारे भूख लग रही है। अरे यार छोटू, जरा चार चाय पकौड़े लाना यार। हाँ तो परी, क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे बीच।
1: अभे मयूरी का कहना है कि इस बार हम कॉलेज एनुअल फंक्शन में हिस्सा लें, रक्तदान पर एक प्ले करें।
4: रक्तदान पर क्यों? कॉलेज में कोई ग्लोबल वार्मिंग पे प्ले कर रहा है, कोई टेररिज्म पे, कोई पोल्यूशन पे, और कोई इंडियन कल्चर पे, और तुम लोग हो जो रक्तदान के पीछे पड़े हो।
0: एग्जैक्टली।
4: वैसे एक बात बताओ, मैंने सुना है रक्तदान देने के बाद कमजोरी आ जाती है और हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, और फिर क्या ये सुरक्षित होगा?
1: ये सब भ्रम है, यानी अभय अज्ञानता की निशानी। रक्तदान के दौरान या उसके बाद किसी तरह की बेचैनी या कमजोरी नहीं होती।
2: बिल्कुल, रक्तदान के थोड़ी देर बाद ही आप अपने सामान्य कामकाज कर सकते हैं।
4: पर कैसे? रक्तदान करने के बाद तो हमारे शरीर का खून कम हो जाएगा ना?
1: फिर वही, ऐसे थोड़ी होता है। एक बार में रक्तदाता के शरीर से सिर्फ 350 मिलीलीटर खून लिया जाता है, यानी कुल रक्त का करीब 10वां भाग, और 24 घंटे में ही शरीर रक्त की पूर्ति कर लेता है।
0: लेकिन फिर इसमें वक्त भी तो बहुत लगता होगा ना?
1: हाँ, सिर्फ कुछ मिनट। अरे बाबा, कुछ वक्त नहीं लगता। एक यूनिट रक्तदान में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं।
4: ओके ओके, पर ये क्या सुरक्षित होता है? मेरा मतलब है, अगर हम में से किसी को रोग या बीमारी हो गई तो?
2: तब तो तुम अपने मंत्र और ग्रंथ शुरू कर देना। अच्छा मजाक नहीं, अभय, रक्तदान के समय HIV समेत किसी तरह के संक्रमण का कोई खतरा नहीं रहता, क्योंकि इसमें प्रयोग होने वाले सभी उपकरण सुरक्षित होते हैं।
1: उल्टा इससे रक्तदान करने वाले को फायदा होता है। अब इससे पहले कि तुम पूछो कैसे, मैं तुमको ये बता दूं कि रक्तदाता को अपने ब्लड ग्रुप के बारे में तो पता चलता ही है, साथ ही रक्तदाता की हेल्थ स्क्रीनिंग भी होती है।
0: यानी ये है रक्तदाता के लिए फायदेमंद भी।
4: ओके, समझ गया। ठीक है परी, तुम और मयूरी इस प्ले की स्क्रिप्ट लिखो, और फिलहाल मैं तो चला।
2: पर कहाँ?
4: अरे यार, अपनी बाइक रेसिंग।
0: ये तो गया, पर खैर ये बताओ कि तुम लोग को तो रक्तदान की जानकारी मिल गई, लेकिन जन जन तक ये बात कैसे पहुँचे?
5: Hey guys, एक मिनट, एक मिनट, रवि का फोन आ रहा है।
0: हेलो, हाँ रवि, क्या हुआ? अरे तू इतना घबराया हुआ क्यों है? सब ठीक है ना? क्या, कब, कैसे, पर इस वक्त तू कहाँ है? हाँ मैं हाँ हम सब यही हैं। हाँ मैं, हाँ हम सब अभी पहुँच रहे हैं। परी, मयूरी, अभी का एक्सीडेंट हो गया है।
1: एक्सीडेंट? पर कैसे, कहाँ है वो?
0: अरे वो रवि ने 108 पर फोन कर दिया है और वो उसे हॉस्पिटल ले गए हैं।
1: कितनी बार अभय को समझाया कि बाइक रेसिंग वेसिंग ना किया करे, लेकिन कोई समझे तो ना। पता नहीं कैसा होगा वो।
0: मैं काम करता हूँ, मैं बाइक लेके आगे जाता हूँ, तब तक तुम लोग पहुँचो।
6: आज के युवाओं, सावधानी ही समझदारी है, समझदारी से काम लो और ऐसी दुर्घटनाओं से बचो। तो देखें अभय कैसा है।
0: डॉक्टर सब ठीक तो है ना? मेरा दोस्त अभय कैसा है?
7: वो ठीक हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं।
0: पर क्या डॉक्टर?
7: एक्सीडेंट के कारण शरीर से खून बहुत ज्यादा बह गया है, इसलिए उसे खून की जरूरत है। लेकिन इस वक्त हमारे पास यहाँ उसके ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव का खून नहीं है। आप जाके किसी भी लाइसेंस युक्त सरकारी ब्लड बैंक से खून ले आइए, लेकिन जरा जल्दी।
0: ठीक है डॉक्टर, लेकिन तब तक आप मेरा ब्लड ग्रुप जाँचिए, शायद मेरा मैच कर जाए।
7: हाँ क्यों नहीं, मेरे साथ आओ।
1: बादल, क्या हुआ, अभी कैसा है?
0: वो खतरे से बाहर है, पर उसे खून की जरूरत है। मैं अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाने जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग एक काम करो कि आसपास के ब्लड बैंक में पता करो कि AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप का खून है या नहीं।
2: मैं रवि के साथ जाती हूँ। बादल, तुम और परी यही रहो, अभय का ख्याल रखो।
1: मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा।
0: और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह किसी अपने की जिंदगी बचाने के लिए खून की तलाश करनी पड़ेगी।
1: हाँ बादल, हम रक्तदान का महत्व नहीं समझते,
7: जानते हो, किसी भी लाइसेंस युक्त सरकारी ब्लड बैंक में अपनी इच्छा से रक्तदान करने वालों को रक्तदान करने के तुरंत बाद रक्तदाता ऋण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और वो रक्तदान की तिथि से 6 महीने तक जरूरत पड़ने पर अपने या अपने परिवार वालों के लिए राज्य के किसी भी ब्लड बैंक से 1 यूनिट रक्त निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, लेकिन हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि खून की बोतल या थैली पर HIV मुक्त मोहर जरूर देखें।
0: बस परी, एक बार अभी ठीक हो जाए तो मैं भी ये नेक काम जरूर करूँगा। परी, तुम मुझे सुबह से समझा रही थी और मैं रक्तदान को एक महज टॉपिक समझकर मजाक में उड़ा रहा था, पर तुमने सच ही कहा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता पर अपनी सोच पर अमल करना भी जरूरी होता है।
7: हाँ बादल, सच। जब कभी इंसान पर आप बीती है ना, तभी वो किसी भी बात की गंभीरता को समझता है।
0: जैसे आज मैं ये बात समझ रहा हूँ। क्यों परी, क्यों नहीं समझते हम कि अगर वक्त पर हम समझदारी से कदम उठाएं, तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे ही काम आता है। अब मुझी को देखो, सुबह से मैं बहाने बना रहा था कि रक्तदान करने से मैं कमजोर हो जाऊंगा या मेरे अंदर खून की कमी आ जाएगी। कितने ही बहाने बना रहा था मैं।
7: कोई बात नहीं बादल, वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। हम सब भगवान से दुआ करेंगे और सब ठीक हो जाएगा।
2: बादल, परी, हमने सभी आसपास के ब्लड बैंक में पता किया, पर इस वक्त अभय के ब्लड ग्रुप से मैच करता खून AB नेगेटिव कहीं नहीं मिला।
0: डॉक्टर, किसी भी आसपास के ब्लड बैंक में AB नेगेटिव खून नहीं है।
7: बादल का खून अभय के खून से मैच नहीं कर रहा है। जल्दी करिए, आपको कहीं ना कहीं से AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप अरेंज करना पड़ेगा।
0: मयूरी, सच, वक्त पड़ने पर अगर ब्लड ग्रुप से मैच करता खून ना मिले तो कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है, किसी की जान भी जा सकती है शायद।
6: क्या सोच रहे हैं दोस्तों, कभी इससे पहले आपने ये सोचा है कि थोड़ा सा, बस थोड़ा सा वक्त अपनी जिंदगी से निकालकर एक छोटा सा कदम उठाकर यानी रक्तदान करके हम किसी को नई जिंदगी दे सकते हैं, किसी अजनबी या शायद किसी अपने की जान बचा सकते हैं। करना है बस इतना कि किसी भी लाइसेंस युक्त सरकारी ब्लड बैंक या अधिकृत रक्तदान शिविर में जाकर आपको रक्तदान करना है। सच, जब आप ये नेक कदम उठाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो खुशी किसी की जीवन की ज्योत को जलाकर मिलती है वो बयां नहीं की जा सकती। तो भाई, देर किस बात की, आखिर कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बादल, परी, मयूरी और अभय ने भी तो यही किया। अभय के ठीक हो जाने पर उन्होंने कॉलेज के एनुअल फंक्शन पर रक्तदान पर एक प्ले किया और रक्तदान के बारे में कॉलेज में जागरूकता बढ़ाई, बल्कि साथ मिलकर एक क्लब भी शुरू किया जिसका लक्ष्य है समाज में, खासकर युवाओं में, HIV/AIDS और रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यही नहीं, इन लोगों के द्वारा इस क्लब के जरिए युवाओं को HIV/AIDS से पीड़ित लोगों की मदद करने के प्रति और उनके साथ भेदभाव ना हो उसके प्रति प्रेरित भी किया जाता है।
7: मेरे प्यारे दोस्तों, शायद आपको ये फिर से प्रवचन लगे, लेकिन फिर भी आपसे ये कहना चाहूंगी कि खुशियों के रंग ही बनाते हैं जिंदगी, पर खुशियां बनती हैं प्यार से, अपनेपन से, अपनों से। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर हम मिलते जरूर हैं। वो कहते हैं ना, दुनिया गोल है, हर अजनबी बन जाता है अपना, बस जरूरत है तो उनकी ओर कदम उठाने की, जिंदगी को जिंदगी से जोड़ने की। और शायद अपने जीवन के इस पहलू से यही सीखा हमने कि अगर हम चाहें तो दे सकते हैं हम जन नए रिश्तों को, नई जिंदगी को रक्तदान करके।
4: जी हाँ, सोचा आपने, क्या सोचा आपने कि अभी को कुछ हो जाएगा? भाई, मेरा मतलब हिम्मत की हमेशा ही जीत होती है। कैसे जैसे बादल, मयूरी, अपरी ने हिम्मत कर अपनी सूझबूझ से बचाई मेरी जान, और न केवल मेरी पर मुझ जैसे काफी लोगों की जान बचाई। तो आओ दोस्तों, प्रण करते हैं कि इनकी तरह हम सब भी रक्तदान जैसे महादान को अपनाएंगे और देंगे जिंदगी को जिंदगी।
0: भाई, जिंदगी को जिंदगी रहने दे, जिंदगी ना बना, वरना जिंदगी तुझे जीने नहीं देगी और जिंदगी जीने का नाम नहीं, क्योंकि वैसे भी मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तमन्नाएं दिल में ख्वाहिशें अधूरी न रह जाए, इल्मों का शाख जब बड़ा होगा, दीदार होगा तब दुआओं का भी, जब लहू भी खुशियों के रंग बिखेरेगा। सोचो, समझो, जानो, मानो और बिना कहे सब कदम उठाओ और बनाओ इस जहां को खूबसूरत, क्योंकि विश्वास है हमें आप लोगों पे कि कल किसी भी मोड़ पर जिंदगी के आप ना केवल हमारा बल्कि हमारे जैसे हजारों लोगों का साथ निभाकर करेंगे रक्तदान यानी जीवनदान, और बिखेरेंगे किलकारियां घरों में या देंगे खुशी किसी माँ, बहन, बहू, बेटी या फिर किसी भी रिश्ते को, देंगे जीवन। और अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि ये मयूरी कहाँ है, तो दोस्तों, क्या आप हमारा होमवर्क करोगे? नहीं ना,
6: तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप भी इस नेक काम में भाग लेकर बनेंगे हिस्सा। चलिए शुभ काम में देर कैसी, आओ मिलके दें किसी को जिंदगी।
1: रक्त दान जीवन का दान, रक्त की ये बूंद ही कल बचाएगी किसी।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं आज 18 मई की बात। आज विशेष उत्तर फाल्गुनी है और एचडी देवगौड़ा, एस जगन्नाथ, शाहू, थवरचंद गहलोत, सुधीर रंजन मजुमदार, फगन सिंह कुलस्ते, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही अनिल माधव दुबे, पंचनन महेश्वरी, जय गुरुदेव, रीमा लागू, कृष्णा जोइस, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में कुछ खास लोगों की बातें आपसे शेयर करूंगा और साथ ही साथ चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा शुभ विचार के साथ। और आशा करूंगा कि आप सभी को सुंदर विचार जब सुनाते हैं तो अच्छा लगता है और हम सभी को भी एक आत्ममंथन करने का मौका मिल जाता है। तो आइए शुभ विचार से कार्यक्रम करते हैं। सूरज निकलने का वक्त हो गया है, फूल खिलने का वक्त हो गया है, मीठी नींद से जागो मेरे दोस्त, क्योंकि सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त हो गया है। तो बड़ी खूबसूरत विचार के साथ मैं चाहूँगा कि आप इस विचारों को बार बार अपने मन में लाइए और ऐसे सुंदर विचार बार बार करते रहिए, अपने जीवन को सुंदर बनाते जाएं। तो आइए आपकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक गीत अभी कार्यक्रम की शुरुआत में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपके जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं आज के दिन विशेष की बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और आइए बात करते हैं देवगौड़ा HD के बारे में। और तकनीकी रूप से भारत का 11वां प्रधानमंत्री माना जाता है इन्हें, और इनका पूरा नाम हरदन हल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा है। और ये उस समय प्रधानमंत्री बने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को 13 दिन सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वो बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं थे। और ये संयुक्त मोर्चा सरकार के नेते के रूप में प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। 1 जून 1996 को शपथ ग्रहण की, लेकिन ये भी ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहे। लगभग 10 महीने तक प्रधानमंत्री रहने के बाद इन्हें भी अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। तो इस तरह से आइए इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। अजनी देवगौड़ा का जन्म कर्नाटक के हरदन हल्ली ग्राम के हसन तमुका नाम का एक ग्राम में 18 मई 1933 को हुआ। एक खाते पीते कृषक परिवार से संबंधित थे और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेकर राजनीति का सफर शुरू किया। इनके पिता का नाम श्री दौड़े गौड़ा था और माता का नाम देवम्मा था। इनकी पत्नी का नाम चेन्नम्मा है और इनके 4 पुत्र और 2 पुत्रियाँ हैं। और इस तरह से एक पुत्र और एक विधायक भी है और दूसरा पुत्र सांसद भी है। तो इस तरह से 1962 तक वे सदस्य रहे। और देवगौड़ा एक मध्यम परिवार की पृष्ठभूमि से राजनीति में आए, इस कारण भी किसानों के कठोर परिश्रम का मूल्य समझते थे। और युवा देवगौड़ा ने गरीब किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए उत्थान के लिए राजनीतिक आवाज बुलंद की थी। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें आज के इस विशेष राजनेता देवगौड़ा के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इंफॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं अभी विशेष थवरचंद गहलोत के बारे में। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री के रूप में कार्य करते हैं और मध्य प्रदेश के शाहजहां से निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए साहित्यिक हित विद्यायानी के लिए लेख लिखकर उसमें योगदान दिया इन्होंने, और मध्य प्रदेश की विधानसभा द्वारा प्रकाशित एक त्रैमासिक पत्रिका विदायनी है, बाला समाज संगठन के माध्यम से तवरचंद गहलोत विशेष इस वर्ग के लिए काम करते हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। राजनीति के साथ साथ समाज सेवा से जोड़कर साहित्य जगत में उन्होंने काफ़ी काम किया और 18 मई 1948 को आज ही के दिन रूपेट गांव में इनका जन्म हुआ। ये गांव मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। थवरचंद गहलोत ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश से बीए की पढ़ाई की और 1 मई 1965 को अनीता गहलोत से विवाह करके उनकी एक बेटी और 3 बेटे हैं। थवरचंद गहलोत ने अपने कॉलेज के दिनों में ही अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और उसके बाद अलग अलग गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया और जिले स्तर पर काम करते हुए फिर राजनीति के उच्च स्तर पर इन्होंने काम किया। 2004 में 14वीं लोकसभा में 4थी बार के लिए निर्वाचित किया गया और बाद में वो आधारिक भाषा समिति के सदस्य बने और साथ ही श्रम पर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। तो ये थी कुछ चंद बातें थवरचंद गहलोत के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। और थवरचंद की जब बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश अपने आप में एक यूनिक अपना जो है वर्चस्व रखता है और जब भी सफाई या स्वच्छता की बात आती है तो मध्य प्रदेश अपना नाम जो है पहले स्थान पर रखता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ सफाई को और स्वच्छता को लेकर काफ़ी काम किया गया, तो इस राज्य से ये चीज़ें हम हमेशा सीख सकते हैं। तो कहा जाता है कि भाई हर राज्य हर व्यक्ति से कुछ न कुछ हमें सीख मिलती है, तो निश्चित तौर पे स्वच्छता और सफाई की बात अगर आती है तो यहाँ से ये सीख हम सभी को मिलता कि कितनी भी मुश्किल समय हो लेकिन आप स्वच्छता को बरकरार रख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र कार्यक्रम को, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: Hi, this is Gracie Singh, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर. आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है. थवरचंद गहलोत के बाद अब बात करते हैं एक और व्यक्ति के बारे में, यस जगन्नाथन. जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर थे. इनका पूरा नाम सरुकाई जगन्नाथ था और इनका कार्यकाल 16 जून 1970 से लेकर 19 मई 1975 तक रहा. केंद्र सरकार भारत के कार्यकारी निदेशक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने विश्व बैंक में कार्य किया था. इस वजह से इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से मद्रास में शिक्षा प्राप्त की. जगन्नाथ भारतीय सिविल सेवा के सदस्य भी थे और भारत में पहली बार 20 रुपये और 50 रुपये के भारतीय रुपयों के नोट पेश किए गए थे और इन्होंने इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे. तो IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक पद का पदभार ग्रहण करने के लिए कार्यालय से अवकाश ग्रहण किया था इन्होंने. तो सरुकाई जगन्नाथ को उनके इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर

के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, शाम का समय है और आपके पास ऑप्शन दो है। आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए रेडियो के साथ जुड़कर अपना मैसेज और अपने इनपुट दे सकते हैं, दूसरा आप चाय पी सकते हैं, तीसरा आप शरबत भी पी सकते हैं, तो चॉइस आपके ऊपर है। तो लीजिए, आपके मूड को और रिफ्रेश करने के लिए मैं अभी ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। आप सुन रहे हैं सफर कार्यक्रम, सुनते रहो मस्कराते रहो।

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का, हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। आइए बात करते हैं अब शाहू जी के बारे में, जिसे शिवाजी द्वितीय के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी का पौत्र तथा शंभू और येसुबाई का पुत्र था। शाहू शंभाजी का उत्तराधिकारी था, जिसने राजाराम और ताराबाई के पुत्र शिवाजी तीसरे को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी द्वितीय शाहू को साधु कहना शुरू किया था, इसी से उसका नाम शाहू हो गया। शाहू ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से मराठा साम्राज्य को एक नवीन शक्ति के रूप में संगठित किया था। अब बात करें मुगलों के साथ इनकी बंदी, अर्थात 1699 में रायगढ़ महाराष्ट्र के पतन के बाद शाहू उनकी मां येसुभाई और अन्य महत्वपूर्ण मराठा लोगों को कैद कर औरंगजेब के शिविर में नजरबंद कर दिया गया। उस समय शाहू बालक था और वो बंदी बनाकर मुगल दरबार में लाया गया। उसका भी वास्तविक नाम शिवाजी था, किंतु उसे शिवाजी द्वितीय के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब की दृष्टि से शिवाजी प्रथम कपटी थे। अंततः दोनों में भेद करने के लिए उसने शाहू को साधु कहना आरंभ किया था और यही साधु शब्द अपभ्रंश रूप में शाहू हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने उसे मुक्त कर दिया और अधिक समय तक मुगल दरबार में रहने के कारण शाहू का दृष्टिकोण मराठों से ना होकर मुगलों जैसा हो गया था। उसके महाराष्ट्र लौटते ही मराठे दो दल में विभाजित हो गए और एक दल उसका स्वयं का था और दूसरा दल इसके चाचा राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय का समर्थक था। तो इस तरह से एक छात्र शासक के रूप में इन्हें याद किया जाता है।

0: के नेतृत्व में एक सेना को शाहू का मुकाबला करने के लिए भेजा और इस तरह से खेड़ का युद्ध हुआ। परंतु कूटनीति का सहारा लेकर शाहू ने यादों को अपनी ओर मिला लिया और ताराबाई ने अपने सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ पन्हाला में शरण ली। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और जो छत्रपति शाहू के पौत्रिक प्रधानमंत्री थे, जिनका सहायता से शाहू मराठों का एक छात्र शासक बन गया और पेशवा का पद मूल रूप से शिवाजी द्वारा नियुक्त में से एक था। पेशवा को मुख्य प्रधान भी कहते थे। उसका कार्य सामान्य रीति से प्रजाहित पर ध्यान रखना होता था। 1749 में शाहू की मृत्यु के बाद पेशवा ही मूल रूप से मराठा साम्राज्य के शासक हो गए और शाहू ने राजाराम और ताराबाई के पौत्र को अपने दत्तक पुत्र बनाकर उसका नाम राजा राम राजा रखा था। परंपरा के अनुसार राम राजा ने सातारा में अपना दरबार स्थापित किया, किंतु वह पेशवा के हाथों की कठपुतली ही सिद्ध हुए। तो ये थी कुछ खास बातें शाहू जी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर जी आज सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूँ। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

तो मैं आपको एक और विचार के साथ कार्यक्रम को पूरा करेंगे। कहते हैं कि भाई जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपका दोस्त आपको अपना परिवार समझने लगे, है ना कमाल की बात। तो चलिए इसी खूबसूरत विचार के साथ ढेर सारी खुशियां आपको, और मिलते हैं अगले कड़ी में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तू देख प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधर क्या पहुँचा दोगे हैं? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल, सहयोग की ईंटों से सफलता बन

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। दोस्तों, संगीत का सफर जब शुरू होता है ना तो खत्म नहीं होता। वैसे कोई भी सफर हो तो लगता है अरे मंजिल कब आएगी इंतजार रहता है, लेकिन संगीत का सफर अपने आप में मंजिल बन जाता है, क्योंकि इतनी खुशी मिलती है, इतना कुछ मिलता है कि पूरी दुनिया भूल जाती है कई बार। अगर हम उदास होते हैं तो उदास मन को थोड़ा दिलासा मिल जाता है, खुश होते हैं तो खुशी दोगुनी चौगुनी हो जाती है। ऐसे ही गाने हर ओकेजन के लिए बने हैं, चाहे वो सिनेमा के हों, बॉलीवुड के, टॉलीवुड के या हॉलीवुड के हों, या फिर हमारा लोक संगीत हो। और लोक संगीत तो सच में दोस्तों दिल के तार छू जाता है। आपके एरिया का भी कोई ना कोई संगीत ऐसा जरूर होगा जो आपके दिल से निकलता होगा, है ना दोस्तों? आपकी यादें, आपकी संस्कृति सभी से जुड़ा होगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे आज की गेस्ट, जिनका नाम है सरोज देवी जी, जो कि पानीपत से आए हैं और बचपन से उन्हें गाने का शौक है, खासतौर से लोक संगीत उनके अति प्रिय है और बहुत सुंदर वो गीत की रचना भी करती हैं और बुलंद उनकी आवाज है। तो आइए उनसे आपको मुखातिब करवाते हैं, यानी मिलवाते हैं। सरोज जी, आपका रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी दीदी,
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छे
0: अच्छे हैं?
1: बहुत अच्छे
0: बहुत अच्छे हैं। सरोज जी, वैसे तो ये

0: लड़की गाय कहीं, इसलिए मेरी ये चीज रुक गई वहीं पे। तो फिर मैंने अपनी शुरुआत जारी रखी, मैंने गाना नहीं छोड़ा,
1: गाना नहीं छोड़ा।
0: हाँ।
1: आप कितने बड़े थे तब जब आपको स्कूल में आप थे गाना गाते थे?
0: उस टाइम तो दीदी मैं 8-9 साल,
1: 8-9 साल के थे। तो आपको बुरा तो लगा होगा कि गाने के लिए आगे परमिशन नहीं मिली?
0: दीदी बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। ये एक बार नहीं हुआ दीदी, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा। जो मैं आगे बढ़ना चाहती थी ना, उसी टाइम मतलब रोक दिया जाता था, या भगवान की मर्जी लाओ या किसी की भी लाओ। क्योंकि मेरे को योगा है ना, मैं योगा करती थी, उसमें भी मेरी स्वरूप मैं फर्स्ट आई हुआ स्कूल में। उस टाइम में 13 साल की थी।
1: अच्छा।
0: तो उसी 13 साल के बीच में फिर मैं योगा में फिर गई, तो मेरी 12 जिले में वहाँ हिसार में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ, तो वहाँ मेरिट आई। लेकिन वहाँ भी मेरे को फिर गोवा के लिए किया तैयार, तो मेरे को रोक दिया गया,
1: लड़कियों को नहीं,
0: लड़कियों को नहीं जाना, बस इसी वजह से फिर रुकता ही चला गया।
1: लड़कों को मिलती थी परमिशन?
0: हाँ, परमिशन लड़कों को मिलती थी। मेरे को सब शौक था, गाड़ी चलाना, स्कूटी चलाना, हर चीज का शौक था। लेकिन काम सारे आते हैं, खेत का भी करते थे, जैसे जमींदारा है 18-20 किले, ज्यादा भी मतलब 80 किले की भी खेती करते थे, काम भी सारा आता। लेकिन और सारा प्यार मिला, प्यार में कोई कमी नहीं थी माँ बाप का, लेकिन बस यहीं पर रुक जाती थी,
1: बाहर नहीं जाना,
0: बाहर नहीं जाने दिया। हम 4 बहने हैं, इसलिए किसी को लगता था भाई ऐसे भेजेगा तो माता पिता देखो, गाँव में तो होती है रूढ़िवादी समाज होता, तो वो बोलते थे भाई लड़की को आगे भेज रहे पैसे के लिए। तो वहीं से बाप फिर हो जाता था भी बेटे नहीं जाना, उसका मन था आगे लेकिन नहीं जाना।
1: आपके माता पिता का भी मन था?
0: बहुत था दीदी, बहुत मन था मेरे बाप का। वो तो ये चाहता था कि मेरी बेटी पता नहीं क्या करे, ये सब बोलता था, लेकिन वो मजबूर था समाज के।
1: समाज तो आपको ऐसा नहीं लगा कि समाज कुछ भी सोचे हम करेंगे या?
0: दीदी जो मतलब जो बाप ने कहा ना वही स्वीकार कर लिया,
1: स्वीकार कर लिया।
0: वो सोचती थी मैं, मेरा बाप ही जैसे भगवान है, क्योंकि वो मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकता, बहुत प्यार करती।
1: उनकी तो भावना भी थी और आपको?
0: बहुत भावना थी दीदी। उसको तो मैं ऐसे बोलती थी मेरी शादी नहीं करनी, तो कहता था बेटी ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो मैं तुम्हें कहीं भेज दूं। उसको ये पता होता ना ब्रह्मा कुमारी में शादी नहीं होती तो मेरे को यहीं भेज देते।
1: मतलब पूरा सपोर्ट करते थे?
0: पूरा सपोर्ट करते थे, हर चीज का सपोर्ट करते थे। कहते थे वे तो गाड़ी चला, स्कूटी चला। तो भाई इस बात में ना, जैसे गांव के लड़के होते हैं, सोचो भाई इसकी बहन ये कर रही हो, कर रही हो, भाई थोड़ा सा छियादत का है, बहुत प्यार प्रेम है बड़े भाइयों में। लेकिन उसकी बात भी देख कर मैं दूर हट जाती थी। दिल था मेरा हर चीज करने का, मेरे को ये मतलब जज्बा भी था मैं कर सकूं हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई मैं अपनी खुशी के लिए इनको नहीं परेशान कर सकती।
1: नहीं, आपका जज्बा ही है सरोजी, जो गाने को आपने छोड़ा नहीं।
0: हाँ, ये चीज मैंने दीदी अकेले में, मैं जैसे रसोई में खाना बनाती हूँ तो गुनगुनाती रहती हूँ, डांस करती रहती हूँ। देखो इस पे तो मेरी कोई रोक नहीं थी, ये तो मैं घर में भी करती थी, घर में कोई रोक नहीं थी, घर में तो गा कोई रोका नहीं जाता था, बल्कि माँ सुनती है कहेगी बेटी यू मेरे को सुना ये चीज, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। बस फिर वो यहीं तक रहेगी, आगे बढ़ने नहीं पाई।
1: लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल, और अब मुझे लगता है जो सुनने वाले होंगे उनको भी हिम्मत मिलेगी, क्योंकि ये जो आपकी कहानी है ये बहुत सी महिलाओं की कहानी है ना। हाँ। तो कई बार मौका नहीं मिलता, दुख होता है, लेकिन फिर भी आपने आपकी हाँ। हिम्मत से प्रेरणा जरूर मिलेगी और लोगों को भी। सरोजी मैं चाहूंगी कोई एक आपका पसंदीदा गाना आप हमें गा के सुनाए आज।
0: ठीक है दीदी
1: जी।
0: ओम शांति।

बड़े पीपल के पेड़ लगाए, बड़े पीपल के पेड़ लगाए, आम्बर जामण उसमें उगाए, आम्बर जामण उसमें उगा।

0: सारी सूक्ष्म वतन में योग लगावे, सूक्ष्म वतन में योग लगावे, परम धाम बिंदु बन जाव, परम धाम बिंदु बन जावे। हे थरी हो जा मन की चाही, तम योग लगाओ सार।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं, अहम कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। और दोस्तों, एक बहुत सुंदर सा आपने गीत सुना सरोज जी की आवाज में। सरोज जी, ये गीत आपने लिखा है, आपने बनाया है?
2: हाँ दीदी,
1: है ना। क्या क्या गीत है ये, क्या आपने सोच के से बनाया, क्या मन में आया आपके?
2: ये दीदी, मैं बस बैठे बैठे गुनगुना रही थी और मेरे को भगवान ने मेरे को टच किया, तो ये शब्द निकले मेरे मुख से।
1: अच्छा।
2: तो ये गुनगुनाते गुनगुनाते ये गीत बन गया।
1: क्या बात है।
2: जैसे अंदर से संगीत तो निकलता ही, फिर शब्दों से संगीत बनता है।
1: सही बात है, शब्दों से संगीत,
2: शब्दों से संगीत बनता है।
1: और भावना ईश्वर से,
2: ईश्वर के लिए, मतलब कुछ गाना चाहती थी तो वैसा शब्द निकले, उसका संगीत बन गया।
1: क्या बात है। अच्छा सरोज जी, जैसा आपको गाने से बहुत प्यार है, तो आप क्या घर में रोज रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या सुनते हैं गाने?
2: दीदी, मैं जो गाना गाती हूँ मतलब दिल से गाती हूँ, मुझे रियाज करने की, रिहर्सल की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब देखती हूँ गा देती हूँ।
1: बचपन से भी आप ऐसे ही गाते थे?
2: हाँ, बचपन से ही। जैसे माँ है ना, दूध बिलोती थी ना, पहले गांव में दूध बिलोते बिलोते तो भजन गाते थे लोग, लोक गीत भी गाते थे, भजन भी गाते थे। तो पहले आटा पीसती थी, तो मेरी माँ ऐसे करती थी, तो उसके पास बैठ जाती थी छोटी सी।
1: अच्छा।
2: तो ऐसे ही बस मेरे को उसी से मतलब शुरुआत होगी। हाँ, मनाया मेरे को, मैं गाने लगी बस।
1: अच्छा। तो आपकी माँ कोई गीत गाते थे, कोई याद है आपको बचपन में जो आप सुनते थे?
2: जी
1: याद है
2: जी।
1: तो क्या आप हमें सुनाएंगे कोई ऐसा गीत जो आपको याद हो?
2: जी दीदी,
1: जरूर।
2: हाँ जी, मैं आपको एक लोक गीत सुनाना चाहती हूँ, सुनिए।

0: जाता।
1: क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है एक तो पहली बार ये गीत बहुत सुंदर है, माँ को डेडिकेटेड है। माँ का कर्ज सच में चुकाया नहीं जा सकता कभी,
0: जी दीदी,
1: कभी जब
0: कभी नहीं
1: चुकाया नहीं
0: चुका,
1: जा
0: कोई नहीं चुका
1: सकता,
0: सकता।
1: कोई नहीं चुका सकता। और आपने गाया बहुत अच्छा, ऐसा बुलंद आवाज है आपकी एकदम, और भावना से भरी आवाज है आपकी एकदम। ये गीत क्यों चुना आपने, मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
0: दीदी मेरी माँ है ना,
1: हाँ
0: मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरी माँ ने कदे मतलब हाँ एक अंगुली लग नहीं लगाई आज तक हमारे को, जैसे धमका या कुछ। मतलब मेरी माँ इतनी शीतल है, तो उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहती।
1: हाँ
0: तो माँ से ऊपर मैंने ऐसा लगता है, मतलब भगवान क्या कहता है कि माँ की भक्ति करने से भगवान मिल जाते हैं, ठीक है ना, भगवान की भक्ति करने से माँ नहीं मिल सकती। ये चीज मेरे को अंदर बैठी है कभी से। देखो माँ की भक्ति करेंगे तो भगवान मिल जाते हैं, अगर माँ चली गई ना, जब कितनी भक्ति कर लिया किसी की, वो माँ वापिस नहीं आओगे।
1: माँ की सेवा।
0: माँ की सेवा,
1: आजकल हम देखते हैं सरोज जी, बहुत परिवारों में ऐसा होता है कि माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, तो कई बार उनके लिए ना समय निकालते हैं, बिजी हो जाते हैं जॉब में, परिवार में, दोस्तों में,
0: जी
1: अलग
0: दी
1: अलग चीज़ों में। और कई बार तो उनसे हमारा व्यवहार भी बदल जाता है,
0: जी दी
1: कई बार उनकी सेवा करना बोझ लगने लगता है, या लगता है हमने तो अपना कर्तव्य कह दिया, कर दिया। और कई बच्चे ऐसा भी कह देते हैं कि ऐसा आपने किया क्या है हमारे लिए।
0: दीदी, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि हमारे घर में ऐसा नहीं है। जो मेरा भाई है ना, उसको मेरी माँ तो ऐसे बोलती है कि मेरा बेटा एक मतलब अनमोल चीज है। जैसे माँ का अनमोल लिया ना शब्द, मेरी माँ भी उसको ऐसे बोलती है, मेरा बेटा एक अनमोल है। वो है ना, जिस टाइम भी घर पा होगा ना, या
1: बंद हो गया। हाँ
0: मतलब वो बाहर जाता है, जैसे पहले तो सरपंच था तो उसका आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो किसी टाइम आओ, कितनी ही देर क्यों नहीं जाओ, लेकिन मेरी माँ को बोले बिना वो ऊपर नहीं जा सकता। वो सोएगा नहीं,
1: अच्छा
0: इतना वो सोए नहीं। देखो देखो, मैंने तो अपने घर में ऐसा ही देखा, मतलब मैंने एक माँ बेटे का प्यार ऐसा कहीं नहीं देखा जो मैंने अपने घर में देखा।
1: अपने घर में देखा
0: हाँ,
1: आपने।
0: बहुत अच्छा
1: माँ की सेवा करने से क्या मिलता है?
0: दीदी, माँ की सेवा करने से सब कुछ मिलता, सब कुछ। उसमें के लिए शब्द नहीं है,
1: छप नहीं है।
0: शब्द नहीं है। वो तो एक सेवा करने वाला, नो समझो, जो सेवा करेगा ना, उसको फिर माँ की सेवा करने के बाद कुछ रहता ही नहीं इच्छा
1: इच्छा ही
0: कि
1: नहीं
0: और
1: रहती
0: किसी की
1: है।
0: सेवा करने। और वो मैंने अपने घर में खुद देखा
1: महसूस किया आपने।
0: महसूस। हाँ, मैंने अपने भाई से कोई शिकायत नहीं है भाई, माँ की सेवा नहीं हो रही घर में। वो एक चीज बोलेगी ना, वो दो लगा। और ऐसी ही भाभी घर में आएगी, मतलब घर सब रहे, बहुत प्यार करती हर, मतलब आने वाले से भी, कोई घर चला जाता है, मेहमान आते हैं, तो वो कभी ये नहीं देखती कि भी तेरे को ये काम करना पड़ेगा, भाई ये इतने आए हैं, नहीं। भावना से, ऐसे भावना से भाव भी बोर हो जाती है, ऐसी भाभी है।
1: कितने लक की भी बात है कि ऐसे
0: हाँ,
1: परिवार
0: ऐसा
1: है
0: परिवार
1: ना,
0: नहीं मिल, ऐसी भाभी नहीं मिलती।
1: ऐसी भाभी नहीं मिलती।
0: मैं सुनती हूँ गाँव में, हमारे ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे भाई भाभी जैसा कोई है ही नहीं,
1: अच्छा।
0: मतलब पूरा गांव में। हमारी चाची ताई मेरी माँ को ये कहती है, तने एक जम्या, एक जण्या, मतलब जण्या हमारी भाषा में जण्या कह देना, एक जम्या, तो तने नो समझ ले दसा के बरोबर जान दिया, एक
1: अच्छा।
0: जो तेरी इतनी करता है।
1: एक 10 के बराबर है।
0: हाँ, 1:10 के बराबर है।
1: क्या बात है। सच में जो दुआएं माता पिता
0: हाँ
1: की, बुजुर्गों की सेवा से मिलती है,
0: दीदी, हमारे घर
1: किसी
0: में
1: और
0: ना,
1: चीज से
0: मैं
1: नहीं मिल
0: आपको
1: सकती
0: एक छोटी
1: कभी।
0: सी बात बताऊं, हमारे घर में साइकिल भी नहीं थी
1: अच्छा।
0: कदे, तो वो तो इस वजह से नहीं थी क्योंकि हमारे कोई चलाने वाला नहीं था, पापा को टाइम ही नहीं रहता था, तो उस साइकिल भी नहीं थी ना। तो बाबा मैंने को, मेरा भाई इतना बागवान और इतनी बाग वाली वाली लक्ष्मी आई हमारे घर में, हमारा सब कुछ हो गया, सब कुछ, दो दो गाड़ी, तो पांच पांच मोटरसाइकिल, तो मतलब तीन तीन ट्रैक्टर। मैं ये
1: कोई
0: बताऊं
1: कमी
0: कि
1: नहीं।
0: किसी चीज की कमी ही नहीं रही। घर बहुत बढ़िया, हमारा बहुत टूटा फूटा सा घर था, मैं ऐसे बोलती थी हमारा घर पता नहीं कब बनेगा, आज भगवान ने उस भाई की वजह, भाभी की वजह, हमारा सब कुछ दे दिया, भगवान ने इज्जत भी दे दी। देखो गांव का एक राजा बनता है, जब भाई कोई सरपंच बनता है तो राजा ही बनता है, उसने कभी किसी की बददुआ नहीं ली,
1: मदद की ना उन्होंने
0: मदद की
1: सबकी।
0: लोगों की, वो कभी नू नहीं देखता भी तेरे घर में। देखो मेरी थोड़ी आदत थी, बल्कि मैं थोड़ी कह देती थी तू सब कुछ नुए लुटा देगा, मैं थोड़ी अभी गुस्सा हो जाती हूँ उससे, लेकिन मेरे को है ना दिल से बहुत प्यार है अपने भाई से, मतलब मैं कहूँ ना जान जिगर, जो माँ दूध पिलाना है, लेकिन मैंने भी अपने भाई से इतना ही प्रेम है।
1: इतना ही प्यार है।
0: हाँ, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ दीदी।
1: आपका बड़ा भाई है कि छोटा?
0: मेरा छोटा भाई है मेरे से।
1: कितना छोटा है?
0: मेरे से 5-6 साल छोटा। उस
1: 5-6 साल छोटा है।
0: लेकिन भाई के वो बाप का भी फर्ज निभा रहा है, वो माँ का भी फर्ज निभाता। ऐसा भाई संसार में देखो, मैं ये तो नहीं कहती होगा नहीं, होगा किसी का, लेकिन उस जैसा मैंने नहीं देखा।
1: देखा नहीं आप?
0: क्योंकि मैंने कम से कम हमारे गांव की कम से कम 20 लड़कियों ने ऐसा कहा है कि तेरे भाई जैसा कोई नहीं है। औरों को भी करता है, और बहन भी कोई मिल जाओ उसको ये लगता कि मेरी बहन,
1: मेरी बहन है।
0: अब जैसे मैं
1: आपको, उन्होंने दुआएं हाँ, भी बहुत कमाई हाँ,
0: तो
1: ना?
0: मैं से आपको बोल दूं दीदी हमारे घर चलो, तो कई बार सोचना पड़ता है ना कि अपने घर ले जाने के लिए वो आपको भाई अच्छे से बोलेंगे कि नहीं। लेकिन मेरे को कोई डर नहीं, आप अकेले भी जाओगे ना, अरे भाई ये मतलब ये भी नहीं कहना पड़ता कि भाई मैं वहां से आई हूँ, तो मेरे को ये पता है मेरे भाभी भाई बहुत प्यार देंगे। वो ये भी नहीं पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, बस आए हैं,
1: बस आए हैं उतना
0: भाई
1: ही।
0: वो ये कहते हैं है। कि हमारे ऊपर है ना जो मेहमान अपने घर आता है ना वो एहसान करता है, आजकल किसी को आने जाने का टाइम नहीं है। जो हमारे घर आते हैं ना, और आते भी बहुत हैं, ऐसा कोई दिन
1: इतना प्यार मिलेगा तो कौन नहीं आना चाहेगा,
0: ऐसा कोई दिन नहीं है। देखो हमारे घर में ना जो छुट्टियां पड़ती थी ना उस टाइम 22-24 बच्चे आते थे।
1: अच्छा,
0: तो देखो उनको खाना पीना बनाने में मजा भी आता था, लेकिन जब ज्यादा हो जाता था तो
1: सारा काम हो जाता है
0: बहुत। हम उसको ना मतलब भाभी कभी उसने ऐसे नाक नहीं चढ़ाया भी इतने बच्चे हैं। हमें सारी बहनों के 11 बच्चे सब
1: सब आ जाते होंगे साथ,
0: तो उसके बहन भाई सब उसकी मतलब इतना प्यार वहां मिलता था। मेरी माँ भी ऐसे थी, दोनों मतलब सास बहू बनाती रहती थी, खिलाती रहती थी। आप देखो 24 बच्चे रखने, तो क्या आज के टाइम में तो 2 बच्चे भी रखने में
1: बहुत काम होता है उसमें,
0: है ना। और मेरे बच्चे तो दोनों वहीं पढ़े, उन्हीं ने पाले हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, अब ये शादी हुई है ना, जब आया 3 महीने पहले।
1: अच्छा,
0: बस मेरे बच्चे दोनों ने,
1: उनको भी कितना प्यार होगा अपने मामा।
0: वो छोटा लड़का तो ऐसे बोलता था, मामा नू नहीं कह देना आए सागरी आ जा सो जा, उनका मैंने नींद ही नहीं आती थी।
1: अच्छा,
0: उसके बगैर नींद ही नहीं आती थी।
1: हाँ,
0: दीदी उनका खाना मतलब भाभी है ना, 4-4 महीस दूध देती थी हमारे घर में। भाभी ने कभी ये ही नहीं कहा कि भाई क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, मतलब उसने कभी देखा ही नहीं।
1: बड़ा दिल ना?
0: हाँ, बड़े दिल वाले, फरोक दिल।
1: क्या बात है। तो उन लोगों को भी गाने का शौक है
0: दीदी?
1: किसी को
0: मतलब
1: या आप गा गा के सुनाते हैं सबको?
0: वो सुनती है मेरे गाने, मेरी माँ को बहुत शौक है दीदी।
1: आपकी माँ कौन सा गाना सुनना पसंद करती है? कोई और गीत है ऐसा जो आपकी माँ को पसंद है, आपको भी पसंद है? कोई ऐसा गीत, कोई लोक गीत, कोई भजन जो हमारी श्रोताओं को आज आप सुनाए?
0: जो मेरे से सुनती है वो
1: जरूर, फिर हम भी सुनना चाहेंगे आज वो।
0: ठीक दीदी, मैं सुना रही। इसमें दीदी जैसे गीत के बोल है नहीं, ऐसे अपनी काया के ऊपर है सारे।
1: अच्छा
0: ठीक है
1: जी,
0: ये माँ सुनना चाहती है बहुत खुश होके, मैं उसको सुनाती हूँ।

0: चली ऑप्शन।
1: क्या बात क्या बात क्या बात, फिर से आपकी दमदार आवाज में बहुत ही कमाल का गीत आपने सुनाया सरोज जी, बहुत मजा आया। तो एक बार थोड़ा मैं श्रोताओं के लिए बताएंगे उस गाने का मतलब थोड़ा आप समझाएंगे।
0: हाँ दीदी जी। जैसे मैं लौकिक में कैसे भी आप भी गाते भी हैं अच्छे गाने भी बुरे भी, बुरे शब्द भी बोल देते हैं, जैसे भी लौकिक में जिस टाइम आप ज्ञान में नहीं होते तो वहां पर आप सारे ढाल की बात कर लेते हैं भाई अच्छी बुरी, लेकिन भगवान तो ये कह रहा है ना भाई तुम अपना वेस्ट ना करो इसमें, भाई भगवान की बातें करो भगवान के भजन करो, तो इसलिए इसमें ये कह रही है कि मैं वधि करण तक बचगी, मैंने कोई बुरा कर्म करण तक बचगी मैं।
1: अच्छा।
0: वधि है ना ये बुरा अच्छा। कर्म करण तक बचगी या ऐसी माया कोई भगवान ने रच दी जो मैं भगवान का सिमरण करने लगी।
1: क्या बात, तो ये आपकी माता जी को बहुत पसंद है।
0: हाँ दीदी।
1: अच्छा,
0: मेरी माँ सुनती है बार बार।
1: अच्छा क्या बात है, और सच में बहुत गहरी भी बात है।
0: हाँ,
1: कि वो समय कहते हैं ना जो समय की कीमत नहीं समझता फिर समय उसकी कीमत भी
0: दीदी फिर ये जैसे अपन पता नहीं है ना इबे दुनिया में भी पता नहीं है कि भगवान धरा पर आ चुके हैं, तो उसमें यही तो कहते हैं ना वो परम धाम से जो ज्योति उतरी ना, लेकिन उसका किसी ने पता नहीं चल रहा, लौकिक में किसी ने पता नहीं चल रहा, लेकिन प्यासे बहुत हैं भगवान मिलन के, प्यासे इतने हैं कि एकदम भाग लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा इस चीज का भी ज्योति की चीज है, वे तो भगवान का रूप है ना ते हैं, लेकिन उसको असली चीज का पता नहीं है, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान उस चीज में नहीं है, जो हम लौकिक गीत गाते हैं उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन जब मैं लौकिक में गाती थी तो मुझे भी नहीं पता था क्या चीज है भाई, गाए जाते थे बस सब गाते हैं मैं भी गा,
1: मीनिंग नहीं समझते,
0: मीनिंग नहीं पता था। हाँ मीनिंग का नहीं पता था उसमें, अब ये शब्द का अर्थ का पता चल गया इसमें भाई ये के शब्द है।
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे सरोज जी, जैसे आपने कहा कि भगवान का सिमरण करना, समय का सही इस्तेमाल करना, आपकी दिनचर्या क्या होती है थोड़ा अपने बारे में बताएं।
0: दीदी जैसे मैं सुबह 3 बजे भी उठ जाती हूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ 3 बजे उठ कर 1 घंटा योग करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ और भगवान से शक्ति लेती हूँ, तो ऐसे ही भाई भगवान मुझे शक्ति दो जैसे भी, फिर जो मैं सुबह सुबह उठ कर ना अपने पृथ्वी को भी, क्योंकि जो हम धरती माँ को ऊपर पैर रखते हैं उसको भी पहले चुचकारा जाता है, हे धरती माँ देखो मैं तेरे ऊपर इतना वजन डाल रही हूँ, ऐसे सब कुछ दे रही है धरती माँ, अपन खाने को भी दे रही है, चढ़ने को भी दे रही है, पीने को भी दे रही है, प्रकृति पांचों तत्व प्रकृति के, तो उनको भी सकाश देती हूँ।
1: ओके सकाश माना क्या?
0: सकाश माना मतलब उनसे जैसे हम अपने बातें करते हैं, जैसे मैं आपसे बातें करती हूँ उनसे प्यार से बातें करते हैं, हे धरती माँ आपने मेरे को इतना कुछ दिया तेरा शुक्रिया, उसका शुक्रिया करते हैं,
1: शुक्रिया
0: है ना, जैसे जल है हे जल देवता आपने मुझे मेरी प्यास बुझाई मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, है ना, ऐसे वायु जैसे हवा चल रही है, हवा नहीं चलेगी तो आप देखो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा,
1: बिल्कुल
0: है ना, तो जैसे हवा है हे वायुदेव मैं तेरा शुक्रिया करती हूँ, है ना, तो ऐसे अग्निदेव जैसे खाना बनाते हैं तो उसको अग्निदेव को भी पहले नमस्कार करो, अग्निदेव को
1: शुक्रिया करो,
0: शुक्रिया करो, हे अग्निदेव जैसे आप देखो मेरे को खाना पकवा रहे हो तो आप का मैं शुक्रिया करती हूँ अग्नि का, सूर्य देव है, हे सूर्य देव जैसे सुबह सूर्य देव निकलते हैं तो उनको शुक्रिया करते हैं, हे सूर्य देव देखो कहीं भी आप है ना जो रोशनी है जो सूर्य की रोशनी जा सके ना वहां पर वैसे नहीं जा सकती, तो सूर्य की रोशनी जहां जहां भी भगवान को ये पता है कि भी वहां वहां उसको जरूरत है तो उससे उसका शुक्रिया करते हैं,
1: शुक्रिया करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है ये तो, शुक्रिया करना कितना जरूरी है तत्वों का,
0: क्योंकि
1: जो हमें
0: वायुमंडल है ना
1: प्रकृति
0: उससे वायुमंडल अच्छा होता है, जब हम इन चीजों का शुक्रिया करके और फिर अपने काम में लग जाते हैं ना तो उसमें फिर भगवान का सिमरण रहता है अच्छा लगता है, सारा दिन अच्छा लगेगा, जिस
1: खुशी
0: दिन,
1: रहती है,
0: खुशी रहती है मन में, जिस दिन आप ये नहीं करेंगे ना उस दिन ऐसा लगेगा कुछ खोया खोया सा,
1: कुछ खाली है।
0: हाँ जो खाली है आज कुछ, कई बार हो जाता है दीदी, कई बार है ना जैसे कोई कुछ बात हो जाए तो उसमें भूल भी जाते हैं एक आधी बार, तो जिस दिन भूल गए ना तो फिर उस दिन सारा दिन मतलब खाली खाली
1: खाली खाली लगता रहता है,
0: वो अच्छा नहीं लगेगा।
1: अच्छा कभी कोई ऐसा गीत है आपके पास रुचि जो आपको लगता है कि मन अच्छा ना भी हो लेकिन वो गा के या सुन के बहुत अच्छा लगने लगता है?
0: हाँ दीदी
1: कोई ऐसा है?
0: जैसे दीदी मतलब कभी बार है ना कभी अपने पास है ना कठिनाई आ जाती है और उसमें फिर आप उस सब चीज को बोल के अरे उसमें अपने मगन हो जाते हैं, मैं आपको वो गीत सुना
1: जरूर जरूर मैं सुनना चाहती हूँ ऐसा गीत।

जगाई है मने वाज सुनी मुरली की, हे पल छोड़ाए मन डाली, छोड़िए डलिया छोड़ी पल की। ऐसी

पहुंच गई है मनवाज सुनी मुरली की, ए साबण छोड़ी सोटी छोड़ी ए साड़ी छोड़ी तन की, ऐसी लगी।

0: और दीदी जब मैं मतलब कभी परेशान हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ किसी चीज से, मतलब कोई भी घर की हलचल से, तो मैं सब कुछ बाबा पर छोड़ देती हूँ। तो फिर मैं ये गीत दिल से गाती हूँ।
1: दिल से गाते हैं तो फिर आपको कैसा लगता है गाने के बाद?
0: मेरे को गाने के बाद एहसास ही नहीं होता उस दुख का।
1: अच्छा,
0: ऐसा हो जाती हूँ मैं, फ्री होगी, फ्री माइंड।
1: क्या बात है, मतलब ईश्वर की शक्ति और संगीत की शक्ति साथ में आ गई ना जैसे। और वैसे संगीत को साधना कहा भी जाता है,
0: संगीत साधना भी है। और संगीत से जो बोल निकलते हैं ना, वो भगवान के मन के तार मन से जुड़ जाते हैं, है ना। उसके तार जुड़ जाते हैं भगवान के साथ। जब तक तार नहीं जुड़ेगा ना भगवान के साथ, जब तक संगीत का कोई मतलब नहीं, उसका रोम रोम उसमें
1: समा जाए।
0: गाना भी एक सागर है, इसमें कितना ही डूबता चले जाओ, सागर गहराई में चले जाओ, उसका पार ही नहीं मिलेगा। ऐसा संगीत एक ऐसी दुनिया,
1: ऐसी दुनिया है। तो आप अपने बच्चों को कभी कहते हैं गाना गाओ तुम भी?
0: हाँ दीदी, मेरा बच्चा, बड़ा बच्चा गाता है, बड़ा लड़का बहुत अच्छा गाता है।
1: अच्छा,
0: एक बार की बात है, अभी किसी ने उसको बोला भाई आधा घंटा मैं और तेरे को एक गाना बना के देना है, मतलब शिवरात्रि पे कावड़ लेने जा रहे थे ना, किसी ने बोला भाई गाने नहीं तो चार लाइन तो दे ही दे, कोई आधा घंटा में। तो उसने आधा घंटा बोला था ना, उसने 10 मिनट में ही पूरी चार लाइन दे दी उसको।
1: अच्छा,
0: लेकिन उसकी मुझे याद नहीं है क्या।
1: हाँ कोई बात नहीं, लेकिन देखिए कमाल है आपकी, जो संगीत से आपकी विरासत आपको मिली वो आपने भी आगे फॉरवर्ड की, उनको एंकरेज किया,
0: उसको भी दीदी, है ना। जैसे वो है ना, यहाँ पे हमारा पांडू भंडारा धाम है, वहाँ पे मेरा भाई है ना, आश्रम है उसका, उसको सब जानते भी, चंद्रानंद जी महाराज की, मतलब वहाँ पर धर्मशाला है। पहले हमारा भाई बड़ा था सूर्यानंद, और वो जो दूसरा भाई है ना, वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उसके पास। तो उस भाई के पास मैंने छोड़ दिया था बड़े लड़के को।
1: अच्छा।
0: भाई शास्त्री पढ़ने के लिए, तो जो भाई है ना ये पसंद नहीं करता फिर, मतलब पढ़ताई करने, तो इसको वापिस ले आता था, मैं छोड़ के आती थी वापिस ले आता था। तो उसको श्लोक सारे कंठ हो गए थे, बहुत अच्छे श्लोक बोलता था। तो उसके बाद फिर जैसे उसको है ना गाना गा रहा था वो, उस भाई के ऊपर, मतलब मेरे भाई का नाम चंद्रानंद है ना, तो उस पे ये गाना बोल रहा था, मैं तो चंद्रानंद का प्यारा मुझे कौन मार दे, जैसे आप शिव बाबा का बोलते हैं। तो उसमें उसने बहुत अच्छा गाना बनाया था। तो किसी ने देख लिया, कोई मतलब सेठ था बाहर से आ रहा था, और उसको कोई होगा ये चीज, उसकी चैनल चलता हो या भाई पता नहीं, वो वैसे उन्हें गोद में उठा लिया था उसको।
1: अच्छा।
0: तो कह रहा था इसको मैं है ना भाई इसको संगीत में लेकर जाऊंगा।
1: अच्छा।
0: तो फिर दीदी पता नहीं माँ बच्चों की कोई कैसी किस्मत हमारी, बहुत लायक है, बहुत लायक हर चीज में दीदी। खाना बनवा ले उस पर कैसा ही, भगवान की याद में खाना बनाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पर नहीं खाती ना, तो उन्हें भी सब कुछ हो गया, मतलब माँ बच्चे ने इतना समझ है उसको कि मेरी माँ है,
1: समझ है, भावना,
0: हाँ भावना की समझ है उसको। हाँ अब जैसे मैं गाती हूँ तो मेरी पोती शुरू हो गई है।
1: अच्छा, अरे वाह, कितनी बड़ी है वो
0: पोती? 5वें साल में लग गई है।
1: हाँ, बहुत छोटी सी है अभी।
0: तो वह पूरा श्लोक बोला है कि गायत्री मंत्र, इसका एक श्लोक उसने आता है, जैसे तीन आते ना उसमें एक आता है,
1: कितने अच्छे संस्कार,
0: कृष्णाय वासुदेवाय, बल्कि मेरे को नहीं आता ये, वो उसको आता है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे संस्कार बच्चों को
0: जो अब ये,
1: तो बच्चों का कितना अच्छा पालन पोषण होता है। वैसे तो हमारा वक्त हो चला है इजाजत लेने का सरोज जी, बहुत सारी बातें आपसे की, भावनात्मक भी, ईश्वर की भी, और साथ साथ हमने बहुत सुंदर गाने भी सुने। जाते जाते क्या कुछ लाइनें हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे? कोई भी चंद लाइनें, कोई गीत जो आपको बहुत पसंदीदा हो।
0: शिवन

0: चुनरी।
1: जाते जाते बहुत ही सुंदर मधुर संगीत के साथ तो आप हमें छोड़ के जा ही रहे हैं सरोज जी, लेकिन हमारी श्रोताओं से भी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे?
0: जी दीदी, मैं श्रोता से यही कहना चाहूंगी भाई, जैसे संगीत है ना, उसको ये ना समझो कि ये गाना है, संगीत को गहराई से लो, क्योंकि संगीत में सब कुछ बसा हुआ। संगीत में जैसे मेरा संसार बसता ना, जो कोई संगीत के मतलब गहराई से करेगा ना, तो उसको बहुत मजा आएगा, उसकी सब टेंशन भी दूर हो जाएगी,
1: आनंद आएगा जीवन,
0: आनंद आएगा जीवन में, आनंद ही आनंद होगा। संगीत एक ऐसी चीज है,
1: इसलिए संगीत है तो पकड़ के रखें,
0: पकड़ के रखो उसको। अगर किसी को आता है ना, हिम्मत करो,
1: हिम्मत करो
0: गाने की, हिम्मत करो। कई बार है ना, आता बहुत कुछ है किसी को, बहुत ऐसी ऐसी माताएं हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, लेकिन वे बेचारी हिम्मत नहीं कर पाती, उनके अंदर जज्बा नहीं है। तो अपने अंदर के जज्बे को जगाओ,
1: जगाओ,
0: जगाओ। संगीत कोई माड़ी चीज नहीं है, उसको दिल खोल के गाओ,
1: दिल खोल के,
0: दिल खोल के। ये सोचो ना, तेरे पास कोई खड़ा है, कोई
1: कैसा सुन रहा होगा, क्या
0: सब क्या सुन रहा, कुछ नहीं,
1: कुछ
0: बस दिल से,
1: बस दिल से गाओ,
0: जो निकले वो दिल से गाओ।
1: क्या बात, संगीत दिल है, रूह
0: हाँ,
1: है,
0: दिल है,
1: तो आप उसको दिल से ही गाएं, जहाँ दिमाग आता है हाँ, फिर वो दिल पीछे हो जाता है ना। बहुत सुंदर बात आपने कही, संगीत
0: इसमें दिमाग लगाओ ही ना,
1: लगाओ
0: ही। संगीत के पीछे पागल हो जाओ, हाँ, कहते हैं ना पागल होना भी एक अलग अलग तरह की कला है। अब जैसे मैं संगीत के पीछे पागल हूँ, है ना, इसी चीज के लिए पीछे पागल हो जाओ, जो कोई अपने आगे बढ़ने का काम करे। संगीत को देखो, संगीत के कारण तो लता मंगेशकर हुई है ना,
1: बिल्कुल,
0: कितने
1: लेजेंड्स हुए, है ना? और वो तो स्वर कोकिला भारत,
0: हाँ कोकिला,
1: बिल्कुल
0: देखो उसका स्वर कितना अच्छा था, गायक तो थी,
1: बिल्कुल।
0: तो उन अपने बड़ों को देखो, है ना, अनुराधा,
1: इंस्पिरेशन,
0: अनुराधा, मैं उसके गाने सुनती थी, तो मुझे उसी से मतलब इंप्रेस हुई मैं,
1: हाँ,
0: कि भाई अच्छा संगीत,
1: अच्छा संगीत,
0: हाँ,
1: अच्छा संगीत सुनिए, अपने जीवन में शामिल कीजिए, और जैसा कि सरोज जी ने कहा, अगर संगीत है तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, इसलिए संगीत को मौका जरूर दीजिए और संगीत में समा जाइए।
0: खाने के साथ साथ संगीत भी बहुत जरूरी
1: है, खाने के साथ साथ संगीत भी बहुत जरूरी है। दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन अगर आप ये हिम्मत करते हैं, एक कदम आप बढ़ाने को तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं। आप अगर संगीत के साथी हैं तो आप जरूर इस सफर पर हमारे साथ चलिए, यानी मधुबन अनप्लग्ड से जुड़िए, रेडियो मधुबन से जुड़िए, और हमें मैसेज कर दीजिए हमारे नंबर पर जो कि है 94 14 15 14 15, यानी कि 9414151415। हम भी चाहेंगे कि आपकी आवाज जरूर गुनगुनाए, जरूर गूंजे रेडियो मधुबन पर, क्योंकि ये आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। फिलहाल लेते हैं इजाजत, मुलाकात होगी अगले रविवार को रात 8 बजे। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें,

ओम शांति। आज 19 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा कहते, तुम बच्चों ने परमात्मा को एक्यूरेट समझा है कि परमात्मा कौन है, और साथ ही साथ जो बाबा आकर श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर भी तुम एक्यूरेट चलते हो। बाबा की पहली श्रीमत है बच्चे मन मना भाव। बाबा कहते, वास्तव में मैंने ये कोई संस्कृत में नहीं सुनाया है, मैं आकर सीधी भाषा जो ये रथ जानता है हिंदी में ही समझाता हूं, और हिंदी में समझ करके बच्चों को यही कहता हूं कि मुझे याद करो। जितना बाबा को याद करते जाएंगे आत्मा पावन होती जाएंगी, हर कर्म करते हुए भी बाप को प्यार से याद करना है, यही हम बच्चों का कर्तव्य है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनकर चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत बहुत उन्नति होती रहेगी। बाबा आकर के जो है जैसा है वैसा ही हमारे आगे स्पष्ट होता है, और हम बच्चों को भी बाबा जो है जैसा है वैसे ही उसको समझ करके याद करना है। कई बच्चे सोचते हैं बाबा की याद बहुत मुश्किल है, छोटी सी बिंदी बार बार गायब हो जाती है। बाबा कहते हैं, जब तुम आत्म अभिमानी होकर के बाबा को याद करेंगे तो सहज हो जाएगा, बिंदी बन बिंदी बाप को याद करो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? उत्तर है, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं, बिंदु को भला याद कैसे करे, भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले ये निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं, मन मना भाव। ये संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं, मन मना भाव। बाबा कहते, वास्तव में ये संस्कृत अक्षर है नहीं, बाप ने जब सहज राज योग सिखाया है तब यह संस्कृत अक्षर बोले नहीं है, ये तो संस्कृत जानते ही नहीं। ब्रह्मा बाबा तो संस्कृत जानते ही नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बलिय रथ हिंदी सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में है। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है, यहां हिंदी भाषा ही चलती है। बाबा कहते, भारत में हिंदी भाषा ही चलती है, ये भाषा समझना सहज है, और ये स्कूल भी वंडरफुल है, इसमें कोई भी कागज पेंसिल पन्ने आदि की दरकार ही नहीं रहती। ऐसा वंडरफुल स्कूल जहां न कागज की जरूरत न पेंसिल पेन की जरूरत है, यहां तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करना है, गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परम पिता परमात्मा को कोई याद न करे ये मुश्किल है। याद सभी करते हैं परंतु उनकी पहचान नहीं है। सारी दुनिया के मनुष्य आत्माएं भगवान को याद जरूर करती है परंतु उनकी पहचान नहीं है।
बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्र में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है वह बाप आकर समझाते हैं। बहुत बड़ी बात भी नहीं है, अहिल्याएं बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेगी, ये तो बहुत ही सहज है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि यह शिव बाबा है, वह निराकार है, सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है, हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती है बाप को याद करती है। सब धर्म वाले जो भी है सब परम पिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। वह है परम धाम में रहने वाला बाप, हम भी वहां के रहने वाले हैं, तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। चाहते भी है कि हम पावन बने, बुलाते भी है हे पतितों को पावन करने वाले आओ। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी हुई है, इनको कोई नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं, क्या जानते हैं, नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था, संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए, नए के आगे पुराना था, नए भारत के आगे पुराना भारत था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। बाप के लिए ही कहते हैं हे पति पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि यह भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, ये तो बहुत समय से बुलाते आए हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग यानी ये पतित दुनिया चलेगी, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। जब कोई कहते हैं 40,000 वर्ष चलेंगी तो बाबा कहते बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है, अभी तुम रोशनी में हो, बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। ये 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की बात है, तुम राज्य करते थे बरोबर, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था स्वर्ग में। पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता, उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। उपद्रव यानी नेचुरल कैलामिटीज आदि, कुछ तूफान होता है तो ये रावण राज्य में। यहां तुमको बाप समझाते हैं, तुम सन्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं, आत्मा। आत्मा को बड़ी खुशी होती है हमको बाप फिर से आकर मिला है। बाप से वर्षा लिया था, अब बाप कहते मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं, जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है। बाबा कहते जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने, कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने। क्यों, तुमको क्या चाहिए बताओ, कोई भिक्षा चाहिए, सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं, वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं ये फिर भी पवित्र मनुष्य है, उनको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो पवित्रता भी नहीं रही है, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं, यहां तो हैरान होने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं है,
ये पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारणा करने के लिए। लिखे तो बाबा कहते हैं अपने लिए लिखना है, धारणा करने के लिए। एक बार की बात है, जब दादी जानकी सभी टीचर्स के साथ बैठे थे तो एक बहन लिख रही थी, पॉइंट्स ले रही थी, तो दादी जानकी ने पूछा ये किसके लिए लिख रही है, तो उसने कहा क्लास में जाकर भाई बहनों को सुनाने के लिए। तो दादी ने कहा इस समय जब मैं सुना रही हूं उस समय क्लास के भाई बहने याद आना ये भी एक प्रकार का देह अभिमान है, खुद के धारणा के लिए है, उसके बाद अपने आप दूसरों को सुनाओ। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं ये पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारणा करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयां होती है, इतनी सब दवाइयां याद रहती है, बैरिस्टर की बुद्धि में कितने लॉ की बातें याद रहती है। तुमको याद करना है एक बात, सो भी बड़ी सहज है, तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो। वह कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे, यह भी तुम्हारे सिवाय किसको भी पता नहीं है। ईश्वर कहाँ है, वह तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षर में, नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज है नहीं। फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है, दोनों एक दो के ऑपोजिट बातें हो गई। तो बाप अपना परिचय दे कहते हैं, बाप अपना परिचय दे कहते हैं मुझ बाप को याद करो। गाया भी जाता है सहज राज योग, बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है, पहले सोच करेगा, बाबा कहे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है, पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप है नहीं, इसमें सोच करने की भी बात नहीं है। तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनबी ने आकर लूटा है। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को ये सब नॉलेज अभी बुद्धि में आ गई है, बल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको ये पता ही नहीं था कि ये जड़ चित्र है, जरूर चैतन्य में आया होगा, तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। बाबा कहते याद करते थे, पूजा करते थे, लेकिन ये नहीं मालूम था ये तो जड़ चित्र है तो जरूर चैतन्य में आया होगा, तभी तो इसकी शिव जयंती मनाते हैं। यह भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है, आत्मा जानती है हम भी निराकार है। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बहुत सहज है, वह तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, गर्वान प्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहां तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। बाबा कहते सब मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करे, बिंदी को कैसे याद करे, बड़ी चीज को याद किया जाता है।
अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वह क्या चीज है? बाबा पूछते हैं वो चीज क्या है, तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप। तो बाबा कहते परंतु ऐसे है नहीं, अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है, याद तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्यंत का समाचार भी सुनाते हैं, डिटेल में भी तो नक्शेल में भी, दोनों रूप से समझाते। अब बाप कहते बच्चे तुमको पावन बनना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, मुझे याद करो। मुझे कहते ही हो पतित पावन, आत्मा को पावन बनना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं, हम पावन थे अब पतित है। सात तमो प्रधान है, हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूं, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं, यहां पतित है तो दुखी है, यहां पतित है तो दुखी है। जब पावन थे तो सुखी थे, तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाए। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा ही कहती है मैं राजा हूं मैं फलाना हूं, अभी यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता आत्म अभिमानी। देह होते आत्म अभिमानी, रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं, आत्म अभिमानी अभी ही बाप बनाते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ। यह भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए हैं, चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए हैं, अभी यह बात भूलो मत। स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करना है, बाप को याद करना रोटी टुकड़ा खाना है बस। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ा खाना है, पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, एक पाव आटे का खाता है, दाल रोटी बस 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट पालते हैं, 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं, भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाता है तो और ही बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे, एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुकड़ा खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो, दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं, जास्ती लालच भी नहीं रखनी चाहिए। सन्यासी लोग क्या कहते हैं, दरबार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे तो है नहीं। आत्मा तो अमर है, आत्मा ब्रह्म में लीन नहीं हो सकती, लीन होने की बात ही नहीं है, बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर ये ज्ञान भूल जाता है, फिर सीढ़ी उतरनी होती है
अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, ये पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं होता, ये बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। बाबा कहते ये बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है, ये कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे कहां बैठ बनाया, ये ड्रामा कब कैसे कहां बैठ बनाया, नहीं ये तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है, इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं, ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिवान है या ईश्वर, दोनों में से कौन शक्तिशाली है? तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, समझते हैं वह सब कुछ कर सकते हैं। बाप कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते तुम सतयुग में सब सुखी बन जाते हो, मैं फिर जाकर विश्रामी बनता हूं परमधाम में। तुम सिर कुल्हे चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवारी है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वह ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है, अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं है, ब्रह्मा बाप भी पढ़ते हैं, ये तो कुछ रखते ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा, इतना सहज है। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनेंगे, यह है धारणा की बात। लिखते हैं क्या फायदा होगा, लिखते हैं बाबा को याद करने से क्या फायदा होगा, ये तो सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं, जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं, तुम भी गांठ बांध लो, शिव बाबा और वर्षे को याद करना है, ये बहुत सहज है, यह तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद, बाबा कहते योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती है, योग में कैसे बैठे? अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है, तुम भी सिर्फ याद करो बस, बेड़ा पार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन क्या करना है, 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी चीज की लालच नहीं रखनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुकड़ा खाना है, बाप की याद में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है, किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हैं। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए, दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता

चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे, उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। आज का स्लोगन है, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वो फलीभूत अवश्य होगा। आज का व्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, सदा उमंग उत्साह में एक रस रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो, जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह एकरस रहेगा, गुणग्राही बनो, अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। अच्छा,